90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 12 अगस्त सन 2026 सुबह के 7 बजे हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है। नमस्कार श्रोताओं, सुप्रभात। आज का दिन आप सभी के लिए शुभ और मंगलमय हो, ऐसी हमारी कामना है।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। आज सुबह की सभा में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। बने रहूंगी दोपहर के 12 बजे तक। कार्यक्रमों का सिलसिला आरंभ हो आइए उसके पहले हम आपको बताए देते हैं कि आज सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक आप हमारे कौन कौन से कार्यक्रमों का आनंद लेने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जीवन सौरभ। 7:10 से सुनिएगा अक्षय निधि का प्रसारण, जिसमें आप सुनेंगे ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ। 7:20 से आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत का मेरे साथ, यानी आपकी अपनी पूर्वा के साथ। श्रोताओं, सुबह 8 का वक्त होता है हमारे कार्यक्रम वतन का राग का। आज ये कार्यक्रम लाला पद्मधर सिंह पर आधारित होगा, जिनका आज शहादत दिवस है। सुबह 8:30 सुनिएगा कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। आज इसमें बातें होंगी रानी दुर्गावती की। सुबह 9 का वक्त होगा हमारे विशेष कार्यक्रम का। श्रोताओं, आज है विश्व हाथी दिवस, तो उसी पर आधारित होगा हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। विशेषज्ञ डॉक्टर सुदेश वाघमारे से मैंने यानी पूर्वा खले ने चर्चा की है। सुबह 9:30 आप सुनिएगा हमारा कार्यक्रम भारत विभूति। आज इस कार्यक्रम में हमारे भारत की विभूति हैं भारत रत्न श्री वी गरी, जिनका 10 अगस्त को जन्मदिन भी मनाया जाता है। नगर की साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी लेकर आएगी हमारी पत्रिका परिक्रमा सुबह 10 और 10:30 आप सुनेंगे काव्य गुंजन। काव्य गुंजन में कवि दिनकर की प्रसिद्ध रचना रश्मि रथी का भाग 9 सुनेंगे आप। दिन में 11 सुनिएगा कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक। आज इस कार्यक्रम में हमारे वैज्ञानिक हैं विक्रम साराभाई। श्रोताओं, आज विक्रम साराभाई जी की जयंती भी है। दिन में 11:30 सुनिएगा रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रेडियो आजाद हिंद से हमारे सुबह की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए, आइए सुनते हैं जीवन सौरभ।

0: जीवन सौरभ।
1: द्वारका में एक सूर्य भक्त था जिसका नाम था सत्राजित। उसे सूर्य देव ने स्यामंतक नाम की चमत्कारी मणि दी थी जो कि रोज 20 तोला सोना उगलती थी। एक दिन श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि यदि आप ये मणि राजकोष में दे देंगे तो इससे मिले धन से प्रजा की अच्छी देखभाल हो सकेगी। सत्राजित ने श्री कृष्ण को मणि देने से मना कर दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद सत्राजित के भाई प्रसन्नजित ने मणि चुरा ली और जंगल में भाग गया। जंगल में एक शेर ने प्रसन्नजीत को मार दिया और खा लिया। मणि जंगल में ही गिर गई। सत्राजित को जब प्रसन्नजीत के मारे जाने और अपनी मणि गुम जाने की सूचना मिली तो उसने श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि कृष्ण ने ही मेरे भाई की हत्या कर दी है और मेरी मणि चुरा ली। श्री कृष्ण पर चोरी और हत्या का कलंक लग गया। श्री कृष्ण ने उस समय क्रोध नहीं किया, धैर्य बनाए रखा और इस आरोप को गलत साबित करने के लिए जंगल की ओर चल दिए। जंगल में श्री कृष्ण को शेर के पैरों के निशान दिखे और निशान के पास हड्डियों का ढेर दिखा। श्री कृष्ण समझ गए कि प्रसन्नजीत को शेर ने मार दिया है और मणि यहीं कहीं गिर गई है। श्री कृष्ण मणि खोजते हुए एक गुफा में पहुंच गए। गुफा में जामवंत रहते थे। श्री कृष्ण ने मणि मांगी तो जामवंत ने नहीं दी। इसके बाद दोनों में युद्ध हुआ। युद्ध में श्री कृष्ण जीत गए। जामवंत समझ गए कि ये भगवान श्री राम के ही अवतार हैं। इसके बाद जामवंत ने मणि श्री कृष्ण को दे दी। द्वारका लौटकर श्री कृष्ण ने वो मणि सत्राजित को दे दी और पूरी सच्चाई भी बता दी। सत्राजित को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। इस कथा की सीख यह है कि हमारे ऊपर जब भी झूठे आरोप लगे तो हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि शांति से पूरी बात समझकर और आरोपों को झूठा साबित करना चाहिए।
0: जीवन सौरभ।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 186 से वाचन। ऋषि हैं अगस्त्य मैत्रा वरुणी, देवता हैं अश्विनी कुमार और छंद है त्रिष्टुप।
1: उत न ईम मतयोश्वयोगाः शिशुम न गावस्तरुणं रिहन्ति तमीम गिरो जनयो न पत्नीः सुरभिष्टमं नराम न संत। जिस प्रकार गौएं अपने बछड़ों को स्नेह से चाटती हैं, उसी प्रकार श्रेष्ठ बुद्धियां उन चिर युवा इंद्रदेव के प्रति अपना स्नेह प्रकट करती हैं। उन महायशस्वी इंद्रदेव को हमारी स्तुतियां उसी प्रकार आकर्षित करती हैं जिस प्रकार प्रजननशील स्त्रियां पतियों को आकर्षित करती हैं। उत न ईम मरुतो वृद्धसेनाः स्मद्रोदसी समनसः सदन्तु पृषदश्वासो वनयो नरथा ऋषादसो मित्रयुजो न देवाः। रथों पर विराजमान रक्षक गणों के पास समान दुष्ट शत्रुओं को विनष्ट करने वाले मित्रों के समान पारस्परिक स्नेह रखने वाले विलक्षण अश्वों से युक्त समान मनोभावों से युक्त तेजस्वी महान सामर्थ्यों से युक्त मरुदगण तथा द्यावा पृथ्वी हमारे यज्ञ में पधारें। प्रनु यदेशाम महिना चिकित्रे प्रयुञ्जते प्रयुज्यस्ते सुवृक्ति अध यदेशाम सुदिने न शरुर विश्वमेरिणम पुरुषायंत सेनाः। श्रेष्ठ स्तुतियों से हर्षित होकर मरुदगण अश्वों को अपने रथ में जोड़ते हैं। तत्पश्चात दिन में जिस प्रकार प्रकाश सर्वत्र संचरित होता है, उसी प्रकार मरुतों की सेना ऊसर भूमि को जलों से सींच कर उपजाऊ बनाती है। इससे इन मरुदगणों की ख्याति और भी अधिक बढ़ जाती है। प्रो अश्विना ववसे कृणुध्वम प्रपूषणम स्वतवसो हि संति अद्वेशो विष्णुर्वात रिभुक्षा अच्छा सुम्नाय ववृतीय देवान। हे मनुष्यों, अपनी रक्षा के लिए अश्विनी कुमारों पूषा देव विद्वेष रहित विष्णुदेव वायुदेव ऋभुओं के स्वामी इंद्रदेव इन सभी देवों की स्तुति करो। हम भी सुख की प्राप्ति के लिए इन देव समूह की प्रार्थना करते हैं। इयं सा वो अस्मे दीधितिर यजत्रा अपि प्राणी च सदनी च भूयाः नीया देवेषु यतते वसुयुर् विद्यामेशम व्रजनम जीरदानुम। हे यज्ञदेव, आपका जो तेज देवों को ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है, मनुष्यों की अभिलाषाओं को पूर्ण कराने वाला तथा आवास प्रदान करने वाला है। वह दिव्य तेज हम अपने अंदर धारण करें, जिससे हम मनुष्य उत्तम अन्न, उत्तम बल और दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त कर सकें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 186 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।

90.1 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। अब ये समय है भक्ति संगीत का। भक्ति संगीत लेकर उपस्थित हूँ श्रोताओं, मैं आपके बीच आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। आइए कार्यक्रम को आरंभ करें इस प्रार्थना के साथ। असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम अमृतम गमय। हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, और हमारे कर्म ऐसे हों कि मृत्यु से हम अमरता को प्राप्त करें।

जल में तैरती नौका को हमने देखा है। इस नौका को देखकर हम जीवन का महत्व सीख सकते हैं। स्वयं जल में होकर भी औरों को सदैव पार कराने में लगी रहती है नौका, यानी दायित्व ईश्वर उसी को सौंपते हैं जो औरों का भार उठा सकता है। जीवन में प्रयास हो कि हम जिम्मेदार बनें

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत। आज मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। श्रोताओं, इस जीवन की सांसें हम सभी के लिए निश्चित गिनती की हैं। सुबह होती है और शाम में ढल जाती है, रात आती है तो साथ में लाती है एक नई सुबह। समय कैसे पंख लगाकर उड़ता चला जाता है हम जान ही नहीं पाते, और जीवन जीवन यूं ही बीतता जाता है। तो कुछ समय परोपकार और आध्यात्म के लिए भी निकालें, ताकि जीवन बीतने पर पछतावा ना हो।

इस संसार में ज्यादातर महत्वपूर्ण चीजें उन लोगों द्वारा प्राप्त की गई हैं, जो कोई भी उम्मीद न होने के बावजूद हमेशा अपने प्रयास में लगे रहे। जिस प्रकार बिना घिसे हीरे पर चमक नहीं आती, ठीक उसी तरह बिना गलतियां किए मनुष्य संपूर्ण नहीं बनता। तो फिर असफल होने पर अपने प्रयास करना ना छोड़ें। कभी न कभी हम लक्ष्य पर पहुंच

पुष्पै गंधम तिले तैलम काष्ठे वन्हि पयोघृतम इक्षौ गुणम तथा देहे पश्यात्मानम विवेकतः। यानी जिस प्रकार एक फूल में खुशबू है, तिल के बीजों में तेल है, लकड़ी में अग्नि है, दूध में घी है और गन्ने में गुड़ है, ठीक उसी प्रकार यदि हम विवेक पूर्वक देखें तो हर व्यक्ति में परमात्मा विद्यमान है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ और आनंद ले रहे हैं भक्ति संगीत का। आज का ये कार्यक्रम आइए इस प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यानी कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी कोई कष्ट न देखें, सभी को अच्छा देखने को मिले और हे प्रभु किसी को भी कोई दुख न हो। इस प्रार्थना के साथ ही दीजिए अनुमति भक्ति संगीत यही समाप्त करने की। पूर्वाखले को नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल देश के लिए सुनते रहिए।
1: कुछ याद उन्हें भी कर लो।
2: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उन्हें कहने दो अंधकार को भाग्य अपना, कहने दो उन्हें कि रोशनी के सारे दरवाजों पर ताला है, तुम्हें इनसे बाहर निकलना होगा, बंद दरवाजों को तोड़ना होगा, आवाज उठानी होगी तुम्हें बर्बर सत्ता के विरुद्ध, यदि तुम चाहते हो न्याय, आजादी और स्वाभिमान से भरी जिंदगी। तुम उठाओ परचम इनकलाब का, करो बातें रोशनी की, रचो तुम धुन बगावत की, तुम युवा हो, उठो प्रबल हुंकार की तरह। युवा शक्ति से समय का ये आह्वान हमेशा से रहा है, क्योंकि युवाओं से ही किसी भी देश का भविष्य है, युवाओं से ही सपने हैं, युवाओं से ही प्रगति है, युवाओं से ही समाधान भी। समय साक्षी है कि जब कभी किसी देश या समाज पर अंधकार के बादल छाए हैं, अन्याय सत्ता पर काबिज हुआ है, तब युवा शक्ति ही उनके विरुद्ध खड़ी हुई है क्रांति की भाषा बनकर। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में ऐसी अनगिनत कहानियां दर्ज हैं। कितने ही प्रतिभाशाली छात्रों ने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, सुनहरा भविष्य छोड़ दिया, घर परिवार सब कुछ छोड़कर वो कूद पड़े स्वाधीनता समर में। संकल्प ऐसा कि या तो भारत को आजाद करवाएंगे या अपने प्राण न्योछावर कर देंगे। देश पर अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले एक ऐसे ही महान देशभक्त थे लाल पद्मधर सिंह। एक अत्यंत मेधावी छात्र, आंखों में सपना था कि पढ़ लिखकर एक डॉक्टर बनेंगे और लोगों की सेवा करेंगे, लेकिन इस व्यक्तिगत सपने से पहले देश के लिए एक बड़ा सपना उनकी आंखों में था, सपना पूर्ण स्वराज का, सपना अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का, सपना भारत की आजादी का।

लाल पद्मधर सिंह का जन्म 14 अगस्त सन 1914 को सतना जिले के पास स्थित कृपालपुर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम लाल प्रद्युम्न सिंह था और माताजी का नाम श्रीमती राजकुमार सिंह था। उनकी आरंभिक शिक्षा रीवा में हुई। वो बचपन से ही अत्यंत ईमानदार, संवेदनशील और स्वाभिमानी थे। यूं तो अपने विनम्र स्वभाव और अच्छे व्यवहार के कारण वो आसपास के लोगों के बीच काफी लोकप्रिय थे, लेकिन अन्याय सहन करना उनके स्वभाव में नहीं था। आज भी रीवा और आसपास के क्षेत्र में उनके विषय में जनश्रुति है कि जब वो रीवा में कक्षा 8 के विद्यार्थी थे, तब विज्ञान की प्रयोगशाला से एक प्रिज्म चोरी हो गया। इस घटना से प्रधान अध्यापक बहुत नाराज हुए और बिना सबूत ही सभी छात्रों पर चोरी का आरोप लगा दिया। लाल पद्मधर सिंह ने कहा कि वो निर्दोष हैं, लेकिन प्रधान अध्यापक ने उन्हें डांटते हुए अपशब्दों का प्रयोग किया। इतना ही नहीं, उनके कमरे की तलाशी भी ली गई। इस घटना से लाल पद्मधर सिंह अत्यंत आहत हुए और उन्होंने क्रोध में आकर प्रधान अध्यापक पर बंदूक तान दी। स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया। दंड स्वरूप उन पर प्रतिबंध लगाकर उन्हें स्कूल से निष्कासित कर दिया गया। इस घटना ने ये जता और बता दिया था कि शोषण और अत्याचार के विरुद्ध युद्ध में वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। देशभक्ति की भावना भी उनके भीतर पारिवारिक वातावरण के कारण शुरू से ही थी। जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे, ब्रिटिश राज की नीयत को बखूबी समझ रहे थे। उन दिनों होने वाले देशव्यापी आंदोलन से भी वो बहुत प्रभावित थे। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, पूर्ण स्वराज की मांग, वंदे मातरम की अनुगूंज और क्रांतिकारियों का बलिदान, इस पूरे वातावरण का बहुत गहरा प्रभाव उन पर पड़ा और देश को आजाद कराने का संकल्प उनके भीतर प्रबल होता गया।

सन 1942 में ब्रिटिश राज को ललकारते हुए जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की, तब लाल पद्मधर सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे। सन 1930 में पूर्ण स्वराज की मांग के बाद से लगातार यहां का छात्र संघ राजनैतिक गतिविधियों में सक्रिय रहा करता था। 1930 में ही यहां दो प्रस्ताव भी पारित हुए थे। पहला ये कि यूनियन भवन पर राष्ट्रध्वज फहराया जाएगा और दूसरा था कि सभी छात्र खादी वस्त्र पहनेंगे। छात्र संघ लगातार स्वाधीनता आंदोलन की घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से जब भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ तो मुंबई, दिल्ली, पटना और वाराणसी के साथ साथ इलाहाबाद तक इस आंदोलन की चिंगारी पहुंची। भारत छोड़ो आंदोलन में यहाँ के छात्रों का नेतृत्व किया उनके लोकप्रिय नायक लाल पद्मधर सिंह ने। योजना बनाई गई कि 12 अगस्त 1942 को इलाहाबाद की जिला कचहरी तक छात्रों का जुलूस जाएगा और वहां झंडा फहराया जाएगा। यूनियन भवन पर सभा हुई और फिर छात्र छात्राओं का जुलूस आगे बढ़ा। इस जुलूस में छात्र नेता यदुवीर सिंह, हेमवती नंदन बहुगुणा, राजमंगल पांडे, प्रकाश मेहरोत्रा, मानस बिहारी मुखर्जी आदि चल रहे थे। इस प्रदर्शन की भनक अंग्रेजी हुकूमत को पहले ही लग चुकी थी, इसलिए रास्ते में पुलिस तैनात कर दी गई थी। जुलूस में छात्राएं आगे आगे चल रही थीं। अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे से पूरा वातावरण गूंज उठा था। जुलूस का नेतृत्व लाल पद्मधर सिंह कर रहे थे। जुलूस आगे बढ़ रहा था कि तभी ब्रिटिश सैनिकों ने उसे रोकने का प्रयास किया। भीड़ को रोक लिया गया। सभी को वापस जाने की चेतावनी देते हुए पुलिस ने छात्राओं पर बंदूक तान दी। इस पर भी जुलूस वापस नहीं लौटा। अब पुलिस ने हवाई फायरिंग की। चारों ओर भगदड़ मच गई। तभी लाल पद्मधर सिंह ने पुलिस को ललकारते हुए कहा कि लड़कियों पर क्यों बंदूक तानते हो, हिम्मत है तो मेरे सीने पर गोली चलाओ। इसके साथ ही हाथों में तिरंगा लिए नारे लगाते हुए लाल पद्मधर सिंह आगे बढ़ने लगे। अंग्रेज सिपाहियों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। लाल पद्मधर सिंह शहीद हो गए। पूरे शहर में दुख की लहर दौड़ गई। भारत माँ का एक सच्चा सपूत देश पर बलिदान हो गया। उनके बलिदान को देखकर अनगिनत छात्र इस आंदोलन में कूद पड़े। लाल पद्मधर सिंह के बलिदान के बाद अंग्रेजों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ को 1 नवंबर 1942 को भंग कर दिया था। बाद में अनेक प्रयासों के बाद 1945 में छात्र संघ फिर बहाल हुआ। आगे चलकर छात्र संघ भवन का नाम शहीद लाल पद्मधर सिंह के नाम पर कर दिया गया। विश्वविद्यालय परिसर में उनकी प्रतिमा आज भी स्थापित है, जो उनके बलिदान की गाथा गाती है, और आज भी छात्र संघ में उनके नाम की शपथ ली जाती है। ऐसे अमर बलिदानी को हम शत शत नमन करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम वतन का राग 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए।
1: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद
1: 90.8
2: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
1: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
2: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से।

0: अपने इस कार्यक्रम में हम मध्य भारत के जनजातीय राजवंशों के इतिहास और उनके योगदान पर चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुश्री पूजा सक्सेना। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो आजाद हिंद के स्टूडियो में।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: इससे पहले कि हम इस एपिसोड में अगली कुछ बातें करें पूजा जी से, आपको जरा पहले की बात याद दिला देते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने आपको क्या क्या जानकारी दी थी। संक्षिप्त में आपको बताते हैं, इस श्रृंखला की पहली कड़ी में हमने सुना था मध्य भारत में गोंड राज्यों की स्थापना किस प्रकार हुई, गढ़ा कटंगा के गोंड राजवंश के प्रतापी शासक संग्राम शाह के बारे में जाना। संग्राम शाह सन 1510 में गढ़ा के शासक बने और 1543 ईस्वी तक गढ़ा के शासक रहे। राजा संग्राम शाह का प्रशासनिक केंद्र गढ़ा कटंगा यानी जबलपुर का आज का मदन महल था। संग्राम शाह के अधिकार क्षेत्र में 52 गढ़ थे जो उनके विस्तृत और सुदृढ़ राज्य के परिचायक हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित सिंगौरगढ़ उनका सबसे प्रमुख किला था। संग्राम शाह का बनाया हुआ बाजना मठ आज भी जबलपुर में स्थित है। संग्राम शाह ने साहित्य में अत्यधिक योगदान दिया और रस रत्नमाला ग्रंथ की रचना की। उनके द्वारा सोने के सिक्के चलाए गए जिससे गढ़ा राज्य की आर्थिक समृद्धि और अनेक जानकारियां हमें मिलती हैं। और आज की कड़ी में हम सुनेंगे इससे आगे की कहानी सुश्री पूजा सक्सेना से। पूजा जी पुरातत्वविद हैं, आपने मध्य भारत के गोंड राजवंशों पर शोध किया और पिछले 23 वर्षों से आप इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। तो पूजा जी, संग्राम शाह की मृत्यु सन 1543 में हो गई, उसके बाद गढ़ा राज्य का क्या हुआ?
1: संग्राम शाह के 33 सालों के राज्य ने गढ़ा को बहुत सुदृढ़ बना दिया। उनके राज्य में 52 गढ़ थे जो उनके विस्तार को बताते हैं
0: जी।
1: साथ ही संग्राम शाह ने जो सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, धार्मिक और साहित्य में योगदान दिया वह भी अतुलनीय था। वह एक मजबूत गढ़ा राज्य छोड़कर 1543 में चले गए
0: जी।
1: संग्राम शाह के 2 पुत्र थे, एक का नाम था दलपत शाह और दूसरे का चंद्र शाह। दलपत शाह का विवाह हुआ दुर्गावती नाम की एक कन्या से, जिन्हें हम भारतीय इतिहास के स्वर्ण हस्ताक्षर मानते हैं, वीरांगना रानी दुर्गावती
0: जी।
1: संग्राम शाह की मृत्यु के उपरांत उनका जो पुत्र था दलपत शाह, वो गढ़ा का अगला राजा बना 1543 में
0: जी।
1: राजा दलपत शाह ने अपनी राजधानी गढ़ा कटंगा या मदन महल को ना रखकर सिंगौरगढ़ को बनाया,
0: यानी जो दमोह में जो किला था वहां।
1: हाँ, वहां पर सिंगौरगढ़ में
0: जी।
1: सिंगौरगढ़ हमने जैसा पिछली बार सुना था कि संग्राम शाह के 52 गढ़ों में से प्रमुख गढ़ था
0: जी।
1: और बहुत सुरक्षित स्थान पर था। दलपति शाह के समय भी साहित्य को बहुत प्रश्रय मिला, यद्यपि उनका कार्यकाल बहुत छोटा था
0: जी।
1: हमने जैसा पिछली बार सुना था कि मैथिल ब्राह्मण थे महेश ठाकुर और दामोदर ठाकुर, तो दलपत शाह के समय भी महेश ठाकुर ने अनेक ग्रंथों की रचना की जो भारतीय साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसके साथ ही एक बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार हुए केशव लोगाक्षी ठाकुर
0: जी।
1: उन्होंने भी बहुत योगदान दिया, उन्होंने धर्म, न्याय, मीमांसा पर खूब लिखा
0: जी।
1: और आज भी पढ़ा जाता
0: इससे है। जुड़ी हुए 2 सवाल मेरे मन में आ रहे हैं कि ये तो जो दमोह है और जबलपुर भी थे, आज भी ये जो क्षेत्र है बुंदेलखंड में ही आते हैं, तो क्या ये जो लेखन था ये बुंदेली भाषा में लिखा गया था उस समय भी या कोई और भाषा प्रचलित थी?
1: नहीं, जो गढ़ा के गोंड राजाओं के समय जो साहित्य लिखा जा रहा है वह सभी संस्कृत में है।
0: संस्कृत में है
1: जी हाँ। संग्राम शाह स्वयं संस्कृत के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, तो दलपत शाह ने भी उसको कंटिन्यू किया और संस्कृत में ही साहित्य लिखा गया।
0: तो साहित्य में दलपत शाह की विशेष रुचि थी, उनका अधिकार था, इसलिए उनके इस कार्यकाल में इतने सारे ग्रंथ रचे गए, या कमोबेश ऐसा होता ही था उस समय कि सबके यहाँ पे कोई ना कोई कालिदास होते ही थे?
1: हाँ, साहित्य के रचनाकार होना एक आम बात है, लेकिन उस काल में यदि राजा साहित्य के प्रति या स्थापत्य के प्रति प्रेम रखता है
0: जी।
1: और उसको प्रश्रय देता है जो साहित्यकार है या कलाकार है, तो फिर वो अच्छे से पनप पाता है। तो हम देख रहे हैं चाहे संग्राम शाह का काल हो चाहे दलपत शाह का, दोनों ही के समय में साहित्य का खूब अच्छा उद्भव हुआ।
0: तो मैम, जैसे कि आपने बताया कि बहुत कम वो शासन कर पाए, सिर्फ 7 साल का उनका वो शासन काल रहा, तब भी वो उल्लेखनीय शासन काल हम कह सकते हैं और कहा जाता है, और तब उनके जो पुत्र थे उनकी भी आयु बहुत कम थी, वो शैशवावस्था में थे, तो फिर आगे शासन कैसे हुआ?
1: दलपत शाह की मृत्यु 1550 में हो गई और उस समय उनकी जो रानी थी दुर्गावती
0: जी,
1: उनकी उम्र कोई 25-26 वर्ष की रही होगी। और दलपत शाह का एक पुत्र था वीर नारायण, जो लगभग 4-5 वर्ष का रहा होगा
0: जी।
1: ये एक बहुत कठिन समय था, अब गढ़ा के पास कोई राजा नहीं था। तो उस समय रानी ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और फिर से वो उठ खड़ी हुई और उन्होंने गढ़ा के राज्य को संभाला।
0: लेकिन क्या ऐसे कदम उठाए कि राज्य संभल गया और फिर से राज्य ने अपना विस्तार किया?
1: दलपति शाह के दो विश्वस्त राज दरबारी थे
0: जी।
1: एक का नाम था आधार कायस्थ और दूसरे का था मान ब्राह्मण। बहुत विश्वस्त थे ये इन दोनों।
0: जैसे
1: ने...
0: कि नाम से एक चीज आई कि आपने कहा आधार कायस्थ और मान ब्राह्मण
1: जी,
0: क्या ये ऐसे सरनेम थे? आज सरनेम जिस तरह के चल रहे हैं तो क्या ये इसी तरह के सरनेम हुआ करते थे, पहचान हुआ करती थी सीधे सीधे नाम के आगे?
1: जी हाँ, ये जो हम आजकल जिस तरीके से सरनेम लगाते हैं
0: जी,
1: वो लगाना बहुत बाद में शुरू हुआ
0: जी।
1: मेरे ख्याल से तो स्वतंत्रता के बाद में, जब फॉर्म भरे जाने लगे।
0: अच्छा,
1: तब ये हुआ कि
0: दस्तावेजीकरण
1: होने, उससे पहले से ज्यादातर लोग अपना जिस तरीके से आज सरनेम लगाते हैं वैसे नहीं लगाते थे। कुछ और ही, या तो जैसे प्रसाद है, कुमार है, इस तरीके से छोड़ दिया करते थे
0: जी हाँ।
1: या फिर उसके आगे कुछ ब्राह्मण है, इस तरीके का कुछ ना कुछ आता था। लेकिन ये दिखाता है कि किस प्रकार से सब मिलकर एक शासन को संभाल रहे हैं
0: जी,
1: कोई विभेद
0: सभी,
1: नहीं।
0: सभी हाँ। वर्गों का योगदान
1: जी हाँ, सभी वर्गों का योगदान है
0: जी। तो श्रोताओं देखिए हाँ। हम बात कर रहे हैं पुरातत्वविद से, लेकिन कितनी अच्छी अच्छी जानकारियां, छोटी छोटी जानकारियां जिसमें इंटरेस्ट आता है हम सबको, वो निकल करके आ रही है जी। पूजा जी,
1: तो दलपत शाह के जो दोनों विश्वस्त अधिकारी थे आधार कायस्थ और मान ब्राह्मण, तो इन दोनों ने रानी दुर्गावती को सलाह दी कि आप राजकुमार वीर नारायण को, जो कि 4-5 साल के हैं, उन्हें अगला राजा घोषित कर दें जल्दी से जल्दी, क्योंकि आप जानते ही हैं कि राजवंशों में षड्यंत्र बहुत हुआ करते थे। और इसके साथ ही रानी स्वयं वीर नारायण की, या जो राजा बनेंगे उनकी संरक्षिका बन जाए। यानी कि इसका अर्थ यह हुआ कि वीर नारायण नाम के राजा होंगे और राजकाज संभालेंगी उनकी माँ दुर्गावती
0: जी।
1: और ऐसा ही हुआ, रानी दुर्गावती ने जल्दी ही वीर नारायण को अगला राजा घोषित करा दिया और वो उसकी संरक्षिका बनी और उन्होंने राजकाज संभाल लिया। तुरंत ही लोक उपयोगी कार्य करने शुरू कर दिए। उन्होंने अनेक तालाब बनवाए जो कि हम जबलपुर में देखते हैं, और बहुत सारे मठ मंदिर भी बनवाए। इससे पहले कि वो ये सब करती, उन्होंने गढ़ा राज्य का सुदृढ़ीकरण भी किया, उसकी सीमाएं सुरक्षित की, जितने भी गढ़ थे उनको ठीक कराया और साथ ही उसका एकीकरण किया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी राजधानी को बदला।
0: अच्छा,
1: दलपत शाह ने अपनी राजधानी को सिंगौरगढ़ चुना था
0: जी।
1: और रानी ने अपनी राजधानी बनाया या मुख्य प्रशासनिक केंद्र चौरागढ़ को बनाया। चौरागढ़ नरसिंहपुर जिले में है।
0: अच्छा, तो इसका मतलब कि हर राजा जो वहां पर इस गोंड राजवंश का हुआ, मदन महल से राजधानी पहले दमोह आई और अब यहाँ पर नरसिंहपुर चली गई। तो चौरागढ़ का स्थापत्य और उसके सामरिक महत्व के बारे में कुछ प्रकाश डालिए।
1: चौरागढ़ मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में है और बहुत ही दुर्गम किला है
0: जी।
1: यहाँ तक पहुंच पाना आज भी बड़ा मुश्किल है।
0: अच्छा,
1: उस समय तो हम सोच भी नहीं सकते। ये गढ़ा राज्य की दक्षिणी सीमाओं से लगा हुआ था। संभवतः रानी को समझ में आया होगा कि इस ओर से हमको अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है, एक। दूसरा, उस समय गढ़ा राज्य के पास अकूत संपत्ति थी, बहुत धन दौलत थी, तो उसकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी रानी के ऊपर थी। तो उन्हें लगा कि चौरागढ़ से अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती, तो उन्होंने चौरागढ़ को अपनी राजधानी बनाया। चौरागढ़ अपने आप में एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर है और ये पहाड़ी चारों ओर से बड़ी खड़ी चढ़ाई है इसमें। तो अगर आप चौरागढ़ जाएंगे तो घना जंगल है, कई प्रवेश द्वारों से निकलते हुए आप ऊपर किले तक पहुंचते हैं और चारों ओर से किला ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है, सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ है। तो ये बड़ा कठिन था वहां तक पहुंचना
0: जी।
1: चौरागढ़ में एक प्राकृतिक तालाब भी है ऊंची पहाड़ी के ऊपर
0: जी।
1: और हम जानते ही हैं कि किसी भी किले के लिए पानी का बहुत महत्व है। जब शत्रु की सेना घेर लेती है उस समय पानी होना, खाना होना और सेना में हिम्मत होना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत जरूरी अंग था उस किले का। इसके साथ ही एक खास बात है इस तालाब की कि जब किले की पहाड़ी के नीचे जितने भी तालाब हैं वो सूख जाते हैं जब गर्मियों के दिन में, तब भी ये तालाब सूखता नहीं है। इतनी ऊंची पहाड़ी पर होने के बावजूद भी इसमें पानी भरा रहता है।
0: तो क्या मैम ये वही तालाब है जिसे लोग चमत्कारिक मानते हैं और मान्यता भी इस तालाब के बारे में कि इस तालाब के जल का आचमन करने से ही अनेक रोग दूर हो जाते हैं?
1: हाँ, बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि तालाब में पारस पत्थर है और वो इसे खास मानते हैं
0: जी।
1: तो तालाब से संबंधित एक लोक कथा भी हमको स्थानीय लोग सुनाते हैं
0: जी।
1: वो कहते हैं कि गढ़ा का एक राजा था और वो चाहता था कि वह अपनी प्रजा के लिए एक बहुत ही सुरक्षित गढ़ बनाए, एक किला बनाए। तो वो यहाँ वहाँ भटकता हुआ ढूंढ रहा था एक सुरक्षित स्थान जहाँ पर सारी खासकर जल हो। तो वो भटकते भटकते नर्मदा नदी के किनारे पहुंचा और उसने माँ नर्मदा से ये प्रार्थना की कि मुझे एक सुरक्षित स्थान चाहिए प्रजा की रक्षा के लिए, जहाँ आप भी हों।
0: अच्छा।
1: तो माँ नर्मदा प्रकट हुई और उन्होंने राजा से कहा कि तुम अपने अधोवस्त्र यानी ऊपर के वस्त्र और अपनी जो वस्तुएं हैं वो यहाँ पर छोड़ जाओ और जाओ, आगे तुम्हें सफलता मिलेगी। राजा जो है वो पहाड़ियों जंगल की तरफ आगे चल दिया
0: जी।
1: जब वो भटकते भटकते एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचा तो उसने वहां देखा कि वहां पर तो एक जल से भरा हुआ खूब बड़ा तालाब है
0: जी।
1: तो वो देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हो गया और उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उसने देखा कि उसके जो वो वस्त्र थे जो उन्होंने माँ नर्मदा को अर्पित किए थे और वस्तुएं वो सब भी उस तालाब के किनारे पड़े थे। तो उन्होंने उसको माँ नर्मदा की इच्छा मानी, उनका आशीर्वाद माना और फिर उसी जगह पर चौरागढ़ का किला बनाया। तो आज भी लोग मानते हैं इस तालाब में कि इसकी मेडिसिनल वैल्यू है और उसका पानी पीते हैं।
0: और इसी किले को चौगान या चौगांव भी कहा जाता है।
1: हाँ, ये वही किला है
0: जी। तो हम गोंड राज्य सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं, चौरागढ़ किला खुद भी बहुत ऊंची और खड़ी पहाड़ी पर है, तो उसके बारे में और आप कुछ हमें बताएं।
1: गोंड किलों की खासियत ही यह है कि वो बहुत सुरक्षित तरीके से इसको बनाते थे और जो सुरक्षा व्यवस्था उसके आसपास किया करते थे वह भी जानने लायक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि चौरागढ़ तो खुद ही बहुत ऊंची पहाड़ी पर है और ऐसी पहाड़ी जिसमें आप चढ़ाई करना बड़ा मुश्किल है, तीनों तरफ से वो खड़ी हुई पहाड़ी है और उसकी चारों तरफ से दीवारें भी बनी हैं और उसमें प्रवेश द्वार में भी आपको कई प्रवेश द्वार आप क्रॉस करोगे तब वहां तक पहुंच पाओगे। लेकिन खास बात जो देखने वाली है वो ये है कि चौरागढ़ के चारों ओर छोटे छोटे और भी गढ़ बने हुए हैं, यानी एक और सुरक्षा घेरा। तो इन किलों का नाम है, गढ़ों का नाम है, जैसे फतेहगढ़ है, नमुआगढ़ है, भंवरगढ़ है, पानागढ़ है, देवरीगढ़ है, ऐसे कई सारे किले हैं जो इस मेन जो फोर्ट है चौरागढ़ उसको चारों तरफ से सुरक्षा देते थे। और भी अगर हम ध्यान से देखें तो आसपास ये जो छोटे गढ़ थे इनके पास भी बहुत सारी गढ़ियां होती हैं। तो यानी एक बहुत छोटा किला, एक चौकी
0: जी हाँ,
1: मतलब एक छोटी चौकी है जो इन छोटे की गढ़ों के पास है, यानी कि ये पूरी की पूरी सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी हलचल होगी तो
0: अगर आपकी पहली सुरक्षा चौकी में छोटी चौकी में भी कोई हलचल होती है तो फिर जो उससे बड़ा वाला जो किला है गढ़ी है वहां तक जाती है, बादगढ़ तक जाती है और फिर आखिर में जाकर के
1: जी हाँ
0: जी, तो महल के अंदर तक ताकि पूरी सूचना पहले से पहुंच जाए
1: जी।
0: क्या बात है, क्या सुरक्षा व्यवस्था थी। और ये निश्चित रूप से रानी दुर्गावती का कुशल प्रबंधन ही कहा जाएगा।
1: जी हाँ बिल्कुल, रानी दुर्गावती का बहुत बड़ा योगदान है इसमें।
0: गोंड राजा हमेशा से इसी तरह के सुरक्षा प्रबंधन के लिए जाने जाते रहे, रानी दुर्गावती को भी ये जो प्रबंधन की जो कला है वो विरासत में मिली हम कह सकते हैं।
1: बिल्कुल, विरासत में ही मिली क्योंकि हम जानते हैं कि गोंड या दूसरी जनजातियां जंगलों में निवास करती हैं और ये जंगलों की बहुत अच्छी जानकार हैं। इनको जंगल के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, वहाँ के जीव जंतुओं के बारे में और जो दुर्गम रास्ते होते हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, सबके बारे में बहुत अच्छी जानकारी होती है। तो उससे संबंधित करके कैसे सुरक्षित किया जाए ये परंपरागत रूप से जानते हैं। तो जो मैं जल व्यवस्थाएं बता रही हूँ कहाँ पर तालाब होना चाहिए इसकी जानकारी इनको बहुत अच्छी होती है, कैसे तालाब को निर्माण किया जाए, कैसे सुरक्षा व्यवस्थाएं की जाए, इसमें इनकी महारत है।
0: किसी भी राज्य के कमजोर होने पर आसपास के राज्य या राजवंश हमला करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और यहाँ तो शासिका जो थी वो एक महिला थी, तो क्या हमेशा गढ़ा राज्य को मजबूत होने के बावजूद भी हमले का खतरा नहीं सहना पड़ता था।
1: ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है
0: जी।
1: कि जब कोई महिला शासन करती है तो आसपास के जो पुरुष वर्ग होता है या पुरुष राजा होते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये कमजोर शासन है
0: जी।
1: तो दुर्गावती के साथ भी यही हुआ और आसपास के जितने राज्य थे वो सब ये प्रयास करने लगे कि हम कैसे न कैसे गढ़ा राज्य पर अधिकार लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सबसे नजदीक का राज्य था जिसे कि मालवा का राज्य, जिसमें बाज बहादुर हुए हैं, हमने सबने कहानी सुनी होगी रूपमती और बाज बहादुर की, तो ये जो बाज बहादुर हैं सबसे पहला हमला इन्होंने किया और ये गढ़ा की सीमाओं को लगातार छीन करने की कोशिश करते रहे, पर रानी दुर्गावती ने जो इसका जवाब दिया वो देखने लायक था।
0: निश्चित रूप से, तभी तो रानी दुर्गावती का नाम आज इतिहास में अमर है। तो मतलब उस न सिर्फ उस मुकाबले का, बल्कि उसके बाद जितने भी मुकाबले हुए, हमने सुना है कि उन सभी मुकाबलों पर विजय पाई है रानी दुर्गावती ने।
1: हाँ, बहुत शुरू में हम देखते हैं कि रानी का एक युद्ध जो है वो मियाना अफगानों के साथ भी है। शेरशाह सूरी एक समय के लिए रायसेन आए थे, मध्य प्रदेश में रायसेन का किला है। जी हाँ, दिल्ली से। तो उन्होंने 6 माह तक रायसेन का किला घेर लिया था और किलेबंदी करके रखी, पर उसमें वो सफल नहीं हुए। 6 महीने बाद उन्होंने वहां पर जितने तांबे के सिक्के थे वो गलवाए और तोप बनवाई। उस तोप के बन जाने के बाद उन्होंने रायसेन किले पर अधिकार कर लिया। लेकिन उनकी सेना में बहुत सारे मियाना अफगानी आए थे
0: जी।
1: तो वो फिर इन क्षेत्रों में बस गए। तो जब रानी दुर्गावती ने राजकाज संभाला तो सबसे पहला उनका जो आमना सामना हुआ वो मियाना अफगानों की सेना से हुआ था
0: जी।
1: और रानी ने मियाना अफगानों को बुरी तरह परास्त किया था,
0: जबकि वो लड़ाके माने जाते थे, विशेषज्ञ माने जाते थे अफगान जी।
1: तो रानी का सामना उनसे हुआ और रानी ने उन्हें परास्त किया। पर हुआ ये कि जो मियाना अफगानी थे वो रानी की सेना में शामिल हो गए, और जैसे शम्स बहादुर का नाम हमें मिलता है वो तो मुख्य सेनापति रहे उनके, और उन्होंने रानी के साथ मिलकर कई सारे युद्ध लड़े
0: थे।
1: जी हाँ।
0: तो श्रोताओं, रानी दुर्गावती को यूं ही अदम्य साहसी नहीं कहा जाता। इतिहास के पन्नों में अगर आज भी उनका नाम अमिट माना जाता है, उन्हें पढ़ा जाता है, खूब सुना जाता है, उनके शौर्य की गाथाएं गाई जाती हैं, तो इसलिए गाई जाती हैं कि ना सिर्फ उन्होंने अपने दुश्मनों को हराया, बल्कि उन्होंने अपने अदम्य साहस से अपने दुश्मनों को ही अपनी सेना में शामिल कर लिया, और बल्कि उनकी खूबियों का इस्तेमाल करके उन्हें अपनी सेना का सेना नायक तक बना दिया। तो श्रोताओं, हम सुन रहे हैं गोंड राजवंश के अदम्य साहस के स्वर्णिम इतिहास के बारे में, कला स्थापत्य और साहित्य में उनके योगदान के बारे में। हमारे साथ सुश्री पूजा सक्सेना जी हैं। हम आज के इस अंक में उनका धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम आगे के लिए सहेज कर रखना चाहते हैं। और जब रानी दुर्गावती जी की बात निकली है तो मैम, हम आपसे चाहेंगे कि रानी दुर्गावती के अदम्य साहस का वर्णन आप कुछ और करें अपने अगले एपिसोड में।
1: बिल्कुल,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे इतनी अच्छी चर्चा करने के लिए, हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, वो भी इतने सार गर्भित तरीके से और इतने इंटरेस्टिंग तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: अगली बार आपको किसी और विषय के बारे में जानकारी देंगे इसी कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम हमारा आप जारी रहेगा, लेकिन आज इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की परिकल्पना और निर्देशन का श्रेय जाता है सुश्री अदिति गौड़ को। ध्वनि अंकन और ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने। तो अब अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल, देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
1: संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: अठारह की हूँ, कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं,
2: मानो या ना मानो तुम।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुनते हैं हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं आज का विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में अभिवादन स्वीकार कीजिए पूर्वा खले का। श्रोताओ, आज का कार्यक्रम हम आरंभ करते हैं इस श्लोक के साथ। सुमुख चैक दंतश्च कपीलो गज कर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रौ गजाननः वक्रतुंड शूर्पकर्णौ हेरम्बः स्कंद पूर्वजः। श्रोताओ, संस्कृत के इस श्लोक में भारतीय संस्कृति के एक पूज्य देवता यानी श्री गणेश की स्तुति की गई है, जो एक वन्य जीव से भी संबंधित है, जिनकी सूंड है, धुएं का रंग है, बड़े और तीखे कान हैं और इनका एक बड़ा सा उदर यानी कि पेट है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं हाथी की। हाथी भारतीय संस्कृति, धर्म और इतिहास में सदियों से ये जीव गहराई से रचा बसा है। ये एक जंगली जानवर नहीं बल्कि हमारी पहचान का एक हिस्सा है। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम हाथी की बात क्यों कर रहे हैं? तो बात दरअसल ये है कि आज है विश्व हाथी दिवस, तो बात करना बेहद आवश्यक है ही, और हाथी पर सारी जानकारी समेटकर हमारे लिए एक बार स्टूडियो में फिर से उपस्थित हैं डॉक्टर सुदेश वाघमारे, जिन्हें लगभग 40 वर्ष तक राज्य वन सेवा में कार्य करने का अनुभव है और स्वयं वानिकी और वन्य प्राणी विशेषज्ञ भी हैं। इन्होंने भोपाल के वनस्पति जगत पर अपने शोध प्रबंध भी किया है और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के उप संचालक भी रहे हैं और वर्तमान में स्टेट वाइल्ड बोर्ड के सदस्य हैं। सर, स्वागत है स्टूडियो में आपका।
1: जी नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार।
0: आज के इस कार्यक्रम में पहला प्रश्न तो हमारा आपसे यही बनता है कि विश्व हाथी दिवस क्यों मनाया जाता है, आखिर इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है?
1: देखिए, विश्व हाथी दिवस मनाने की शुरुआत सबसे पहले थाईलैंड में हुई।
0: अच्छा,
1: ये 2011 की बात है। 2011 में थाईलैंड के फोटोग्राफर्स, थाईलैंड के प्रकृति संरक्षण पर काम करने वाले व्यक्ति और कनाडा की एक महिला, इनने एक डॉक्यूमेंट्री हाथी के बारे में तैयार की कि विश्व में हाथियों की संख्या में कितनी कमी आ रही है और उनके अस्तित्व पर कितना घनघोर संकट है। तो वो बहुत संवेदनशील डॉक्यूमेंट्री थी, संवेदनशील फिल्म थी। उस फिल्म के बारे में साल भर चर्चा हुई और अंततः एक साल के बाद यह निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष हाथियों के संरक्षण के प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाएगा। तो तब से 2012 से वर्ल्ड एलिफेंट डे प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है।
0: अच्छा, तो सर प्रश्न फिर से यही उठता है कि हमको इनके संरक्षण की आवश्यकता क्या है?
1: पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जो जैव विविधता है, जो बायोडाइवर्सिटी है, उसमें चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो, सबका महत्वपूर्ण स्थान है।
0: जी बिल्कुल,
1: तो वो एक इकोसिस्टम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
0: जी।
1: एक

0: वन अपना त्रिस्तरीय होगा, माने वनों में वृक्ष होंगे, वृक्ष भी तीन प्रकार के होंगे, बड़े वृक्ष, मध्यम वृक्ष और छोटे वृक्ष। तो पहले वृक्ष होंगे, फिर झाड़ियां होंगी, फिर त्रिस्तरीय में नीचे हर्ष होंगी और घास होगी। तो जहां अच्छी घास होगी, जहां अच्छी झाड़ियां होंगी, जहां अच्छे वन हो, अच्छे जंगल होंगे, पत्ती होंगी, वहीं हाथी होगा। तो दूसरी बात, हाथी को पानी की आवश्यकता होती है, तो पानी प्रतिदिन होती है दो चीजों के लिए, एक तो पीने के लिए और दूसरा नहाने के लिए, दोनों में। तो जहां हाथी होता है वो इस बात का इंडिकेटर होता है कि वहां जंगल भी अच्छा है और पानी भी अच्छा है। तो हाथी की आवश्यकता इसलिए है कि वो एक बैलेंस बनाए हुए है इकोसिस्टम में।
1: इतना बड़ा प्राणी है सर ये, इसका भोजन और पानी भी जो है उसकी मात्रा भी बहुत बड़ी होती होगी। तो लगभग क्या मात्रा होती है सर इनका खाना और पीने की?
0: देखिए, हाथी का ऐसा माना जाता है कि लगभग इसको प्रतिदिन 1.5 क्विंटल के लगभग 150 किलो खाद्यान्न चाहिए। अब उसमें क्या क्या शामिल है? देखिए, उसमें जंगली फल शामिल है, उसमें फिर घास शामिल है, उसमें जो पैलेटेबल घास है वो शामिल है, फिर इसके बाद पत्ते शामिल है, बहुत सारी वनस्पतियों के जो पत्ते हैं वो खाना पसंद करता है। ये इसके तीन मुख्य आहार, फूल भी खाता है कई वनस्पतियों के, ये इसके तीन मुख्य आहार हैं ठोस के रूप में जो ये खाना पसंद करता है। जो पालतू हाथी होते हैं उनका आहार थोड़ा डिफरेंट होता है। वो इसी मात्रा में उनको गेहूं और मिश्रित विभिन्न प्रकार की चना भी शामिल है, जिसमें चावल भी शामिल है, उस प्रकार का अन्न होता है। मगर एक वयस्क हाथी की डाइट लगभग 150 किलो के आसपास होती है।
1: अच्छा, और जो पानी है वो?
0: देखिए, पानी को उसको दो तरह से आवश्यकता होती है। एक तो पानी पीने के लिए होगी चाहिए उसको, उसकी खाल बहुत मोटी होती है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर मोटी खाल होती है।
1: अच्छा,
0: क्योंकि उसका रंग थोड़ा भूरा काला होता है, इसलिए वो गर्मी का एब्जॉर्प्शन करती है। अच्छा। तो हाथी दो काम के लिए पानी की अपने ऊपर बोछार करता है। एक तो जो कीटाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं, उनसे सुरक्षा के लिए अपने शरीर को, दूसरा गर्मी का अपना टेम्परेचर शरीर का मेंटेन करने के लिए पानी का शावर लेता है। तो एक वयस्क हाथी को लगभग आप ऐसा मान के चलिए कि 5,000 लीटर पानी विभिन्न कामों के लिए, जिसमें उसका पीना भी शामिल है, शामिल है।
1: एक चीज जो है सारे जानवरों से हाथी को अलग करती है वो है उसकी सूंड। तो सर इसकी सूंड के बारे में कुछ बताइए। सूंड क्या है? होंठ है इसका? कुछ इसे की नाक से तुलना करते हैं, कुछ इसको होंठ बोलते हैं, तो ये क्या है, इसका कौन सा अंग है ये सर?
0: ये तो प्रकृति ने उसको बना दिया है। और आपको बताएं, सूंड जो है उसकी मुख्य रूप से एक सक्शन पाइप है, जैसा हमारा ये वॉशिंग मशीन होती है। हम सक करते हैं किसी चीज, उसी तरह से हाथी एक बार अपनी सूंड में लगभग 8 लीटर पानी रख सकता है।
1: क्या बात है
0: ना? और सूंड से लोग समझते हैं कि पानी पीता है। सूंड में पानी भरता है और पानी फिर अपने मुंह में डालता है।
1: जी,
0: सूंड पानी पीने का साधन नहीं है। एक तरह से वो उसका सक्शन पाइप है। प्लस अब देखिए, प्रकृति ने उसको बनाया है, वो कहाँ जाएगा शावर लेने के लिए? तो एक्चुअली शावरिंग इंस्ट्रूमेंट भी है कि वो अपने ऊपर शावर करता है। इसके अलावा हाथी एक बड़ा जानवर है, उसका शरीर बड़ा होता है,
1: बड़ा।
0: तो जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं बहुत सारे, बहुत सी प्रकार की मक्खी है, बहुत से छोटे मोटे रेप्टाइल, बहुत से इंसेक्ट्स उसके बड़े शरीर से चिपकते हैं, उन सबको ऊंट अपनी लहरा लहरा कर अपनी सूंड को निकालता रहता है। एक बात और आपको बता दूं, यही बता देता हूं मैं आपको कि हमारे हाथी में, यानी जो एशियाटिक हाथी है जो कहलाता है, और अफ्रीकन हाथी, उनमें मूलभूत अंतर एक ये भी होता है कि हमारे हाथी के अग्रभाग पे सूंड के एक छोटा लिप होता है ना? ओस्ट होता है, ओंठ होता है, जो अफ्रीकन हाथी में नहीं पाया जाता।
1: जी सर, मेरा अगला प्रश्न यही था कि हाथियों की कितनी प्रजातियां होती हैं, इनको कितने भागों में बांटा गया है पूरे दुनिया में?
0: मोटे तौर पे तो अफ्रीकन हाथी और एशियन हाथी, दो तरह के हाथी होते हैं। अफ्रीकन हाथी हमारे हाथी से आकार में बड़ा होता है, हमारा हाथी थोड़ा छोटा होता है। मगर अफ्रीकन हाथी को भी दो भागों में बांटा है उनने।
1: अच्छा।
0: एक अफ्रीका का वाइल्ड में पाया जाने वाला हाथी, दूसरा हाथी जो अफ्रीकन सवानास में, मतलब ग्रासलैंड में पाया जाता है।
1: अच्छा, यानी ग्रास में पाया जाना,
0: ग्रास पे डिपेंड करता है, सवाना बोलते हैं।
1: ओके।
0: तो एक हो गया उनका फॉरेस्ट वाला हाथी, दूसरा हो गया सवाना वाला हाथी, और हमारा जो एशिया में पाया जाता है इसको कहते हैं एशियाटिक एलिफेंट, ये एशियन। तो आप दो तरह की प्रजातियां माने, मुख्यतः अफ्रीकन हाथी और एशिया दिखाती। अफ्रीकन में दो चीजों का अंतर कर ले, थोड़ा सा अंतर होता है उनमें, एक जंगल में पाया जाने वाला है, एक सवाना में पाया जाने वाला।
1: तो सर हम जब एशियाटिक और अफ्रीकन हाथी की बात करते हैं तो क्या हम उनको देखकर पहचान सकते हैं? यदि हमारे सामने ये दोनों हाथी खड़े होंगे तो हम पहचान सकते हैं कि ये अफ्रीकन है और ये एशियाटिक है?
0: आपने बहुत ही रोचक प्रश्न पूछा है
1: जी।
0: एक तो मैंने आपको ओंठ बताए
1: जी,
0: है ना, दूसरा आकार, यदि दोनों खड़े हैं सामने तो आप हमारा भारतीय हाथी जो है, एशियाटिक हाथी जो है, छोटा दिखाई देगा।
1: अच्छा।
0: और अफ्रीकन हाथी बड़ा दिखाई देगा। मगर जो मुख्य अंतर है, जो उसको बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बताते हैं वैज्ञानिक और तमाम वन्य प्राणी विशेषज्ञ, कि जो कान जो है, अफ्रीकन हाथी के कान अफ्रीका के नक्शे की तरह होते हैं और भारतीय हाथी के कान भारत के नक्शे की तरह होते हैं।
1: अच्छा, क्या बात है।
0: तो ये पहचानने का बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका, यदि आप उसके कान के आकार पे ध्यान देंगे तो उससे पहचानना बड़ा रोचक होता
1: है। जब हम इनको देखते हैं तो ये भी अंतर दिखाई देता है कि इनके जो टस्क हैं या जो जिनको दांत बोलते हैं, हाथी के दांत हैं, वो अफ्रीकी जो हाथी हैं उनके ज्यादा बड़े होते हैं।
0: देखिए मैंने आपसे कहा कि वो आकार में बड़ा हाथी है, तो स्वाभाविक है कि टस्क जो है, देखिए टस्क 2 साल के बाद से आना शुरू हो जाते हैं, और टस्क की एक विशेषता होती है जो कम लोगों को ज्ञात होती है, जो हाथी के संपर्क में रहते हैं, महावत हैं और दूसरे लोग हैं, वो उनको मालूम होता है हाथी के जो टस्क हैं वो जीवन भर बढ़ते रहते हैं।
1: अच्छा।
0: जब तक उसकी आयु पूरी नहीं हो जाएगी उसके टस्क में प्रतिदिन प्रति क्षण प्रतिपल वृद्धि होती रहती है।
1: अच्छा।
0: ये टस्क की विशेषता है। और निश्चित रूप से मैंने आपसे कहा कि उसका आकार बड़ा है, अफ्रीकन हाथी का थोड़ा टस्क बड़ा होगा, इंडियन हाथी का टस्क तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा छोटा होता है साइज में। अब ये हाथी दांतों की बड़ी परंपरा चली आ रही है, माने आप हमारे शास्त्रों में, हमारे फिर पुराणों में, फिर हमारे यहाँ आप देखेंगे कि राजा महाराजाओं ने, फिर मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने हाथी दांत से का एक तरह से चीजें बना कर रखना, हाथी दांत के छोटे छोटे आभूषण रखने के लिए उसकी पेटी बनाई जाती थी, हाथी दांत की मूर्तियां बनाई जाती थी, हाथी दांत के कंगन बनाए जाते थे, हाथी दांत की गले में पहनने वाली सुंदर सुंदर मालाएं बनाई जाती थी। एक जमाना था जब हाथी दांत को लेके बहुत सारा, क्या कहें हम, ऐसा विश्वास था हाथी दांत का कि बहुत महंगी चीज है, दुर्लभ चीज है, हाथी को बड़ा कष्ट होता है हाथी दांत यदि उसके निकाले।
1: हाँ सर, मेरा यही प्रश्न था कि जैसे जीवित हाथी का आप यदि दांत काटते हैं तो जैसे दांत जो है मूलतः माना जाता है कि निर्जीव चीज है, उसमें मतलब दर्द अलग हो गया तो एक हड्डी का एक वो टुकड़ा है समझ लीजिए, तो क्या हाथी के साथ भी यही है?
0: नहीं, जैसा हमारा दांत को यदि उखाड़ा जाए तो जो दर्द होगा उसी तरह का दर्द हाथी को भी होगा, क्योंकि जो उस हाथी के दांत को नॉरिश करने के लिए तंत्रिका तंत्र और रुधिर तंत्रिका तंत्र और संवेदी तंत्रिका तंत्र दोनों उससे जुड़े रहते हैं, हाथी को कष्ट होता है उसके दांत निकालने में, और ऐसा नहीं होता कि फिर वो बढ़ने लगे, एक बार आपने निकाल लिया तो फिर से निकल आएगा।
1: अच्छा।
0: फिर से उसकी वृद्धि होने लगेगी। तो हाथी दांत की तस्करी पर पूर्णतः प्रतिबंध है, अब हाथी दांत का कोई भी व्यापार नहीं होता, क्योंकि जो जिससे च्यू करता है वो दांत अंदर की तरफ, वो उसका स्थान जो मसूड़े होते हैं वो अंदर की तरफ होता है, और ये उसका शो आर्गन है, प्रकृति ने दिया है उसको एक। हो सकता है ये उसके संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए हो, क्योंकि उसको प्रकृति ने नाखून नहीं दिए हैं, उसको और ऐसी चीजें नहीं दी हैं जिससे वो अपना प्रोटेक्शन कर रखे, तो प्रकृति एक या दूसरा वन्य प्राणी उसके दांतों को देख के डरे भाई भी तो आकार के कारण, ये आकार से उसकी सुरक्षा है।
1: जी सर, जब बात दांतों की चल रही है तो जिन दांतों से वो खाता है जिनको हम मोलर टीथ बोलते हैं, कहा जाता है कि इसके केवल 6 ही सेट होते हैं उसके, वो आजीवन 6 सेट में उसको अपना काम चलाना रहता है, तो क्या ये सत्य है?
0: हाँ हाँ जी, आपने जो कहा इसके कि मोलर से ही वो काम करता है, ऐसा और भी प्राणियों में होता है। एक्चुअली एक हमारे जो टीथ होते हैं, हम सामान्यतया मेमल्स में भी और दूसरे वन्य प्राणियों में भी, टाइगर में भी, एक हमारे दांत होते हैं काटने वाले, इंसीजर्स, तो वो इंसीजर्स, क्योंकि उसको इंसीजन नहीं करना है, वो इतना शक्तिशाली है कि वो जिस चीज को तोड़ना चाहेगा तोड़ लेगा, चबाना है उसको, चबाने की आवश्यकता है। वो आप अभी जब सूंड के बारे में कह रहे थे तो मैं आपको ये बताना भूल गया, बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हाथी की सूंड के बारे में कहा जाता है।
1: हाँ जी।
0: कि हाथी के सूंड में लगभग 1.5 लाख मांसपेशियां होती हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ, इसीलिए वो दाएं बाएं ऊपर नीचे सकिंग ये सब कर पाता है। तो ये एक हाथी के बारे में महत्वपूर्ण उसकी फिजियोलॉजी के बारे में,
1: यानी उसका शरीर का इतना बड़ा अंग है लेकिन उसमें एक भी हड्डी नहीं है,
0: हड्डी नहीं है
1: जी। अब एक चीज और ये आती है सर कि ये तो पूरी तरह से शाकाहारी प्राणी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात ये भी नोट करिए
1: जी
0: कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्राणी है।
1: हाँ जी जी,
0: समुद्र में वेल वगैरह हो सकती हैं बड़ी, हाँ, उससे
1: जी,
0: मगर पृथ्वी पर जो पाया जाता है सबसे बड़ा मैमल है, इससे बड़ा कोई हाथी है, कोई चीज़
1: जी
0: नहीं।
1: एक स्तनधारी जीव जो है सबसे बड़ा वो हाथी ही होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो सर मैं ये पूछ रही हूँ कि जो हम लोग कहते हैं आइस एज जो हुई थी उसमें एक मैमथ नाम का प्राणी था, क्या मैमथ का हाथी से कोई संबंध है?
0: अब वैज्ञानिक कहते हैं कि मैमथ उसी समय समाप्त हो गए
1: जी,
0: ऐसा कहना है वैज्ञानिकों का। इसमें विभिन्न प्रकार के रिसर्च पेपर चलते रहते हैं, विभिन्न प्रकार के मतभेद चलते रहते हैं
1: जी,
0: मगर अब ऐसा कहा जाता है कि मैमथ से ही हाथी का विकास हुआ। आप देखेंगे हमारे धर्म में इंद्र का जो हाथी है उसका नाम है एरावत
1: जी,
0: है ना, एरावत हाथी का चलता रहता है कि एरावत था वो भी मैमथ था एरावत, है ना, ऐसे जोड़ते हैं। अभी हमारे समय में कंटेम्प्रेरी एक हाथी हुआ है जो जिसका आकार बहुत बड़ा है, जम्बो नाम
1: जी,
0: है ना, वो जम्बो हाथी जो है वो हमारे भारत में तो वो नहीं आया, मगर बाकी देशों में जम्बो हाथी के बारे में, सूडान का हाथी था ये
1: जी जी।
0: इसकी जो विशेषता थी कि कहा जाता था कि ये आकार में फिजिक में
1: जी
0: विश्व का सबसे बड़ा हाथी है।
1: तो सर अब एक बात पे आते हैं हम कि हमारा जो ये हाथी है उसको हम विरासत पशु भी बोलते हैं
0: जी,
1: तो इसे विरासत पशु इसलिए कहा जाता है क्योंकि बरसों से हमारी संस्कृति से, हमारी सभ्यता से, हमारे धर्म से इसको हम जोड़ते चले आए, तो इसके बारे में आप प्रकाश डालिए।
0: देखिए विरासत तो हम इसलिए कहते हैं दो कारणों से करते हैं कि एक हाथी जब से मानव का विकास हुआ है और प्रकृति का विकास हुआ है, हम करोड़ों साल पुराने इतिहास में भी जाते हैं
1: जी,
0: तो हाथी पाया जाता रहा है एक बात। दूसरी बात जैसा मैंने कहा कि विश्व में पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा
1: जी
0: एनिमल है।
1: नंबर
0: तीसरा है कि ये हिंसक प्राणी नहीं होता
1: जी,
0: जब तक कि इसको सताया नहीं जाए,
1: बेहद शांत जीव है,
0: बेहद शांत जीव है। तो ना केवल भारत में, ना केवल एशिया में, बल्कि जहां जहां भी हाथी पाए जाते हैं उनको बड़ा पूज्य दर्जा दिया गया है
1: जी,
0: क्योंकि ऐसा एक एनिमल है जिसका जो हमारी संस्कृति से, हमारी कला से, हमारी धरोहर से, हमारी जीवनचर्या से, हमारे धर्म ग्रंथों से जुड़ा हुआ है। और आदिकाल से वर्णन, आप जो भी कोई भी ग्रंथ देखेंगे, कोई भी पुराण देखेंगे तो हाथी का वर्णन आया है। तो निश्चित रूप से न केवल भारत के लिए, न केवल एशिया के लिए, बल्कि पूरे विश्व में इसको हेरिटेज के रूप में मान्यता प्राप्त है
1: जी। तो सर जैसा आपने कहा कि पूरे विश्व में हाथी थे, भारत में भी सब जगह हाथी थे, तो इनके कम होने का क्या कारण है? अब हम इस पर आते हैं।
0: देखिए जो वन्य प्राणी विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि हाथी के कम होने के कारण सबसे पहला कारण है कि उसका हैबिटेट लॉस होना
1: जी,
0: है ना, माने जो उसका प्राकृतिक आवास है उसमें कमी आ गई
1: जी।
0: और प्राकृतिक आवास के बारे में जैसे हमने थोड़ी सी चर्चा शुरुआत में की थी कि प्राकृतिक आवास क्या होता है, उसका ऐसा जंगल जो त्रिस्तरीय हो, पर्याप्त मात्रा में जिसमें पत्ते हों, पर्याप्त मात्रा में फल हों, पर्याप्त मात्रा में फूल हों, पर्याप्त मात्रा में घास हो, ये उसका आहार है
1: जी।
0: यदि वो मिलेगा उसको हाथी वहां पर रह जाएगा
1: जी।
0: आहार के बाद दूसरी बात आती है पानी, तो पानी का उसको यदि स्रोत है, अच्छा जंगल है, किस कोई भी जंगल यदि अच्छा जंगल है तो पानी वहां पे मिल जाएगा
1: जी।
0: तो दो चीजें हुई, और तीसरी होती है सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन, कि हाथी को प्रोटेक्शन किस प्रकार का मिल रहा है।
1: अच्छा,
0: दो कारणों से हाथी को हमारे इतिहास में पकड़ा गया, एक तो वो युद्ध में
1: काम आता था।
0: युद्ध में जहां हाथी निकल जाता था तो लोग कहते थे कि वो 50 घोड़े के बराबर काम करता है, या जिधर हाथी को मोड़ देते थे उस तरफ खलबली मच जाया करती थी। तो हाथी एक तो इस काम आता था
1: जी।
0: दूसरा जब लोगों को यह समझ में आया कि इसके हाथी दांत से विभिन्न प्रकार के आभूषण, विभिन्न प्रकार की महंगी चीजें, विभिन्न प्रकार की ऐसी वस्तुएं जो मार्केट में महंगी बिकती बना जा सकते हैं, तो फिर तस्करी शुरू हुई उसके हाथी दांतों की। तो ये दो कारण है, हैबिटेट का समाप्त होना नंबर एक
1: जी,
0: और नंबर दो हाथी के लिए तस्करी शुरू होना। अभी वर्तमान में एक और कारण हम उसमें जोड़ सकते हैं, यदि हाथी हैबिटेट उसका लॉस हो रहा है तो उसको प्रकृति ने ये छठी इंद्री उसको दी है
1: जी,
0: कि कहाँ पानी मिलेगा, कहाँ जंगल है, तो वो जाना चाहता है, मगर उसके लिए कॉरिडोर चाहिए, है ना। कॉरिडोर का मतलब अपन समझाएं इसको, तो गलियारा चाहिए
1: जी।
0: आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो एक गलियारे की आवश्यकता पड़ती है
1: जी,
0: एक रास्ता चाहिए
1: जी, जी।
0: वो रास्ते भी खत्म हो गए
1: हाँ।
0: तो एक जगह कन्फाइंड होकर रह गया, तो हाथी की जनसंख्या कम होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि उसका, देखिए अभी जो अफ्रीकन हाथी है उनका पिछले एक दशक में
1: जी
0: 80% हाथी खत्म हो गए
1: जी।
0: भारत में भी लगभग प्रतिशत यही का ये है कि लगभग हो गया। 2018 की गणना बताती है कि हाथियों की संख्या थी लगभग 29,500 भारत में, भारत का बता रहा हूँ, आज ये संख्या ठहरती है 22,500 के आसपास। और इसमें जंगली हाथी, अधिकांश हाथी जंगली है जो जंगल में निवास करते हैं
1: जी।
0: तो देखिए हाथ जनसंख्या कम होती जा रही है, मगर ये अफ्रीकन हाथी की तुलना में हमारे यहाँ कम से कम अभी ठीक स्थिति है, ये कह सकती है।
1: तो अब बात आती है कि हम संरक्षण के प्रयास तो इनके कर रहे हैं, तो हमारे देश में किस तरह का प्रयास हो रहा है सर, हमारे देश में भी और विशेष रूप से हमारे मध्य प्रदेश में भी?
0: देखिए, एक मध्य प्रदेश में आप यदि कहें तो हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय उद्यान है ना
1: जी,
0: वहाँ मॉनिटरिंग करने के लिए, पेट्रोलिंग करने के लिए हाथी सभी राष्ट्रीय उद्यानों में
1: जी
0: हाथी रखते हैं, जहाँ नहीं होते वहाँ लाने का प्रयास किया जाता है
1: जी।
0: और हर हाथी के साथ चारा कटर भी होता है जो चारा काट के उनको चारा खिलाता है।
1: अच्छा।
0: इसके अलावा दूसरा जो माइनर और मेजर चीजें मिनरल्स के रूप में उनको अच्छी डाइट दी जाती है। तो मध्य प्रदेश में जो हाथी हैं वो मुख्यतया पेट्रोलिंग के लिए यानी गश्ती करने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों में रखे गए हाथी है। मगर एक और शुभ समाचार है, जो हमारे पास बड़ा समृद्ध जंगल है, आप जैसा हमारा मध्य प्रदेश का जंगल हम मानते हैं 33% हमारे यहाँ जंगल है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में जो 33% जंगल है वो हाथियों को आकर्षित करता है। तो अभी भी छत्तीसगढ़ का हाथी, उड़ीसा का हाथी, बिहार का हाथी यदि कॉरिडोर मिल जाता है तो मध्य प्रदेश में आ जाता है। और सैकड़ों की संख्या में अभी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथी बहुत ही सुखपूर्वक
1: जी
0: रह रहे हैं, माने मनुष्य भी रह रहा है, हाथी भी रह रहा है, और बहुत कम ऐसी घटना है जिसको हम मानव वन्य प्राणी द्वंद के रूप में रेखांकित कर सकते हैं। उसमें भी मानव की गलती ज्यादा है, हाथी की गलती कम है। तो ये तो मध्य प्रदेश का सीनेरियो है, मगर पूरे जो भारत का सीनेरियो आप देखें तो हमारे यहाँ 33 एलिफेंट रिजर्व है।
1: अच्छा।
0: ये एलिफेंट रिजर्व मुख्यतया हमारे दक्षिण भारत में है, कुछ हमारे इसमें भी है, झारखंड में, बिहार में, यहाँ पर भी है, मगर मुख्यतया दक्षिण भारत में है। और ये 33 एलिफेंट रिजर्व 80,778 स्क्वायर किलोमीटर में बने हुए हैं।
1: अच्छा।
0: 14 राज्य जैसे मैंने इनके नाम लिए, असम भी शामिल है, नागालैंड भी शामिल है
1: जी,
0: ये ऐसे राज्य हैं
1: जी।
0: तो जो हाथी का जो रिजर्व है, हाथी का संरक्षण क्षेत्र है, सबसे छोटा वो है सिंगफान में यानी नागालैंड में। इसके अलावा लेमरू में छत्तीसगढ़ में अभी एक बना है, एक अगस्तमलाई तमिलनाडु में भी है।
1: अच्छा।
0: कर्नाटक में है, काजीरंगा में है, मयूरगंज में है, शिवालिक में बनाए गए हैं, महानदी है
1: उड़ीसा,
0: उड़ीसा वाली वहां बनाए गए हैं। तो एलिफेंट संरक्षण पे अतिशयोक्ति नहीं है कि जितने संसाधन उपलब्ध है, जितना तरीका उपलब्ध है, जो वैज्ञानिक प्रविधि उपलब्ध है और जितना हैबिटेट बना हो है, उसमें अच्छा काम किया जा रहा है कंजर्वेशन।
1: तो सर आपको तो जंगलों का इतना वृहद अनुभव है, तो आपको कोई यदि इनसे संबंधित कोई घटना हो जो रिजर्व से रिलेटेड, यदि आपके पास कोई संस्मरण हो तो बताइए।
0: देखिए, एक तो मेरा प्रशिक्षण का ही अनुभव है
1: जी।
0: जब मैं प्रशिक्षण ले रहा था तो देहरादून के पास फॉरेस्ट कॉलेज का, आप कहें कि वहाँ का प्रोडक्ट हूँ
1: जी,
0: तो एशिया का सबसे अच्छा फॉरेस्ट्री का संस्थान है, मैंने वहां से प्रशिक्षण प्राप्त किया। वही जगह है सत्यनारायण, तो एक बार हम लोग गए थे वहां पे, तो वहां हाथियों के प्रत्यक्ष दर्शन हम लोगों को काफी देर तक हुए थे। मगर मैं जो दूसरी घटना मध्य प्रदेश से संबंधित आपको बता रहा हूँ, वो घटना ऐसी है, देखिए किसी भी एनिमल का बिहेवियर हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते
1: जी।
0: तो वो प्रिडिक्शन तो हम नहीं कर सकते कि वो क्या बिहेव करेगा, मगर हाथी को ऐसा माना जाता है कि हाथी की मेमोरी बहुत अच्छी
1: होती है,
0: याददाश्त बहुत अच्छी होती है। हाथी की स्मृति कहते हैं, फ्रंटल लोब उसका बहुत सक्रिय होता है, वो 20 तरह की चीजें पहचान सकता है, हमसे कई गुना अधिक सुन सकता है, और ऐसी ध्वनियां उत्पन्न करता है कम्युनिकेशन के लिए जो हम लोग नहीं सुन सकते।
1: अच्छा।
0: हाथी आपस में ऐसी ध्वनियां निकालते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि मानव के कान उन फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन सकते।
1: अच्छा।
0: मगर हाथी आपस में जो संवाद कर रहे हैं वो एक दूसरे से सुन सकते हैं। तो आपने घटना की बात बताई, तो मैं आपको बताता हूँ कान्हा टाइगर रिजर्व की एक घटना है
1: जी।
0: अभी आप मान सकती हैं कि ताजी ताजी घटना है, अभी के इसी दशक की घटना है। एक डॉक्टर साहब थे, वन्य प्राणियों का उपचार करने में काफी निपुण थे, वहां पे पदस्थ थे, तो वो हाथी का भी उपचार करते थे। हाथी को भी जो डिफरेंट कोई चीज हो जाती है, मान लीजिए, तो उसको अलग प्रकार के इंजेक्शन देना, ऐसी चीजें खिलाना जिससे उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो इस सब को काम करते थे वो। तो कभी उनने उसको कोई छोटा मोटा घाव हुआ होगा तो बांध के रस्सी वस्सी से बांधवा के, जंजीरों से बांध के उपचार भी किया होगा
1: जी,
0: बात आई गई होगी। 2 साल हो गए कभी उनने उपचार किया होगा। एक दिन वो उस हाथी को चिप लगाने के लिए, हाथी का एक अपन माइक्रोचिप लगा देते हैं जिससे उसके मूवमेंट का पता रहता है।
1: अच्छा जी।
0: तो चिप लगाने के लिए गए हुए थे वो, हाथी के पास पहुंचे, अचानक हाथी वो एग्रेसिव हो गया, महावत के रहते हुए भी
1: जी।
0: ऐसा 99% केस में हाथी महावत को फॉलो करते हैं जो महावत कहता है, मगर वो एकदम उग्र हो गया। उसने सूंड से उन डॉक्टर साहब को, जो वेटनरी डॉक्टर थे, वन्य प्राणी पशु चिकित्सक थे, वो उनने उसको उठाया और हवा में उछाल दिया। डॉक्टर साहब हवा में उछल के और एक संकरी सी नाली में फंस गए। अब आप देखिए, उतने से संतुष्ट नहीं हुआ वो हाथी, उस नाली के पास गया और उस नाली को पैर से रोंदना चाहा उसने, माने उनको उनको आघात पहुंचाना चाहा पैर से। वो तो डॉक्टर साहब का भाग्य अच्छा था कि जिस नाली में वो गिरे वो हाथी के पैर से कम चौड़ी थी
1: जी, वहां तक पैर पहुंच ना
0: पाया। तो वो वार करता रहा
1: जी,
0: उनको कोई आघात नहीं पहुंचा, नहीं तो उनकी जीवन लीला उसी दिन समाप्त हो जाती। जंगल में ऐसी कई घटनाएं घटती हैं जहां महावत पे भी आक्रमण कर देता है हाथी। तो न केवल हाथी, वो जो कहा गया है कि हम किसी को भी नहीं सताए, क्यों हाथी की बातें नहीं करें, किसी को भी नहीं सताए, जिस भी दिन उसका सक्षम दिन आएगा वो आपसे बदला लेगा, तो किसी को भी नहीं सताए, प्रेम भाव से रहे।
1: तो एक उदाहरण ये हो गया कि हाथी की याददाश्त बेहद तेज होती है और घ्राण शक्ति भी, सर मैंने सुना है कि ये दूर से पानी को भी सूंघ लेते हैं, यदि उन्हें पानी और मतलब भोजन भी।
0: निश्चित रूप से
1: जी,
0: मैंने कहा ना सिक्स सेंस, जैसे हमारी छठी इंद्री होती है, हम पहचान जाते हैं कि कौन अच्छा व्यक्ति है, कौन खराब व्यक्ति है, या कौन व्यक्ति हमको धोखा देगा, कौन धोखा नहीं देगा, या हम ये पहचान जाते हैं कि इस व्यक्ति से प्रेम व्यवहार करना चाहिए, है ना। ये सब चीजें हमारी, जैसे हमारा सिक्स सेंस, या कोई घटना आने होती है तो कुछ लोगों को एहसास होने लगता है, सिक्स सेंस कहते हैं छठी इंद्री, हाथी में वो कहकर जाता है कि ज्यादा
1: तेज है जी। सर एक बात और भी आती है कि हाथी जो है एक झुंड में रहने वाला प्राणी है
0: जी।
1: और ये मात्र सत्तात्मक झुंड होता है, यानी इसकी जो लीडर होती है वो एक मादा ही होती है, तो इसके बारे में कुछ बताइए।
0: देखिए, अब हाथी के साथ में अधिकांशतया उसकी मौसियां रहती हैं।
1: अच्छा,
0: है ना जी, ज्यादातर उसकी मौसियां रहती हैं। चाचा वगैरह तो फिर अपना अलग परिवार बनाने के लिए निकल जाते हैं, वो मौसियां रहती हैं और माँ बड़ी बेफिक्र रहती है कि मौसियां पालन करेंगे। देखिए, हाथी का बच्चा दो दिन में चलना शुरू कर देता है
1: जी,
0: डेढ़ दो घंटे में तो खड़ा हो जाता है वो।
1: अच्छा,
0: और फिर दो दिन में चलना शुरू कर देता है और फिर माँ का दूध पीना शुरू कर देता है, बहुत जल्दी खाना पीना शुरू कर देता है। देखिए, भोजन बहुत ज्यादा हाथी को चाहिए प्रतिदिन। हाथी मान लीजिए एक साथ हाथियों का समूह है और मैंने आपको बताया डेढ़ क्विंटल 150 किलो चाहिए, तो एक टन खाना तो यही तैयार हो गया कहाँ से, तो वो थोड़ा दूर दूर तक आपस में बिखर छितर जाते हैं।
1: अच्छा,
0: तो उस दौरान दूसरी हथनियां होती हैं, उसकी संबंधी होती हैं, वो उसकी रक्षा करती हैं। और रक्षा करने का तरीका बड़ा सुंदर है, आप देखेंगे अपने दोनों पैरों के बीच में वो उसको लेके
1: लेके चलती हैं,
0: लेके चलती हैं।
1: बिल्कुल सर,
0: जिन लोगों ने वीडियो देखा हो तो वो देखना बड़ा ही सुंदर लगता है। तो हाथी एक समूह में रहने वाला सामाजिक
1: प्राणी है,
0: ये एक हाथी की विशेषता है। आता है कि मादा क्यों करती है, आपने देखा होगा हमारा तो मात्र सत्तात्मक भारत देश,
1: बिल्कुल
0: है ना। कर्ण से पूछा कौन, तो बोला कुंती पुत्र है
1: जी।
0: तो माता हमेशा परिवार के मुखिया के रूप में पहले भी काम करती थी, आज भी काम करती है। दूसरा रहता है कि नर का काम प्रोटेक्शन भी होता है, संरक्षण भी होता है, बाकी खतरों को भांपना, बाकी चीजें देखना, रास्ता देखना, रास्ता बताना, बाकी कामों में मादा उसको लीड करती
1: जी। सर ये एक बड़ा सामाजिक प्राणी है, इतना विशाल का प्राणी जो है, बहुत ही शानदार प्राणी, ये एक सामाजिक प्राणी भी है और इनकी कुछ न कुछ प्रथाएं भी हैं जो बरसों से ये लोग अपनी याददाश्त तेज होने के कारण हमेशा से फॉलो करते आए हैं। अपने पूर्वजों का उनको ज्ञान होता है, या उनके जो पूर्वजों की हड्डियां हैं उनके पास ये जाते हैं, या पुरानी बातों को याद रखते हैं, पुराने स्थानों को याद रखते हैं, उन स्थानों को याद रखते हैं जहां से वो गुजरे हैं। क्या ये सही बात है?
0: हाँ हाँ, ये सही बात है। मैंने आपसे कहा कि मेमोरी इसकी हाथी की, मेमोरी अन्य मेमल्स की तुलना में, मनुष्य के बाद और दूसरे मेमल्स हैं उनकी तुलना में, इसकी मेमोरी, इसकी घ्राण शक्ति और घ्राण शक्ति के साथ इसकी ध्वनि को सुनने की शक्ति, ये तीनों शक्तियां तुलनात्मक रूप से और वन्य प्राणियों से अधिक। सबकी अपनी अपनी विशेषता होती है, मगर प्रकृति ने इसको कोई घातक अंग नहीं दिए हैं, जैसे टाइगर को नाखून दिए हैं, दांत दिए हैं, ऐसे इसको घातक अंग नहीं दिए हैं। तो इसको प्रकृति ने दूसरे उपादानों से सजाया है, दूसरे उपादानों से संवारा है।
1: तो सर यदि प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो ये मतलब इसकी उम्र कितनी होती है, इसका जीवन काल क्या है?
0: देखिए, वाइल्ड में हाथी लगभग ऐसा माना जाता है अभी तक के जो डेटा उपलब्ध है 70 वर्ष एक औसत आयु। अब वो 65 भी हो सकती है, 75 भी हो सकती है, एक माना जाता है कि वाइल्ड में 70 वर्ष जीता है। मगर यदि इसी को किसी चिड़ियाघर में रख दिया जाए तो थोड़ा सा 5 से लेकर 10 साल तक का अंतर आ जाता है, क्योंकि उसको उतना स्ट्रगल वहां पर नहीं करना पड़ता जितना उसको जंगल में करना पड़ता है। तो औसत आयु आप मान के चले कि हाथी की औसत आयु 70 साल होती है। वो पूर्ण वयस्क, जब कहते हैं कि हाथी फुल ग्रोन हो गया एकदम और बढ़िया सुंदर लग रहा है, वो जीवन का अर्धांश 30-35 साल में बहुत ही सुंदर लगता है।
1: यानी जब उसकी युवावस्था होती है वो आधे वर्ष उसके निकल चुके होते हैं जीवन के।
0: जी,
1: और सर इनका प्रेगनेंसी पीरियड भी मैंने सुना है बहुत बड़ा होता है, ज्यादा होता है, लंबा होता है।
0: बहुत अच्छा है, मैं भी बताना भूल रहा था, मैमल्स में सबसे बड़ा इसका प्रेगनेंसी पीरियड 22 माह।
1: जी
0: देखिए, इसलिए भी है ना कि वो 1.5 किलो का बच्चा रिटेन कर रही है
1: मादा,
0: मादा तो 1.5 क्विंटल का बच्चा बड़ा बड़ा। जब भी ऐसी याद आती है तो जीवन मन बड़ा श्रद्धा से और प्रकृति के चमत्कारों के प्रति बड़ा झुक जाता है। देखिए 22 महीने की प्रेगनेंसी है, अच्छी बात है, प्रकृति का ये एक सिद्धांत है।
1: तो सर अब कार्यक्रम के जब हम ये अंत में पहुंच रहे हैं सर, हाथी के बारे में जो कुछ आप इस कार्यक्रम में जो छूट गया है आप जो कुछ बताना चाहते हैं।
0: आपने तो लगभग सभी चीजें हाथी के बारे में पूछ ली।
1: जी
0: मैं तो आज के जो बच्चे हैं जो हमारे टीनेजर्स हैं और जो हमारे युवा हो रहे बच्चे हैं,
1: जी
0: इन सब के लिए हाथी के बारे में एक प्रयाग शुक्ल हिंदी के कवि हैं, उनकी कविता सुनाऊंगा।
1: जी बिल्कुल सर,
0: यदि आप उस कविता को आत्मसात करें तो हाथी से प्यार करने लगेंगे।
1: जी
0: तो वो कविता सुनिए।
1: बिल्कुल सर,
0: वही मेरा मान लें कि हाथी के संरक्षण के लिए मेरी जो श्रद्धा है वो इस रूप में व्यक्त कर रहा हूँ।
1: जी
0: धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी, जब पानी में जाता हाथी भर भर सू नहाता हाथी, कितने केले खाता हाथी यह तो नहीं बताता हाथी, और पीठ पे करा सवारी हमको, हमको खूब घुमाता हाथी, सबको खूब हंसाता हाथी, धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी।
1: बहुत बढ़िया सर, बहुत ही सुंदर कविता, बहुत ही प्यारी सी कविता, छोटे बच्चों को भी याद कराई जा सकती है ऐसी कविता, और हाथी के सारे गुणों को दिखाने वाली बताने वाली ये कविता। तो श्रोताओं, बुद्धिमान अद्भुत और शांत स्वभाव वाला ये जीव हाथी एक ऐसा जीव जो हमारी संस्कृति, हमारी पारिस्थितिक और भावनात्मक धरोहर का हिस्सा है। हजारों वर्षों से मानव के साथ सह अस्तित्व में रह रहा है हमारा हाथी। कभी मंदिरों के अहम हिस्से के रूप में, कभी राजाओं के रक्षक और शान को बढ़ाने वाले, तो कभी जंगलों के प्रहरी के रूप में इन्होंने हमारी सभ्यता का साथ हमेशा से निभाया है। ये पारिस्थितिकी तंत्र का अहम किरदार हैं, ये इंजीनियर हैं जंगल के। पेड़ पौधों को फैलाना, उनकी संरचना बनाना और जल स्रोतों को सुरक्षित करने का काम भी करते हैं हाथी। लेकिन आज उनके प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने, उनके अवैध शिकार और मानव वन्य जीव संघर्ष ने इनकी संख्या को खतरनाक रूप से घटा दिया है। जंगल सिमट रहे हैं, नदियों और घास के मैदानों पर मानवीय कब्जा बढ़ता जा रहा है और हाथी अपने ही घर में बेघर होते जा रहे हैं, जिसका नतीजा भूख, भटकाव और संघर्ष के रूप में सामने आ रहा है। अब हमारे सामने दो ही रास्ते हैं श्रोताओं, या तो हम हाथियों की इस स्थिति को नजरअंदाज कर दें और कुछ दशकों बाद अपनी पीढ़ियों को सिर्फ इनकी तस्वीरें ही दिखा पाएं, या फिर अभी से इनके संरक्षण का ठोस कदम उठाएं। आइए आज के दिन संकल्प लें कि हाथी केवल किताबों और स्मारकों में नहीं, बल्कि हमारे जंगलों में आजाद घूमते हुए हमें दिखें, और यही हमारे आने वाली पीढ़ियों की सबसे बड़ी विरासत होगी। सर आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतना कीमती समय निकाला और हाथी के बारे में हमें इतनी सारी जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाने का सौभाग्य दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: तो इस कार्यक्रम को अब हम यहीं समेटते हैं। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग रहा सतीश बाथम का, और मैं थी आपके साथ आपके अपने रेडियो मित्र पूर्वा खले। आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए, सुनते रहिए। अभी आप सुन रहे थे हमारा आज का विशेष कार्यक्रम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप है
2: रेडियो आजाद हिंद के साथ देश का चैनल देश के लिए सुनते रहिए।
3: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भारत विभूति।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति।
2: भारत के इतिहास में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनका जीवन केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों की कहानी भर नहीं होता, बल्कि वो एक विचार, एक आंदोलन और एक युग की कहानी बन जाता है। ऐसे लोग अपने समय से आगे जाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। आज हम स्मरण कर रहे हैं एक ऐसे ही व्यक्तित्व को जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी, श्रमिक नेता, चिंतक, लेखक, राजनयिक, उपराष्ट्रपति और अंततः भारत के राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्र की सेवा की। एक ऐसा व्यक्ति जिसने मजदूरों की आवाज को राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बना दिया। एक ऐसा नेता जिसने लोकतंत्र में जन भागीदारी की शक्ति को पहचाना और एक ऐसा नागरिक जिसने अपने पूरे जीवन में समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। आज हम श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रहे हैं भारत के चौथे राष्ट्रपति और भारत रत्न वराह गिरी वेंकट गिरी अर्थात वीवी गिरी को।
3: भारत का लोकतांत्रिक इतिहास अनेक महान नेताओं और राष्ट्र निर्माताओं से भरा हुआ है, लेकिन यदि हम उन व्यक्तित्वों की सूची बनाएं जिन्होंने अपने जीवन के अलग अलग चरणों में बिल्कुल अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं और हर भूमिका में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई, तो वीवी गिरी का नाम निश्चित रूप से उनमें प्रमुखता से लिया जाएगा। वे केवल राष्ट्रपति नहीं थे, वे केवल स्वतंत्रता सेनानी भी नहीं थे, वे केवल मजदूरों के नेता भी नहीं थे, बल्कि उनका जीवन इन सभी भूमिकाओं का एक अद्भुत संगम था। उनका जीवन हमें ये बताता है कि लोकतंत्र की असली शक्ति केवल सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों में नहीं, बल्कि उन लोगों में होती है जो समाज की जड़ों से जुड़े रहते हैं। शायद यही कारण है कि जब हम वीवी गिरी को याद करते हैं तो केवल भारत के एक पूर्व राष्ट्रपति को ही नहीं, बल्कि एक ऐसे जन नेता को याद करते हैं जिन्होंने जीवन भर साधारण लोगों की असाधारण लड़ाइयों को अपनी लड़ाई बनाया। लेकिन किसी भी महान यात्रा की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। वीवी गिरी की यात्रा भी एक छोटे से शहर से शुरू हुई थी।
2: 10 अगस्त 1894 उड़ीसा के वर्तमान गंजाम जिले के बराहमपुर नगर में एक बालक का जन्म हुआ। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, देश राजनीतिक रूप से गुलाम था और सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा था। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि ये बालक आगे चलकर भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचेगा। उस बालक का नाम था वराहगिरी वेंकट गिरी। उनके पिता वराहगिरी वेंकट जोगैया पुंतलु अपने समय के प्रतिष्ठित वकीलों में गिने जाते थे, लेकिन उनकी पहचान केवल एक सफल अधिवक्ता की नहीं थी, वो सार्वजनिक जीवन और सामाजिक गतिविधियों में भी रुचि रखते थे। समाज की समस्याओं पर चर्चा करना, लोगों की सहायता करना और राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी राय रखना उनके स्वभाव का हिस्सा था। घर का वातावरण बौद्धिक भी था और सामाजिक चेतना से भी भरा हुआ था। यही वातावरण आगे चलकर युवा गिरी के व्यक्तित्व की नींव भी बना। कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति का पहला विद्यालय उसका परिवार होता है। वीवी गिरी के जीवन में भी ये बात पूरी तरह सत्य सिद्ध हुई। उनकी माता सुब्रदम्मा अत्यंत धार्मिक, संवेदनशील और संस्कारवान महिला थीं। उन्होंने अपने पुत्र को केवल शिक्षा का महत्व नहीं सिखाया, बल्कि सेवा, विनम्रता और अनुशासन का मूल्य भी समझाया। बचपन से ही गिरी ने देखा कि सम्मान केवल पद या संपत्ति से नहीं मिलता, सम्मान मिलता है चरित्र से, सम्मान मिलता है दूसरों के लिए किए गए कार्यों से। इसी कारण बाद के वर्षों में जब वे बड़े नेता बने, मंत्री बने, राज्यपाल बने और राष्ट्रपति बने, तब भी उनके व्यक्तित्व में एक सहजता और सादगी दिखाई देती रही। उनके निकट रहने वाले लोग अक्सर कहते थे कि इतने ऊंचे पदों पर पहुंचने के बाद भी उनमें अहंकार का कोई स्थान नहीं था। ये गुण उन्हें उनके परिवार और प्रारंभिक संस्कारों से मिला था।
3: प्रारंभिक शिक्षा के दौरान ही उनकी प्रतिभा स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। वे पढ़ाई में रुचि रखते थे, लेकिन उनकी रुचि केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं थी। उन्हें इतिहास पढ़ना पसंद था, राजनीतिक घटनाओं को समझना पसंद था, समाज में हो रहे परिवर्तनों को देखना और उनके कारणों पर विचार करना पसंद था। वे उन युवाओं में से एक थे जो केवल नौकरी या करियर के बारे में नहीं सोचते थे। वे ये भी समझना चाहते थे कि समाज कैसे चलता है, राष्ट्र कैसे बनता है और आम लोगों के जीवन को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। शायद यही कारण था कि उनकी सोच सामान्य विद्यार्थियों से अलग दिखाई देने लगी थी। उनके भीतर एक जागरूक नागरिक आकार ले रहा था।
2: उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने विदेश जाने का निर्णय लिया। आज के समय में विदेश जाकर पढ़ाई करना एक सामान्य बात लग सकती है, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में ये एक बड़ी बात थी। यात्रा लंबी होती थी, संपर्क सीमित होते थे और विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करना केवल पढ़ाई का अवसर नहीं बल्कि एक नई दुनिया को देखने का अवसर भी होता था। युवा वीवी गिरी आयरलैंड पहुंचे। शायद उन्हें स्वयं भी उस समय ये एहसास नहीं रहा होगा कि ये यात्रा उनके पूरे जीवन की दिशा बदल देगी, क्योंकि आयरलैंड में उन्हें केवल डिग्री नहीं मिली, उन्हें एक दृष्टि मिली, उन्हें एक विचार मिला, उन्हें एक ऐसा अनुभव मिला जिसने आगे चलकर उनके पूरे सार्वजनिक जीवन को प्रभावित कर दिया।
3: जब वीवी गिरी आयरलैंड पहुंचे तब वहां का राजनीतिक वातावरण अत्यंत उग्र और सक्रिय था। आयरलैंड स्वयं ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा था। देश भर में राष्ट्रीय चेतना की लहरें थी, सार्वजनिक सभाएं हो रही थी, राजनीतिक बहसें चल रही थी, युवा सड़कों पर थे, स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की मांग लगातार मजबूत हो रही थी। युवागिरी ने पहली बार इतने व्यापक जन आंदोलन को निकटता से देखा। उन्होंने देखा कि जब कोई राष्ट्र अपनी पहचान और अपने अधिकारों के लिए खड़ा होता है तो साधारण लोग भी इतिहास बदलने की क्षमता रखते हैं। यह अनुभव उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। भारत में रहते हुए उन्होंने स्वतंत्रता की आवश्यकता को समझा था, लेकिन आयरलैंड में उन्होंने स्वतंत्रता के संघर्ष को जीते हुए देखा है।
2: आयरलैंड में बिताए गए वर्षों ने उनके भीतर केवल राष्ट्रवाद की भावना ही नहीं जगाई बल्कि सामाजिक न्याय की समझ भी विकसित की। यहीं उन्होंने श्रमिक आंदोलनों को करीब से देखा। उन्होंने देखा कि मजदूर अपने अधिकारों के लिए किस प्रकार संगठित होते हैं। वो केवल वेतन की बात नहीं करते थे, वो सम्मान की बात करते थे, सुरक्षा की बात करते थे, समान अवसरों की बात करते थे। इन आंदोलनों ने युवागिरी पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने महसूस किया कि किसी भी समाज की प्रगति केवल बड़े नेताओं या बड़े उद्योगों से नहीं होती, उसकी वास्तविक शक्ति उसके श्रमिकों में होती है। यही वो विचार था जो आगे चलकर उनके पूरे जीवन का आधार बना।
3: आयरलैंड के अनुभवों ने उनके भीतर स्वतंत्रता, लोकतंत्र और जन भागीदारी के प्रति गहरा विश्वास पैदा कर दिया। वे समझ चुके थे कि जनता की भागीदारी के बिना कोई भी परिवर्तन स्थायी नहीं हो सकता। यही कारण था कि बाद के वर्षों में जब वे भारत में श्रमिक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे तब उनका दृष्टिकोण केवल अधिकारों की मांग तक सीमित नहीं था। वे संगठन, संवाद और जनशक्ति पर भी उतना ही बल देते थे। दरअसल आयरलैंड में ही उनके भीतर वह नेता जन्म ले चुका था जिसे भारत आने वाले दशकों में जानने वाला था।
2: लेकिन आयरलैंड में उनका समय केवल अध्ययन और अवलोकन तक सीमित नहीं रहा। उनकी राष्ट्रवादी गतिविधियों और राजनीतिक रुचियों ने ब्रिटिश प्रशासन का ध्यान भी आकर्षित किया। वे उन युवाओं में शामिल थे जो स्वतंत्रता और स्वाभिमान के प्रश्नों पर खुलकर विचार रखते थे। ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश अधिकारियों की नजर उन पर पड़ना स्वाभाविक था। अंततः उन्हें आयरलैंड छोड़कर भारत लौटना पड़ा। लेकिन जब वे वापस लौटे तब वो केवल कानून की पढ़ाई पूरी करके लौटने वाले छात्र नहीं थे, वे एक ऐसे जागरूक भारतीय बन चुके थे जिसके भीतर राष्ट्र सेवा का संकल्प आकार ले चुका था।
3: भारत लौटने के बाद उन्होंने वकालत शुरू की। उनके सामने एक सफल पेशेवर जीवन का रास्ता खुला हुआ था। वे चाहते तो एक प्रतिष्ठित वकील बन सकते थे, सुख सुविधा का जीवन जी सकते थे, लेकिन इतिहास ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। क्योंकि उस समय भारत का वातावरण तेजी से बदल रहा था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ चुके थे। स्वतंत्रता आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले रहा था। देश के कोने कोने में आजादी की आवाज गूंजने लगी थी। ऐसे समय में वीवी गिरी स्वयं को उस संघर्ष से अलग नहीं रख सके।
2: महात्मा गांधी के विचारों ने उनके जीवन को नई दिशा दी। सत्य, अहिंसा, स्वदेशी, जन भागीदारी और सामाजिक न्याय, ये केवल राजनीतिक नारे नहीं थे, ये जीवन जीने की एक पद्धति थे। वीवी गिरी ने इन विचारों को गहराई से जाना और उनसे प्रभावित भी हुए। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी शुरू की, सभाओं में भाग लिया, लोगों को जागरूक किया, राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करने का प्रयास किया और धीरे धीरे वे स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय कार्यकर्ताओं में गिने जाने लगे।
3: स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना आसान नहीं था। उस समय इसका अर्थ था निगरानी, गिरफ्तारी, जेल, आर्थिक असुरक्षा और अनेक व्यक्तिगत कठिनाइयां। लेकिन वीवी गिरी उन लोगों में से नहीं थे जो कठिनाइयों से पीछे हट जाएं। उन्होंने जेल यात्राएं की, संघर्षों का सामना किया और हर चुनौती को राष्ट्र सेवा का हिस्सा मानकर स्वीकार कर लिया। उनका विश्वास था कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं है, यह सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की भी शुरुआत है। और शायद यही सोच आगे चलकर उन्हें स्वतंत्रता सेनानी से श्रमिक नेता बनाने वाली थी।
2: स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात को गहराई से समझा। उन्होंने महसूस किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं होगा। यदि देश के श्रमिक, किसान और आम नागरिक सम्मानजनक जीवन न जी सके तो स्वतंत्रता अधूरी रह जाएगी। बस यहीं से उनके जीवन का अगला अध्याय शुरू हुआ, एक ऐसा अध्याय जिसने उन्हें भारत के सबसे प्रभावशाली श्रमिक नेताओं में शामिल कर दिया, जिसने लाखों मजदूरों के जीवन को प्रभावित किया, जिसने अंततः उन्हें राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाने की भूमिका तैयार की।
3: स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के दौरान वीवी गिरी ने भारत को बहुत करीब से देखा। उन्होंने केवल राजनीतिक गुलामी को नहीं देखा बल्कि उस आर्थिक और सामाजिक वास्तविकता को भी देखा जो लाखों भारतीयों के जीवन को प्रभावित कर रही थी। देश का एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो दिन रात मेहनत करता था लेकिन उसके श्रम का उचित सम्मान नहीं था। कारखानों में काम करने वाले मजदूर, रेलवे कर्मचारी, बंदरगाहों पर काम करने वाले श्रमिक, खदानों में काम करने वाले मेहनतकश लोग, ये सभी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे थे लेकिन उनकी अपनी स्थिति अक्सर संघर्षपूर्ण रहती थी। वीवी गिरी ने महसूस किया कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं, स्वतंत्रता का अर्थ यह भी है कि समाज के हर वर्ग को सम्मान, सुरक्षा और अवसर मिले। यही सोच उन्हें श्रमिक आंदोलन की ओर लेकर चली गई और यहीं से उनके जीवन का वह अध्याय शुरू हुआ जिसने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट पहचान दिलाई।
2: दोस्तों, आज जब हम वीवी गिरी का नाम सुनते हैं तो अक्सर हमें भारत के चौथे राष्ट्रपति की याद आती है, लेकिन ये जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने से बहुत पहले वो भारत के सबसे प्रभावशाली श्रमिक नेताओं में गिने जाते थे। दरअसल मजदूरों और कर्मचारियों के बीच उनका जो विश्वास था वही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक और सामाजिक पूंजी थी। वो उन नेताओं में से नहीं थे जो केवल मंच से भाषण देते हों, वो सीधे लोगों के बीच जाते थे, उनकी बातें सुनते थे, उनकी समस्याओं को समझते थे और फिर उन समस्याओं को व्यवस्था के सामने पूरी मजबूती से रखते थे। शायद यही कारण भी था कि श्रमिक उन्हें अपना नेता ही नहीं बल्कि अपना प्रतिनिधि मानते थे।
3: 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों का भारत तेजी से बदल रहा था। रेलवे नेटवर्क का विस्तार हो रहा था, औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा था, नई फैक्ट्रियां स्थापित होने लगी थी, लेकिन इन विकास कार्यों के पीछे काम करने वाले लाखों श्रमिकों की स्थिति अभी भी संतोषजनक नहीं थी। कार्य के घंटे लंबे थे, सुरक्षा मानकों की कमी थी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था लगभग नगण्य थी। और सबसे बड़ी बात यह कि श्रमिकों की आवाज को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता था। ऐसे समय में वीवी गिरी ने यह समझा कि यदि इन लोगों को संगठित नहीं किया गया तो उनकी समस्याएं कभी भी राष्ट्रीय प्राथमिकता नहीं बन पाएंगी। यहीं से उन्होंने श्रमिक संगठनों के साथ सक्रिय रूप से काम करना शुरू कर दिया।
2: उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र रेलवे कर्मचारियों के बीच रहा। रेलवे उस समय केवल एक परिवहन व्यवस्था नहीं थी, वो भारत की आर्थिक धड़कन भी थी, देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाला सबसे बड़ा माध्यम थी। और लाखों कर्मचारी इस व्यवस्था को चलाने में दिन रात जुटे रहते थे। लेकिन इन कर्मचारियों की अपनी समस्याएं भी कम नहीं थी। वीवी गिरी ने रेलवे कर्मचारियों के बीच जाकर उनके जीवन को समझा। उन्होंने देखा कि किस प्रकार कठिन परिस्थितियों में काम करते हुए भी ये कर्मचारी राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने उनकी समस्याओं को केवल सुना नहीं बल्कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। धीरे धीरे वो रेलवे कर्मचारियों के सबसे विश्वसनीय नेताओं में शामिल हो गए।
3: रेलवे यूनियन के साथ काम करते हुए वीवी गिरी ने एक महत्वपूर्ण बात महसूस की। उन्होंने देखा कि श्रमिकों की समस्याएं केवल आर्थिक नहीं हैं, वे सम्मान से भी जुड़ी हुई हैं, वे भागीदारी से भी जुड़ी हुई हैं, वे इस प्रश्न से भी जुड़ी हुई हैं कि किसी संस्था में निर्णय लेते समय उन लोगों की आवाज कितनी सुनी जाती है जो वास्तव में उस संस्था को चलाते हैं। यही कारण था कि उन्होंने श्रमिक आंदोलन को केवल वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे गरिमा, भागीदारी और सामाजिक न्याय के व्यापक प्रश्न से जोड़ दिया। यह उस समय के लिए एक अत्यंत प्रगतिशील सोच थी।
2: और फिर क्या, धीरे धीरे उनका नाम पूरे देश में एक प्रभावशाली ट्रेड यूनियन नेता के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन उनकी कार्यशैली उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाती थी। वो केवल संघर्ष की भाषा नहीं बोलते थे, वो संवाद की भाषा भी जानते थे। वो केवल विरोध की बात नहीं करते थे, वो समाधान की भी बात करते थे। उनका मानना था कि श्रमिकों और प्रबंधन के बीच स्थायी टकराव किसी के भी हित में नहीं है। यदि दोनों पक्ष एक दूसरे को समझें और संवाद बनाए रखें तो उद्योग भी आगे बढ़ सकते हैं और श्रमिकों का जीवन भी बेहतर हो सकता है।
3: यहीं से जन्म हुआ उस विचार का जिसे बाद में पूरे देश ने गिरी अप्रोच के नाम से जाना। आज भी औद्योगिक संबंधों और श्रम प्रबंधन का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी इस अवधारणा का उल्लेख करते हैं। गिरी अप्रोच का मूल आधार था संवाद, विश्वास और सहयोग। वीवी गिरी का मानना था कि उद्योग, श्रमिक और सरकार ये तीनों एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, ये एक ही व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं। यदि इनमें सहयोग होगा तो विकास होगा, यदि इनमें अविश्वास होगा तो संघर्ष बढ़ेगा। उनका दृष्टिकोण उस समय के लिए अत्यंत व्यवहारिक और दूरदर्शी माना गया।
2: वो अक्सर कहा करते थे कि हड़ताल किसी भी समस्या का पहला समाधान नहीं हो सकती, हड़ताल अंतिम विकल्प होना चाहिए। उससे पहले बातचीत होनी चाहिए, समझौते के प्रयास होने चाहिए, मध्यस्थता के प्रयास होने चाहिए, और यदि उसके बाद भी न्याय ना मिले तभी संघर्ष का मार्ग अपना कर चलना चाहिए। ये दृष्टिकोण उन्हें एक संतुलित नेता के रूप में स्थापित करता था। श्रमिक उन पर विश्वास करते थे क्योंकि वो उनके अधिकारों की बात करते थे, और उद्योग जगत भी उनका सम्मान करता था क्योंकि वो संवाद और स्थिरता के महत्व को समझते थे।
3: यही कारण है कि वीवी गिरी को केवल एक ट्रेड यूनियन नेता कहना उनके योगदान को सीमित कर देना होगा। विश्रम संबंधों के एक गंभीर चिंतक भी थे। उन्होंने औद्योगिक विकास और श्रमिक कल्याण के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने यह समझाने की कोशिश की कि दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। आज जब हम औद्योगिक शांति, सामूहिक सौदेबाजी और श्रमिक भागीदारी जैसे विषयों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं गिरी जी के विचारों की झलक दिखाई देती है।
2: बहुत कम लोग जानते हैं कि वीवी गिरी केवल आंदोलनकारी नेता ही नहीं थे बल्कि एक गंभीर लेखक और विचारक भी थे। उन्होंने अपने अनुभवों को पुस्तक के माध्यम से भी व्यक्त किया। उनकी पुस्तक केवल सिद्धांतों की चर्चा नहीं करती बल्कि वास्तविक जीवन के अनुभवों और चुनौतियों पर आधारित हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर प्रॉब्लम इन इंडियन इंडस्ट्री और जॉब्स फॉर अवर मिलियंस, ये पुस्तकों में उन्होंने भारत के आर्थिक विकास, रोजगार और श्रमिक कल्याण से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार रखा। इन पुस्तकों से ये स्पष्ट होता है कि वो केवल आंदोलन के नेता नहीं थे, वो नीति और सिद्धांत दोनों को समझने वाले विचारक भी थे।
3: 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। अब संघर्ष का स्वरूप बदल चुका था। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ाई समाप्त हो गई थी, लेकिन राष्ट्र निर्माण का कार्य भी शुरू हुआ था। देश को नई संस्थाएं बनानी थी, नई नीतियां बनानी थी और एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता थी जो स्वतंत्र भारत की चुनौतियों को समझता हो। वीवी गिरी उन नेताओं में थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी योगदान दिया था और सामाजिक आर्थिक प्रश्नों पर भी गंभीरता से काम किया था। इसलिए स्वतंत्र भारत में उनकी भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती चली गई।
2: दोस्तों, स्वतंत्र भारत की सरकार ने उन्हें एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जिम्मेदारी सौंपी। उन्हें सीलोन अर्थात वर्तमान श्रीलंका में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। ये केवल एक प्रशासनिक नियुक्ति नहीं थी, बल्कि ये भारत के विश्वास का प्रतीक थी। उस समय भारत और श्रीलंका के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दे थे। दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाना आवश्यक था। वीवी गिरी ने इस जिम्मेदारी को बड़ी कुशलता से निभाया। उनकी व्यवहार कुशलता, संतुलित दृष्टिकोण और संवाद की क्षमता यहाँ भी बहुत काम आई।
3: उच्चायुक्त के रूप में सफलता के बाद उन्हें केंद्र सरकार में श्रम मंत्री बनाया गया। यह जिम्मेदारी मानो उनके पूरे जीवन अनुभव का स्वाभाविक विस्तार थी। वर्षों तक श्रमिकों के बीच काम करने वाला व्यक्ति अब राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक नीतियों को सुधार सकता था। उन्होंने श्रमिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और औद्योगिक संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए। उनका ध्यान हमेशा इस बात पर रहता था कि विकास का लाभ केवल कुछ लोगों तक सीमित न रहे, बल्कि समाज के व्यापक वर्ग तक पहुंचे।
2: इसके बाद वीवी गिरी ने कई महत्वपूर्ण राज्यों में राज्यपाल के रूप में कार्य भी किया। उत्तर प्रदेश, केरल और मैसूर जैसे राज्यों में उनकी नियुक्ति इस बात का प्रमाण थी कि वो केवल एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक सक्षम प्रशासक भी थे। राज्यपाल के रूप में उन्होंने संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए काम किया। वे विवादों से दूर रहते थे। उनका प्रयास हमेशा यही रहता था कि लोकतांत्रिक संस्थाएं सुचारू रूप से काम करती रहें। उनकी निष्पक्षता और संतुलन की व्यापक सराहना की गई।
3: इन सभी भूमिकाओं के दौरान एक बात कभी नहीं बदली, चाहे वे श्रमिक नेता रहे हों, चाहे मंत्री रहे हों, चाहे राज्यपाल रहे हों, वे हमेशा स्वयं को जनता से जुड़ा हुआ महसूस करते रहे। वे कभी भी अपनी जड़ों को नहीं भूले। शायद यही कारण था कि सार्वजनिक जीवन में उनकी विश्वसनीयता लगातार बढ़ती चली गई।
2: और फिर आया वर्ष 1967। ये उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव था। वीवी गिरी भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ये केवल एक संवैधानिक पद नहीं था, ये उनके दशकों लंबे सार्वजनिक जीवन, उनके अनुभव, उनकी निष्ठा और उनके योगदान की राष्ट्रीय स्वीकृति थी। लेकिन इतिहास ने उनके लिए अभी एक और बड़ी भूमिका तय कर रखी थी, एक ऐसी भूमिका जो उन्हें भारतीय लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में स्थान दिलाने वाली थी।
3: 1967 में भारत के उपराष्ट्रपति बनने के साथ ही वीवी गिरी भारतीय सार्वजनिक जीवन के सर्वोच्च पदों में शामिल हो चुके थे। लेकिन उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक यात्रा विशेष थी। ये वो यात्रा थी जो उन्हें राष्ट्रपति भवन तक लेकर जाने वाली थी, और ये यात्रा जितनी महत्वपूर्ण थी उतनी ही नाटकीय भी। भारतीय राजनीति के इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनकी चर्चा दशकों बाद भी की जाती है। 1969 का राष्ट्रपति चुनाव ऐसी ही एक घटना है। यह केवल राष्ट्रपति चुनाव की संवैधानिक प्रक्रिया नहीं थी, यह उस दौर की राजनीतिक परिस्थितियों, वैचारिक मतभेदों और लोकतांत्रिक मूल्यों की भी परीक्षा थी। और इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में थे वीवी गिरी।
2: 3 मई 1969 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का आकस्मिक निधन हो गया। परिस्थितियां बदली और वीवी गिरी राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए। राष्ट्रपति भवन में पहुंचने के बाद भी वीवी गिरी की पहचान नहीं बदली। वो पहले ही की तरह सरल रहे, पहले की तरह सहज और पहले की तरह आम लोगों के प्रति संवेदनशील बने रहे। उनके लिए राष्ट्रपति का पद सम्मान से अधिक जिम्मेदारी का पद था। वो मानते थे कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, ये राष्ट्र की सामूहिक चेतना का प्रतीक है। इसलिए राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने हमेशा संवैधानिक मर्यादाओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा को सर्वोच्च महत्व दिया।
3: उनके कार्यकाल के दौरान भारत अनेक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाओं का साक्षी बना। देश आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था, नई नीतियां बन रही थी, नए कार्यक्रम शुरू हो रहे थे और लोकतांत्रिक संस्थाएं निरंतर विकसित हो रही थी। ऐसे समय में राष्ट्रपति के रूप में उनकी भूमिका संतुलन, धैर्य और संवैधानिक प्रतिबद्धता की रही। उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि राष्ट्रपति पद दलगत राजनीति से ऊपर बना रहे।
2: लेकिन यदि कोई ये सोचता है कि राष्ट्रपति बनने के बाद वे श्रमिकों और आम लोगों के मुद्दे से हट गए होंगे या उन्हें भूल गए होंगे, तो ये उनकी प्रकृति को समझने में शायद भूल होगी। उनकी जड़ें हमेशा समाज के उसी वर्ग से जुड़ी रहीं जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था। वो अक्सर कहा करते थे कि किसी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके मेहनतकश लोगों में होती है। मशीनें, इमारतें और संस्थाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन्हें जीवंत बनाने वाला श्रम ही होता है। ये विचार उनके जीवन के अंतिम वर्षों तक उनके साथ बना रहा। 1974 में उनका राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त हुआ, लेकिन सार्वजनिक जीवन में उनका सम्मान और प्रभाव बना रहा। लोग उन्हें केवल पूर्व राष्ट्रपति के रूप में नहीं देखते थे, वो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते थे जिसने अपने जीवन के हर चरण में समाज के कमजोर और मेहनतकश वर्गों की आवाज को महत्व दिया। उनका सार्वजनिक जीवन किसी एक पद की उपलब्धि तक सीमित नहीं था, वो एक सतत यात्रा थी और वो थी जनसेवा की यात्रा।
3: उनकी असाधारण सेवाओं को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1975 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। यह सम्मान केवल इसलिए नहीं था कि वे भारत के राष्ट्रपति रह चुके थे, यह सम्मान उनके पूरे जीवन की साधना का सम्मान था। एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनका योगदान, एक श्रमिक नेता के रूप में उनका संघर्ष, एक विचारक के रूप में उनकी दृष्टि, एक प्रशासक के रूप में उनकी निष्ठा और एक राष्ट्र नायक के रूप में उनकी सेवाएं, इन सभी का समग्र सम्मान था भारत रत्न।
2: लेकिन शायद वीवी गिरी स्वयं इस सम्मान को भी अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं मानते, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान जनता का विश्वास था। उन लाखों श्रमिकों का विश्वास जिन्होंने उन्हें अपना नेता माना, उन नागरिकों का विश्वास जिन्होंने उन्हें एक ईमानदार जनसेवक के रूप में देखा, और उस राष्ट्र का विश्वास जिसने उन्हें अपने सर्वोच्च संवैधानिक पद की जिम्मेदारी सौंपी।
3: बहुत कम लोग जानते हैं कि वीवी गिरी उन चुनिंदा भारतीय राष्ट्रपतियों में से हैं जिनकी सबसे बड़ी पहचान राजनीतिक नहीं बल्कि श्रमिक आंदोलन से थी। विश्व इतिहास में भी ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं जहां ट्रेड यूनियन आंदोलन से निकला कोई नेता लोकतांत्रिक व्यवस्था के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचा हो। यही बात उनके जीवन को विशिष्ट बनाती है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि जनसेवा का मार्ग चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अंततः वही सबसे अधिक सम्मान दिलाता है।
2: आज जब हम 21वीं सदी में खड़े होकर उनके जीवन को देखते हैं, तो उनके अनेक विचार आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक प्रतीत होते हैं। श्रमिक अधिकारों की बात हो, सामाजिक सुरक्षा की बात हो, संवाद आधारित औद्योगिक संबंधों की बात हो या लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती की बात हो, हर क्षेत्र में उनके विचार आज भी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनकी सोच हमें ये याद दिलाती है कि विकास तभी सार्थक होता है जब उसमें मानव गरिमा और सामाजिक न्याय दोनों शामिल हों।
3: युवा पीढ़ी के लिए भी वीवी गिरी का जीवन एक प्रेरणा है। उन्होंने दिखाया कि साधारण परिस्थितियों से निकलकर भी असाधारण उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। उन्होंने दिखाया कि सिद्धांतों पर अड़िग रहते हुए भी सफलता हासिल की जा सकती है। उन्होंने दिखाया कि नेतृत्व का अर्थ केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व निभाना है। और उन्होंने यह भी दिखाया कि किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान उसके पद से नहीं बल्कि उसके मूल्यों से होती है।
2: 24 जून 1980 को वीवी गिरी इस

0: स्मृति का हिस्सा बन जाते हैं। वीवी गिरी ऐसे ही व्यक्तित्व थे।
1: आज जब हम उनके जीवन को याद करते हैं तो हमें केवल एक पूर्व राष्ट्रपति का स्मरण नहीं करना चाहिए, हमें उस युवा छात्र को भी याद करना चाहिए जिसने आयरलैंड की धरती पर स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय का महत्व समझा। हमें उस स्वतंत्रता सेनानी को भी याद करना चाहिए जिसने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। हमें उस श्रमिक नेता को भी याद करना चाहिए जिसने मजदूरों की आवाज को सम्मान दिलाने का संकल्प लिया। और हमें उस राष्ट्र नायक को भी याद करना चाहिए जिसने राष्ट्रपति भवन तक पहुंचकर भी अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया।
0: वीवी गिरी आज भी जीवित हैं। हर उस श्रमिक के संघर्ष में जो अपने अधिकारों के लिए खड़ा है, हर उस युवा के सपनों में जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहता है, हर उस नागरिक की चेतना में जो लोकतंत्र और संविधान की शक्ति पर विश्वास करता है, और हर उस भारतीय के हृदय में जो ये मानता है कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। वीवी गिरी का जीवन संघर्ष की कहानी है, सेवा की कहानी है, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था की कहानी है, और इन सबसे बढ़कर ये उस विश्वास की कहानी है कि सामान्य नागरिक भी राष्ट्र के इतिहास को बदल सकते हैं।
1: तो भारत विभूति के हमारे इस खास कार्यक्रम में आज आपने जाना भारत के चौथे पूर्व राष्ट्रपति श्री वीवी गिरी के बारे में। भारत विभूति कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन पुष्पक श्रीवास्तव और वाचन मैं दीपेश
0: और मैं मनीषा।
1: इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भारत विभूति 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नगर के साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी लेकर हाजिर हूँ श्रोताओं परिक्रमा में। मैं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। आइए परिक्रमा में आज मैं आपको सबसे पहले ले चल रही हूँ भारत भवन। श्रोताओं, कला केंद्र भारत भवन के रूपंकर कला प्रभाग में मंगलवार को यानी कल 5 प्रतिभावान कलाकारों की समूह कला प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। 16 अगस्त तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में शहर के ही 5 कलाकारों नेहा शर्मा, नेहा सैयद, डॉक्टर स्वाति एम जैन, शुभम वर्मा और राज पहाड़े की कुल 60 कलाकृतियां दर्शकों के अवलोकन के लिए प्रदर्शित की गई हैं। श्रोताओं, इस प्रदर्शनी की सबसे खास बात यह है कि कलाकारों की विविधतापूर्ण शैली और उनका अनूठा जो विषय चयन है वो बिल्कुल अलग है। जहां 4 कलाकार चित्रकला के माध्यम से अपने भावों के रहे हैं, वहीं 1 कलाकार सेरेमिक आर्ट के जरिए अपनी रचनात्मकता को आकार दे रहा है। प्रदर्शनी में नेहा शर्मा की रचनाओं में आध्यात्मिक चेतना का गहरा प्रभाव है। उन्होंने सुदर्शन चक्र में नारायण, तारिका में विठ्ठल और तिलक और माँ मातंगी के प्रतीकों को सहजता से उकेरा है। वहीं दूसरी ओर राज पहाड़े की कलाकृतियां प्रकृति, पेड़ पौधों और पर्यावरण संरक्षण के प्रति इंसानी संवेदनाओं को खूबसूरती से रेखांकित करती हैं।

चलिए भारत भवन से अब बात करते हैं गुरु के सम्मान की। श्रोताओं, अभिव्यक्ति साहित्यिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था द्वारा गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत गुरु सम्मान एवं काव्य गोष्ठी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना से किया गया। समारोह की अध्यक्षता पद्मश्री डॉक्टर नारायण व्यास ने की। कार्यक्रम में प्रख्यात शिक्षाविद व वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर प्रेम भारती को सांदीपनी गुरु सम्मान से नवाजा गया। इसके साथ ही साहित्य व समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री गोकुल सोनी, अशोक धामेनिया, डॉक्टर कल्पना विजयवर्गीय, डॉक्टर गौरी शंकर गौरीश और डॉक्टर आशा अग्रवाल सहित अनेक विभूतियों को गुरु सम्मान से अलंकृत किया गया।

श्रोताओं, परिक्रमा में बात कर लेते हैं कुछ आने वाले कार्यक्रमों की। आगामी 13 और 14 अगस्त को राष्ट्रीय स्तर का संसद यूथ पार्लियामेंट 2.0 आयोजित किया जाएगा। विधान भवन में होने वाले इस दो दिवसीय आयोजन में देश भर के युवाओं के विचार और लोकतांत्रिक संवाद गूंजेंगे। कार्यक्रम के आयोजकों के अनुसार, नागपुर विधान भवन में आयोजित इसके पहले के संस्करण में 250 से अधिक युवाओं ने भाग लिया था। दूसरे संस्करण के लिए प्रतिभागियों को भोपाल की समृद्ध विरासत, कला और संस्कृति से भी परिचित कराया जाएगा। श्रोताओं, इस संसद यूथ पार्लियामेंट में महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, दिल्ली और ओडिशा सहित देश के 58 से अधिक शहरों से युवा प्रतिनिधि भोपाल आएंगे। प्रतिभागी संसदीय शैली में राष्ट्रीय और समसामयिक विषयों पर तार्किक चर्चा और वाद विवाद करेंगे। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर सहित दिल्ली और देश के कई गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। वहीं श्रोताओं, संस्कृति विभाग द्वारा जन्माष्टमी के अवसर पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले श्री कृष्ण पर्व के तहत इस बार पहली बार रासलीला समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये 7 दिवसीय आयोजन 29 अगस्त से 4 सितंबर तक रविंद्र भवन परिसर में होगा। इस कार्यक्रम में भक्ति गायन और श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रदर्शन किया जाएगा, तो तैयार रहिएगा जन्माष्टमी के अवसर पर इस कार्यक्रम हेतु। वहीं श्रोताओं, सांस्कृतिक जनचेतना को समर्पित त्रिकर्षी नाट्य संस्था द्वारा बुधवार को यानी आज से रंगमंच कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मेरा रंगमंच श्रृंखला के तहत संस्था द्वारा नाटक आकार की प्रस्तुति दी जाएगी। ये विशेष आयोजन केजी त्रिवेदी चच्चा के 63वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। ललित सहगल द्वारा लिखित नाटक की परिकल्पना और निर्देशन खुद केजी त्रिवेदी द्वारा किया गया। आयोजन भोपाल के नर्मदापुरम रोड स्थित स्थल में होगा।

तो श्रोताओं, अब बात की जाए कुछ पर्व और त्योहारों की, तो देखा जाए तो आज का दिन बेहद विशेष है। आज है हरियाली अमावस। श्रोताओं, ये पर्व आस्था के साथ प्रकृति संरक्षण का पर्व है, हरियाली अमावस्या। प्राचीन समय से ही ये परंपरा चली आ रही है। ऋषियों मुनियों के द्वारा इस दिन जड़ी बूटियों और संरक्षित पौधों को और अधिक संरक्षित किया जाता है और चिन्हित किया जाता है। आज के दिन श्रोताओं, बरसों से ये परंपरा रही है कि पेड़ पौधे नहीं तोड़े जाते, काटे नहीं जाते, वरन उन्हें उगाया जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है।

प्रकृति को हरा भरा रखने के लिए जगह जगह आज हमारे भोपाल में भी पौधारोपण इस अवसर पर किया जा रहा है। तो आप भी इस अवसर को हाथ से न जाने दें और एक न एक पौधा जरूर अपने आसपास के क्षेत्र में लगाएं, उसे उगाएं और उसका संरक्षण करने का प्रण लें आज के दिन।

तो विश्व हाथी दिवस के इस अवसर पर हम प्रयास करें अपने घर पर अपने छोटे बच्चों को इस प्यारे से विरासत जीव के बारे में जानकारी देने का, और यदि हम उन्हें चिड़ियाघरों तक आज नहीं ले जाने की स्थिति में हैं तो उन्हें प्यारी सी अपने घर पर ही डॉक्यूमेंट्री दिखाएं, वीडियो दिखाएं और उसके बारे में जानकारी दें। और ये समझाने का और समझने का प्रयत्न करें कि हाथी हमारे लिए, हमारे विश्व के लिए, इस पृथ्वी के लिए एक कितना महत्वपूर्ण जानवर है। तो श्रोताओं, बस आज की परिक्रमा यहीं तक। इस रिमझिम वाले मौसम में रखिए अपना और अपनों का ध्यान, रहिए स्वस्थ और मस्त, और दीजिए अनुमति परिक्रमा से आपके अपने पूर्वा को नमस्कार। ₹90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद को, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: हॉलैंड के राजा का छल, डच कंपनी का कूटनीतिक मुखौटा। 17वीं शताब्दी में दुनिया सम्राटों और शक्तिशाली शासकों का एक नक्शा थी, जहां सत्ता शीर्ष से नीचे की ओर बहती थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी VOC के व्यापारियों के लिए ये पहचान के एक मौलिक संकट जैसा था। VOC डच गणराज्य में स्थित एक निजी कंपनी थी, एक ऐसा राज्य जो प्रसिद्ध रूप से बिना किसी राजा के था। हालांकि एशिया के शाही दरबारों में व्यापारिक मामलों को राज्य के अस्तित्व से बेहद छोटा माना जाता था, शासक केवल अपने साथी राजाओं और सम्राटों के साथ ही शाही मामलों जैसे युद्ध, सैन्य सहायता और उत्तराधिकार पर चर्चा करना चाहते थे। इस भीड़भाड़ वाले कूटनीतिक अखाड़े में जीवित रहने के लिए डच गणतंत्रवादियों ने एक सोचे समझे वैश्विक धोखे का सहारा लिया। VOC के राजदूत नियमित रूप से खुद को एक गैर मौजूद हॉलैंड के राजा के प्रतिनिधि के रूप में पेश करते थे। उन्होंने जानबूझकर कंपनी के जटिल कॉरपोरेट ढांचे को छिपाया और इसके बजाय स्टेट होल्डर मॉरिस ऑफ ऑरेंज को एक संप्रभु सम्राट के रूप में प्रस्तुत किया। वे स्टेट होल्डर की तस्वीरें और कूटनीतिक पत्र लाकर राजाओं की सभा में बैठने की जगह हासिल करने के लिए भ्रम पैदा करते थे। ये छल 1627 में जापान के टोकुगावा शोगुनेट में पीटर नुयत्स के मिशन के दौरान अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। नुयत्स ताइवान में व्यापारिक विवादों को सुलझाने की उम्मीद में बड़ी भव्यता के साथ ईदो पहुंचे। हालांकि जापानी अधिकारियों की गहन पूछताछ के सामने उनका मिशन बिखर गया। जापानियों ने गौर किया कि नुयत्स के पत्रों पर बटाविया के गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर थे, जिन्हें वे केवल जावा का एक जागीरदार मानते थे। शोगुनेट के सख्त पदानुक्रम में एक अधीनस्थ के अधीनस्थ का सीधे जापान के राजा को संबोधित करना असहनीय और अशिष्टता का कार्य था। जापानी अधिकारियों ने प्रसिद्ध रूप से ये निष्कर्ष निकाला कि जावा हॉलैंड के बराबर है और दूतावास को पूरी तरह खारिज कर दिया। नुयत्स मिशन की विफलता ने VOC को सिखाया कि वे शोगुन के साथ समान राज्य भागीदार के रूप में बातचीत नहीं कर सकते। हॉलैंड के राजा के झूठ को जारी रखने के बजाय डचों ने एक क्रांतिकारी रणनीतिक बदलाव किया। उन्होंने टोकुगावा राज्य के छद्म प्रजा के रूप में दर्जा स्वीकार कर लिया। उन्होंने शाही पत्र भेजना बंद कर दिया और इसके बजाय बाहरी दुनिया की खुफिया रिपोर्टों के रूप में लॉजिस्टिक सेवा प्रदान करना चालू कर दिया। हॉलैंड का राजा का ये छल उस युग के इंटरैक्टिव डोमिनेंस को दर्शाता है, जहां यूरोपीय नव आगंतुकों को एशियाई कूटनीतिक रीति रिवाजों के अनुसार खुद को ढालने के लिए मजबूर होना पड़ा। चाहे वो एक काल्पनिक सम्राट के बारे में उपयोगी झूठ हो या एक छद्म प्रजा के रूप में विनम्र समर्पण, VOC ने साबित कर दिया कि प्रारंभिक आधुनिक दुनिया में संप्रभुता का मुखौटा उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि मसालों का माल। अंततः कंपनी की लंबी उम्र जहाज के डेक पर नहीं बल्कि पूर्व के राजनैतिक परिदृश्यों में फिट होने के लिए खुद को रीब्रांड करने की उसकी क्षमता पर टिकी थी।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये है रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। पेश है भारतीय साहित्य के प्रख्यात कवियों की अनुपम और कालातीत रचनाओं की रचनात्मक प्रस्तुति पर आधारित हमारा कार्यक्रम काव्य गुंजन।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। ये वो आकाश है जहां शब्द केवल बोले नहीं जाते, वे साधे जाते हैं। जहां स्वर केवल गूंजते नहीं, वे चेतना को स्पर्श करते हैं।
1: तृतीय सर्ग में हमने देखा, एक पुरुष ने राज्य को ठुकरा कर वचन को अपना राजमुकुट बना लिया। कर्ण ने दिखा दिया कि मनुष्य का कद उसके जन्म से नहीं, उसके निर्णय से मापा जाता है। वहां कथा नहीं, चरित्र बोल रहा था। वहां संवाद नहीं, संकल्प गूंज रहा था। वृक्ष फल देकर रिक्त नहीं होता, वह और हरित होता है। सरिता जल देकर सूखती नहीं, वह पुनः मेघों में भरती है। यही आत्मदान का शाश्वत नियम है। जो देता है वही सचमुच पाता है। जो अंतिम मूल्य हंस कर चुका दे, वही अमरता का अधिकारी होता है। श्रोताओं, चतुर्थ सर्ग की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि दिनकर जी को यूं ही राष्ट्रकवि नहीं कहा गया। उनकी वाणी सोई हुई चेतना को झकझोरती है, मनुष्य को उसके आत्मबल का बोध कराती है।
0: बिल्कुल, रश्मि रथी में मानवीय मूल्यों का ऐसा ही समन्वय है, जहां दर्शन भी है, सिद्धांत भी, इच्छा भी है, संयम भी, छल और द्वेष की छाया भी है, तो प्रेम, दान और तपस्या की उज्जवल आभा भी। ये काव्य केवल घटनाओं का अनुक्रम नहीं, मानव हृदय का महागान है। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं चतुर्थ सर्ग के भाग एक का काव्य पाठ। प्रेम यज्ञ अति कठिन, बंधुता की अद्भुत अभिमानी। प्रेम यज्ञ अति कठिन, कुंड में कौन वीर बलि देगा। तन मन धन सर्वस्व होम कर अतुलनीय यश लेगा। हरि के सम्मुख भी ना हार जिसकी निष्ठा ने मानी। धन्य धन्य राधेय बंधुता की अद्भुत अभिमानी। पर जाने क्यों, नियम एक अद्भुत जग में चलता है। भोगी सुख भोगता, तपस्वी और अधिक जलता है। हरियाली है जहां, जलद भी उसी खंड के वासी। मरु की भूमि मगर रह जाती है प्यासी की प्यासी। और वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर अड़ता है, सचमुच उसके लिए उसे सब कुछ देना पड़ता है। नहीं सदा भीषिका दौड़ती द्वार पाप का पाकर, दुख भोगता कभी पुण्य को भी मनुष्य अपना कर। पर तब भी रेखा प्रकाश की जहां कहीं हस्ती है, वहां किसी प्रज्वलित वीर नर की आभा बसती है। जिसने छोड़ी नहीं लीक विपदाओं से घबराकर, दी जग को रोशनी टेक पर अपनी जान गंवाकर। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश आग में जो अभीत जलता है। आजीवन झेलते दाह का दंश वीर व्रतधारी, हो पाते तब कहीं अमरता के पद के अधिकारी। प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना। सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मोल चुकाना। अंतिम मूल्य ना दिया अगर, तो और मूल्य क्या देना। करने लगे मोह प्राणों का, तो फिर प्रण लेना क्या। सस्ती कीमत पर बिकती रहती जब तक कुर्बानी, तब तक सभी बने रह सकते हैं त्यागी बलिदानी। पर महंगी में मोल तपस्या का देना दुष्कर है। हंसकर दे ये मूल्य, ना मिलता वो मनुष्य घर घर है। जीवन का अभियान दान बल से अजस्त्र चलता है। उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है। और दान में रोकर या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकार वश उसे सत्व का त्याग मान लेते हैं। ये ना सत्व का त्याग, दान तो जीवन का झरना है। रखना उसको रोक मृत्यु के पहले ही मरना है। किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं।
1: ऋतु के बाद फलों का रुकना डालों का सड़ना है। मोह दिखाना देय वास्तु पर आत्मघात करना है। देते तरु इसलिए कि रेशों में मत कीट समाए रहें, डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आए। सरिता देती वारी कि पाकर उसे सुपूरित घन हो, बरसे मेघ भरे फिर सरिता उदित नया जीवन हो। आत्मदान के साथ जगत जीवन का रिजुनाता है, जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। दिखलाना कार्पण्य आप अपने धोखा खाना है, रखना दान अपूर्ण रिक्ति निज का ही रह जाना है। व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए ना जो रोते हैं, पूर्ण काम जीवन से एकाकार वही होते हैं। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर ना कभी मरता है। जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं उजियाला, वहां खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया, त्याग सीता को, जीवन की संगिनी प्राण की मणि को, सुपुनीता को दिया। अस्थि देकर दधीची ने, शिवी ने अंग कतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर, ईसा ने संसार हेतु शूली पर प्राण गवा कर, अंतिम मूल्य दिया गांधी ने तीन गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। हंसकर लिया मरण ओठों पर जीवन का व्रत पाला, अमर हुआ सुकरात जगत में पीकर विष का प्याला। मार कर भी मनसूर नियति की सह पाया ना ठिठोली, उत्तर में सौ बार चीख कर बोटी बोटी बोली। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है। एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना ही पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको, वे देकर भी मरते हैं।
0: श्रोताओं, अभी जो पंक्तियां हमने सुनी वे केवल कविता नहीं थी, वे एक अग्निकुंड थी। प्रेम यज्ञ अति कठिन से आरंभ होकर यह भाग हमें भीतर तक टटोलता है। कितनी सहजता से कवि पूछते हैं, प्रण लेना आसान है पर क्या हम उसका अंतिम मूल्य चुकाने को तैयार हैं? त्याग की बातें सब करते हैं पर जब सर्वस्व अर्पण की घड़ी आती है तभी सच्चा मनुष्य पहचाना जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। आज हम सुविधा के युग में हैं, जहां हर चीज हमें तुरंत चाहिए, पर तपस्या का धैर्य नहीं। इस काव्यांश में कवि कहते हैं, व्रत का अंतिम मोल चुकाना ही असली परीक्षा है। और हम अपने चारों ओर देखें तो पाएंगे, लोग नाम चाहते हैं, यश चाहते हैं, किंतु मूल्य चुकाने का साहस कम ही दिखता है।
0: और दान, आज दान भी प्रदर्शन बनता जा रहा है, पर यहां दान को जीवन का झरना कहा गया। जैसे वृक्ष फल देकर स्वयं को बचाता है, जैसे सरिता बहकर निर्मल रहती है, यदि हम रोक लें, सहेज लें, केवल अपने लिए जी लें, तो क्या हम सचमुच जीवित रह पाते हैं या भीतर ही भीतर सूखने लगते हैं?
1: यही तो इस भाग की प्रासंगिकता है। आज दुनिया में स्पर्धा है, स्वार्थ है, आगे निकल जाने की होड़ है, किंतु इतिहास उन्हीं का स्मरण करता है जिन्होंने अंतिम मोल हंसकर चुकाया, चाहे वह त्याग हो, सत्य हो या मानवता। ये काव्य हमें याद दिलाता है कि अमरता सुविधा से नहीं, साहस से मिलती है। ये केवल कर्ण की भूमिका नहीं, ये हमारे समय का दर्पण है। क्या हम अपने छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठ सकते हैं? चतुर्थ सर्ग का ये प्रथम भाग हमें भीतर की अग्नि से परिचित कराता है। आगे कथा और भी गहन होगी और हम उस अग्नि में कर्ण के चरित्र को और तपता देखेंगे। आइए अब सुनते हैं चतुर्थ सर्ग के भाग दो का काव्य पाठ।
0: वीर कर्ण, विक्रमी, दान का अति अमोघ व्रतधारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रण भारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुंह मांगा वो दान कर्ण से अनायास पाता था। पहर रही थी मुक्त चतुर्दिक यश की विमल पताका, कर्ण नाम पड़ गया दान की अतुलनीय महिमा का। श्रद्धा सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी, अपना भाग्य समझ भजते थे उसे भाग्य हत प्राणी। तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से, किया नियति ने वार कर्ण पर, छिपकर पुण्य विवर से, व्रत का निकष दान था। अब की चढ़ी निकष पर काया, कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य देह धराया। एक दिवास जब छोड़ रहे थे दिनमणि मध्य गगन को, कर्ण जानवी तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को। कट तक डूबा हुआ सलिल में किसी ध्यान में रत सा, अम्बुधि में आकटक निमज्जित कनक खचित पर्वत सा। हंसती थी रश्मिया रजत से भरकर वारी विमल को, हो उठती थी स्वयं स्वर्ण छू कवच और कुंडल को। किरण सुधा पी स्वयं मोद में भरकर दमक रहा था, कदली में चिकने पातों पर पारद चमक रहा था। विहग लता विरुद्ध वितान में तट पर चहक रहे थे, धूप दीप कर्पूर फूल सब मिलकर महक रहे थे। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान कर्ण ने खोला, इतने में ऊपर तट पर खरपात कहीं कुछ डोला। कहा कर्ण ने,
2: कौन उधर है बंधु, सामने आओ। मैं प्रस्तुत हो चुका, स्वस्थ हो, निज आदेश सुनाओ, अपनी पीड़ा कहो। कर्ण सबका विनीत अनुचर है, ये विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। मांगो मांगो दान, अन्न या वसन, धाम या धन दूं, अपना छोटा राज्य या कि क्षणिक शूद्र जीवन दूं। मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से, याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। पर का दुख हरण में ही अपना सुख माना, भयहीन मैंने जीवन में और स्वाद क्या जाना। आओ उरण बनूं तुमको भी न्यास तुम्हारा देकर, उपकृत करो मुझे अपनी सिंचित निधि मुझसे लेकर। अरे कौन है भिक्षु यहां पर और कौन दाता है, अपना ही अधिकार मनुज नाना विधि से पाता है। कर पसार कर जब भी तुम मुझसे कुछ ले लेते हो, तृप्त भाव से हेर मुझे क्या चीज नहीं देते हो। दीनों का संतोष भाग्यहीनों की गदगद वाणी, नयन कोर में भरा लबालब कृतज्ञता का पानी। हो जाना फिर हरा युगों से मुरझाए अधरों का, पाना शर्वचन प्रेम विश्वास अनेक नरों का। इससे बढ़कर और प्राप्ति क्या जिस पर गर्व करूं मैं, पर को जीवन मिले अगर तो हंसकर क्यों ना मरूं मैं। मोल तोल कुछ नहीं, मांग लो जो कुछ तुम्हें सुहाए, मुंह मांगा ही दान सभी को हम हैं देते आए। मुंह मांगा ही दान सभी को हम हैं देते आए।
1: श्रोताओं, दान देने से जो घटता है वह वस्तु होती है, पर जो बढ़ता है वह मनुष्य होता है। और आज के इस प्रसंग में हम ऐसे ही एक पुरुष के सामने खड़े हैं जिसके लिए दान प्रदर्शन नहीं स्वभाव है। हाँ, गंगा तट पर खड़ा वह सूर्य पुत्र जल में निमग्न पर तेज से दिप दिपाता हुआ, जैसे स्वर्णिम पर्वत स्वयं तपस्या में लीन हो। यह दृश्य केवल बाहरी नहीं, यह भीतर की निर्मलता का संकेत है।
0: श्रोताओं, दिनकर जी ने जिस कोमलता से इस प्रसंग को रचा है उसमें दान कोई घटना नहीं साधना बन जाता है। यह भाव बहुत स्पर्श करता है, दाता और भिक्षु का भेद मिटा देना। कितनी सरलता से वे कहते हैं कि लेने वाला भी कुछ देता है, संतोष, कृतज्ञता, आशीर्वाद। यह सोच आज के समय में कितनी दुर्लभ हो गई है, जहां देने में भी अहंकार छिपा रहता है।
1: दिनकर जी ने इस दृश्य का कितना अद्भुत, कितना दैदीप्यमान चित्र खींचा है। गंगा का पावन तट, मध्याह्न का प्रखर सूर्य और उस जल के मध्य अचल खड़ा कर्ण, मानो स्वयं तेज से मनुष्य का रूप ही धर लिया हो और तप की मुद्रा में स्थिर हो गया हो। गंगा की लहरें जैसे उसके चरणों का अभिषेक कर रही हो। सूर्य की किरणें उसके कवच कुंडलों पर स्वर्ण रेखाएं उकेरती हुई मानो आकाश से आशीष बरसा रही हो। जल में झील मिलाती आभा ऐसी प्रतीत होती है जैसे नियति ने इस क्षण को रत्न की तरह अपनी हथेली पर संभाल लिया हो।
0: वातावरण में एक गहन निस्तब्धता है, पर यह साधारण मौन नहीं, यह उस तूफान से पहले की शांति है जो चरित्र की पराकाष्ठा को परखने आता है। कर्ण स्थिर हैं, मन से भी वचन से भी, और जैसे अपने तन को भी अर्पित करने की तैयारी में। और यहीं इस प्रसंग की असली सुंदरता प्रकट होती है। ये केवल एक दृश्य नहीं, ये मानवीय ऊंचाई का आलोक है, जहां मनुष्य अपने संकल्प से सूर्य के समकक्ष खड़ा दिखाई देता है। आगे नियति स्वयं उसके द्वार पर दस्तक देने को है, यही इस प्रसंग की मार्मिकता है। दान अभी तक व्रत था, पर अब वो जीवन बनने जा रहा है।
1: श्रोताओं, आज गंगा के तट पर हमने केवल कर्ण को नहीं देखा, हमने उस दुर्लभ मनुष्यत्व की झलक देखी है जो स्वयं तप कर भी दूसरों को प्रकाश देता है। जल में खड़ा वह सूर्य पुत्र मानो ये कह रहा हो कि दान हाथों से पहले हृदय में जन्म लेता है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने इस प्रसंग में कर्ण को किसी राजपुरुष की भांति नहीं बल्कि ऐसे महातपस्वी की तरह उकेरा है जिसकी आभा भीतर से फूटती है। सच ही तो है श्रोताओं, समय अक्सर उन्हीं की परीक्षा लेता है जिनके भीतर असाधारण तेज छिपा होता है। साधारण दीपकों की आंधी नहीं उतरती, तूफान हमेशा सूर्यों की ओर बढ़ते हैं।
0: दोस्तों, अब कथा उस दहलीज पर आ पहुंची है जहां मौन के भीतर नियति की आहट सुनाई देने लगी है। गंगा अब भी बह रही है, सूर्य अब भी आकाश में प्रज्वलित है, पर समय की चाल बदल चुकी है। कर्ण का तप, उसका व्रत और उसका भाग्य अब एक ऐसे मोड़ की ओर बढ़ रहे हैं जहां त्याग केवल गुण नहीं रहेगा, इतिहास बन जाएगा। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे चतुर्थ सर्ग के भाग 3 और 4 का काव्य पाठ, जहां इस शांत जलधारा के बीच नियति स्वयं एक याचक बनकर कर्ण के द्वार पर आएगी। अब हमें अनुमति दीजिए, जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, रेडियो प्रस्तुति एवं लेखन दीपक नेमा। इसे आप तक पहुंचाया मैंने यानी आपके रेडियो मित्र संदीप शर्मा ने,
1: मैंने यानी भगवती सक्सेना ने,
3: और मैंने यानी दीपक नेमा ने।
0: तो इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा यहीं विराम लेती है, फिर मिलेंगे एक नए अंक में। नमस्कार। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा,

अभी आप सुन रहे थे भारतीय साहित्य के प्रख्यात कवियों की अनुपम और कालातीत रचनाओं की रचनात्मक प्रस्तुति कार्यक्रम काव्य गुंजन में 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक।

0: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। प्रस्तुत है आज का कार्यक्रम भारतीय भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई।
1: डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और अनुसंधान केंद्र से अलग नहीं किया जा सकता। पर्याय नाम है विक्रम साराभाई और इसरो के नाम, जिन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में एक विशेष स्थान दिलाया। न केवल अंतरिक्ष अनुसंधान बल्कि वस्त्र, भेषज, आणविक ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई अन्य क्षेत्रों में भी बराबर का योगदान दिया विक्रम साराभाई ने।
0: डॉक्टर साराभाई के व्यक्तित्व का सबसे ज्यादा खास पहलू ये था कि उनकी रुचि की कोई सीमा नहीं थी। वो अपने सपनों का विस्तार ऐसे तरीके से करते थे कि उनके सपने साकार होकर सजीव संस्था के रूप में सामने खड़े हो जाते थे। वो एक सृजनशील वैज्ञानिक, सफल और दूरदर्शी उद्योगपति, उच्च कोटि के प्रवर्तक, महान संस्था निर्माता, अलग किस्म के शिक्षाविद, कला पारखी, सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत और अग्रणी कुशल प्रबंधक, प्रशिक्षक जैसे अनेकों अनेक विशेषताओं के धनी थे।
1: यही सब उत्कृष्ट विशेषताएं विक्रम जी को एक ऐसे उच्च कोटि का इंसान बनाती थीं, जिनके मन में दूसरों के प्रति असाधारण सहानुभूति थी। जो भी उनके संपर्क में आता उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता था। उनकी बातचीत का लहजा अपनेपन का एहसास दिलाता था, चाहे कोई पहली बार उनसे क्यों ना मिल रहा हो। और यही कारण था कि विक्रम जी से मिलने के बाद लोग अपने दिल में उनको आदर और विश्वास के सिंहासन में बिठा लेते थे और पूर्ण रूप से अपनी ईमानदारी की विशेष छाप देकर जाते थे। अपने नाम के अनुसार ही वो व्यवहारिक थे, विक्रम थे।
0: डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म अहमदाबाद में 12 अगस्त सन 1919 को एक समृद्ध जैन परिवार में हुआ। अहमदाबाद में उनका बचपन बीता। बचपन से ही घर में सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण व्यक्तियों का घर में आना जाना लगा रहता था, जिसका प्रभाव बाल विक्रम के व्यक्तित्व पर पड़ा। उनके पिताजी का नाम था अम्बालाल साराभाई और माँ श्रीमती सरलाबाई ने बड़े दुलार से विक्रम की परवरिश की। माँ सरला साराभाई मैडम मॉन्टेसरी की शिक्षिका थी, तो प्रारंभिक अध्ययन माँ से ही मिला।

0: गुजरात कॉलेज से इंटरमीडिएट तक विज्ञान की पढ़ाई की उन्होंने। बाद में उच्च शिक्षा के लिए वो इंग्लैंड चले गए कैम्ब्रिज में पढ़ाई करने के लिए। साल था सन 1937।
1: जी हाँ, विक्रम साराभाई ने साल 1940 में प्राकृतिक विज्ञान में ट्राइपोज डिग्री हासिल कर ली। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था तो वो स्वदेश लौट आए और भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर में नौकरी कर ली। यहीं पर उनकी मुलाकात महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन से हो गई और ब्रह्मांड किरणों पर अनुसंधान विक्रम जी ने चंद्रशेखर जी के निरीक्षण में ही किया। विक्रम जी का प्रथम अनुसंधान लेख टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्मिक रेंज नाम की भारतीय विज्ञान अकादमी की कार्य विवरणिका में प्रकाशित हुआ। साल 1940-45 का वो समय था, वो दौर था जब कॉस्मिक रेंज पर साराभाई के अनुसंधान कार्य में बंगलौर और काश्मीर हिमालय में उच्च स्तरीय केंद्र के गेजर मूलर गणकों पर कॉस्मिक रेंज के समय रूपांतरणों का गहन अध्ययन किया जा रहा था।
0: द्वितीय विश्व युद्ध के समापन पर विक्रम जी कॉस्मिक रे भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में अपनी डॉक्टरेट पूरी करने के लिए कैम्ब्रिज की ओर लौट आए। साल 1947 में उष्णकटिबंधीय अक्षांश यानी ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में कॉस्मिक रे पर अपने शोध ग्रंथों के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। उसके बाद विक्रम जी ने भारत आकर कॉस्मिक रे पर भौतिकी विज्ञान पर अपना अनुसंधान कार्य जारी रखा।
1: भारत में उन्होंने अंतर्भूमंडलीय, अंतरिक्ष, सौर भूमध्य रेखीय संबंध और भू चुंबकत्व पर गहन अध्ययन किया। वाकई में उस समय अपने देश को विज्ञान के क्षेत्र में ऊंचा उठाने की ललक ने विक्रम साराभाई को एक उत्कृष्ट अनुसंधानकर्ता बना दिया था।
0: डॉक्टर साराभाई कठिन परिश्रमी असाधारण नेतृत्व करने वाले स्वप्न दृष्टा भी थे। फ्रांसीसी भौतिकी वैज्ञानिक पियरे क्यूरी, जिन्होंने अपनी पत्नी मैरी क्यूरी के साथ मिलकर पोलियम और रेडियम का आविष्कार किया था, वो कहते थे डॉक्टर साराभाई का उद्देश्य जीवन को स्वप्न बनाना है और उस स्वप्न को वास्तविक रूप देना है।
1: जी हाँ, न केवल डॉक्टर साराभाई ने सपने देखे बल्कि उन्हें सच करके दिखाए और साथ ही दूसरों को भी सपने देखना सिखाया। अमली जामा पहनाकर वास्तविकता में सफल होना सिखाया। भारत के कई अंतरिक्ष कार्यक्रमों की सफलता इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है ही।
0: ये तो सच बात है कि डॉक्टर साराभाई एक प्रवर्तक वैज्ञानिक, भविष्य दृष्टा, औद्योगिक प्रबंधक और देश के आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान के लिए संस्थाओं की परिकल्पना के निर्माता के रूप में अद्भुत संयोजक थे। उनमें अर्थशास्त्र और प्रबंध कौशल की अद्भुत सूझ और समझ थी। किसी भी समस्या को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उनका ज्यादा वक्त उनके अनुसंधात्मक गतिविधियों में बीतता था। डॉक्टर साराभाई के निरीक्षण में लगभग 19 लोगों ने अपनी डॉक्टरेट का कार्य पूरा किया।
1: डॉक्टर साराभाई ने स्वतंत्र रूप से अपने और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर राष्ट्रीय पत्रिकाओं में लगभग 86 अनुसंधान लेख लिखे, जो आज भी धरोहर के रूप में सुरक्षित हैं।
0: डॉक्टर साराभाई को एक महान संस्थान निर्माता का अग्रदूत भी कहा जा सकता है। कई क्षेत्रों में बड़ी संख्या में संस्थान स्थापित करने में अपना सहयोग दिया था उन्होंने। अहमदाबाद वस्त्र उद्योग की अनुसंधान एसोसिएशन यानी ATIR के गठन में सर्वप्रथम पहल थी उनकी। ये काम तो कैम्ब्रिज से कॉस्मिक रे भौतिकी में डॉक्टरेट की उपाधि लेकर वापस आने के तत्काल बाद ही किया था उन्होंने। वस्त्र उद्योगिकी में उनका औपचारिक प्रशिक्षण नहीं था, लेकिन ATIRA का गठन भारत में वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। उस समय वैसे भी कपड़े के मामले में गुणवत्ता नियंत्रण की कोई खास तकनीक नहीं थी। कई समूह और प्रक्रियाओं के परस्पर विचार विमर्श के बाद ये अवसर उपलब्ध करवाने में सफल हुए थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। आइए अब हम आपके साथ ऐसे ही कुछ संस्थानों के नाम साझा करते हैं।
1: जी, भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला PRL अहमदाबाद, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद, सामुदायिक विज्ञान केंद्र अहमदाबाद, दर्पण अकादमी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स अहमदाबाद में, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवंतपुरम, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद, फास्टर ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर FBTR कलपक्कम, वेरियल एनर्जी साइक्लोट्रोन प्रोजेक्ट कोलकाता, भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड यानी UCIL जादूगोड़ा बिहार जैसे नाम प्रमुखता से शामिल हैं विक्रम साराभाई के नाम पर।
0: जी हाँ, वाकई में सुनकर विश्वास नहीं होता कि कोई इतना काम कैसे कर पाता होगा। लेकिन डॉक्टर विक्रम साराभाई ने असंभव को भी सत्य बना दिया था, ये भी उतना ही सत्य है। डॉक्टर होमी जे भाभा की जनवरी सन 1966 में मृत्यु हो गई। डॉक्टर साराभाई को परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभालने की जिम्मेदारी भी दे दी गई। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक विकास की विभिन्न गतिविधियों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में छिपी व्यापक क्षमताओं को पहचान लिया। संचार, मौसम विज्ञान, मौसम संबंधी भविष्यवाणियां और प्राकृतिक संसाधनों के लिए अन्वेषण के कार्य प्रारंभ कर दिए गए। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद ने अंतरिक्ष विज्ञान में और बाद में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अनुसंधान का नया रास्ता खोल दिया। देश में रॉकेट प्रौद्योगिकी को भी आगे बढ़ाया गया। भारत में उपग्रह टेलीविजन प्रसार के विकास में उनकी अग्रणी भूमिका के लिए तो विज्ञान उनका सदैव ऋणी ही रहेगा।
1: जी हाँ, आगे बढ़े विक्रम साराभाई के कारनामों को जानने के लिए तो भारत में भेषज उद्योग के भी प्रणेता रहे विक्रम साराभाई। वो उन गिने चुने लोगों में थे जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गुणवत्ता के उच्चतम मानक स्थापित किए जाने चाहिए और उन्हें हर हाल में बनाए रखा भी जाना चाहिए। वो साराभाई थे जिन्होंने भेषज उद्योग में इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा प्रसंस्करण और संचालन अनुसंधान तकनीकों को लागू किया, दवाइयों और उनके उपकरणों को देश में बनवाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि देश आत्मनिर्भर बन सके। देश में विज्ञान शिक्षा के प्रचार प्रसार और सुधार के लिए उन्होंने सामुदायिक विज्ञान केंद्रों की भी स्थापना की।
0: ज्ञान विज्ञान में रुचि रखने वाली डॉक्टर साराभाई सांस्कृतिक गतिविधियों से भी संबंध रखते थे। वो संगीत, फोटोग्राफी, पुरातत्व, ललित कलाओं और अन्य क्षेत्रों से भी लगातार जुड़े रहे। पत्नी मृणालिनी के साथ मिलकर मंच कलाओं की संस्था दर्पण का गठन किया था उन्होंने। बेटी मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की सुप्रसिद्ध नृत्यांगना बनी।
1: तिरुवनंतपुरम केरल के कोवलम में 30 दिसंबर 1971 को डॉक्टर साराभाई का आकस्मिक देहांत हो गया। विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र के लिए ये अपूर्णीय क्षति थी। साराभाई का ऐसे जाना। इस महान वैज्ञानिक के सम्मान में तिरुवनंतपुरम में स्थापित थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन TERLS और संबंध अंतरिक्ष संस्थाओं का नाम बदलकर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रखा गया। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के एक प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के रूप में भारत के लिए काम करता है। साल 1974 में सिडनी स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ ने निर्णय लिया कि सी ऑफ सेरेनिटी पर स्थित बेसल नामक मून क्रेटर अब साराभाई क्रेटर के नाम से जाना जाएगा। भारत में डॉक्टर साराभाई के सम्मान में भारतीय डाक विभाग द्वारा भी उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर 1972 में एक डाक टिकट जारी किया गया।
0: आइए अब डॉक्टर साराभाई के पुरस्कारों की चर्चा कर लें। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार सन 1962 में दिया गया, पद्म भूषण 1966 में और पद्म विभूषण सम्मान से उन्हें मरणोपरांत साल 1972 में सम्मानित किया गया।
1: दोस्तों, डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई वैज्ञानिक समुदाय में अपना एक विशेष स्थान रखते थे। अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यों से लेकर देश की प्रगति में उनका नाम सदैव पूरे आदर और सम्मान के साथ लिया जाएगा। उनके अधूरे सपनों को आने वाली पीढ़ी सदैव पूरा करने का प्रयास करेगी और बताए हुए उनके मार्गदर्शन का अनुसरण करेगी। रेडियो आजाद हिंद डॉक्टर विक्रम साराभाई को शत शत नमन करता है।
0: तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम जिसमें हमने भारत के महान भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में चर्चा की। अब इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। हमें दीजिए अनुमति और स्वीकार कीजिए हमारा
1: नमस्कार।
0: सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।
1: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल

यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें। गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें। तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव आठ मेगाहर्ट्ज पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुने कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: वराहनगर के दिन खत्म हुए। नरेंद्रनाथ मन से परिव्राजक थे, मौका पाते ही घूमने निकल पड़ते थे। घूमने जाने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत नहीं थी। साधु सन्यासी देखकर अनजान लोग भी उनके टिकट और खाने की व्यवस्था कर देते थे, नहीं तो फूटी कोड़ी होने पर भी वे विश्व भ्रमण कैसे कर पाते।
1: यहाँ पर हम कुछ बातों का उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं। नरेंद्र 1888 ईस्वी के पहले पहल तीर्थ भ्रमण की इच्छा से वराहनगर मठ से बाहर निकले। इसके पहले 2 साल में भी वे आठपुर के अतिरिक्त वैद्यनाथ और शिमुलतला भी कई बार गए थे। उनके भारत भ्रमण संबंधी कई बातें हमें ज्ञात नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई रोजाना डायरी नहीं लिखी थी। बाद में यत्र तत्र प्रसंगवश उनका कोई मंतव्य सुनकर अथवा जिन व्यक्तियों से उनकी भेंट हुई थी उनसे कुछ घटनाएं सुनकर जहां तक संभव हो सका है उसे लिपिबद्ध किया गया है। एक बात और, अब से हम नरेंद्र नाथ ना कहकर आचार्य देव का उल्लेख स्वामी जी अथवा विवेकानंद नाम से करेंगे।
0: सन 1887 ईस्वी के जनवरी महीने में नरेंद्र नाथ ने संन्यास धारण कर स्वामी विवि दीशानंद नाम ग्रहण कर लिया था। फिर भी अनुष्ठानिक रूप से नाम बदल जाने पर भी नया नाम उस समय तक व्यापक रूप से वहत नहीं हुआ था, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। बल्कि हम जानते हैं कि परिव्राजक के रूप में भारत का परिभ्रमण करने के दिनों में वे अपना परिचय गुप्त रखने के लिए विभिन्न नामों का सहारा लेते थे। और यह भी जाना जाता है कि कुछ दिनों तक विवि दीशानंद नाम का व्यवहार करने के बाद उसको छोड़कर उन्होंने स्वामी विवेकानंद नाम ग्रहण किया। इसी समय विवेकानंद का नाम परित्याग नहीं करने पर भी वे सच्चिदानंद नाम का व्यवहार करते थे। सबसे अंत में अमेरिका जाने से पूर्व उन्होंने स्वामी विवेकानंद नाम को स्थायी रूप से ग्रहण कर लिया था और इसी नाम से वे विश्व विख्यात हुए। किंतु उनके बंधु बांधव और शिष्यगण उन्हें स्वामी जी कहकर संबोधित किया करते थे।
1: भ्रमण की लालसा भारत के सन्यासियों की मज्जा में है। कहावत है, रमता जोगी बहता पानी। साधु यदि बहती हुई नदी की भांति अविराम घूमते रहें, तो जैसे नदी में गंदगी नहीं जमती, वैसे ही साधु का जीवन भी निष्कलंक रहता है। और विभिन्न तीर्थों में कितने विविध भावों में विराजमान रहकर भगवान भक्तों की पूजा ग्रहण करते हैं एवं निर्विचार रूप से कृपा वितरण करते हैं। उसे देखकर किस व्यक्ति के हृदय में उत्साह नहीं जागता। विशेषकर ईश्वर प्राप्ति के लिए जिन्होंने गृह त्याग किया है, वे उन्हें यानी ईश्वर को सभी संभव स्थानों में ढूंढने निकलेंगे। ये तो अत्यंत स्वाभाविक है। नव प्रतिष्ठित वराहनगर मठ के साधुओं के जीवन में भी इस नियम का व्यतिक्रम नहीं हुआ। मठ की स्थापना के बाद से ही कोई न कोई अक्सर बाहर जाते। कभी कभी स्वामी रामकृष्ण नंद एवं और 2-1 व्यक्तियों को छोड़कर मठ शून्य प्राय हो जाता था। कोई थोड़े दिनों के लिए जाते थे, कोई लंबी तीर्थ यात्रा और तपस्या के लिए जाते थे।
0: तीर्थ यात्रा के दिनों में मठ मंदिर आश्रम में साधुओं और पंडितों के साथ चर्चा के क्रम में अनगिनत जन साधारण के दैनिक कार्यकलाप और बात व्यवहार के द्वारा उन्होंने भारत को देखा था और जाना था। उत्तरी भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश में भ्रमण करते हुए विवेकानंद अंत में काशी धाम पहुंचे। वहां वे द्वारकादास के आश्रम में रहते थे। वे सब कितने व्यस्तता के दिन थे, एक मिनट सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। दिन रात बाहर के लोगों का आना जाना लगा रहता था। पंडितगण आए हैं, घोर तर्क वितर्क चल रहा है, किंतु स्वामी जी एक क्षण भी उससे कतराते, असंतोष होते या उदासीन होते नहीं प्रकट होते थे। आध्यात्मिक विषय हो या सामान्य ज्ञान विषय, वे सर्वदा सभी विषयों की विवेचना के लिए तैयार रहते। बड़े बड़े पंडित और विद्वान व्यक्तियों का आगमन हुआ, वे लोग सन्यासियों के साथ धर्म तथा दर्शन आदि विषयों की चर्चा करते रहते थे। बड़े बड़े संस्कृत वचन और श्लोक आदि उद्धृत कर प्राचीन पंथियों की नींव सुदृढ़ करने की चेष्टा कर रहे थे। उसी समय स्वामी जी प्रबल तर्क से उन लोगों के मतों को छिन्न छिन्न कर देते। यह दिखाते कि संस्कृत विद्या या शास्त्रों का मूल इस देश के लोगों की शिक्षा दीक्षा और जीवन की उन्नति और अवनति के साथ घनिष्ठ रूप से संबंध है। देश की उपेक्षा कर देशवासियों से अलग शास्त्रों को देखने से शास्त्रों के यथार्थ मर्म को जानना कठिन है। शास्त्र कोई मनगढ़ंत काल्पनिक नियम मात्र नहीं है, बल्कि राष्ट्र का गठन और विकास ही उसका मुख्यतम उद्देश्य है।
1: फिर जब ईसाई पादरी आकर हिंदू धर्म की निस्सारता प्रतिपादित करने के विचार से तर्क करने लगते, तब उन लोगों को उपद्रव समाप्त करने के लिए उन्हें भी तर्क युद्ध में प्रवृत्त होना पड़ता। स्वामी जी की तीक्ष्ण बुद्धि के समक्ष वे सब कैसे आगे बढ़ पाते? उन लोगों के सारे व्यर्थ के तर्क चूर चूर हो छिन्न भिन्न हो जाते। अंत में जब वे सब तर्क वितर्क में ध्वस्त हो अपनी पराजय स्वीकार करने का उपक्रम करते, तब फिर स्वामी जी उन लोगों के पक्ष में खड़े हो जाते और अपनी स्वभाव सिद्ध सरल सुबोध भाषा में ईसा मसीह के हृदय के अद्भुत प्रेम की अपूर्व व्याख्या करते।
0: काशी में भिक्षा से प्राप्त अन्न से उदर पूर्ति, देव स्थानों का दर्शन, शास्त्रों की चर्चा, जप, ध्यान, साधु संग आदि ही उनका नित्य कर्म था। शाम को जिस समय वे भगीरथी के तट पर पत्थर की सीढ़ियों पर बैठ करके संध्या काल की उपासना के लिए तैयार होते थे, उस समय अनगिनत मंदिरों के संध्या आरती का घंटा और शंखनाद उन्हें भाविभोर कर देता था।

0: एक दिन किसी भक्त ने उनका परिचय पंडित भूदेव मुखोपाध्याय से करा दिया। अपूर्व धीशक्ति संपन्न तरुण सन्यासी के साथ धर्म, समाज, नीति तथा भारत की उन्नति संबंधी चर्चा से भूदेव बाबू ऐसे मुग्ध हुए कि उन्होंने उन सज्जन से कहा, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इस तरुण युवक ने इतनी अल्प अवस्था में इतनी गंभीर अंतर्दृष्टि और विपुल अभिज्ञता किस प्रकार प्राप्त कर ली। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में ये एक महान व्यक्ति बनेंगे। वाराणसी के विख्यात साधु श्रीमंत त्रेलिंग स्वामी जी के दर्शन प्राप्त कर स्वामी जी कृतार्थ हुए। इनके त्याग और तपस्या के बारे में स्वामी जी ने कई बार श्री राम कृष्ण देव से सुना था। अब उनके दर्शन से भक्ति और विनम्र चित्त के साथ उनके चरणों की धूल लेकर वे धन्य हो गए।
1: विश्वनाथ, अन्नपूर्णा और दुर्गा देवी के लिए विग्रह का दर्शन कर उनके मन प्राण आनंद से परिपूर्ण हो गए थे और इस पवित्र धाम में भगवान बुद्ध एवं शंकराचार्य के कीर्ति कलापों के स्मरण से उनकी ऐतिहासिक चेतना अत्यंत प्रदीप्त हो गई थी। एक दिन दुर्गा मंदिर से लौटने के समय बंदरों के एक झुंड ने उनका पीछा किया। उन्हें डर हुआ कि बंदर उन्हें क्षति पहुंचा सकते हैं, अतः वे तेजी से भागने लगे, किंतु बंदर भी पीछे पीछे भागते रहे। उसी समय एक वृद्ध सन्यासी ने चिल्लाकर कहा, रुको, उन बंदरों के सामने खड़े रहो। यह सुनकर स्वामी जी निर्भीक भाव से उनके सम्मुख खड़े हो गए। उन्हें भयहीन देख करके बंदर भी क्षण भर के लिए रुक गए और तत्पश्चात भाग खड़े हुए। बाद में अमेरिका में अपना भाषण देते समय वे इस घटना का उल्लेख कर इसका तात्पर्य श्रोताओं को समझाते हुए उन्होंने कहा था,
2: प्रकृति के सम्मुखीन होकर डटे रहो, अविद्या के सम्मुखीन होकर डटे रहो, माया के सम्मुखीन होकर डटे रहो।
0: वे बुद्ध देव की कीर्ति स्थल सारनाथ भी देखने गए थे, किंतु उन दिनों उस स्थान का भग्न स्तूप और मठ आदि जंगल से भरे थे।
1: श्रीमद् स्वामी भास्करानंद जी के गुणों को सुनकर के स्वामी जी एक दिन उनके आश्रम में भी गए। उस समय भास्करानंद जी शिष्यों तथा भक्तों से घिरे बैठे थे। स्वामी जी ने प्रणाम कर आसन ग्रहण किया। पहले ही विवेकानंद की मनोहर शारीरिक क्रांति से उनकी दृष्टि आकर्षित हो गई। फिर धीरे धीरे संन्यास जीवन के आदर्शों के संबंध में स्वामी जी को उपदेश देते हुए भास्करानंद जी बोल उठे,
2: कभी डरकर भागो मत।
3: संपूर्ण रूप से कामनी कांचन का त्याग कोई भी नहीं कर सकता।
2: क्या कह रहे हैं महाराज? ऐसे अनेक सन्यासी हैं जो संपूर्ण रूप से कामिनी कंचन के संबंधों से विमुक्त हैं, क्योंकि सन्यासी जीवन का यही तो प्रथम साधन है। और मैंने तो कम से कम ऐसे एक व्यक्ति को अवश्य देखा है जो कामिनी कंचन की चाह पर संपूर्ण रूप से विजय प्राप्त करने में समर्थ हुए थे।
3: कौन है ये महापुरुष?
2: श्री राम कृष्ण परमहंस देव।
3: तुम अभी बच्चे हो, इस उम्र में यह बात समझ नहीं पाओगे।
1: अपने गुरुदेव के पवित्रतम चरित्र की समालोचना होते हुए देख स्वामी जी निर्भीक दृढ़ता के साथ प्रतिपाद करने को उद्यत हो गए। स्वामी जी के तेज युक्त तथा युक्तिपूर्ण वचनों को सुनकर के उपस्थित मंडली तथा स्वयं भास्करानंद जी बड़े विस्मित हुए। जिनके चरणों में राजा महाराजा धनी पंडित ज्ञानी आदि सभी मस्तक झुकाकर कृतार्थ होते थे, जिनका अलौकिक पांडित्य गौरव के साथ ज्ञान लोक विकीर्ण करता था, उन्हीं भास्करानंद जी को प्रतिपक्षी बनकर तर्क में अग्रसर होना कम साहस की बात नहीं थी। भास्करानंद जी उदार हृदय सन्यासी थे। वे स्वामी जी की बातों से विशेष संतुष्ट हुए और उनके सामने ही अपने शिष्य मंडली तथा उपस्थित जनों से कहा,
3: इसके कंठ में सरस्वती विराजमान है, इसके हृदय में ज्ञानालोक जाग उठा है।
1: परंतु अपने गुरुदेव के संबंध में अनादर सूचक शब्द सुनकर दुखी होकर के विवेकानंद तुरंत वहां से चले आए।
0: कुछ दिन काशी धाम में रहकर स्वामी जी वराह नगर मठ लौट आए। वाराणसी धाम भारत का हृदय केंद्र है। यहाँ मद्रासी, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, महाराष्ट्रीय, उत्तर प्रदेशीय व्यक्तिगण आचार व्यवहार तथा भाषा की भिन्नता के बावजूद एक भाव के भावुक बनकर भगवान विश्वनाथ के मंदिर में सम्मिलित होते हैं। काशी धाम में स्वामी जी ने परमार्थिकता से भ्रष्ट बाह्य आचार परायण इन नर नारियों के बीच भी सनातन धर्म की युग युगांतर से वंचित महिमा की उपलब्धि की।
1: इस तीर्थ दर्शन काल में उन्होंने भारत की आत्मा का थोड़ा बहुत परिचय प्राप्त किया था और अनेक मतवादों का भी साधन किया था। उनकी दृष्टि पहले से अधिक व्यापक हो गई थी, अतः अब वे चाहते थे कि उनके गुरु भ्राता चिंतन के क्षेत्र में भी व्यापकता प्राप्त करें। एक क्षण में उनके मन में धर्म प्रचार का संकल्प जागता और वेदांत के तत्व को कार्य रूप में परिणित करने के विचार से उनका मन उद्वेलित हो जाता। गुरु भ्राताओं में भी वे धर्म की इन नवीन धारणाओं का संचार करने की दिशा में प्रयत्नशील रहते। उन प्रारंभिक दिनों में भी वे उन लोगों को सर्वहाराओं के घरों में धर्म प्रचार करने के लिए जाने को कहते।
0: किंतु साधुगण उस समय प्रचार विरोधी थे। उन लोगों के मतानुसार जीवन का मुख्य उद्देश्य गुरुदेव के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्राप्त करना था। स्वामी जी भी तो पहले इसी मत को पोषण करते थे। सबके प्रवक्ता के रूप में स्वामी जी भी कहा करते थे कि ईश्वर प्राप्ति ही मनुष्य उद्देश्य है। पर तीर्थ से लौटने के बाद वे तरुण साधुओं से कहते,
2: सभी प्रचार कार्यों में रत हैं, परंतु वे उसे अज्ञात रूप में करते हैं। मैं उसे इच्छा पूर्वक करूंगा। तुम लोग जो मेरे गुरु भाई हो, तुम्हारे मना करने पर भी मैं नहीं छोड़ूंगा। दीन हीनों तक जाकर प्रचार करूंगा। प्रचार यानी भाव का बहिप्रकाश। श्रीलंग स्वामी मौन रहते हैं तो क्या प्रचार नहीं करते? उनका मौन ही व्याख्यान है। पौधे भी तो प्रचार करते हैं, शिक्षा देते हैं।
1: इस बार स्वामी जी वराह नगर में कुछ दिनों तक ठहरे थे, क्योंकि उनमें सन्यासी सुलभ निर्जन स्थान में तपस्या करने की आकांक्षा सदा ही जागृत थी। अतएव शीघ्र ही वे पुनः उत्तर भारत के तीर्थ दर्शन के लिए निकल पड़े। वे पुनः काशी गए। वहां श्रीयुक्त प्रेमादास मित्र से उनका परिचय हुआ। मित्र महाशय धनवान और संस्कृत भाषा के सुपंडित थे। स्वामी अखंडानंद गंगाधर से उनका पहले से ही परिचय था। प्रेमादास बाबू से स्वामी जी का यह परिचय धीरे धीरे मित्रता में बदल गया तथा दोनों में अनेक पत्राचार हुए।
0: काशी में थोड़े दिन रुकने के बाद विवेकानंद सन 1888 ईस्वी के अगस्त में हाथ में दंड कमंडल लिए उत्तर भारत के कई स्थानों से होकर सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या पहुँचे। अयोध्या के प्रत्येक रजगण के साथ सूर्यवंशी पराक्रमशील राजाओं की गौरव स्मृति जड़ित है। कवि श्रेष्ठ वाल्मीकि के श्री रामचंद्र आदर्श राजा, आदर्श पुत्र, आदर्श पति और आदर्श भ्राता के रूप में इसी पुण्य भूमि में पूर्ण महिमा के साथ प्रस्फुटित हुए थे। तेजस्वी ब्राह्मण का पौरोहित्य तपस्वी विश्वामित्र, ब्रह्म ज्ञानी मिथिलाधिपति जनक, सुदूर अतीत की ऐसी सहस्रों उज्जवल कथाएं स्वामी जी को स्मरण हो आई।
1: राम सीता की लीला भूमि में पदार्पण करते ही उन्हें अपने बचपन की बहुत सारी बातें याद आ गईं। उनका वह रामायण के प्रति प्रेम, सीता राम की मूर्ति के सम्मुख तन्मय चित से ध्यान, वीर भक्त हनुमान के प्रति गंभीर श्रद्धा, ये सब स्मृतियां एक एक करके उनके मानस पटल पर उदित होकर के उन्हें भावानंद में विभोर करने लगी। अयोध्या में कुछ दिन बिताकर सन्यासियों के साथ श्री राम नाम कीर्तन में बिताकर स्वामी जी लखनऊ और आगरा होते हुए पैदल ही वृंदावन धाम की ओर अग्रसर हुए।
0: अयोध्या के बाद लखनऊ आकर वे अवध के नवाबों की कीर्ति के साक्षी स्वरूप बागों, महलों और मस्जिदों आदि को देखकर आनंदित हुए। लखनऊ से आगरा आने पर मुगल सम्राटों की अक्षय कीर्ति ताजमहल, आगरा का किला आदि की अपूर्व स्थापत्य कला ने उन्हें आत्मविभोर कर दिया। ताजमहल का विभिन्न दिशाओं से प्रकाश और छाया की विभिन्न परिधियों में निरीक्षण कर एवं उनके शिल्प कौशल का मूल्यांकन कर मानो उन्हें तृप्ति ही ना होती थी। अनेक बार वहां जाकर तथा अनेक रूपों से देखकर वे केवल यही सोचते थे कि भारतीय शिल्प ने एक दिन कैसा अद्भुत उत्कर्ष प्राप्त किया था। उन्होंने कहा,
2: इस आश्चर्यपूर्ण शोध की हर जगह ध्यान पूर्वक दिन भर देखनी होगी और इसकी सुंदरता का संपूर्ण आस्वादन करना हो तो कम से कम 6 महीने लगे।
1: आगरा के किले, कमरों, सभागार, मस्जिद इत्यादि को एक के बाद एक देखते हुए वे मुगलों के गौरव की स्मृति में डूब गए थे। आगरा से चलकर वे अगस्त महीने के आरंभ में वृंदावन पहुंचे। लंबे 30 मीलों का रास्ता उन्होंने हाथों में दंड का मंडल लेकर के तथा मात्र 2-1 पुस्तकों को साथ रख करके पैदल तय किया। जब वृंदावन के निकट पहुंच रहे थे तो उन्होंने देखा कि रास्ते के किनारे एक व्यक्ति निश्चिंत होकर के तंबाकू पी रहा है। स्वामी जी ने उस आदमी से हाथ जोड़कर चिलम मांगी। यह व्यक्ति भयभीत होकर के संकोच के साथ बोला,
4: नहीं महाराज, ये मेरी झूठी चिलम है और फिर मैं नीच जाति का हूं, आप इसे कैसे पी सकते हैं।
1: आजन्म के संस्कारों से वशीभूत होकर के स्वामी जी का हाथ अनजाने में ही एकदम पीछे हट गया। उन्होंने फिर अपना रास्ता पकड़ लिया। कुछ दूर जाने पर उन्हें होश आया और सोचा,
2: मैंने तो जाति कुल मान सभी को त्याग कर संन्यास ले लिया है ना, फिर जानकर मेरा सोता हुआ जाति अभिमान क्यों जाग उठा? उसकी छुई हुई चिलम मैं क्यों नहीं ले सका? अभ्यास जनित संस्कार का ये कैसा अद्भुत प्रभाव है।
1: स्वामी जी लौट पड़े और जल्द ही उसके निकट आ पहुंचे। फिर बड़े प्रेम से उससे चिलम भरवा करके उन्होंने आनंद के साथ धूम्रपान किया। इस घटना को वे जीवन में कभी ना भूल पाए। बहुत दिन बाद श्री गिरीश चंद्र घोष ने स्वामी जी के मुख से यह कहानी सुनकर कहा था, अरे तुम नशे में इतने लाचार हो गए थे कि अछूत की चिलम से भी उसे पूरा करना पड़ा। इसके उत्तर में स्वामी जी ने कहा,
2: नहीं जी, ऐसी बात नहीं। सचमुच ही मुझे आत्म परीक्षा करने की इच्छा हुई थी, संन्यास लेकर पूर्व संस्कार दूर हुए हैं या नहीं, जाति भेद के पार गया हूं या नहीं, परीक्षा कर देखना पड़ता है। प्रकृत संन्यास को बनाए रखना बड़ा कठिन है, कथनी और करनी में लेश मात्र भी अंतर नहीं चलेगा। क्या तुमने सोच रखा है कि जीवन में सन्यासी का आदर्श पालन करना बड़ा सहज है? जीवन में इतना कठिन पथ दूसरा कोई नहीं। सीधे पहाड़ के अंतिम छोर पर खड़े होना है, जरा पैर फिसलते ही काम तमाम। सन्यास व्रत लेने से हर क्षण आत्म परीक्षा कर देखना होगा कि जाति बंधनों से मुक्त हुआ हूं या नहीं। उस दिन मुझे यही शिक्षा मिली थी कि किसी की भी घृणा नहीं करनी होगी, सोचना होगा कि सभी भगवान की संतान हैं।
0: वृंदावन पहुंचकर वे बलराम बाबू की ठाकुर बाड़ी काला बाबू का कुंज में ठहरे। यहां आकर उन्होंने मानो राधा कृष्ण के अलौकिक लीला विलास का प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त किया और उसकी भावधारा में बह गए। स्वयं को संभालना कठिन हो गया। श्री कृष्ण के जीवन की घटनाएं उस समय उनके समक्ष जीवंत लगने लगी। वृंदावन में कई दिन बिताकर उस भगवत लीला का गहनतम परिचय प्राप्त करने के लिए वे निकट के अनन्य लीला क्षेत्रों के दर्शन को निकल पड़े। गोवर्धन गिरी की परिक्रमा करते समय उन्होंने ये संकल्प किया कि बिना मांगे जो भिक्षा मिलेगी उसी से वे अपनी भूख मिटाएंगे, इसके अतिरिक्त किसी से कुछ नहीं मांगेंगे। पहले दिन दोपहर को भूख की पीड़ा असहनीय हो गई। फिर उस समय वर्षा भी होने लगी, मानो उसके कष्ट की सीमा ना रही। भूख और रास्ते की थकान से बलहीन होकर वे किसी प्रकार चल रहे थे। उसी समय उन्होंने अचानक सुना कि कोई पीछे से पुकार रहा है।
4: महाराज, महाराज, अरे महाराज जरा रुकिए, मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ।
1: पर विवेकानंद रुके नहीं, चलते चले गए। वे यह देखना चाहते थे कि यह भोजन सचमुच भगवान ने भेजा है या नहीं। उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया, पर वह व्यक्ति भी छोड़ने वाला नहीं था। वह भी पीछे पीछे दौड़ा और अंत में उसने स्वामी जी को पकड़ ही लिया।
4: महाराज, महाराज, क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हैं महाराज? मैं सही में आपके लिए ही भोजन लाया हूँ, ग्रहण कीजिए ना महाराज, मुझे इस पुण्य कार्य से वंचित ना कीजिए।
2: लाओ भाई, तुमने भोजन करवाकर आज मेरी जान बचाई है। तुम्हें तो भगवान ने इस निर्जन में मेरे लिए ही भेजा है।
1: उस आदमी ने श्रद्धा पूर्वक उन्हें भोजन कराया और नमन कर चला गया। वह स्वामी जी को फिर कभी नहीं मिला।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए।
1: क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना।
2: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: गली में मार खरे, पास आने को मेरे।
3: मैं हूँ सोना महापात्रा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

तो श्रोताओ, आज ये था अभी तक का हमारा सुबह का प्रसारण। हमारा ये प्रसारण निरंतर जारी रहेगा रात्रि 10 बजे तक। अब दीजिए अनुमति पूर्वा खले को आज के सुबह की सभा पे। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के

नमस्कार, मैं हूं मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारी देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भारत भारती। आज इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं लोक गायिका मालिनी अवस्थी की गायी कुछ रचनाएं।
1: आज कोशिश करूंगी कि उत्तर प्रदेश की जो छटा है दिखा सके, तो कुछ मौसम की चीजें होंगी जो आप सुनना भी चाहते हैं। और कार्यक्रम का प्रारंभ राग मिश्र तिलक कामोद में एक ठुमरी से कर रही हूँ।

उत्तर प्रदेश महोत्सव हम सब मना रहे हैं। सच जानिए मैं बड़े पशुपेश में थी, क्या सुनाऊं, क्योंकि ये लग रहा था क्या छोड़ूं, जो गाती हूँ सारा उत्तर प्रदेश का है और ऐसा ऐसी धरोहर है, ऐसा ऐसा खजाना है। आप लोग सब विद्वान और एक से एक अच्छे लोगों को सुना आपने, इसलिए जहाँ पर जिस मंच पे मेरी गुरु गा चुकी हूँ वहाँ पे ठुमरी और दादरा के बारे में बताने की मेरी ना हैसियत है ना मेरी औकात। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा ये गुइया जो है ये खास उत्तर प्रदेशी है। गुइया यानी सहेली। आपको याद हो हम लोग के बचपन में कहावत भी चलती थी, झगड़ा हो जाए दो सहेलियों में तो कहते थे गुइया खुट्टी। अभी भी कभी कभी उसकी मिसाल दी जाती है कि अच्छा गुइया खुट्टी हो गई क्या। गुइया यानी सहेली है।

छाव में कौन खड़ा रहता है? कन्हैया कृष्ण खड़े हुए हैं। अब जब खड़े रहे होंगे फिर ऋतुएं भी आई होंगी, मौसम

हम सब जानते हैं कि भाषा का, संस्कृति का, साहित्य का, संगीत का, सबका मूल लोक में है। हमारी दादरा को भी लें तो बंदिशें लोक भाषा में हैं, कभी ब्रज में है, कभी बनारस पूर्वी में है। ऐसे ही आपको एक बड़ी खूबसूरत चीज सुना रही हूँ, पुरानी बंदिश बनारस के बड़े विद्वान श्रद्धेय रामू जी की बंदिश है और अप्पा जी ने उनसे सुनी, मुझे सिखाई। आप लोगों की नजर कर रही क्योंकि उस बंदिश कैसी है वो आप जब शुरू होगी तो आप समझ जाएंगे।

हर जगह का भाग अलग है। मैंने पहले धमाल सुनाया, भाग सुनाया, फिर उलारा सुनाया जो होली खेले रघुवीरा। जोगीरा गाते हैं हमारे यहाँ पूरब में, पूरब में बनारस में खास करते हैं। दो बंद जोगीरा के सुना रही हूँ।

घन केला फागुन में मन के तराना, अरे मन के तराना, घन केला फागुन में मन के तराना, अरे भावे न पिया बिन मौसम सुहाना, जगह हाई रे हाई।

0: खिलाड़ी वाह भाई वाह,
1: वाह खिलाड़ी वाह।
0: आपको लग रहा होगा ये क्या होता है, दो टोलियां बनती हैं और सवाल जवाब होता है, तो पुरुषों की तरफ वाह खिलाड़ी, औरतों की तरफ वाह भाई वाह वारिस।

गैला ना आईला अरे कैला बिगान कैला बिगान गैला ना आईला अरे कैला बिगान अब के फागुनवा ना

शब्द सुन के सबको लगता है कि क्या बात है, कचौड़ी गली सुन कैला बलमो। दरअसल बड़ा करुण प्रसंग है। सेजिया पे लोटे काला नाग हो बिरह, मिर्जापुर कैला गुलजार, बगल का जिला है जहां से कजरी की उत्पत्ति मानते। मिर्जापुर में गुलजार, कचौड़ी गली में रोज नैन मटक्का होता था, चले गए तुम तो।

कही गई कजरी है। बनारस जो लोग जानते हैं, बनारस किसके हैं भैया? बनारस जाने वाले दो चार लोग हैं, अच्छा कई लोग हैं। बनारस का थोड़ा भूगोल जानते होंगे भैया। थोड़ा सा आवाज मॉनिटर में, सिर्फ मेरी, बाकी ना बढ़ाना, लाउड हो। बनारस में कचौड़ी गली जान है, गंगा में चौक से लेकर गंगा में जाकर खुलती है। ये इतने तेज अब गंगा की बात आई, जोरदार ताली हो जाए सचिन के लिए। उसका इतिहास कभी और बताएंगे, विषय अलग है। लेकिन चौक में आकर पूरी छह गलियां है तो चौक खुलती है। वहीं पर दालमंडी, दालमंडी पर सारी जितनी कलाकार गायिकाएं थी पहले रहती थी, जितनों को आप नाम सुन रखा, विद्याधरा भाई, विद्याधरी भाई, काशी बाई, हुसना बाई, बड़ी मोती बाई, छोटी मोती बाई, सिद्धेश्वरी देवी, रसूलन बाई, सब दालमंडी। तो दालमंडी से निकलो तो सीधे कचौड़ी गली, गौहर जान भी दालमंडी। तो जो उस चीज को समझ करके, कहाँ चले गए अचानक, सुना है कहीं चले गए, यही मिर्जापुर, यही जहां गए वहीं से लगता है उड़ेला जहजिया। तब नया नया नया पता चला था कि जहाज सैया चले गई ना रंगून। मेरी व्यथा तुम्हारे बिन कैसी है,

पांच से पतली हो गई तुम्हारी धनिया, माने तुम्हारी प्रिया, ये हरा वाला धनिया नहीं है। पानवा से पातर भइल तोर धनिया, लोक में देखिए उपमा कहां से दी जाती है, बिंब भी क्या होते हैं। अरे पान

सही गए नहीं थे, अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, वो अंग्रेजों के मुखबिर थे। तो जो क्रांतिकारी जो घटनाएं होती थी सारी देशभक्तों को बताया करते, और अचानक अंग्रेजों के हत्थे चढ़ गए, अंग्रेजों ने उनको मौत के घाट उतार दिया। तो गौहर जान ने कहा

0: आज के भारत भारती कार्यक्रम में आपने लोक गायिका मालिनी अवस्थी को सुना। अब आज का भारत भारती कार्यक्रम खत्म करने की प्रमिला को दीजिए इजाजत। नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।
1: भारत भारती।

0: अगर आपको दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें। ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
1: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस, वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
0: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: नमस्कार रसिकजनों, मैं शाहिर अनंत फंदी। लगभग 270 साल पहले महाराष्ट्र के संगमनेर में जन्मा। एक फकीर मंदी से कविता के बहाने दोस्ती हुई, कुछ सीखा, लिखा। लावणी, पौवाड़े, पद कटाव, फटका, सब लिखा और गाया। जीवन में कितने फंदे हैं, माया, मोह, धन संपत्ति और क्या क्या, कि सब मुझे झकझोरते रहते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं क्या अजर अमर हूं। ना ना ना, मेरी आत्मा आबसी है सूत्रधार में। जब मुझे पता लगा कि प्रातः स्मरणीय अहिल्याबाई पर नाटक होना है तो मन नहीं माना। मेरी शब्द विलास में डूबी कलम में कीर्तन का रंग उन्होंने ही भरा था। नाच गाने रस रंग से दूर भक्ति के भाव में डुबाया था मुझे महेश्वर में। जीवन में जब कठिनाई हो सरल सत्य पथ नहीं छोड़ना। जीवन में जब कठिनाई हो सरल सत्य पथ नहीं छोड़ना। भटक भटक कर दुख मत पाना, दुनिया से मुख नहीं मोड़ना।
3: साधु साधु, कविता में ऐसा फटका तो बस अनंत फंदी, तुम्हारी कलम का जादू है।
2: प्रणाम स्वीकार करें मेरा। अहो भाग्य हमारा, अहिल्याबाई के दरबार के संस्कृत विद्वान और महान वक्ता हमारे बीच हैं। खुशाली राम जी,
3: मालवा की संस्कृति में सुदूर महाराष्ट्र की खुशबू का मिलन सोने में सुहागा मिलने जैसा है।
2: खुशाली राम जी, आपका आना जैसे कि प्राण वायु का झोंका है।
3: अरे इतना महिमा गान भी ठीक नहीं। अगर महिमा गानी है तो देवी अहिल्याबाई का यशगान करो।
2: उनका जीवन ही तो हमारे आज के नाटक की भावभूमि है। इतना लंबा समय काल, समझ में नहीं आता कहां से शुरू करें।
3: उनका बचपन रोमांच से भरपूर था, वहीं से शुरू करें।
2: हाँ, नाम अहिल्या था कन्या का, पुण्य समय अवतरित हुई। नाम अहिल्या था कन्या का, पुण्य समय अवतरित हुई। भक्ति भाव में मंथा डूबा, गाथा इनकी कही गई।
3: अरे कविराज जरा रुको, थोड़ा परिचय दे दूं। महाराष्ट्र के जामखेड़ के पास एक गांव है चौढ़ी। यहां मनकोजी शिंदे के यहां 31 मई 1725 को एक कन्या ने जन्म लिया।
2: माता सुशीला ने सोच विचार कर उसका नाम रखा अहिल्या।
3: अहिल्या का अर्थ होता है

0: जी कहिए, मैं हूँ उनकी बेटी अहिल्या।
1: हम तीर्थयात्री पास के राजवाड़ी गांव के हैं। पालकी लेकर पंढरपुर जा रहे हैं, मनको जी से मिलना था।
0: बाबा अभी खेत पर से लौटे हैं, घर पर ही हैं।
1: जय हरि विठल मनको जी।
2: जय हरि विठल, जय हरि विठल। आइए आइए आइए, आप तो राजेवाड़ी गांव के शाहू जी है ना?
1: खूब पहचाना आपने, वार करी है, पंढरपुर जा रहे हैं।
2: ओ भाग्य, ओ भाग्य जो आपके दर्शन हुए। बाकी लोग?
1: वहीं देवी के मंदिर में है, विश्राम कर रहे हैं।
2: आपका भोजन? मैं कुछ धानी मुरमुरे भिजवा देता हूँ।
1: वो सब तो साथ में है।
2: तो फिर मैं नींबू की शिकंजी और छाछ का प्रबंध करवाता हूँ।
1: जैसी आपकी इच्छा।
2: और ये चांदी के 11 रुपए हमारे गांव की ओर से विट्ठल देव के मंदिर में अर्पण कर देना। इच्छा तो मेरी भी थी पंढरपुर जाने की, पर खेती में बहुत काम है, क्या करूं। अहिल्या
0: जी। बाबा
2: अपनी माँ से कहो एक घड़ा छाछ मंदिर में भिजवा दे।
0: जी अभी जाती हूँ।
1: आपकी कन्या बहुत गुणवंती है।
2: हाँ, दया भाव बहुत है उसमें, गांव में सबसे लाडली है।
1: झूठ नहीं कहूंगा, तीर्थयात्री हूँ, विट्ठल का भक्त।
2: कहना क्या चाहते हैं आप?
1: मैं कुछ देवीय शक्ति देख रहा हूँ इसमें।
2: अरे आपकी उदारता है, अभी तो 8 वर्ष पूरे किए हैं उसने।
1: जीवन के गुण धर्म उम्र से नहीं आके जाते।
2: तो फिर?
1: ये तो ईश्वर की देन है, जो विधाता ने उसकी झोली में भर दिए हैं।
2: ये तो मेरा सौभाग्य है।
1: आपकी पुत्री राजरानी होगी।
2: हरी इच्छा शाहू जी, कहां हम साधारण किसान और कहां वो।
0: लीजिए।
1: तुम्हारा भविष्य में देख रहा हूं, माउली हो तुम, माउली
0: जी।
2: आपकी वाणी सच हो।
3: जय भवानी।
4: जय भवानी।
3: मालवा के सुबेदार मल्लार राव जी होलकर पूना की यात्रा पर विश्राम के लिए।
2: अहो भाग्य, अहो भाग्य, चंडिका मंदिर में बहुत स्थान है।
3: आप व्यवस्था करें, मैं सूचना देता हूँ।
5: जय भवानी।
4: जय भवानी।
2: जय भवानी। मैं मनकोजी शिंदे, चौड़ी गांव का पाटिल, प्रणाम और स्वागत करता हूँ आपका।
1: मैं राजवाड़ी गांव का मुखिया डिंडी हूँ, पंढरपुर जा रहे हैं, प्रणाम।
5: क्या नाम है बेटी तुम्हारा?
0: जी अहिल्या।
5: आशीर्वाद। ये मंदिर में क्या कर रही हो?
0: बहुत से तीर्थयात्री है ना, सेवा कर रही हूँ।
5: सेवा करना अच्छा लगता है तुम्हें?
0: अच्छा, मुझे बहुत आनंद आता है।
5: क्यों?
0: माँ कहती है दे देवाचे मंदिर,
5: याने ये दे ईश्वर का मंदिर है, यही ना।
0: आपको कैसे पता?
5: मेरे गुरु ने भी सिखाया था यही।
0: सच? तब तो हम गुरु भाई हुए है ना?
5: हाँ बिल्कुल।
0: मैं जब किसी को खाना खिलाती हूँ, पानी देती हूँ, सेवा करती हूँ तो
5: फिर क्या?
0: तो मुझे उनमें भगवान दिखाई पड़ते हैं।
5: क्या मुझ में भी?
0: हाँ आप में भी, आप सबसे अलग थोड़ी ही हैं। और तू?
5: ना ना बेटी ना, जीवन में आज पहली बार मन और तन दोनों तृप्त हुए।
0: क्यों, पहले कभी छाछ नहीं पी क्या?
5: नहीं बेटी, मेरी माँ के मरने के बाद पहली बार किसी ने इतने प्रेम से कलेवा छाछ करवाया है।
0: अरे अरे रो मत, यहाँ रहोगे ना तो रोज इतने ही प्रेम से खिलाऊंगी।
5: मैं तो यहाँ नहीं रह सकता, पर तुम जरूर मेरे साथ रहोगी। मनको जी।
2: जी।
5: मैं अपने पुत्र खांडेराव के लिए आपकी बेटी को चाहता हूँ।
2: जी कहां आप, कहां हम, मैं।
5: आप ऐसी शीलवान कन्या के पिता हैं, मैं आपका जीवन धन आपसे मांग रहा हूं।
2: अहिल्या हमारे परिवार की जीवन ज्योति है।
5: अब उसका दिव्य प्रकाश इंदौर के राजमहल को भी आलोकित करेगा।
2: स्वीकार है महाराज, स्वीकार है।
5: अब हम जाना चाहेंगे। ऐसा लगता है इस शुभ कार्य के लिए ही विधाता ने मुझे इस रास्ते भेजा।
2: आपने बड़ी कृपा की महाराज, मैं तो धन्य हो गया महाराज।
0: राजा जी, आपने मेरे बाबा को क्यों रुलाया?
5: ये खुशी के आंसू हैं बेटी, तुम हमारी बहू बनकर आओगी। मनको जी, आप चिंता ना करें।
2: बेटी के विवाह की चिंता तो होगी ही महाराज।
5: अभी हम पूना जाकर सारी व्यवस्था कर देंगे। आपका घर धन्य धान्य से भरपूर हो जाएगा। पेशवा से आपकी मनसबदारी भी तय करवा देंगे। चलें। जय भवानी।
4: जय भवानी।
2: आपकी वाणी सच हो गई महाराज, आपकी वाणी सच हो गई।
1: ये तो होना ही था, बिटिया बड़ी भाग्यशाली है।
2: जी महाराज।
6: देखा खुशाली राम जी, सेवा और विनय भाव से
7: आप संसार जीत सकते हैं।
6: हाँ, इसीलिए कहता हूं सबको प्रेम भाव से जीना है। अच्छे जहां विचार मिले उसको मन में पीना है। निंदा नहीं किसी की करना, बस चोरी से डरना है। सत्कर्मों की छाया में जीवन अच्छा करना है।
7: वाह कविराज वाह, आपने जीवन का सूत्र बता दिया।
6: हमारे वेद पुराण भी यही कहते हैं। अब नाटक आगे बढ़ाएं।
7: बिल्कुल बिल्कुल। फिर क्या हुआ अहिल्या का?
6: होना क्या था, धूमधाम से विवाह हुआ। राजे महाराजे आए और राजसी ठाट से नन्ही अहिल्या पालकी में सवार हो इंदौर आ गई।

0: रानी साहिबा, कैसी लगी हमारी पसंद?
1: बड़ी परख है आपको, कितनी दूर से गुणवंती ढूंढ लाए।
0: सब गणेश जी की कृपा है, अब उसको राजमहल के संस्कार, शिक्षा दीक्षा।
1: कल अहिल्या से बात की, उसकी माँ ने काफी पढ़ाया है घर में, मराठी, संस्कृत, गणित।
0: ये तो अच्छी बात है, पर उसे मोड़ी लिपि सिखाना भी ठीक रहेगा।
1: क्यों, वो क्या राजकाज करेगी?
0: समय किसने देखा है, अरे पेशवा से सारी चिट्ठी पत्री मोड़ी लिपि में होने से सब गुप्त रहता है।
1: मोड़ी की 4 लिपि है, अलग अलग।
0: मेरे विचार से रानाड़ी लिपि ठीक रहेगी।
1: ठीक है, कल से उसके लिए अलग पढ़ाने वाले की जरूरत होगी, मैं सब व्यवस्था कर दूंगी।
2: समय अपनी गति से चलता रहा। अपनी सासू माँ के मार्गदर्शन में अहिल्या की शिक्षा जारी रही।
3: केवल शिक्षा नहीं, राज दरबार के दांव पेंच, राजनीति के सूत्र और सैन्य संचालन के रहस्य भी धीरे धीरे उनकी पकड़ में आने लगे।
2: मल्हार राव कुशल सेना नायक थे और मराठा गुरिल्ला युद्ध के साहसी खिलाड़ी।
3: उनके पुत्र खांडे राव ने भी शस्त्र शिक्षा अपने पिता से पाई।
2: और एकांत में खांडे राव अपनी पत्नी अहिल्याबाई को शस्त्र चलाना सिखाते थे।
3: जामखेड़ के जंगलों में घूमने वाली अहिल्या जल्दी ही सब सीख गई। उसका बचपन अब कहीं दूर जा चुका था और अब वो तैयार थी हर विपत्ति का सामना करने के लिए।
0: कहो सेनापति जी, क्या समाचार है?
4: हुना से बाजीराव जी पेशवा का संदेश आया है। पत्र के अनुसार मालवा का अधिकांश भाग अब आपको दे दिया गया है। सेना रखने का खर्च भी अब आपका 4 गुना बढ़ा दिया गया है।
0: इसका मतलब अब हजारों की सेना हमारे नीचे रहेगी, यानी और अधिक लड़ाइयां, युद्ध।
4: हमारी सेना को पुर्तगालियों से लड़ने वसई जाना होगा।
0: पश्चिम में समुद्र किनारे?
4: जी ठीक कहा। इसके अलावा पत्र में उत्तर भारत की तरफ सैन्य अभियान के कूट संकेत भी हैं।
0: पेशवा को हमारी सेना की बहादुरी पर विश्वास है, अच्छा है। खांडेराव जी भी इन सभी अभियानों में साथ रहेंगे?
4: जी, उन्हें सूचना भेज दी जाएगी।
0: सेना में बहादुर साहसी युवकों की भर्ती की मुनादी करवा दें, आवश्यक व्यवस्था करें।
4: जैसी आज्ञा।
5: अहिल्या, कुछ सुना तुमने?
6: हाँ, सासू माँ कह रही थी उधर राजस्थान, दिल्ली और आगे लाहौर तक जाना।
5: हाँ, रोहिल्या के साथ और मुगलों के साथ भी।
6: कौन कौन जाएंगे आपके साथ?
5: जयप्पा शिंदे, गंगाधर तात्या, तुकोजी राव तो हैं ही, सेना भी बड़ी होगी।
6: कब जाना है?
5: शायद 15 दिन बाद, गणेश चतुर्थी के दिन।
6: महल के गणेश मंदिर में अखंड दीप जलता रहेगा आपके विजय के लिए।
5: और मेरे मन में तुम्हारी याद का दीपक।
2: ये सैन्य अभियान काफी लंबा चला। फतेहगढ़ की लड़ाई में रोहिल्ला और बंगश पराजित हुए। 1752 में सफदरजंग मराठा सेना के साथ आए अहमद शाह अब्दाली से संधि हुई। इसी समय पेशवा का संदेश आया, पूना जाओ, पूना पर आक्रमण हुआ है।
3: वहां से मराठा सेना फिर लौटी और राजस्थान के कुम्हेर किले पर घेरा डाल दिया।
2: पेशवा के छोटे भाई राधोबा, होलकर और सिंधिया की सेना की मदद से राजा सूरजमल को हराना चाहते थे,
3: पर 4 महीने की घेरेबंदी के बाद भी किला जीत ना सके।
2: विधाता कुछ और संकेत दे रहा था। 24 मार्च 1754 को किले से दागे गए तोप के गोले ने खांडे राव की जीवन लीला समाप्त कर दी।
3: क्रोधित मल्हार राव कूटनीति के तहत सूरजमल से संधि करके इंदौर लौटे, अपने पुत्र को खोकर।
2: यह कैसा समय आ गया, जिस महल में खुशी के स्वर गूंजते थे वहां विषाद योग। मात्र 20 वर्ष के वैवाहिक जीवन के बाद ये कैसा अनर्थ। छाया अंधकार महलों में अजब भाग्य की माया, रोती थी हल भाग अहिल्या बन विषाद की काया। अब जीवन में क्या रखा, अब जीवन में क्या रखा, काया भीगी आंसुओं में, साथ पति के सती हो सकूं, सोचा मन ही मन में।
1: आप अकेले कैसे महाराज, कहां है मेरा लाल?
0: हम क्षत्रिय हैं रानी साहिबा, राजकुमार रण में खेत रहे।
1: आपने रक्षा नहीं की उसकी, आप तो समर्थ थे ना।
0: रक्षा तो की, 4 महीने कुम्हेर दुर्ग को घेर करके रखा।
1: ये तो घेरा था, युद्ध तो नहीं?
0: हाँ, हम डेरा डाले हुए थे, पर एक दिन शत्रु ने तोप का गोला दागा जो सीधा खांडे राव के तंबू पर गिरा और
1: वो कर्तव्य की बलि वेदी पर
0: अपना जीवन होम कर बैठा।
1: वीर था मेरा पुत्र, पिछले 10 वर्षों में कितने युद्ध में आपके साथ रहा, हमेशा जीत कर ही आया।
0: और होलकर सेना का ध्वज कभी झुकने नहीं दिया।
4: क्षमा करें महाराज, वंश परंपरा के अनुसार संस्कार की तैयारी हो चुकी है।
0: जी, राजकीय सम्मान का भी ध्यान रखें।
4: जैसी आज्ञा, वैसा ही होगा।
6: महाराज क्षमा करें, कुछ विनय करना है।
0: बोलो बेटी, वैसे तो मैं तुम्हारा अपराधी हूं, अपने बेटे को वापस न ला सका।
6: आपका कोई दोष नहीं, ये सब विधाता ने रचा है।
0: विधाता का माध्यम हम ही तो है ना।
6: अब मेरा संसार तो उजड़ चुका है।
0: ऐसा ना कहो बेटी।
6: मैं अपने पति के साथ सती होने की आज्ञा चाहती हूँ।
1: क्या? सती होना चाहती हो?
6: जी महाराज।
1: ऐसा कैसे संभव है? नहीं, ये उचित नहीं।
0: पति के प्रति तुम्हारा अनुराग, इतना प्रेम वंदनीय है, पर सती? नहीं नहीं नहीं।
1: अपने बच्चे मालेराव और मुक्ताबाई के बारे में नहीं सोचा? वे भविष्य है होलकर वंश के।
6: सोचा तो, पर पति के बगैर एक स्त्री का क्या जीवन है?
0: जीवन ईश्वर का अंश है, वो केवल तुम्हारा नहीं, उसके साथ दूसरों का जीवन और कल्याण भी जुड़ा है।
6: कैसे?
0: भूल गई? अपने गांव में कितने प्रेम और सेवा भाव से लोगों की सेवा करती थी।
6: तब मैं अकेली थी।
0: ना ना ना, प्रेम और सेवा भाव तुम्हारे मन से गया नहीं। अब तुम प्रजा के कल्याण की सोचो, तुम्हारे पास साधन है, शक्ति है, अधिकार है।
6: हाँ है तो, पर जीवन में अब आनंद कहाँ?
0: हाँ, विलास अब नहीं है, पर समर्पण का आनंद है।
6: किसे किसे करूं समर्पण, इस व्याकुल मन को?
0: अपनी व्याकुलता इन्हें अर्पित करो, ये शिव हैं। शिव का अर्थ ही है सुंदर और कल्याणकारी, अमंगल का नाश और मंगल का उदय।
6: यदि शिव ही मंगल का मूल है तो मेरा अमंगल क्यों?
0: चित को शांत करो, यह प्रश्न जो तुम्हें दुख दे रहा है स्वाभाविक है, ये तुम्हारी सांसारिक दृष्टि है। मन में झांक कर देखो तो पाओगे कि इस जन्म में जन जन के कल्याण के लिए जो तुम्हारी भूमिका है, ये उसके उदय का संधिकाल है।
6: यानी? मैं समझी नहीं।
0: समझो इसे, जन्म और मृत्यु है क्या? सर्व शिवमय जगतः, इस असार संसार में सब शिवमय है। ये संसार शिवत्व का ही प्रकटीकरण है, शिव इस सृष्टि का शाश्वत तत्व है, सब तत्वों का सार और मूल।
6: अर्थात यहीं से जन्म और इसी में विलय। सर्वम शिवमय जगतः, सर्वम शिवमय जगतः।
0: संतुलन साधना ही शिवत्व है, लय और प्रलय दोनों शिव के अधीन है। शिव सौम्य भी हैं और रुद्र भी, ये अर्धनारीश्वर हैं, पुरुष और स्त्री का सम्मिलित रूप। वे गृहस्थ भी हैं और वीतरागी भी, ये संतुलन ही कल्याणकारी शिवत्व है।
6: ओम नमः शिवाय। चैतन्याय चिदंबराय।
0: ये जीवन ये साम्राज्य शिव को अर्पित करो और उनकी ओर से इस राज्य पर कल्याणकारी शासन करो।
6: जैसी आज्ञा पिताजी। ओम नमः शिवाय।
2: अहिल्या को ढाढ़स बधाकर मल्हार राव पुत्र के अंतिम संस्कार में चले जाते हैं। धीरे धीरे दुख की छाया कम होने लगती है, राजकाज चलने लगता है।
3: अहिल्या सत्संग और भक्ति में अपने दिन काटने लगती है।
2: 20 मई 1766 को आलमपुर में मल्हार राव होलकर का निधन हो जाता है।
3: भालेराव होलकर को सत्ता मिलती है पर अहिल्या बाई की देखरेख में।
2: पर क्रूर काल को यह भी मंजूर नहीं था। बीमार भालेराव भी सत्ता सुख नहीं भोग पाता, उसका देहांत हो जाता है।
3: एक वर्ष के भीतर ही ससुर और पुत्र को खोने के बाद अहिल्या बाई धीरज से राजकाज संभाल लेती है। यही वो परिवर्तन बिंदु है जहां से मालवा की प्रजा अपना उत्कर्ष देखती है।
6: सभी प्रजाजन और गुरुजनों को प्रणाम।
7: रानी मां, राज्याभिषेक के बाद आपका दरबार में स्वागत है।
6: मैंने अपने पूज्य महाराज मल्हार राव जी को वचन दिया था कि उनके अधूरे काम मैं पूरा करूंगी।
7: ऐसा ही होगा, हम सेवा में आज्ञा करें।
6: महाराज जी ने अनेक लड़ाइयां लड़ी, अब हम यहाँ अमन चैन चाहते हैं।
4: आसपास के राज्य तो सब शांत है, हाँ पाताल पानी और उधर जंगलों में डाकू गांव के लोगों को तंग कर रहे हैं।
6: आप घोषणा करवा दें, जो वीर उन डकैतों को पकड़ेगा हम अपनी पुत्री मुक्ताबाई का विवाह उससे करेंगे। पुरोहित जी, हम महेश्वर को अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं, आपकी क्या राय है?
7: शुभ विचार है, नर्मदा का पावन तट और घने जंगल पहाड़ सुरक्षित जगह रहेगी।
4: उधर के आदिवासी भील भिलाले हमारे साथी और मित्र हैं।
6: राजकोष से पैसे की व्यवस्था करें। हाँ, हमारा महल सादगी से बनेगा, वहां से माँ नर्मदा के दर्शन हो, ये ध्यान रखें।
2: बहादुर युवा यशवंत राव ने डकैतों को पराजित किया और उसका विवाह मुक्ताबाई से संपन्न हुआ।
3: महेश्वर में अहिल्या बाई ने भगवान शिव का विशाल मंदिर भी बनवाया।
2: विरोधियों ने खूब हल्ला मचाया पर सेना तुकोजी राव के नेतृत्व में रानी के साथ थी। शिव की पूजा शिव का अर्चन, शिव की पूजा शिव का अर्चन और नर्मदा का पावन जल, जनहित में कल्याणी बनकर बनी अहिल्या मात सकल।

0: आज शिवरात्रि का पावन पर्व है। प्रजाजन अपनी तकलीफ हमें बता सकते हैं।
1: दरबार में मराठी कवि मोरोपंत, शायर अनंतराम भंदी, संस्कृत विद्वान खुशाली राम भी मौजूद हैं।
0: हम महेश्वर को विद्या और संस्कृति का केंद्र बनाना चाहते हैं। आप सभी सहयोग करें।
2: यहाँ की जलवायु वस्त्र साड़ी आदि बनाने के लिए अच्छी है।
0: ठीक है, हम सूरत से कारीगर लाकर यहाँ बसाएंगे, उन्हें उचित आवास और धन देंगे।
3: जी, सैकड़ों परिवारों को काम मिलेगा।
4: संस्कृति विद्यालय और शिक्षण का काम मैं संभालूंगा।
2: रानी माँ, हमारे समाज में माँ बहनों के लिए कोई पाठशाला नहीं है।
0: ये उचित नहीं है। खुशाली राम जी, आप इसकी योजना बनाएं। कहाँ कहाँ महिलाओं लड़कियों के लिए पाठशाला खोल सकते हैं, हम व्यवस्था करेंगे।
5: रानी माँ, जैसे कि हम पंचायतों को अपने क्षेत्र में शासन और व्यवस्था के लिए सुविधा दे रहे हैं, शिक्षा का जिम्मा भी उन्हें ही दे दें।
0: उचित सुझाव है। पंचायतों की सहयोग राशि और आय के लिए जमीन दी जा सकती है।
5: बंदोबस्त अधिकारी इस सारे काम के लिए लगाए जा सकते हैं।
0: मेरे पास लगान और दूसरे करों के बारे में काफी सूचना आई है।
5: असल में आसपास के छोटे राजा जमींदार अपने फालतू खर्चों के लिए हर कभी किसानों पर, व्यापारियों पर, दुकानदारों पर कर लगा देते हैं।
0: ये अत्याचार सब बंद करिए। किसानों व्यापारियों से बात करके लगान और कर की सीमा तय करें। उनका भी इतना हो और राज्य का भी खर्चा चलता रहे।
3: रानी माँ, बाहर कुछ मजदूरों की भीड़ लगी है, आपके दर्शन चाहती है।
0: आने दीजिए।
6: रानी माँ, हम गरीबों की भी सुनिए। ये बड़े बड़े व्यापारी, सामान, जमींदार हमसे खेतों में, हाट में काम करवाते हैं और एक ढेला भी नहीं देते। मजदूरी मांगो तो कभी आधी और कभी मार मिलती है।
2: हम गरीब भूखे मरते हैं, हमारे बच्चे अदनंगे बीमार घूमते हैं।
3: कभी बीमार होते हैं तो कोई दवाई या उपचार भी नहीं मिलता, ऐसे ही मर जाते हैं तड़प कर।
0: राजवैद को बुलाया जाए। राजवैद जी, आसन ग्रहण करें। इन गरीबों की सेवा के लिए आप क्या कर सकते हैं?
1: सामान्य सुलभ औषधि हम इन्हें निःशुल्क दे सकते हैं। ये ग्रामीण आदिवासी जंगली बूटी के जानकार हैं। ये जंगल से सामग्री ला दें, हम औषध बनवा देंगे।
0: आप खुश हैं? मंजूर है? राजवैद जी, आप योग्य शिष्य भी तैयार करें ताकि उन्हें हम गांव भेज सकें। राशि हम देंगे। मंत्री जी, मजदूरों की मजदूरी के नियम तय करें, कोई बेगार नहीं करेगा, और भूखों के लिए अनाज राज्य के भंडार से दिया जाए।
5: पेशवा का पूना से पत्र आया था अंग्रेजों के बारे में।
0: पेशवा को पत्र में साफ साफ लिख दें, आप बाघ, शेर, तेंदुओं को तो लड़ाई में मार सकते हैं, पर ये अंग्रेज रीछ के समान है। जब तक सिर में इनके मर्म स्थल पर ना मारा जाए, ये मरेंगे नहीं। पेशवा अंग्रेजों से दूर ही रहे तो अच्छा।
7: रानी माँ, आज श्रावण सोमवार है, आपके मंदिर जाने की तैयारी कर दूं?
0: हाँ, आज हजारों पार्थिव शिवलिंग बनेंगे।
7: सब व्यवस्था हो गई है?
0: सबको कह दो कि हर पार्थिव शिवलिंग में चावल के 8-10 दाने जरूर रखें,
7: ताकि नर्मदा मैया के जीवों को भोजन मिल सके, यही ना?
0: सभी तत्व शिव में है, उनको पालना है, हम तो केवल साधन है।
8: अपना सारा जीवन परोपकार में लगाने वाली पुण्य श्लोका अहिल्याबाई ने सारे देश में मंदिरों का जीर्णोद्धार किया।
9: आलमपुर में उन्होंने मल्हार राव और कुम्भेर में पति खांडे राव के स्मृति चिन्ह बनवाए।
8: बद्रीनाथ, वाराणसी, अयोध्या, द्वारका, अमरकंटक, बेलूर, चित्रकूट, गंगोत्री, गया, गोकर्ण, हरिद्वार और केदारनाथ आदि अनेक स्थानों पर बने मंदिर उनकी कीर्ति गाथा आज भी सुना रहे हैं।
9: अपनी निजी संपत्ति से बनाए गए ये सभी स्थान उस काल की स्थापत्य कला के भी सुंदर नमूने हैं।
8: मात्र 70 वर्ष की आयु में 13 अगस्त 1795 को लोकमाता अहिल्या शिवलोक को चली गईं।
9: क्या कहें कितनी कहें उस कल्याणी की यश गाथा, मन थक जाता है कलम रुक जाती है।
8: 250 वर्ष पुरानी इस कथा में आपको आनंद जरूर मिला होगा। हमें आज्ञा दें, आज करें गुणगान सभी मिले, ऐसी जीवन गाथा का अपने दुख की छाया में उपकार उसी को आता था। जगह जगह पर बने शिवालय, जगह जगह पर बने शिवालय, मंदिर चमके गौरव से, जन जन को सुख चैन मिला, बचे युद्ध के रौरव से, सबके जीवन में मंगल हो, मन में इच्छा दमक रही, मात अहिल्या नारी गौरव, ध्रुव तारे सी चमक रही, मात अहिल्या नारी गौरव, ध्रुव तारे सी चमक रही।
10: अहिल्या माता की
11: जय हो,
10: अहिल्या माता की
11: जय हो,
10: अहिल्या माता की
11: जय हो।

0: जिन्होंने कभी उंगली पकड़ के चलना सिखाया,
1: जिन्होंने हमें जीवन में आसमान की बुलंदियों को छूना सिखाया,
0: अब हम बने उनका सहारा जो पहले थे हमारा सहारा।
1: बचपन में जिन्होंने दी हमें खुशियाँ, वृद्धावस्था में दें हम उन्हें खुशियाँ।
0: अपने वृद्धजनों के प्रति समर्पित रहें, वृद्धजनों का सम्मान करें।
1: शुरुआत आज से ही करें, अपने घर से ही करें।
2: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थीं, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञानवर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। कार्यक्रम सुनो कहानी लेकर मैं हूं आपके साथ भारती। श्रोताओं, मुंशी प्रेमचंद, उनकी कलम से लिखी हुई कहानियां ऐसी लगती हैं जैसे हमारे आसपास की ही कहानी हो। मनुष्य का अधिकार उसका वर्चस्व होता है, और अगर अधिकार ना हो तो उसका मान सम्मान भी नहीं होता है, और जहां मान सम्मान होता है वहां अधिकार होता है। कुछ इसी तरह की ताने बाने से बुनी हुई मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है सुजान भगत। तो आज के कार्यक्रम में हमने कहानी चुनी है सुजान भगत।

अक्सर सीधे साधे किसान धन हाथ आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुक जाते हैं। दिव्य समाज की भांति वो पहले अपने भोग विलास की ओर नहीं दौड़ते। सुजान की खेती में कई साल से कंचन बरस रहा था। मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे, पर सुजान के चंद्रमा बली थे। ऊसर में भी दाना छीट आता तो कुछ ना कुछ पैदा हो ही जाता था। 3 साल से लगातार एक लगा रहा था। उधर गुड़ का भाव तेज हो गया, कोई 2-2.5 हजार हाथ में आ गए थे अब उसके। बस चित्त की वृत्ति धर्म की ओर झुक पड़ी। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। द्वार पर धुनी जलने लगी। कानूनगो इलाके में आते तो सुजान महतो के चौपाल में ठहरते। हलके के हैंड कांस्टेबल, थानेदार, शिक्षा विभाग का अफसर एक ना एक उस चौपाल में पड़ा ही रहता था। महतो मारे खुशी के फूले नहीं समाते। धन्य भाग हमारे, उसके द्वार पर अब इतने बड़े बड़े हाकिम आकर ठहरते हैं। जिन हाकिमों के सामने उसका मुंह नहीं खुलता था, उन्हीं की अब महतो महतो करते जुबान नहीं सूखती थी। कभी कभी भजन भाव हो जाता। एक महात्मा ने डॉल अच्छा देखा तो गांव में आसन जमा लिया। एक ढोलक आ गई, मंजीरे मंगाए गए, सत्संग होने लगा।

अब सब सुजान के दम पर जुलूस निकलने लगा। घर में सेरो दूध होता, मगर सुजान के कंठ तले एक बूंद भी जाने की कसम नहीं थी। कभी हाकिम लोग चखते तो कभी महात्मा। किसान को दूध घी से क्या मतलब, उसे तो रोटी चाहिए, साग चाहिए। सुजान की नम्रता का अब पारावार ना था, सबके सामने सिर झुकाए रहता। कहीं लोग ये ना कहने लगे कि धन पाकर उसे घमंड हो गया है। गांव में 3 कुएं थे, बहुत से खेतों में पानी नहीं पहुंचता था, खेती मारी जाती थी। सुजान ने एक पक्का कुआं बनवा दिया। कुएं का विवाह हुआ, यज्ञ हुआ, ब्रह्म भोज हुआ। जिस दिन पहली बार पुर चला, सुजान को मानो चारों पदार्थ मिल गए हों। जो काम गांव में किसी ने न किया, वो बाप दादा के पुण्य प्रताप से सुजान ने करके दिखाया था। एक दिन की बात है, गांव में गया के यात्री आकर ठहरे। सुजान के ही द्वार पर उनका भोजन बना। सुजान के मन में भी गया करने की बहुत इच्छा हो गई। वो अच्छा अवसर देखकर चलने को तैयार हो गया। अपनी स्त्री बुलाकी से उसने कहा। बुलाकी ने जवाब दिया, अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे। तब सुजान ने गंभीर भाव से कहा, अगले साल क्या होता है, कौन जाने। धर्म के काम में मीन मेक निकालना अच्छा नहीं। अब जे जिंदगानी का भरोसा, चलना है बस चलना है। बुलाकी ने कहा, हाथ खाली हो जाएगा। सुजान ने भी फरमान सुना दिया, भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपया आ जाएगा, उनके यहाँ किस बात की कमी है। बुलाकी भी इसका क्या जवाब देती, सत्कार्य में बाधा डालकर अपनी मुक्ति नहीं बिगाड़ना चाहती थी। प्रातःकाल स्त्री और पुरुष गया चले गए। वहां से लौटे तो यज्ञ और ब्रह्मभोज की हो गई। सारी बिरादरी निमंत्रित हो गई। 11 गांवों में सुपारी बटी थी। इस धूमधाम से ये लाभ हुआ कि चारों ओर वाह वाह मच गई। सब यही कहते थे, भगवान धन दे तो दिल भी दे। घमंड तो छू नहीं गया, अपने हाथ से पत्तल उठाता फिरता था। कुल का नाम जगा दिया था सुजान ने, बेटा हो तो ऐसा हो। बाप मरा तो भुनी भांग नहीं थी, अब देखो लक्ष्मी घुटने तोड़कर बैठी है। एक द्वेषी ने तो कह दिया, अरे कहीं गड़ा हुआ धन पा गया होगा। कई तरह की बातें होती, इस पर चारों ओर से उस पर बौछार पड़ने लगी। तुम्हारे बाप दादा जो खजाना छोड़ गए हैं, यही उनके हाथ लगा है। अरे भैया, ये धर्म की कमाई है, तुम भी तो छाती फाड़कर काम करते हो, क्यों ऐसी ईख नहीं लगती, क्यों ऐसी फसल नहीं होती। भगवान आदमी का दिल देखते हैं, जो खर्च करता है उसी को तो देते हैं। सुजान महतो अब सुजान भगत हो गए। भक्तों के आचार विचार कुछ और ही होते हैं, वही विचार सुजान ने भी अपना लिया। वो बिना स्नान किए कुछ नहीं खाता। गंगा जी अगर घर से दूर हैं तो वो रोज स्नान नहीं कर पाता था, लेकिन पर्वों के दिन जरूर जाता। भजन भाव उसके घर होने लगे, पूजा अर्चना उसके लिए अनिवार्य हो गई। खान पान में भी उसे बहुत विचार रखना पड़ता। सुजान को भी अब भक्तों की मर्यादा को निभाना पड़ा। अब तक उसका जीवन मजदूर का जीवन था, उसका कोई आदर्श कोई मर्यादा उसके सामने नहीं थी। अब उसके जीवन में विचार का उदय हुआ है, जहाँ का मार्ग कांटों से भरा होता है। स्वार्थ सेवा ही पहले उसके जीवन का लक्ष्य था, इसी कांटों से वो परिस्थितियों को तौलता था, अब वो उन्हें औचित्य के कांटों पर तौलने लगा। यूं कहें कि जड़ जगत से निकलकर उसने चेतन जगत में प्रवेश कर लिया था। ब्याज का पैसा लेते हुए उसे आत्मग्लानी होने लगी, यहाँ तक कि गायों को दोहते समय उसे बछड़ों का ध्यान बना रहता, कहीं बछड़ा भूखा ना रह जाए। उसका रोया दुखी हो जाता। वो गांव का मुखिया था, कितने ही मुकदमों में उसने झूठी शहादतें बनवाई थी, लेकिन अब उसको इससे घृणा होने लगी। पहले मजदूरों से काम लेता और कम मजदूरी देता, लेकिन अब वो पूरा का पूरा देता था। उसके दोनों जवान बेटे बात बात में उस पर फप्तियां कसते, यहाँ तक कि स्त्री बुलाकी भी अब उसे कोरा भगत समझने लगी थी, जिसे घर के भले बुरे से उसे कोई प्रयोजन नहीं था। चेतन जगत में आकर सुजान भगत कोरे भगत रह गए। सुजान के हाथों से धीरे धीरे अब घर के अधिकार छीने जाने लगे। किस खेत में क्या बोना है, किसको क्या देना है, क्या लेना है,
किस भाव का क्या चीज है, कैसी बिकी, महत्वपूर्ण बातों में भी भगत की सलाह नहीं ली जाती थी। भगत के पास कोई जाने नहीं पाता था। दोनों लड़के या स्वयं बुला की दूर से ही सारा मामला तय कर लेती थी। गांव भर में सुजान का मान सम्मान बढ़ता, पर अपने घर में घट जाता था। लड़के उसका सत्कार अब बहुत करते, हाथ से चारपाई उठाते देखते तो लपक कर खुद उठा देते, यहां तक कि उसकी धोती छाटने के लिए भी आग्रह करते, मगर अधिकार उसके हाथ में नहीं था। वो अब घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता बन गया। एक दिन बुलाकी ओखली में दाल छाट रही थी। बाहर एक भिक्षुक आया, वो चिल्ला चिल्ला कर दान मांग रहा था। इतने में बड़ा लड़का भोला आया, जोर से माँ से बोला, अम्मा महात्मा कब से गला फाड़ रहे हैं, दे दो ना कुछ, नहीं तो उनको बुरा लग जाएगा, देखो तो सही। बुलाकी ने भी उपेक्षा के भाव से कह दिया, क्या भगत जी के हाथ में मेहंदी लगी है, उन्हीं से कह दो कुछ दे देंगे। चौपट करने लगे हैं माँ, और क्या, रहने दो, कुछ का कुछ दे देंगे। तब भोला भी बोल दिया, दिन भर एक न एक खुचड़ निकालते हैं, 100 दफे कह दिया है कि घर गृहस्थी के मामले में अब ना बोला करो, पर इनसे बिना बोले रहा नहीं जाता। बुलाकी ने कहा, मैं जानती हूं कि इनका ये हाल होगा तो गुरु मंत्र ना लेने देंगे। अच्छा, तब भोला ने कहा, भगत क्या हुए कि दीन दुनिया दोनों से गए, सारा दिन पूजा पाठ में ही उड़ जाता है, अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गए हैं कि कोई काम ना कर सके। बुलाकी ने भी आपत्ति की, बेटा भोला ये तुम्हारा कुन्याय है, फावड़ा कुदाल अब उनसे नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। अब देखो ना, बैलों को सानी देते हैं, गाय धोते हैं, और भी जो कुछ हो सकता है करते रहते हैं। माँ बेटे यहाँ बात कर रहे थे, लेकिन भिक्षुक अभी तक खड़ा चिल्ला रहा था। सुजान ने जब घर में से किसी को कुछ लाते नहीं देखा तो स्वयं उठकर अंदर चले गए और कठोर स्वर में बोले, सुनाई नहीं देता क्या तुम लोगों को, द्वार पर कौन घंटे भर से खड़ा है, अपना काम दिन भर कर लेना, एक घड़ी के लिए भगवान का काम भी कर लो। बुलाकी ने भी उपेक्षा से कह दिया, हाँ क्यों नहीं, तुम तो बैठे हो भगवान का काम करने, क्या घर भर भगवान ही काम करेंगे क्या। सुजान ने कहा, कहाँ रखा है आटा, लाओ मैं ही निकाल कर दे दूं, तुम तो बैठो और रानी बन के राज करो। बुलाकी ने तब जोर से कहा, देखो जी आटा मैंने मर मर के पीसा है, देना है ना अनाज दे दो, ऐसे लोगों के लिए मैं पहर रात से उठकर चक्की नहीं चलाती हूं। सुजान ने सुना और भंडार गृह की ओर चल दिए। छोटी सी छाबड़ी को जौ से भरकर निकाल लाए, जौ शेर भर से कम नहीं था। सुजान ने जानबूझकर केवल बुलाकी और भोला को दिखाने के लिए ज्यादा अनाज लेकर आया, लेकिन वो भिक्षुक को देता उसके पहले ही भोला ने छबड़ी उसके हाथ से छीन ली और त्योरिया चढ़ाकर बोला, संत का माल नहीं है जो लुटाने चले हो, छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं तब दाना घर में आता है, फालतू नहीं देंगे। सुजान ने भी कहा, मैं भी तो बैठा नहीं हूं, काम करता हूं। भोला ने भी कहा, भीख भीख की तरह दी जाती है, लुटाई नहीं जाती, हम तो एक बेला खाकर दिन काटते हैं और पति पानी बना रहे हैं, और आप लुटा रहे हो, क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है आपको, आप तो बस भगवान भजन में डूबे रहो। सुजान ने इसका उस समय कोई जवाब नहीं दिया, बाहर आकर भिखारी से कह दिया, बाबा इस समय जाओ, किसी का हाथ खाली नहीं है। सुजान पेड़ के नीचे जाकर विचारों में मगन हो गया, अपने ही घर में उसका अनादर, अभी वो अपाहिज तो नहीं हुआ है, हाथ पांव भी नहीं थके हैं, घर का कुछ ना कुछ काम तो करता ही है, उस पर यह अनादर, ये घर तो उसी ने बनाया, ये विभूति उसी के श्रम का फल है, पर अब इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा। अब तो वो द्वार के कुत्ते के समान हो गया, पड़ा रहे, घर वाले जो रूखा सूखा दे दें, खाकर पेट भर लें, क्या ऐसा जीवन सही है, धिक्कार है ऐसे जीवन को, और सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता। विचारों के मंथन में सुजान डूब गया। संध्या हो गई, भोला का छोटा भाई शंकर नारियल भर के लाया, सुजान ने नारियल दीवार से टिकाकर रख दिया।
जरा देर में भोला ने द्वार पर चारपाई डाल दी। सुजान पेड़ के नीचे से लेकिन उठा नहीं। कुछ देर और गुजरी, भोजन तैयार हुआ। भोला बुलाने गया लेकिन भूख नहीं है कहकर उसने भोला को लौटा दिया। तब स्त्री बुलाकी आ गई और मनुहार करने लगी। खाना खाने क्यों नहीं चलते? जी तो अच्छा है ना, क्या हो गया? सुजान को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर ही था। ये भी लड़कों के साथ है, ये बैठी देखती रही और भोला ने मेरे हाथ से अनाज छीन लिया। इसके मुंह से इतना भी नहीं निकला कि ले जाते हैं तो जाने दो। लड़कों को ना मालूम हो कि मैंने कितने श्रम से ये गृहस्थी जोड़ी है, पर ये तो जानती है। दिन को दिन, रात को रात नहीं समझा, भादों की अंधेरी रात में मढ़ैया लगा के ज्वार की रखवाली करता था। जेठ बैसाख की दोपहरी में भी दम नहीं लेता था। और अब मेरा घर, मेरे घर पे इतना भी अधिकार नहीं कि मैं किसी को भिक्षा दे सकूं। माना कि भीख इतनी नहीं दी जाती, लेकिन इनको तो चुप रहना चाहिए। आग थोड़ी लगा रहा हूं घर में। कानून से भी मेरा अधिकार है, मैं अपना हिस्सा नहीं खाता, दूसरों को खिला देता हूं। इसमें किसी का क्या जाता है? और अब इस वक्त ये मनाने आई है? कभी कड़ी निगाह से नहीं देखा। रुपए पैसे लेना देना सब इसके हाथ में था। अब रुपए जमा कर लिए हैं तो मुझी से घमंड करती है। अब इसे बेटे प्यारे हैं, मैं तो निखट्टू हूँ। लुटाऊं, घर फूकूं, घोंगा हो गया हूँ, मेरी किसे परवाह है। तब लड़के ना थे, जब बीमार पड़ी थी तो मैं गोद में उठाकर वैद्य के घर ले जाता था। आज इसके बेटे हैं और ये उनकी माँ। हाँ, मैं तो बाहर का आदमी हूँ, मुझे घर से क्या मतलब। उसके मन में ये विचार तो चल रहे थे, लेकिन उसने बुलाकी से कुछ नहीं बोला। सिर्फ इतना कहा, अब खा पी कर क्या करूंगा बुलाकी, हल जोतने से रहा, फावड़ा चलाने से रहा, मुझे खिलाकर दाने क्यों खराब करती हो? रख दे, तेरे बेटे दूसरी बार खा लेंगे। बुलाकी ने भी मनुहार किया। कैसा करते हो तुम, तो जरा जरा सी बात पर तिनक जाते हो। सच कहा है, बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। अब भोला ने इतना ही तो कहा था ना कि इतनी सारी भीख मत ले जाओ, या और कुछ कहा था बताओ? हाँ, बेचारा इतना कहकर रह गया था, तुम्हें तो मजा आया। जब वो ऊपर से दो चार डंडे लगाता तब तुम्हें ठीक लगता, तब तुम्हारी इच्छा पूरी होती। बुलाकी ने भी जवाब दिया, हाँ और क्या, यही तो नारी का धर्म है। अपने भाग सराहो कि मुझ जैसी सीधी सादी औरत पाई है, जिस बल चाहते हो बैठा लेते हो। ऐसी मुजोर होती ना तो तुम्हारे घर में एक दिन भी निबाह ना होता। सुजान ने भी कहा, हाँ भाई, वो तो मैं कह रहा हूँ कि देवी थी और हो, मैं ही राक्षस हूँ और दैत्य हो गया हूँ, तुम सही, तुम्हारे कमाऊ बेटे सही। बात नहीं बनी, सुजान नहीं उठे और बुलाकी हार कर घर लौट गई। सुजान के सामने अब एक नई समस्या खड़ी हो गई। वो बहुत दिनों से घर का स्वामी था, अब भी यही समझता था, परिस्थिति में कितना उलटफेर हो गया इसकी उसे खबर नहीं थी। लड़के उसकी सेवा सम्मान करते हैं ये बात उसे भ्रम में डाली थी। लड़के उसके सामने बैठते नहीं थे, खाट पर नहीं रहते थे, उसके गृह स्वामी होने का प्रमाण नहीं था। हाँ, पर आज उसे ये ज्ञात हो गया कि वो केवल श्रद्धा थी, उसके स्वामित्व का प्रमाण नहीं था। अब तक जिस घर में राज करता था उसी घर में पराधीन बनकर वो नहीं रह सकता। उसको श्रद्धा की चाह नहीं, सेवा की भूख नहीं, उसे अधिकार चाहिए। वो इस घर पर दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता, मंदिर का पुजारी बनकर नहीं रह सकता। ना जाने कितनी रात बाकी थी, सुजान ने उठकर गड़ासे से बैलों का चारा काटना शुरू कर दिया। सारा गांव सो रहा था, सुजान करवी काट रहा था। इतना श्रम उसने पहले नहीं किया था, लेकिन उसने काम भी नहीं छोड़ा था। मुंह अंधेरे बुलाकी उठी तो कटिया का ढेर देखकर आंगन में दंग रह गई। जोर से चिल्ला के बोली, क्यों रे भोला, आज रात भी कटिया ही काटता रहा क्या? कितना कहा बेटा, जी से जहान है, पर तू तो मानता ही नहीं, रात में सोया भी नहीं। सुजान भगत ने ताने से कहा, हाँ हाँ, वो सोता कब है, जब देखता हूँ काम करता है, ऐसा कमाओ संसार में और कौन होगा। इतने में भोला आंखें मलता बाहर निकल आया, ढेर देखकर वो भी आश्चर्यचकित। माँ से बोला, माँ, शंकर आज बड़ी रात को उठा था। बुलाकी ने कहा, नहीं रे,
वो तो सो रहा है, मैं समझी तू काटा है। माँ मैं तो सवेरे उठ ही नहीं सकता, दिन भर काम करा लो, रात को नहीं उठा जाता मुझसे। बुला की, तो क्या तेरे दादा ने काटी है इतनी सारी? मालूम नहीं। दोपहर हो चुकी थी, सभी किसानों ने हल छोड़ दिए, पर सुजान भगत अपने काम में मगन था। भोला थक गया, उसकी बार बार इच्छा हुई कि बैलों को खोल दे, मगर डर के मारे कुछ नहीं कहा। सबको आश्चर्य हो रहा था, दादा इतनी मेहनत कैसे कर सकते हैं? आखिर डरते डरते बोल ही दिया, दादा अब तो दोपहर हो गई, हल खोल दें। सुजान ने कहा, हाँ खोल दो, तुम बैलों को लेकर चलो, मैं डांड फेंक कर आता हूँ। मैं सांझ को फेंक दूंगा दादा। सुजान ने नहीं सुना। तुम क्या फेंक दोगे बेटा, देखते नहीं खेत कटोरे की तरह गहरा हो गया है, तभी तो बीच में पानी जम जाता है। और इस खेत में 20 मन का बीघा होता था, तुम लोगों ने इसका सत्यानाश कर दिया। बैल खोल दिए गए, भोला बैलों को लेकर घर चला गया और सुजान डांड फेंकते रहे। आधे घंटे बाद वो घर आया, थकान का नाम नहीं था, लेकिन नहा खाकर आराम करने के बदले उसने बैलों को सहलाना शुरू किया, पीठ पर हाथ फेरा, पैर मले, बैलों की तो पूंछे खड़ी हो गई। सुजान की गोद में सिर रखकर उन्हें बहुत सुख मिल रहा था। बहुत दिनों के बाद बैलों को ये आनंद प्राप्त हुआ था, उनकी आंखों में कृतज्ञता भर गई, मानो वो कह रहे हों, अब हम तुम्हारे साथ हैं, दिन रात काम करेंगे। अन्य किसानों की भांति भोला अभी कमर सीधी ही कर रहा था कि सुजान ने फिर हल उठा लिया, खेत की तरफ चल दिया और दोनों बैल उमंग से भरे दौड़े चले जा रहे थे, जैसे कि उन्हें स्वयं खेत में पहुंचने की जल्दी हो। भोला ने मढ़ैया में लेटे लेटे पिता को आते देखा, पर उठ नहीं पाया, उसकी हिम्मत छूट गई, कभी इतना परिश्रम नहीं किया था। उसे तो बनी बनाई गृहस्थी मिल गई थी, उसे तो बस ज्यों का त्यों चला रहा था, क्या मालूम था कि ये सब चीजें क्या होती है। बुलाकी ने कहा, भोला तुम्हारे दादा हल लेकर गए हैं। तो भोला ने भी कह दिया, जाने दो अम्मा, अब मुझसे इतना काम नहीं होता। सुजान भगत के इस नवीन उत्साह पर गांव में टिकाएं हुई, निकल गई सारी भक्ति, बना हुआ था, माया में फंसा हुआ है आदमी, काहे को भूत है। मगर भगत जी के द्वार पर अब फिर से साधु संत आसन जमाए देखे जाते हैं, उनका आदर सत्कार होता है। अब की उसकी खेती ने सोना उगला है, बखारी में तो अनाज रखने की जगह नहीं है। जिस खेत में 5 मन मुश्किल से होता था, आज उसी खेत में 10 मन की उपज हुई है। चैत का महीना, खलिहानों में सतयुग का राज, जगह जगह अनाज के ढेर, यही समय है जब किसानों को भी थोड़ी देर के लिए अपना जीवन सफल मालूम होता है, गर्व से उनका हृदय उछलने लगता है। सुजान भगत टोकरों में अनाज भर भर कर देते थे और दोनों लड़के टोकरे लेकर घर में अनाज रखाते। कितने ही भाट और भिक्षुक भगत को घेरे हुए थे, आज उनमें वो भिक्षुक था जो आज से 8 महीने पहले भगत के द्वार से निराश होकर लौटा था। अचानक भगत ने उस भिक्षुक से पूछा, क्यों बाबा आज कहाँ कहाँ चक्कर लगा आए? भिक्षुक ने कहा, अभी तो कहीं नहीं गया भगत जी, आप ही के पास पहले आया हूँ। ऐसा है, जाओ तुम्हारे सामने ये ढेर लगा है, इसमें से जितना अनाज उठाकर ले जाते बने ना, ले जाओ, भगत ने नम्रता से कहा। भिक्षुक ने शुभ्ध नेत्रों से ढेर को देखा। जितना अपने हाथ से उठाकर दे दोगे भगत जी, उतना ले लूंगा। भगत ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुमसे जितना उठ सके उठा लो। भिक्षुक के पास चादर थी, उसने कोई 10 सेर अनाज उसमें भरा और उठाने लगा। संकोच के मारे अधिक भरने का उसे साहस नहीं था। भगत उसके मन का भाव समझ गए, बोले, बस इतना तो एक बच्चा उठा लेगा भिक्षुक जी, और ले लीजिए। भिक्षुक ने भोला की ओर संदिग्ध नेत्रों से देखकर कहा, मेरे लिए इतना काफी है। भगत ने कहा, नहीं तुम सकुचाते हो, अभी और भरो। भिक्षुक ने एक पसेरी अनाज और भरा और फिर भोला की ओर कातर दृष्टि से देखने लगा। उसकी ओर क्या देखते हो बाबा जी? मैं जो कहता हूँ वो करो, तुमसे जितना उठाते बने उठा लो। भिक्षुक डर रहा था कि कहीं उसने अनाज तो भर लिया
लेकिन भोला ने अगर गठरी नहीं उठाने दी तो कितनी ज्यादा बेइज्जती होगी और भिक्षुकों को हंसने का अवसर मिल जाएगा। सब यही कहेंगे कि भिक्षु कितना लोभी है, उसे और अनाज भरने की हिम्मत नहीं हुई। तब सुजान भगत ने चादर लेकर उसमें अपने हाथों से अनाज भरा और गठरी बांध कर बोले, ले जाओ, अब ये आपका है। भिक्षुक ने कहा, बाबा इतना तो मुझसे नहीं उठेगा। भगत ने भी जोर देके कहा, अरे इतना भी नहीं उठेगा, बहुत होगा तो मन भर, भला जोर तो लगाओ, देखो उठा सकते हो कि नहीं, उठाओ उठाओ उठाओ। भिक्षुक ने गठरी को आजमाया, गठरी भारी थी, जगह से हिली भी नहीं। तब उसने भगत से बोला, भगत जी ये मुझसे नहीं उठेगी, और उसने हाथ जोड़ लिए। भगत ने कहा, अच्छा बताओ किस गांव में रहते हो। भिक्षुक ने हाथ जोड़कर कहा, बड़ी दूर है भगत जी, अमूला का नाम तो सुना है आपने। बस भगत जी क्या करते, उन्होंने कहा, अच्छा आगे आगे चलो, मैं पहुंचा दूंगा। फिर क्या था, ये कहकर भगत ने जोर लगाकर गठरी उठाई और सिर पर रख कर भिक्षुक के पीछे पीछे चल दी। देखने वाले भगत का ये पौरुष देखकर चकित हो गए। उन्हें क्या मालूम था कि भगत पर इस समय कौन सा नशा है। 8 महीने के निरंतर अविरल परिश्रम का आज उन्हें फल मिला था। आज उन्होंने अपना खोया हुआ अधिकार फिर से पा लिया था। वही तलवार जो केले को भी नहीं काट सकती, सान पर चढ़कर लोहे को काट देती है। मानव जीवन में लाग बड़े महत्व की वस्तु है। जिसमें लाग है वो बूढ़ा भी हो तो जवान है, जिसमें लाग नहीं, गैरत नहीं, वो जवान भी मृतक है। सुजान भगत में लाग थी और उसी ने उन्हें अमानुषीय बल प्रदान कर दिया था। चलते समय उन्होंने भोला की ओर सगर्भ नेत्रों से देखा और बोला, बेटा ये भाट और भिक्षुक खड़े हैं, ध्यान रहे कोई भी यहाँ से खाली हाथ न लौट पाए, जिसको जितना चाहिए उससे ज्यादा देना। भोला सिर झुकाए खड़ा था, उसे कुछ बोलने का हौसला ना हुआ। वृद्ध पिता ने उसे परास्त कर दिया था और अपना अधिकार बता दिया था। सच कहा है किसी ने, ये अधिकार बहुत बड़ा होता है।

0: तो अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी सुजान भगत। अब अपनी रेडियो मित्र भारती को दीजिए अनुमति कार्यक्रम सुनो कहानी समेटने की। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।
1: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

आप, मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र प्रमिला, लेकर आई हूँ आज का भारत भारती कार्यक्रम। श्रोतो, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं सुप्रसिद्ध सूफी गायक वडाली ब्रदर्स का गायन।

हाजरीन, बडाली बंधुओं की तरफ से सभी को नमस्कार, जय हिंद, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। आपने गाना बहुत सुना है, ये वो शहर है, बहुत दफा आ चुके हैं, बहुत आनंद मिला है। हम जब भी आते हैं यही प्रार्थना करते हैं कि थोड़ा सा आशीर्वाद दे दो, हम गुनगुना लें। क्यों गाना सारी उम्र में नहीं आता, जब थोड़ा थोड़ा गाने का पता चलता है तो उम्र खत्म हो जाती है। तो इसलिए हम गाना गाने तो नहीं आए, बाबा जी की हाजिरी भरने के लिए आए हैं, कबूल कर लेना और थोड़ा सा गुनगुना लेंगे। आपकी दुआओं से शुरू करें।

0: जो हम लफज कह रहे हैं, ये जो दिन है ये रोज रोज नहीं आया करते। एक दूसरे से रलकर नहीं बैठ सकते, बातें नहीं कर सकते। अगर थोड़ा सा लफज का पता चल जाए तो ताली लगा दिया करो। हम कह रहे हैं आज की बात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी। वो ऐसे पता चलता है कि जैसे इनको पता ही नहीं चला
1: आज की बात।

0: साथ फिर नहीं होगी।
1: प्यार की बरसात।

अरे ताजदारों से बच के चलता हूं, ताजदारों से बच के चलता हूं, गमगुसारों से बच के चलता हूं, मुझको धोखा दिया सहारों।

0: अफसहारों से बच के चलता
1: हूं। जब गुरु गरीब नवाज को देखा तो क्या हुआ, ऐसे लगा कि जैसे मेरी ईद हो गई है। तुझे तकिया तो, तकिया एक पंजाबी का लफ्ज है, हिंदी में तुझे देखा

ताला तेरे कितने नाम हैं, तेरे लाखों करोड़ों ही नाम हैं। कोई तुझे राम कहता है, कोई रहीम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गौर कहता है। मेरे दो चार याद नाम हैं, वो शुरू लेने लगा हूँ।

0: है। काव्य के दर चार हैं, दर किसको बोलते हैं? दरवाजों को। गुरुद्वारे के भी दरवाजे चार हैं, दर चार हैं। चार समाज हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। काव्य के दर चार हैं। अरे भैया, जिसको मानते हो अपने अपने दरवाजे से आ जाओ, आना तो एक ही जगह, एक ही बाप के नाम है सभी।
1: काबे के दरवाजे
0: पता चला नहीं? पता चला
1: काबे के दर, काबे के दरवाजे।
0: रास्ता तो एक है,
1: रास्ता तो एक
0: है। पर्दा उठा के देख लो, ये दिल का पर्दा। पर्दा उठा के देख लो,

0: मस्जिद, इधर मंदिर, इधर गुरुद्वारा, इधर गिरिजा, चारों समाजों ने अपना अपना बना लिया। हिंदुओं ने मंदिर बना लिया, सिखों ने गुरुद्वारा बना लिया, ईसाइयों ने गिरजा बना लिया, मुसलमानों ने काबा बना लिया।
1: इधर मस्जिद, इधर मस्जिद, इधर मंदिर, इधर गुरुद्वारा, इधर गिरजा,
0: इधर मस्जिद, इधर मंदिर, इधर गुरुद्वारा, इधर गिरजा। अरे ये सभी खुदा की घर हैं, सभी खुदा की घर हैं। इधर गिरजा, उधर

तुझको गिरना चाहिए, सभी खुदा के घर हैं, तुझको गिरना चाहिए उनके चरणों में। तो क्या हुआ कि राम जी मंदिर में है, हमारा प्रभु जो है गुरुद्वारे में, खुदा का बेटा खुदा यीशु मसीह वो तो गिरजे में रहता है, वो तो काबे में है। एक शायर लिखता है, जिथे दसदा है उथे वसदा ही नहीं, नहीं पता चला, जिथे दसदा है उथे वसदा ही नहीं।

सुखा जी कहिंदे ने पढ़न वाले नूं जिहड़े रोज जागे पढ़दे ने कदी नज़र नहीं आया, नज़र नहीं आया तो काली रात ही है। खाना

जदों लब्बा ते अपने ही घरों लब्बा मेहरबान जदों मुर्शिद दी जात मुर्शिद कहिंदे ने गुरु नूं गुरु ने बताया अरे जो तेरे बीज भीतर बोल रहा है वही तो खुदा है ये ढूंढने की बात है तो गुरबाणी कहती है ए मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण तेरी भुल भुलाया तेनू खो लखी तू को है मिल सतगुर तेरा खुल जाए उकबा फिर पता लगे तू जो है ते बाबा बुले शाह कहिंदे इन अखियों से राम न दिखै गुरबाणी कह रही इन आँखों से राम न दिखै ओ आखे मन माही ए आखे दस बीस रावण की जिन्हें राम पछाता नाही बाबा बुले शाह कहिंदे ने बुलिया रब ते तेरे अंदर है तेनू ते नजर नहीं आ रहा बुलिया रब ते थो वख नहीं तेरी वेखण वाली अख नहीं तेनू ताइये देंदा दख नहीं तो क्या शुरू हो गया

0: शेर ने क्या लिख दिया, अरे हम क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे,
1: हम क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे,
0: कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजा बना बैठे,
1: कहीं मस्जिद कहीं मंदिर गुरुद्वारा गिरजा बना बैठे।
0: अरे हमसे तो अच्छी जात परिंदों की, हमसे तो अच्छी जात परिंदों की, कभी मस्जिद पे

0: क्यों? अरे हम क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे? कहीं मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा गिरजा बना बैठे? अरे हमसे तो अच्छी जात परिंदों की कभी मस्जिद पे कभी मंदिर पे जा रही।
1: तेरा नाम ना।
0: बड़े भैया एक शेर बोलते हैं, बात ही आदमी आई,
1: जिते दसदा है उथे वसदन, किथे वसदा इहदे नाल मेल, जिते दसदा है उथे वसदा ही नहीं, किड्डी 420 वाली बात। फकीर मस्जिद चला गया, मसीते जाके कहिंदा है कहीं खुदा दे नाम पिछे मैनू एक रोटी दे दे। मौलवी ने क्या है नहीं, अच्छा तो मंदिर में चले गए। पुजारी ने कह लगे चलो एक रोटी दे दे, कह लगे बाबा टाइम ही कोई नहीं है नहीं। नाराज जा होके ठेके से जा बैठा, चलिया किधर आए हो? कह लगे मैंने रोटी खानी। कहता ये ले 100 रुपया रोटी भी खा। कहता वाह वाह खुदा, आपने टिकाना तो मुझे मंदिरों मस्जिदों का दिया है, तो रहता ठेके में आ गया।

बाबा निज़ामुद्दीन औलिया उलिया जो दिल्ली वाले, उनका स्टेशन भी बजता है निज़ामुद्दीन, उनके शिष्य थे अमीर खुसरो साहब, उनका कलाम लिखा उन्होंने अपने गुरु की शान में। जो निज़ामुद्दीन औलिया उला थे बाबा फरीद साहब के शिष्य थे। तो शुरू करने जा रहे हैं कलाम।

जो जागी पी के संग संग

0: सिंह।
1: तन मोरा, तन मोरा मन मोरे प्रीतम का, जो दोनों

0: जैसे दरिया में छल्ले लगती हैं, बीच में समा जाती हैं, ऐसे ही गुरु का एक प्यार है, वो भी एक सागर है।
1: दरिया
0: उल्टी धार कैसे है,

का जुल्टी बगीधार जो उबरा जो गर्दन उठा के चलता कहता मैं हूं जो उबरा सो डूब गया जो डूबा सो पार।

0: खुसरोबाजी प्रेम की मैं खेलू पी के संग रे,
1: खुसरो में बाजी बाजी

0: खेलूं पी के संग,
1: मैं तो खेलूं पी के संग।
0: अरे जीत गई तो

पिया से नैन लगाया ही रे, जब पिया से नैन मिल गए, एक काग आ गया काग चूंढने के लिए, नैन खाने लगा तो कहने लगी, कागा तन मन खाइयो, अरे सगला खाइयो मांस,

लगाया, काग नहीं मुड़ रहा। काग ने जब एक लगाया ठूंगा, चूंढने लगा तो कहने लगी, कागा एक मेरा वास्ता है खुदा के लिए। कागा नैन निकाल लो, अरे कागा नैन निकाल लो, पर पिया पास ले जाए, अरे पहले दर्श दिखाई के पीछे लीजियो खाए। मैं तो पिया से नैना

लास्ट में एक शेर है मेरा पंजाबी का, कागा खामी मास मेरा, कागा खामी मास मेरा, ये दो

0: हरी के पास खेजी
1: अपनी सपना के पी के पास गई सब देखी पिया की मोहे

चल आबा ने दे कमसनी पे शबाबा ने दे। मरने जीने का फिर होगा फैसला, जरा उनका जवाब आने दे। अरे खुदाया तेरी खुदाई को भी छोड़ दूंगा,

धन धन भाग मोरे सजनी जिनी ऐसो सुंदर प्रीतम पायो, होरी खेलो चिस्ती हो खाजा नजामो धीन।

आज के भारत भारती कार्यक्रम में हमने आपको सुप्रसिद्ध सूफी गायक वडाली बंधुओं का गायन सुनवाया। अब ये कार्यक्रम खत्म करने की प्रमेला को दीजिए इजाजत। नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद को। देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।

0: अगर आपको दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें। ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
1: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस, वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
0: दो हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: तो ये था श्रोताओं आज का हमारा दोपहर का प्रसारण 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। हमारा प्रसारण यूं ही रात्रि 10 बजे तक जारी रहेगा, दीजिए अनुमति पूर्वाखले को और सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 186 से वाचन। ऋषि हैं अगस्त्य मैत्रावरुणी, देवता हैं अश्विनी कुमार और छंद है त्रिष्टुप।
1: उत न ईम मतयोश्वयोगाः शिशुम न गावस्तरुणं रिहन्ति तमीम गिरो जनयो न पत्नीहि सुरभिष्टमं नराम नसंत। जिस प्रकार गौएं अपने बछड़ों को स्नेह से चाटती हैं, उसी प्रकार श्रेष्ठ बुद्धियां उन चिर युवा इंद्रदेव के प्रति अपना स्नेह प्रकट करती हैं। उन महायशस्वी इंद्रदेव को हमारी स्तुतियां उसी प्रकार आकर्षित करती हैं जिस प्रकार प्रजननशील स्त्रियां पतियों को आकर्षित करती हैं। उत न ईम मरुतो वृद्धसेनाः स्मद्रोदसी समनसः सदन्तु पृषदश्वासो वनयो नरथा ऋषादसो मित्रयुजो न देवाः। रथों पर विराजमान रक्षक गणों के पास समान दुष्ट शत्रुओं को विनष्ट करने वाले मित्रों के समान पारस्परिक स्नेह रखने वाले विलक्षण अश्वों से युक्त समान मनोभावों से युक्त तेजस्वी महान सामर्थ्यों से युक्त मरुदगण तथा द्यावा पृथ्वी हमारे यज्ञ में पधारें। प्रनु यदेशाम महिना चिकित्रे प्रयुञ्जते प्रयुज्यस्ते सुवृक्ति अध यदेशाम सुदिने न शरुर विश्वमेरिणम पुरुषायंत सेनाः। श्रेष्ठ स्तुतियों से हर्षित होकर मरुदगण अश्वों को अपने रथ में जोड़ते हैं। तत्पश्चात दिन में जिस प्रकार प्रकाश सर्वत्र संचरित होता है, उसी प्रकार मरुतों की सेना ऊसर भूमि को जलों से सींच कर उपजाऊ बनाती है। इससे इन मरुदगणों की ख्याति और भी अधिक बढ़ जाती है। प्रो अश्विना ववसे कृणुध्वम प्रपूषणम स्वतवसो हि संति अद्वेशो विष्णुर्वात रिभुक्षा अच्छा सुम्नाय ववृतीय देवान। हे मनुष्यों, अपनी रक्षा के लिए अश्विनी कुमारों पूषा देव विद्वेष रहित विष्णुदेव वायुदेव ऋभुओं के स्वामी इंद्रदेव इन सभी देवों की स्तुति करो। हम भी सुख की प्राप्ति के लिए इन देव समूह की प्रार्थना करते हैं। इयं सा वो अस्मे दीधितिर यजत्रा अपि प्राणी च सदनी च भूयाः नीया देवेषु यतते वसुयुर् विद्यामेशम व्रजनम जीरदानुम। हे यज्ञदेव, आपका जो तेज देवों को ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है, मनुष्यों की अभिलाषाओं को पूर्ण कराने वाला तथा आवास प्रदान करने वाला है। वह दिव्य तेज हम अपने अंदर धारण करें, जिससे हम मनुष्य उत्तम अन्न, उत्तम बल और दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त कर सकें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 186 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
2: हम बोल रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद से, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम भक्ति संगीत।

हमें सदा प्रभु का स्मरण करने के साथ ही अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहना चाहिए। इस तरह ईश्वर में अर्पण किए मन और बुद्धि से होकर निसंदेह हम ईश्वर को ही प्राप्त होते हैं।

किसी व्यक्ति को परमेश्वर बहुत ही दूर जान पड़ता है तो किसी व्यक्ति को परमेश्वर निकट ही महसूस होते हैं। दरअसल परमेश्वर सर्वव्यापी है, यानी वो सब जगह उपस्थित है और सबको देख भी रहा है।

प्रलोभन या लालच कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह उस व्यक्ति को कभी भी प्रभावित नहीं कर सकता जिसकी आत्मा जागृत हो, आत्मविश्वास अटल हो और स्वभाव कोमल हो।

क्षमा से क्रोध को काबू किया जा सकता है, उदारता से स्वार्थ पर विजय पाई जा सकती है, प्रेम से नफरत को हराया जा सकता है और ठीक इसी तरह सत्य से असत्य को हराया जा सकता है।

बुद्धिमान मनुष्य वो है जो कभी ऐसा काम न करे जिसका बाद में उसे पछतावा हो। वो सदा ऐसा कार्य करता है जो उसके और उसके आसपास के लोगों के मन को प्रफुल्लित करे।

मनुष्य की सबसे बड़ी गलती होती है अपनी आत्मा की आवाज को नहीं पहचानना। जो मनुष्य अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर भी अनसुना करता है, उससे बड़ा दीन कोई नहीं है।

मनुष्य अपने बुरे कर्म दुनिया के लोगों से और अपने प्रियजनों से तो छिपा सकता है, लेकिन वो अपनी अंतरात्मा और हृदय से इसे नहीं छिपा सकता। ये बुरे कर्म मरते दम तक उसके मन पर बोझ बने रहते हैं।

कोई भी अच्छा या बुरा उसके फल से ही माना जाता है। इसी प्रकार मनुष्य की भी सही पहचान उसके कर्मों से होती है। यदि कर्म सही हैं, तो मनुष्य अच्छा है, अन्यथा उसे पापी की श्रेणी में माना जाता है।

भक्ति और योग के रास्ते पर मनुष्य तब कामयाबी से आगे बढ़ सकता है जब वह आनंद के मायाजाल से मुक्त हो। इसकी प्राप्ति का सबसे सरल तरीका है परमात्मा का ध्यान करना।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति संगीत 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए। रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुन सकते हैं 7:00 से रात्रि 10:00 तक। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल, देश के लिए।

के सारे दरवाजों पर ताला है, तुम्हें इनसे बाहर निकलना होगा, बंद दरवाजों को तोड़ना होगा, आवाज उठानी होगी तुम्हें बर्बर सत्ता के विरुद्ध, यदि तुम चाहते हो न्याय, आजादी और स्वाभिमान से भरी जिंदगी। तुम उठाओ परचम इनकलाब का, करो बातें रोशनी की, रचो तुम धुन बगावत की, तुम युवा हो, उठो प्रबल हुंकार की तरह। युवा शक्ति से समय का ये आह्वान हमेशा से रहा है, क्योंकि युवाओं से ही किसी भी देश का भविष्य है, युवाओं से ही सपने हैं, युवाओं से ही प्रगति है, युवाओं से ही समाधान भी। समय साक्षी है कि जब कभी किसी देश या समाज पर अंधकार के बादल छाए हैं, अन्याय सत्ता पर काबिज हुआ है, तब युवा शक्ति ही उनके विरुद्ध खड़ी हुई है क्रांति की भाषा बनकर। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में ऐसी अनगिनत कहानियां दर्ज हैं। कितने ही प्रतिभाशाली छात्रों ने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, सुनहरा भविष्य छोड़ दिया, घर परिवार सब कुछ छोड़कर वो कूद पड़े स्वाधीनता समर में। संकल्प ऐसा कि या तो भारत को आजाद करवाएंगे या अपने प्राण न्योछावर कर देंगे। देश पर अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले एक ऐसे ही महान देशभक्त थे लाल पद्मधर सिंह। एक अत्यंत मेधावी छात्र, आंखों में सपना था कि पढ़ लिखकर एक डॉक्टर बनेंगे और लोगों की सेवा करेंगे, लेकिन इस व्यक्तिगत सपने से पहले देश के लिए एक बड़ा सपना उनकी आंखों में था, सपना पूर्ण स्वराज का, सपना अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का, सपना भारत की आजादी का।

लाल पद्मधर सिंह का जन्म 14 अगस्त सन 1914 को सतना जिले के पास स्थित कृपालपुर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम लाल प्रद्युम्न सिंह था और माताजी का नाम श्रीमती राजकुमार सिंह था। उनकी आरंभिक शिक्षा रीवा में हुई। वो बचपन से ही अत्यंत ईमानदार, संवेदनशील और स्वाभिमानी थे। यूं तो अपने विनम्र स्वभाव और अच्छे व्यवहार के कारण वो आसपास के लोगों के बीच काफी लोकप्रिय थे, लेकिन अन्याय सहन करना उनके स्वभाव में नहीं था। आज भी रीवा और आसपास के क्षेत्र में उनके विषय में जनश्रुति है कि जब वो रीवा में कक्षा 8 के विद्यार्थी थे, तब विज्ञान की प्रयोगशाला से एक प्रिज्म चोरी हो गया। इस घटना से प्रधान अध्यापक बहुत नाराज हुए और बिना सबूत ही सभी छात्रों पर चोरी का आरोप लगा दिया। लाल पद्मधर सिंह ने कहा कि वो निर्दोष हैं, लेकिन प्रधान अध्यापक ने उन्हें डांटते हुए अपशब्दों का प्रयोग किया। इतना ही नहीं, उनके कमरे की तलाशी भी ली गई। इस घटना से लाल पद्मधर सिंह अत्यंत आहत हुए और उन्होंने क्रोध में आकर प्रधान अध्यापक पर बंदूक तान दी। स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया। दंड स्वरूप उन पर प्रतिबंध लगाकर उन्हें स्कूल से निष्कासित कर दिया गया। इस घटना ने ये जता और बता दिया था कि शोषण और अत्याचार के विरुद्ध युद्ध में वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। देशभक्ति की भावना भी उनके भीतर पारिवारिक वातावरण के कारण शुरू से ही थी। जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे, ब्रिटिश राज की नीयत को बखूबी समझ रहे थे। उन दिनों होने वाले देशव्यापी आंदोलन से भी वो बहुत प्रभावित थे। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, पूर्ण स्वराज की मांग, वंदे मातरम की अनुगूंज और क्रांतिकारियों का बलिदान, इस पूरे वातावरण का बहुत गहरा प्रभाव उन पर पड़ा और देश को आजाद कराने का संकल्प उनके भीतर प्रबल होता गया।

सन 1942 में ब्रिटिश राज को ललकारते हुए जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की, तब लाल पद्मधर सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे। सन 1930 में पूर्ण स्वराज की मांग के बाद से लगातार यहां का छात्र संघ राजनैतिक गतिविधियों में सक्रिय रहा करता था। 1930 में ही यहां दो प्रस्ताव भी पारित हुए थे। पहला ये कि यूनियन भवन पर राष्ट्रध्वज फहराया जाएगा और दूसरा था कि सभी छात्र खादी वस्त्र पहनेंगे। छात्र संघ लगातार स्वाधीनता आंदोलन की घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से जब भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ तो मुंबई, दिल्ली, पटना और वाराणसी के साथ साथ इलाहाबाद तक इस आंदोलन की चिंगारी पहुंची। भारत छोड़ो आंदोलन में यहां के छात्रों का नेतृत्व किया उनके लोकप्रिय नायक लाल पद्मधर सिंह ने। योजना बनाई गई कि 12 अगस्त 1942 को इलाहाबाद की जिला कचहरी तक छात्रों का जुलूस जाएगा और वहां झंडा फहराया जाएगा। यूनियन भवन पर सभा हुई और फिर छात्र छात्राओं का जुलूस आगे बढ़ा। इस जुलूस में छात्र नेता यदुवीर सिंह, हेमवती नंदन बहुगुणा, राजमंगल पांडे, प्रकाश मेहरोत्रा, मानस बिहारी मुखर्जी आदि चल रहे थे। इस प्रदर्शन की भनक अंग्रेजी हुकूमत को पहले ही लग चुकी थी, इसलिए रास्ते में पुलिस तैनात कर दी गई थी। जुलूस में छात्राएं आगे आगे चल रही थीं। अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे से पूरा वातावरण गूंज उठा था। जुलूस का नेतृत्व लाल पद्मधर सिंह कर रहे थे। जुलूस आगे बढ़ रहा था कि तभी ब्रिटिश सैनिकों ने उसे रोकने का प्रयास किया। भीड़ को रोक लिया गया। सभी को वापस जाने की चेतावनी देते हुए पुलिस ने छात्राओं पर बंदूक तान दी। इस पर भी जुलूस वापस नहीं लौटा। अब पुलिस ने हवाई फायरिंग की। चारों ओर भगदड़ मच गई। तभी लाल पद्मधर सिंह ने पुलिस को ललकारते हुए कहा कि लड़कियों पर क्यों बंदूक तानते हो? हिम्मत है तो मेरे सीने पर गोली चलाओ। इसके साथ ही हाथों में तिरंगा लिए नारे लगाते हुए लाल पद्मधर सिंह आगे बढ़ने लगे। अंग्रेज सिपाहियों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। लाल पद्मधर सिंह शहीद हो गए। पूरे शहर में दुख की लहर दौड़ गई। भारत मां का एक सच्चा सपूत देश पर बलिदान हो गया। उनके बलिदान को देखकर अनगिनत छात्र इस आंदोलन में कूद पड़े। लाल पद्मधर सिंह के बलिदान के बाद अंग्रेजों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ को 1 नवंबर 1942 को भंग कर दिया था। बाद में अनेक प्रयासों के बाद 1945 में छात्र संघ फिर बहाल हुआ। आगे चलकर छात्र संघ भवन का नाम शहीद लाल पद्मधर सिंह के नाम पर कर दिया गया। विश्वविद्यालय परिसर में उनकी प्रतिमा आज भी स्थापित है, जो उनके बलिदान की गाथा गाती है, और आज भी छात्र संघ में उनके नाम की शपथ ली जाती है। ऐसे अमर बलिदानी को हम शत शत नमन करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए।

0: अपने इस कार्यक्रम में हम मध्य भारत के जनजातीय राजवंशों के इतिहास और उनके योगदान पर चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुश्री पूजा सक्सेना। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो आजाद हिंद के स्टूडियो में।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: इससे पहले कि हम इस एपिसोड में अगली कुछ बातें करें पूजा जी से, आपको जरा पहले की बात याद दिला देते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने आपको क्या क्या जानकारी दी थी। संक्षिप्त में आपको बताते हैं, इस श्रृंखला की पहली कड़ी में हमने सुना था मध्य भारत में गोंड राज्यों की स्थापना किस प्रकार हुई, गढ़ा कटंगा के गोंड राजवंश के प्रतापी शासक संग्राम शाह के बारे में जाना। संग्राम शाह सन 1510 में गढ़ा के शासक बने और 1543 ईस्वी तक गढ़ा के शासक रहे। राजा संग्राम शाह का प्रशासनिक केंद्र गढ़ा कटंगा यानी जबलपुर का आज का मदन महल था। संग्राम शाह के अधिकार क्षेत्र में 52 गढ़ थे जो उनके विस्तृत और सुदृढ़ राज्य के परिचायक हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित सिंगौरगढ़ उनका सबसे प्रमुख किला था। संग्राम शाह का बनाया हुआ बाजना मठ आज भी जबलपुर में स्थित है। संग्राम शाह ने साहित्य में अत्यधिक योगदान दिया और रस रत्नमाला ग्रंथ की रचना की। उनके द्वारा सोने के सिक्के चलाए गए जिससे गढ़ा राज्य की आर्थिक समृद्धि और अनेक जानकारियां हमें मिलती हैं। और आज की कड़ी में हम सुनेंगे इससे आगे की कहानी सुश्री पूजा सक्सेना से। पूजा जी पुरातत्वविद हैं, आपने मध्य भारत के गोंड राजवंशों पर शोध किया और पिछले 23 वर्षों से आप इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। तो पूजा जी, संग्राम शाह की मृत्यु सन 1543 में हो गई, उसके बाद गढ़ा राज्य का क्या हुआ?
1: संग्राम शाह के 33 सालों के राज्य ने गढ़ा को बहुत सुदृढ़ बना दिया। उनके राज्य में 52 गढ़ थे जो उनके विस्तार को बताते हैं
0: जी।
1: साथ ही संग्राम शाह ने जो सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, धार्मिक और साहित्य में योगदान दिया वह भी अतुलनीय था। वह एक मजबूत गढ़ा राज्य छोड़कर 1543 में चले गए
0: जी।
1: संग्राम शाह के 2 पुत्र थे, एक का नाम था दलपत शाह और दूसरे का चंद्र शाह। दलपत शाह का विवाह हुआ दुर्गावती नाम की एक कन्या से जिन्हें हम भारतीय इतिहास के स्वर्ण हस्ताक्षर मानते हैं, वीरांगना रानी दुर्गावती
0: जी।
1: संग्राम शाह की मृत्यु के उपरांत उनका जो पुत्र था दलपत शाह, वो गढ़ा का अगला राजा बना 1543 में
0: जी।
1: राजा दलपत शाह ने अपनी राजधानी गढ़ा कटंगा या मदन महल को ना रखकर सिंगौरगढ़ को बनाया,
0: यानी जो दमोह में जो किला था
1: वहां। हाँ, वहां पर सिंगौरगढ़ में
0: जी।
1: सिंगौरगढ़ हमने जैसा पिछली बार सुना था कि संग्राम शाह के 52 गढ़ों में से प्रमुख गढ़ था
0: जी।
1: और बहुत सुरक्षित स्थान पर था। दलपति शाह के समय भी साहित्य को बहुत प्रश्रय मिला, यद्यपि उनका कार्यकाल बहुत छोटा था
0: जी।
1: हमने जैसा पिछली बार सुना था कि मैथिल ब्राह्मण थे महेश ठाकुर और दामोदर ठाकुर, तो दलपत शाह के समय भी महेश ठाकुर ने अनेक ग्रंथों की रचना की जो भारतीय साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसके साथ ही एक बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार हुए केशव लोगाक्षी ठाकुर
0: जी,
1: उन्होंने भी बहुत योगदान दिया। उन्होंने धर्म, न्याय, मीमांसा पर खूब लिखा
0: जी।
1: और आज भी पढ़ा जाता है।
0: इससे जुड़े 2 सवाल मेरे मन में आ रहे हैं कि ये तो जो दमोह है और जबलपुर भी थे, आज भी ये जो क्षेत्र है बुंदेलखंड में ही आते हैं, तो क्या ये जो लेखन था ये बुंदेली भाषा में लिखा गया था उस समय भी या कोई और भाषा प्रचलित थी?
1: नहीं, जो गढ़ा के गोंड राजाओं के समय जो साहित्य लिखा जा रहा है वह सभी संस्कृत में है।
0: संस्कृत में है
1: जी हाँ। संग्राम शाह स्वयं संस्कृत के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, तो दलपत शाह ने भी उसको कंटिन्यू किया और संस्कृत में ही साहित्य लिखा गया।
0: तो साहित्य में दलपत शाह की विशेष रुचि थी, उनका अधिकार था, इसलिए उनके इस कार्यकाल में इतने सारे ग्रंथ रचे गए, या कमोबेश ऐसा होता ही था उस समय कि सबके यहाँ पे कोई ना कोई कालिदास होते ही थे?
1: हाँ, साहित्य के रचनाकार होना एक आम बात है, लेकिन उस काल में यदि राजा साहित्य के प्रति या स्थापत्य के प्रति प्रेम रखता है
0: जी,
1: और उसको प्रश्रय देता है जो साहित्यकार है या कलाकार है, तो फिर वो अच्छे से पनप पाता है। तो हम देख रहे हैं चाहे संग्राम शाह का काल हो चाहे दलपत शाह का, दोनों ही के समय में साहित्य का खूब अच्छा उद्भव हुआ।
0: तो मैम, जैसे कि आपने बताया कि बहुत कम वो शासन कर पाए, सिर्फ 7 साल का उनका वो शासन काल रहा, तब भी वो उल्लेखनीय शासन काल हम कह सकते हैं और कहा जाता है, और तब उनके जो पुत्र थे उनकी भी आयु बहुत कम थी, वो शैशवावस्था में थे, तो फिर आगे शासन कैसे हुआ?
1: दलपत शाह की मृत्यु 1550 में हो गई और उस समय उनकी जो रानी थी दुर्गावती
0: जी,
1: उनकी उम्र कोई 25-26 वर्ष की रही होगी और दलपत शाह का एक पुत्र था वीर नारायण जो लगभग 4-5 वर्ष का रहा होगा
0: जी।
1: ये एक बहुत कठिन समय था, अब गढ़ा के पास कोई राजा नहीं था, तो उस समय रानी ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और फिर से वो उठ खड़ी हुई और उन्होंने गढ़ा के राज्य को संभाला।
0: लेकिन क्या ऐसे कदम उठाए कि राज्य संभल गया और फिर से राज्य ने अपना विस्तार किया?
1: दलपति शाह के दो विश्वस्त राज दरबारी थे
0: जी।
1: एक का नाम था आधार कायस्थ और दूसरे का था मान ब्राह्मण, बहुत विश्वस्त थे ये इन दोनों।
0: जैसे कि नाम से एक चीज आई कि आपने कहा आधार कायस्थ और मान ब्राह्मण, क्या ये ऐसे सरनेम थे, आज सरनेम जिस तरह के चल रहे हैं तो क्या ये इसी तरह के सरनेम हुआ करते थे, पहचान हुआ करती थी सीधे सीधे नाम के आगे?
1: जी हाँ, ये जो हम आजकल जिस तरीके से सरनेम लगाते हैं
0: जी,
1: वो लगाना बहुत बाद में शुरू हुआ
0: जी।
1: मेरे ख्याल से तो स्वतंत्रता के बाद में, जब फॉर्म भरे जाने लगे।
0: अच्छा,
1: तब ये हुआ कि
0: दस्तावेजीकरण
1: हुए, उससे पहले से ज्यादातर लोग अपना जिस तरीके से आज सरनेम लगाते हैं वैसे नहीं लगाते थे, कुछ और ही, या तो जैसे प्रसाद है, कुमार है, इस तरीके से छोड़ दिया करते थे
0: जी हाँ।
1: या फिर उसके आगे कुछ ब्राह्मण है, इस तरीके का कुछ ना कुछ आता था। लेकिन ये दिखाता है कि किस प्रकार से सब मिलकर एक शासन को संभाल रहे हैं
0: जी,
1: कोई विभेद
0: सभी,
1: नहीं।
0: सभी हाँ। वर्गों का योगदान
1: जी हाँ, सभी वर्गों का योगदान है
0: जी। तो श्रोताओं देखिए हाँ। हम बात कर रहे हैं पुरातत्वविद से, लेकिन कितनी अच्छी अच्छी जानकारियां, छोटी छोटी जानकारियां जिसमें इंटरेस्ट आता है हम सबको, वो निकल करके आ रही जी। पूजा जी,
1: तो दलपत शाह के जो दोनों विश्वस्त अधिकारी थे आधार कायस्थ और मान ब्राह्मण, तो इन दोनों ने रानी दुर्गावती को सलाह दी कि आप राजकुमार वीर नारायण को, जो कि 4-5 साल के हैं, उन्हें अगला राजा घोषित कर दें जल्दी से जल्दी, क्योंकि आप जानते ही हैं कि राजवंशों में षड्यंत्र बहुत हुआ करते थे। और इसके साथ ही रानी स्वयं वीर नारायण की, या जो राजा बनेंगे उनकी संरक्षिका बन जाए, यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि वीर नारायण नाम के राजा होंगे और राजकाज संभालेंगी उनकी माँ दुर्गावती
0: जी।
1: और ऐसा ही हुआ, रानी दुर्गावती ने जल्दी ही वीर नारायण को अगला राजा घोषित करा दिया और वो उसकी संरक्षिका बनी और उन्होंने राजकाज संभाल लिया। तुरंत ही लोक उपयोगी कार्य करने शुरू कर दिए, उन्होंने अनेक तालाब बनवाए जो कि हम जबलपुर में देखते हैं और बहुत सारे मठ मंदिर भी बनवाए। इससे पहले कि वो ये सब करती, उन्होंने गढ़ा राज्य का सुदृढ़ीकरण भी किया, उसकी सीमाएं सुरक्षित की, जितने भी गढ़ थे उनको ठीक कराया और साथ ही उसका एकीकरण किया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी राजधानी को बदला।
0: अच्छा,
1: दलपत शाह ने अपनी राजधानी को सिंगौरगढ़ चुना था
0: जी।
1: और रानी ने अपनी राजधानी बनाया या मुख्य प्रशासनिक केंद्र चौरागढ़ को बनाया। चौरागढ़ नरसिंहपुर जिले में है।
0: अच्छा, तो इसका मतलब कि हर राजा जो वहां पर इस गुण राजवंश का हुआ, मदन महल से राजधानी पहले दमोह आई और अब यहाँ पर नरसिंहपुर चली गई। तो चौरागढ़ का स्थापत्य और उसके सामरिक महत्व के बारे में कुछ प्रकाश डालिए।
1: चौरागढ़ मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में है और बहुत ही दुर्गम किला है, यहाँ तक पहुंच पाना आज भी बड़ा मुश्किल है।
0: अच्छा,
1: उस समय तो हम सोच भी नहीं सकते। ये गढ़ा राज्य की दक्षिणी सीमाओं से लगा हुआ था, संभवतः रानी को समझ में आया होगा कि इस ओर से हमको अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है। एक दूसरा, उस समय गढ़ा राज्य के पास अकूत संपत्ति थी, बहुत धन दौलत थी, तो उसकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी रानी के ऊपर थी। तो उन्हें लगा कि चौरागढ़ से अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती, तो उन्होंने चौरागढ़ को अपनी राजधानी बनाया। चौरागढ़ अपने आप में एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर है और ये पहाड़ी चारों ओर से बड़ी खड़ी चढ़ाई है इसमें, तो अगर आप चौरागढ़ जाएंगे तो घना जंगल है, कई प्रवेश द्वारों से निकलते हुए आप ऊपर किले तक पहुंचते हैं और चारों ओर से किला ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है, सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ है, तो ये बड़ा कठिन था वहां तक पहुंचना। चौरागढ़ में एक प्राकृतिक तालाब भी है ऊंची पहाड़ी के ऊपर
0: जी,
1: और हम जानते ही हैं कि किसी भी किले के लिए पानी का बहुत महत्व है। जब शत्रु की सेना घेर लेती है उस समय पानी होना, खाना होना और सेना में हिम्मत होना बहुत जरूरी है, तो ये बहुत जरूरी अंग था उस किले का। इसके साथ ही एक खास बात है इस तालाब की कि जब किले की पहाड़ी के नीचे जितने भी तालाब हैं वो सूख जाते हैं जब गर्मियों के दिन में, तब भी ये तालाब सूखता नहीं है, इतनी ऊंची पहाड़ी पर होने के बावजूद भी इसमें पानी भरा रहता है।
0: तो क्या मैम ये वही तालाब है जिसे लोग चमत्कारिक मानते हैं और मान्यता भी इस तालाब के बारे में कि इस तालाब के जल का आचमन करने से ही अनेक रोग दूर हो जाते हैं?
1: हाँ, बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि तालाब में पारस पत्थर है और वो इसे खास मानते हैं
0: जी।
1: तो तालाब से संबंधित एक लोक कथा भी हमको स्थानीय लोग सुनाते हैं
0: जी।
1: वो कहते हैं कि गढ़ा का एक राजा था और वो चाहता था कि वह अपनी प्रजा के लिए एक बहुत ही सुरक्षित गढ़ बनाए, एक किला बनाए। तो वो यहाँ वहाँ भटकता हुआ ढूंढ रहा था एक सुरक्षित स्थान जहाँ पर सारी खासकर जल हो। तो वो भटकते भटकते नर्मदा नदी के किनारे पहुंचा और उसने माँ नर्मदा से ये प्रार्थना की कि मुझे एक सुरक्षित स्थान चाहिए प्रजा की रक्षा के लिए, जहाँ आप भी हों।
0: अच्छा।
1: तो माँ नर्मदा प्रकट हुई और उन्होंने राजा से कहा कि तुम अपने अधोवस्त्र यानी ऊपर के वस्त्र और अपनी जो वस्तुएं हैं वो यहाँ पर छोड़ जाओ और जाओ, आगे तुम्हें सफलता मिलेगी। राजा जो है वो पहाड़ियों जंगल की तरफ आगे चल दिया
0: जी।
1: जब वो भटकते भटकते एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचा तो उसने वहां देखा कि वहां पर तो एक जल से भरा हुआ खूब बड़ा तालाब है
0: जी।
1: तो वो देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हो गया और उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उसने देखा कि उसके जो वो वस्त्र थे जो उन्होंने माँ नर्मदा को अर्पित किए थे और वस्तुएं वो सब भी उस तालाब के किनारे पड़े थे। तो उन्होंने उसको माँ नर्मदा की इच्छा मानी, उनका आशीर्वाद माना और फिर उसी जगह पर चौरागढ़ का किला बनाया। तो आज भी लोग मानते हैं इस तालाब में कि इसकी मेडिसिनल वैल्यू है और उसका पानी पीते हैं।
0: और इसी किले को चौगान या चौगांव भी कहा जाता है।
1: हाँ, ये वही किला है
0: जी। तो हम गोंड राज्य सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं, चौरागढ़ किला खुद भी बहुत ऊंची और खड़ी पहाड़ी पर है, तो उसके बारे में और आप कुछ हमें बताएं।
1: गोंड किलों की खासियत ही यह है कि वो बहुत सुरक्षित तरीके से इसको बनाते थे और जो सुरक्षा व्यवस्था उसके आसपास किया करते थे वह भी जानने लायक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि चौरागढ़ तो खुद ही बहुत ऊंची पहाड़ी पर है और ऐसी पहाड़ी जिसमें आप चढ़ाई करना बड़ा मुश्किल है, तीनों तरफ से वो खड़ी हुई पहाड़ी है और उसकी चारों तरफ से दीवारें भी बनी हैं और उसमें प्रवेश द्वार में भी आपको कई प्रवेश द्वार आप क्रॉस करोगे तब वहां तक पहुंच पाओगे। लेकिन खास बात जो देखने वाली है वो ये है कि चौरागढ़ के चारों ओर छोटे छोटे और भी गढ़ बने हुए हैं, यानी एक और सुरक्षा घेरा। तो इन किलों का नाम है, गढ़ों का नाम है, जैसे फतेहगढ़ है, नमुआगढ़ है, भंवरगढ़ है, पानागढ़ है, देवरीगढ़ है, ऐसे कई सारे किले हैं जो इस मेन जो फोर्ट है चौरागढ़ उसको चारों तरफ से सुरक्षा देते थे। और भी अगर हम ध्यान से देखें तो आसपास ये जो छोटे गढ़ थे इनके पास भी बहुत सारी गढ़ियां होती हैं। तो यानी बहुत छोटा किला, एक चौकी
0: जी हाँ,
1: मतलब एक छोटी चौकी है जो इन छोटे गढ़ों के पास है, यानी कि ये पूरी की पूरी सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी हलचल होगी तो
0: अगर आपकी पहली सुरक्षा चौकी में छोटी चौकी में भी कोई हलचल होती है तो फिर जो उससे बड़ा वाला जो किला है गढ़ी है वहां तक जाती है, बाद गढ़ तक जाती है और फिर आखिर में जाकर के
1: जी हाँ
0: जी। तो हम महल के अंदर तक ताकि पूरी सूचना पहले से पहुंच जाए
1: जी।
0: क्या बात है, क्या सुरक्षा व्यवस्था थी। और ये निश्चित रूप से रानी दुर्गावती का कुशल प्रबंधन ही कहा जाएगा।
1: जी हाँ बिल्कुल, रानी दुर्गावती का बहुत बड़ा योगदान है इसमें।
0: गोंड राजा हमेशा से इसी तरह के सुरक्षा प्रबंधन के लिए जाने जाते रहे, रानी दुर्गावती को भी ये जो प्रबंधन की जो कला है वो विरासत में मिली हम कह सकते हैं।
1: बिल्कुल विरासत में ही मिली, क्योंकि हम जानते हैं कि गोंड या दूसरी जनजातियां जंगलों में निवास करती हैं और ये जंगलों की बहुत अच्छी जानकार हैं। इनको जंगल के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, वहाँ के जीव जंतुओं के बारे में और जो दुर्गम रास्ते होते हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, सबके बारे में बहुत अच्छी जानकारी होती है। तो उससे संबंधित करके कैसे सुरक्षित किया जाए ये परंपरागत रूप से जानते हैं। तो जो मैं जल व्यवस्थाएं बता रही हूँ, कहाँ पर तालाब होना चाहिए इसकी जानकारी इनको बहुत अच्छी होती है, कैसे तालाब को निर्माण किया जाए, कैसे सुरक्षा व्यवस्थाएं की जाएं, इसमें इनकी महारत है।
0: किसी भी राज्य के कमजोर होने पर आसपास के राज्य या राजवंश हमला करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और यहाँ तो शासिका जो थी वो एक महिला थी, तो क्या हमेशा गढ़ा राज्य को मजबूत होने के बावजूद भी हमले का खतरा नहीं सहना पड़ता था?
1: ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है
0: जी।
1: कि जब कोई महिला शासन करती है तो आसपास के जो पुरुष वर्ग होता है या पुरुष राजा होते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये कमजोर शासन है
0: जी।
1: तो दुर्गावती के साथ भी यही हुआ और आसपास के जितने राज्य थे वो सब ये प्रयास करने लगे कि हम कैसे न कैसे गढ़ा राज्य पर अधिकार लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सबसे नजदीक का राज्य था जिसे कि मालवा का राज्य, जिसमें बाज बहादुर हुए, हमने सबने कहानी सुनी होगी रूपमती और बाज बहादुर की, तो ये जो बाज बहादुर हैं सबसे पहला हमला इन्होंने किया और ये गढ़ा की सीमाओं को लगातार छीन करने की कोशिश करते रहे, पर रानी दुर्गावती ने जो इसका जवाब दिया वो देखने लायक था।
0: निश्चित रूप से, तभी तो रानी दुर्गावती का नाम आज इतिहास में अमर है। तो मतलब उस न सिर्फ उस मुकाबले का बल्कि उसके बाद जितने भी मुकाबले हुए, हमने सुना है कि उन सभी मुकाबलों पर विजय पाई है रानी दुर्गावती ने।
1: हाँ, बहुत शुरू में हम देखते हैं कि रानी का एक युद्ध जो है वो मियाना अफगानों के साथ भी है। शेरशाह सूरी एक समय के लिए रायसेन आए थे, मध्य प्रदेश में रायसेन का किला है, जी हाँ, दिल्ली से। तो उन्होंने 6 माह तक रायसेन का किला घेर लिया था और किलेबंदी करके रखी, पर उसमें वो सफल नहीं हुए। 6 महीने बाद उन्होंने वहां पर जितने तांबे के सिक्के थे वो गलवाए और तोप बनवाई। उस तोप के बन जाने के बाद उन्होंने रायसेन किले पर अधिकार कर लिया। लेकिन उनकी सेना में बहुत सारे मियाना अफगानी आए थे
0: जी।
1: तो वो फिर इन क्षेत्रों में बस गए। तो जब रानी दुर्गावती ने राजकाज संभाला तो सबसे पहला उनका जो आमना सामना हुआ वो मियाना अफगानों की सेना से हुआ था
0: जी।
1: और रानी ने मियाना अफगानों को बुरी तरह परास्त किया था,
0: जबकि वो लड़ाके माने जाते थे, विशेषज्ञ माने जाते
1: जी
0: थे।
1: हाँ।
0: अफगान जी।
1: तो रानी का सामना उनसे हुआ और रानी ने उन्हें परास्त किया। पर हुआ ये कि जो मियाना अफगानी थे वो रानी की सेना में शामिल हो गए, और जैसे शम्स बहादुर का नाम हमें मिलता है वो तो मुख्य सेनापति रहे उनके, और उन्होंने रानी के साथ मिलकर कई सारे युद्ध लड़े
0: थे।
1: जी हाँ।
0: तो श्रोताओं, रानी दुर्गावती को यूं ही अदम्य साहसी नहीं कहा जाता। इतिहास के पन्नों में अगर आज भी उनका नाम अमिट माना जाता है, उन्हें पढ़ा जाता है, खूब सुना जाता है, उनके शौर्य की गाथाएं गाई जाती हैं, तो इसलिए गाई जाती हैं कि ना सिर्फ उन्होंने अपने दुश्मनों को हराया बल्कि उन्होंने अपने अदम्य साहस से अपने दुश्मनों को ही अपनी सेना में शामिल कर लिया, और बल्कि उनकी खूबियों का इस्तेमाल करके उन्हें अपनी सेना का सेना नायक तक बना दिया। तो श्रोताओं, हम सुन रहे हैं गोंड राजवंश के अदम्य साहस के स्वर्णिम इतिहास के बारे में, कला स्थापत्य और साहित्य में उनके योगदान के बारे में। हमारे साथ सुश्री पूजा सक्सेना जी हैं। हम आज के इस अंक में उनका धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम आगे के लिए सहेज कर रखना चाहते हैं, और जब रानी दुर्गावती जी की बात निकली है तो मैम, हम आपसे चाहेंगे कि रानी दुर्गावती के अदम्य साहस का वर्णन आप कुछ और करें अपने अगले एपिसोड में।
1: बिल्कुल,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे इतनी अच्छी चर्चा करने के लिए, हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, वो भी इतने सार गर्भित तरीके से और इतने इंटरेस्टिंग तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: अगली बार आपको किसी और विषय के बारे में जानकारी देंगे इसी कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम हमारा जारी रहेगा, लेकिन आज इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की परिकल्पना और निर्देशन का श्रेय जाता है सुश्री अदिति गौड़ को। ध्वनि अंकन और ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने। तो अब अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल, देश के लिए।

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

0: अभिवादन स्वीकार कीजिए पूर्वा खले का। श्रोताओ, आज का कार्यक्रम हम आरंभ करते हैं इस श्लोक के साथ। सुमुख चैक दंतश्च कपीलो गज कर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपः धूम्रकेतो गणाध्यक्षो भालचंद्रौ गजाननः वक्रतुंड शूर्पकर्णौ हेरम्बः स्कंद पूर्वजः। श्रोताओ, संस्कृत के इस श्लोक में भारतीय संस्कृति के एक पूज्य देवता यानी श्री गणेश की स्तुति की गई है, जो एक वन्य जीव से भी संबंधित है, जिनकी सूंड है, धुएं का रंग है, बड़े और तीखे कान हैं और इनका एक बड़ा सा उदर यानी कि पेट है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं हाथी की। हाथी भारतीय संस्कृति, धर्म और इतिहास में सदियों से ये जीव गहराई से रचा बसा है। ये एक जंगली जानवर नहीं बल्कि हमारी पहचान का एक हिस्सा है। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम हाथी की बात क्यों कर रहे हैं? तो बात दरअसल ये है कि आज है विश्व हाथी दिवस, तो बात करना बेहद आवश्यक है ही, और हाथी पर सारी जानकारी समेट कर हमारे लिए एक बार स्टूडियो में फिर से उपस्थित हैं डॉक्टर सुदेश वाघमारे, जिन्हें लगभग 40 वर्ष तक राज्य वन सेवा में कार्य करने का अनुभव है और स्वयं वानिकी और वन्य प्राणी विशेषज्ञ भी हैं। इन्होंने भोपाल के वनस्पति जगत पर अपने शोध प्रबंध भी किया है और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के उप संचालक भी रहे हैं और वर्तमान में स्टेट वाइल्ड बोर्ड के सदस्य हैं। सर, स्वागत है स्टूडियो में आपका।
1: जी नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार।
0: आज के इस कार्यक्रम में पहला प्रश्न तो हमारा आपसे यही बनता है कि विश्व हाथी दिवस क्यों मनाया जाता है, आखिर इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है?
1: देखिए, विश्व हाथी दिवस मनाने की शुरुआत सबसे पहले थाईलैंड में हुई।
0: अच्छा,
1: ये 2011 की बात है। 2011 में थाईलैंड के फोटोग्राफर्स, थाईलैंड के प्रकृति संरक्षण पर काम करने वाले व्यक्ति और कनाडा की एक महिला, इनने एक डॉक्यूमेंट्री हाथी के बारे में तैयार की कि विश्व में

0: तो मैं ये कहूंगा कि जो जैव विविधता है, जो बायोडाइवर्सिटी है, उसमें चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो, सबका महत्वपूर्ण स्थान है
1: जी, बिल्कुल।
0: तो वो एक इकोसिस्टम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं
1: जी,
0: एक बात। मगर जो जंगल हैं, जो कि 40 करोड़ साल में विकसित हुए हैं, यहाँ तक हम पहुंचे हैं, उसमें हाथी की इकोलॉजिकल भूमिका ये होती है कि जहाँ बहुत सघन जंगल हो जाता है और वहां पर नीचे अंकुरण नहीं हो पाता,
1: अच्छा,
0: तो हाथी क्या करता है कि उसके आच्छादन को, उसकी डेंसिटी को कम कर देता है ताकि सूर्य का प्रकाश जमीन तक पहुंच सके और ऐसी वनस्पति जो कि अंकुरित नहीं हो पा रही है वो अंकुरित होने लगे, एक बात
1: जी।
0: दूसरा इंडिकेटर होता है, हाथी वही जीवित रहेगा जो वन अपना त्रिस्तरीय होगा, माने वनों में वृक्ष होंगे, वृक्ष भी तीन प्रकार के होंगे, बड़े वृक्ष, मध्यम वृक्ष और छोटे वृक्ष। तो पहले वृक्ष होंगे, फिर झाड़ियां होंगी, फिर त्रिस्तरीय में नीचे हर्ष होंगी और घास होगी। तो जहां अच्छी घास होगी, जहां अच्छी झाड़ियां होंगी, जहां अच्छे वन हो, अच्छे जंगल होंगे, पत्ती होंगी, वहीं हाथी होगा। तो दूसरी बात, हाथी को पानी की आवश्यकता होती है, तो पानी प्रतिदिन होती है दो चीजों के लिए, एक तो पीने के लिए और दूसरा नहाने के लिए, दोनों में। तो जहां हाथी होता है वो इस बात का इंडिकेटर होता है कि वहां जंगल भी अच्छा है और पानी भी अच्छा है। तो हाथी की आवश्यकता इसलिए है कि वो एक बैलेंस बनाए हुए है इकोसिस्टम में।
1: इतना बड़ा प्राणी है सर ये, इसका भोजन और पानी भी जो है उसकी मात्रा भी बहुत बड़ी होती होगी, तो लगभग क्या मात्रा होती है सर इनका खाना और पीने की?
0: देखिए, हाथी का ऐसा माना जाता है कि लगभग इसको प्रतिदिन 1.5 क्विंटल के लगभग 150 किलो खाद्यान्न चाहिए। अब उसमें क्या क्या शामिल है? देखिए, उसमें जंगली फल शामिल है, उसमें फिर घास शामिल है, उसमें जो पैलेटेबल घास है वो शामिल है, फिर इसके बाद पत्ते शामिल है, बहुत सारी वनस्पतियों के जो पत्ते हैं वो खाना पसंद करता है। ये इसके तीन मुख्य आहार, फूल भी खाता है कई वनस्पतियों के, ये इसके तीन मुख्य आहार है ठोस के रूप में जो ये खाना पसंद करता है। जो पालतू हाथी होते हैं उनका आहार थोड़ा डिफरेंट होता है, वो इसी मात्रा में उनको गेहूं और मिश्रित विभिन्न प्रकार की चना भी शामिल है, जिसमें चावल भी शामिल है, उस प्रकार का अन्न होता है। मगर एक वयस्क हाथी की डाइट लगभग 150 किलो के आसपास होती है।
1: अच्छा, और जो पानी है वो?
0: देखिए, पानी को उसको दो तरह से आवश्यकता होती है, एक तो पानी पीने के लिए चाहिए उसको, उसकी खाल बहुत मोटी होती है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर मोटी खाल होती है।
1: अच्छा,
0: क्योंकि उसका रंग थोड़ा भूरा काला होता है, इसलिए वो गर्मी का एब्जॉर्प्शन करती है। अच्छा। तो हाथी दो काम के लिए पानी की अपने ऊपर बोछार करता है, एक तो जो कीटाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं, उनसे सुरक्षा के लिए अपने शरीर को, दूसरा गर्मी का अपना टेम्परेचर शरीर का मेंटेन करने के लिए पानी का शावर लेता है। तो एक वयस्क हाथी को लगभग आप ऐसा मान के चलिए कि 5000 लीटर पानी विभिन्न कामों के लिए, जिसमें उसका पीना भी शामिल है, शामिल है।
1: एक चीज जो है सारे जानवरों से हाथी को अलग करती है, वो है उसकी सूंड। तो सर, इसकी सूंड के बारे में कुछ बताइए। सूंड क्या है? होठ है इसका? कुछ इसे की नाक से तुलना करते हैं, कुछ इसको होठ बोलते हैं, तो ये क्या है, इसका कौन सा अंग है सर?
0: ये तो प्रकृति ने उसको बना दिया है। और आपको बताएं, सूंड जो है उसकी मुख्य रूप से एक सक्शन पाइप है, जैसा हमारा ये वॉशिंग मशीन होती है, हम सक करते हैं किसी चीज, उसी तरह से हाथी एक बार अपनी सूंड में लगभग 8 लीटर पानी रख सकता है।
1: क्या बात है,
0: है ना? और सूंड से लोग समझते हैं कि पानी पीता है, नहीं, सूंड में पानी भरता है और पानी फिर अपने मुंह में डालता है।
1: जी,
0: तो सूंड पानी पीने का साधन नहीं है, एक तरह से वो उसका सक्शन पाइप है। प्लस अब देखिए, प्रकृति ने उसको बनाया है, वो कहाँ जाएगा शावर लेने के लिए? तो एक्चुअली शावरिंग इंस्ट्रूमेंट भी है कि वो अपने ऊपर शावर करता है। इसके अलावा हाथी एक बड़ा जानवर है, उसका शरीर बड़ा होता है, तो जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं बहुत सारे, बहुत सी प्रकार की मक्खी है, बहुत से छोटे मोटे रेप्टाइल, बहुत से इंसेक्ट्स उसके बड़े शरीर से चिपकते हैं, उन सबको ऊंट अपनी लहरा लहरा कर अपनी सूंड को निकालता रहता है। एक बात और आपको बता दूं, यही बता देता हूं मैं आपको कि हमारे हाथी में, यानी जो एशियाटिक हाथी है जो कहलाता है, और अफ्रीकन हाथी, उनमें मूलभूत अंतर एक ये भी होता है कि हमारे हाथी के अग्रभाग पे सूंड के एक छोटा लिप होता है ना?
1: जी,
0: ओस्ट होता है, ओंट होता है, जो अफ्रीकन हाथी में नहीं पाया जाता।
1: जी सर, मेरा अगला प्रश्न यही था कि हाथियों की कितनी प्रजातियां होती हैं, इनको कितने भागों में बांटा गया है पूरे दुनिया में?
0: मोटे तौर पे तो अफ्रीकन हाथी और एशियन हाथी, दो तरह के हाथी होते हैं। अफ्रीकन हाथी हमारे हाथी से आकार में बड़ा होता है, हमारा हाथी थोड़ा छोटा होता है जी। मगर अफ्रीकन हाथी को भी दो भागों में बांटा है उनने। अच्छा। एक अफ्रीका का वाइल्ड में पाया जाने वाला हाथी, दूसरा हाथी जो अफ्रीकन सवानास में मतलब ग्रासलैंड में पाया जाता है।
1: अच्छा, यानी ग्रास में पाया जाना,
0: ग्रास पे डिपेंड करता है, सवाना बोलते हैं।
1: ओके।
0: तो एक हो गया उनका फॉरेस्ट वाला हाथी, दूसरा हो गया सवाना वाला हाथी, और हमारा जो एशिया में पाया जाता है इसको कहते हैं एशियाटिक एलिफेंट, ये एशियन है। तो आप दो तरह की प्रजातियां माने, मुख्यतः अफ्रीकन हाथी और एशियाटिक हाथी। अफ्रीकन में दो चीजों का अंतर कर ले, थोड़ा सा अंतर होता है उनमें, एक जंगल में पाया जाने वाला, एक सवाना में पाया जाने वाला।
1: तो सर, हम जब एशियाटिक और अफ्रीकन हाथी की बात करते हैं तो क्या हम उनको देखकर पहचान सकते हैं? यदि हमारे सामने ये दोनों हाथी खड़े होंगे तो हम पहचान सकते हैं कि ये अफ्रीकन है और ये एशियाटिक है?
0: आपने बहुत ही रोचक प्रश्न पूछा है
1: जी।
0: एक तो मैंने आपको ओंठ बताए
1: जी,
0: है ना, दूसरा आकार, यदि दोनों खड़े हैं सामने तो आप हमारा भारतीय हाथी जो है, एशियाटिक हाथी जो है छोटा दिखाई देगा।
1: अच्छा।
0: और अफ्रीकन हाथी बड़ा दिखाई देगा। मगर जो मुख्य अंतर है, जिसको बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बताते हैं वैज्ञानिक और तमाम वन्य प्राणी विशेषज्ञ, कि जो कान जो है, अफ्रीकन हाथी के कान अफ्रीका के नक्शे की तरह होते हैं और भारतीय हाथी के कान भारत के नक्शे की तरह होते हैं।
1: अच्छा, क्या बात है।
0: तो ये पहचानने का बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका, यदि आप उसके कान के आकार पे ध्यान देंगे तो उससे पहचानना बड़ा रोचक होता
1: है। जब हम इनको देखते हैं तो ये भी अंतर दिखाई देता है कि इनके जो टस्क हैं या जो जिनको दांत बोलते हैं, हाथी के दांत हैं, वो अफ्रीकी जो हाथी हैं उनके ज्यादा बड़े होते हैं।
0: देखिए, मैंने आपसे कहा कि वो आकार में बड़ा हाथी है, तो स्वाभाविक है कि टस्क जो है, देखिए टस्क 2 साल के बाद से आना शुरू हो जाते हैं, और टस्क की एक विशेषता होती है जो कम लोगों को ज्ञात होती है, जो हाथी के संपर्क में रहते हैं, महावत हैं और दूसरे लोग हैं, वो उनको मालूम होता है हाथी के जो टस्क हैं वो जीवन भर बढ़ते रहते हैं।
1: अच्छा।
0: जब तक उसकी आयु पूरी नहीं हो जाएगी उसके टस्क में प्रतिदिन प्रति क्षण प्रतिपल वृद्धि होती रहती है।
1: अच्छा।
0: ये टस्क की विशेषता है। और निश्चित रूप से मैंने आपसे कहा कि उसका आकार बड़ा है, अफ्रीकन हाथी का थोड़ा टस्क बड़ा होगा, इंडियन हाथी का टस्क तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा छोटा होता है साइज में। अब ये हाथी दांतों की बड़ी परंपरा चली आ रही है, माने आप हमारे शास्त्रों में, हमारे फिर पुराणों में, फिर हमारे यहाँ आप देखेंगे कि राजा महाराजाओं ने, फिर मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने हाथी दांत से का एक तरह से चीजें बना कर रखना, हाथी दांत के छोटे छोटे आभूषण रखने के लिए उसकी पेटी बनाई जाती थी, हाथी दांत की मूर्तियां बनाई जाती थी, हाथी दांत के कंगन बनाए जाते थे, हाथी दांत की गले में पहनने वाली सुंदर सुंदर मालाएं बनाई जाती थी। एक जमाना था जब हाथी दांत को लेके बहुत सारा, क्या कहें हम, ऐसा विश्वास था हाथी दांत का कि बहुत महंगी चीज है, दुर्लभ चीज है, हाथी को बड़ा कष्ट होता है हाथी दांत यदि उसके निकाले।
1: हाँ सर, मेरा यही प्रश्न था कि जैसे जीवित हाथी का आप यदि दांत काटते हैं तो जैसे दांत जो है मूलतः माना जाता है कि निर्जीव चीज है, उसमें मतलब दर्द अलग हो गया तो वो एक हड्डी का एक वो टुकड़ा है समझ लीजिए, तो क्या हाथी के साथ भी यही है?
0: नहीं, जैसा हमारा दांत को यदि उखाड़ा जाए तो जो दर्द होगा उसी तरह का दर्द हाथी को भी होगा, क्योंकि जो उस हाथी के दांत को नॉरिश करने के लिए तंत्रिका तंत्र और रुधिर तंत्रिका तंत्र और संवृद्धि तंत्रिका तंत्र दोनों उससे जुड़े रहते हैं,
1: जुड़े रहते हैं।
0: हाथी को कष्ट होता है
1: जी
0: उसके दांत निकालने में, और ऐसा नहीं होता कि फिर वो बढ़ने लगे, एक बार आपने निकाल लिया तो फिर से निकल आएगा।
1: अच्छा।
0: फिर से उसकी वृद्धि होने लगेगी। तो हाथी दांत की तस्करी पर पूर्णतः प्रतिबंध है, अब हाथी दांत का कोई भी व्यापार नहीं होता, क्योंकि जो जिससे च्यू करता है वो दांत अंदर की तरफ, वो उसका स्थान जो मसूड़े होते हैं वो अंदर की तरफ होता है, और ये उसका शोई आर्गन है, प्रकृति ने दिया है उसको एक, हो सकता है ये सर उसके संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए हो, क्योंकि उसको प्रकृति ने नाखून नहीं दिए हैं, उसको और ऐसी चीजें नहीं दी हैं जिससे वो अपना प्रोटेक्शन कर रखे, तो प्रकृति एक या दूसरा वन्य प्राणी उसके दांतों को देख के डरे भयभीत हो जाए आकार के कारण, ये आकार से उसकी सुरक्षा है
1: जी। सर, जब बात दांतों की चल रही है तो जिन दांतों से वो खाता है, जिनको हम मोलर टीथ बोलते हैं, कहा जाता है कि इसके केवल 6 ही सेट होते हैं उसके, वो आजीवन 6 सेट में उसको अपना काम चलाना रहता है, तो क्या ये सत्य है?
0: हाँ हाँ जी, आपने जो कहा इसके कि मोलर से ही वो काम करता है, ऐसा और भी प्राणियों में होता है। एक्चुअली एक हमारे जो टीथ होते हैं, हम सामान्यतया मेमल्स में भी और दूसरे वन्य प्राणियों में भी, टाइगर में भी, एक हमारे दांत होते हैं काटने वाले, इंसीजर्स
1: जी,
0: तो वो इंसीजर्स, क्योंकि उसको इंसीजन नहीं करना है,
1: हाँ।
0: वो इतना शक्तिशाली है कि वो जिस चीज को तोड़ना चाहेगा तोड़ लेगा। चबाना है उसको, चबाने की आवश्यकता है। वो आप अभी जब सूंड के बारे में कह रहे थे तो मैं आपको ये बताना भूल गया, बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हाथी की सूंड के बारे में कहा जाता है कि हाथी के सूंड में लगभग 1.5 लाख मांसपेशियां होती है।
1: अच्छा
0: हाँ, इसीलिए वो दाएं बाएं ऊपर नीचे सकिंग ये सब कर पाता है। तो ये एक हाथी के बारे में महत्वपूर्ण उसकी फिजियोलॉजी के बारे में,
1: यानी उसका शरीर का इतना बड़ा अंग है लेकिन उसमें एक भी हड्डी नहीं है।
0: हड्डी नहीं है
1: जी। अब एक चीज और ये आती है सर कि ये तो पूरी तरह से शाकाहारी प्राणी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात ये भी नोट करिए
1: जी
0: कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्राणी है।
1: हाँ जी जी।
0: समुद्र में वेल वगैरह हो सकती हैं बड़ी हो से
1: जी,
0: मगर पृथ्वी पर जो पाया जाता है वो सबसे बड़ा मैमल है, इससे बड़ा कोई हाथी है कुछ चीज नहीं।
1: एक स्तनधारी जीव जो है सबसे बड़ा वो हाथी ही होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो सर मैं ये पूछ रही हूँ कि जो हम लोग कहते हैं आइस एज जो हुई थी उसमें एक मैमथ नाम का प्राणी था, क्या मैमथ का हाथी से कोई संबंध है?
0: अब वैज्ञानिक कहते हैं कि मैमथ उसी समय समाप्त हुए
1: जी,
0: ऐसा कहना है वैज्ञानिकों का। इसमें विभिन्न प्रकार के रिसर्च पेपर चलते रहते हैं, विभिन्न प्रकार के मतभेद चलते रहते हैं
1: जी,
0: मगर अब ऐसा कहा जाता है कि मैमथ से ही हाथी का विकास हुआ। आप देखेंगे हमारे धर्म में इंद्र का जो हाथी है उसका नाम है एरावत
1: जी,
0: है ना, एरावत हाथी का चलता रहता है कि एरावत था वो भी मैमथ था एरावत, है ना, ऐसे जोड़ते हैं। अभी हमारे समय में कंटेम्प्रेरी एक हाथी हुआ है जो जिसका आकार बहुत बड़ा है, जम्बो नाम
1: जी,
0: है ना। वो जम्बो हाथी जो है वो हमारे भारत में तो वो नहीं आया, मगर बाकी देशों में जम्बो हाथी के बारे में, सूडान का हाथी था ये
1: जी जी।
0: इसकी जो विशेषता थी कि कहा जाता था कि ये आकार में फिजिक में
1: जी
0: विश्व का सबसे बड़ा हाथी है।
1: तो सर अब एक बात पे आते हैं हम कि हमारा जो ये हाथी है उसको हम विरासत पशु भी बोलते हैं
0: जी।
1: तो इसे विरासत पशु इसलिए कहा जाता है क्योंकि बरसों से हमारी संस्कृति से, हमारी सभ्यता से, हमारे धर्म से इसको हम जोड़ते चले आए। तो इसके बारे में आप प्रकाश डालिए।
0: देखिए विरासत तो हम इसलिए कहते हैं दो कारणों से करते हैं कि एक हाथी जब से मानव का विकास हुआ है और प्रकृति का विकास हुआ है, हम करोड़ों साल पुराने इतिहास में भी जाते हैं
1: जी,
0: तो हाथी पाया जाता रहा है एक बात। दूसरी बात जैसा मैंने कहा कि विश्व में पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा
1: जी
0: एनिमल है।
1: नंबर
0: तीसरा है कि ये हिंसक प्राणी नहीं होता
1: जी,
0: जब तक कि इसको सताया नहीं जाए।
1: बेहद शांत जीव है,
0: बेहद शांत जीव है। तो ना केवल भारत में, ना केवल एशिया में, बल्कि जहां जहां भी हाथी पाए जाते हैं उनको बड़ा पूज्य दर्जा दिया गया है
1: जी,
0: क्योंकि ऐसा एक एनिमल है जिसका जो हमारी संस्कृति से, हमारी कला से, हमारी धरोहर से, हमारी जीवनचर्या से, हमारे धर्म ग्रंथों से जुड़ा हुआ है। और आदिकाल से वर्णन, आप जो भी कोई भी ग्रंथ देखेंगे, कोई भी पुराण देखेंगे तो हाथी का वर्णन आया है। तो निश्चित रूप से न केवल भारत के लिए, न केवल एशिया के लिए, बल्कि पूरे विश्व में इसको हेरिटेज के रूप में मान्यता प्राप्त है
1: जी। तो सर जैसा आपने कहा कि पूरे विश्व में हाथी थे, भारत में भी सब जगह हाथी थे, तो इनके कम होने का क्या कारण है? अब हम इस पर आते हैं।
0: देखिए जो वन्य प्राणी विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि हाथी के कम होने के कारण सबसे पहला कारण है कि उसका हैबिटेट लॉस होना
1: जी,
0: है ना, माने जो उसका प्राकृतिक आवास है उसमें कमी आ गई
1: जी।
0: और प्राकृतिक आवास के बारे में जैसे हमने थोड़ी सी चर्चा शुरुआत में की थी कि प्राकृतिक आवास क्या होता है, उसका ऐसा जंगल जो त्रिस्तरीय हो, पर्याप्त मात्रा में जिसमें पत्ते हों, पर्याप्त मात्रा में फल हों, पर्याप्त मात्रा में फूल हों, पर्याप्त मात्रा में घास हो, ये उसका आहार है
1: जी।
0: यदि वो मिलेगा उसको हाथी वहां पर रह जाएगा
1: जी।
0: आहार के बाद दूसरी बात आती है पानी। तो पानी का उसको यदि स्रोत है, अच्छा जंगल है, किस कोई भी जंगल यदि अच्छा जंगल है तो पानी वहां पे मिल जाएगा
1: जी।
0: तो दो चीजें हुई। और तीसरी होती है सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन, कि हाथी को प्रोटेक्शन किस प्रकार का मिल रहा है।
1: अच्छा।
0: दो कारणों से हाथी को हमारे इतिहास में पकड़ा गया। एक तो वो युद्ध में
1: काम आता था।
0: युद्ध में जहां हाथी निकल जाता था तो लोग कहते थे कि वो 50 घोड़े के बराबर काम करता है, या जिधर हाथी को मोड़ देते थे उस तरफ खलबली मच जाया करती थी। तो हाथी एक तो इस काम आता था
1: जी।
0: दूसरा जब लोगों को ये समझ में आया कि इसके हाथी दांत से विभिन्न प्रकार के आभूषण, विभिन्न प्रकार की महंगी चीजें, विभिन्न प्रकार की ऐसी वस्तुएं जो मार्केट में महंगी बिकती बना जा सकते हैं, तो फिर तस्करी शुरू हुई उसके हाथी दांतों की। तो ये दो कारण है, हैबिटेट का समाप्त होना नंबर एक
1: जी,
0: और नंबर दो हाथी के लिए तस्करी शुरू होना। अभी वर्तमान में एक और कारण हम उसमें जोड़ सकते हैं, यदि हाथी हैबिटेट उसका लॉस हो रहा है तो उसको प्रकृति ने ये छठी इंद्री उसको दी है कि कहाँ पानी मिलेगा, कहाँ जंगल है, तो वो जाना चाहता है, मगर उसके लिए कॉरिडोर चाहिए, है ना। कॉरिडोर का मतलब अपन समझाएं इसको तो गलियारा चाहिए। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो एक गलियारे की आवश्यकता पड़ती है, एक रास्ता चाहिए।
1: जी, जी।
0: वो रास्ते भी खत्म हो गए।
1: हाँ।
0: तो एक जगह कन्फाइंड होकर रह गया तो हाथी की जनसंख्या कम होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि उसका, देखिए अभी जो अफ्रीकन हाथी हैं उनका पिछले एक दशक में 80% हाथी खत्म हो गए। भारत में भी लगभग प्रतिशत यही का ये है कि लगभग हो गया। 2018 की गणना बताती है कि हाथियों की संख्या थी लगभग 29,500 भारत में, भारत का बता रहा हूँ। आज ये संख्या ठहरती है 22,500 के आसपास। और इसमें जंगली हाथी, अधिकांश हाथी जंगली हैं जो जंगल में निवास करते हैं।
1: जी।
0: तो देखिए हाथी जनसंख्या कम होती जा रही है, मगर ये अफ्रीकन हाथी की तुलना में हमारे यहाँ कम से कम अभी ठीक स्थिति है। अच्छा। ये कह सकती है।
1: तो अब बात आती है कि हम संरक्षण के प्रयास तो इनके कर रहे हैं, तो हमारे देश में किस तरह का प्रयास हो रहा है सर, हमारे देश में भी और विशेष रूप से हमारे मध्य प्रदेश में भी?
0: देखिए मध्य प्रदेश में आप यदि कहें तो हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय उद्यान है ना
1: जी,
0: वहाँ मॉनिटरिंग करने के लिए, पेट्रोलिंग करने के लिए हाथी सभी राष्ट्रीय उद्यानों में
1: जी
0: हाथी रखते हैं। जहाँ नहीं होते वहाँ लाने का प्रयास किया जाता है
1: जी।
0: और हर हाथी के साथ चारा कटर भी होता है जो चारा काट के उनको चारा खिलाता है।
1: अच्छा।
0: इसके अलावा दूसरा जो माइनर और मेजर चीजें मिनरल्स के रूप में उनको अच्छी डाइट दी जाती है। तो मध्य प्रदेश में जो हाथी हैं वो मुख्यतया पेट्रोलिंग के लिए यानी गश्ती करने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों में रखे गए हाथी है। मगर एक और शुभ समाचार है, जो हमारे पास बड़ा समृद्ध जंगल है, आप जैसा हमारा मध्य प्रदेश का जंगल हम मानते हैं 33% हमारे यहाँ जंगल है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में जो 33% जंगल है वो हाथियों को आकर्षित करता है। तो अभी भी छत्तीसगढ़ का हाथी, उड़ीसा का हाथी, बिहार का हाथी यदि कॉरिडोर मिल जाता है तो मध्य प्रदेश में आ जाता है। और सैकड़ों की संख्या में अभी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथी बहुत ही सुखपूर्वक रह रहे हैं।
1: अच्छा।
0: माने मनुष्य भी रह रहा है, हाथी भी रह रहा है, और बहुत कम ऐसी घटना है जिसको हम मानव वन्य प्राणी द्वंद के रूप में रेखांकित कर सकते हैं। उसमें भी मानव की गलती ज्यादा है, हाथी की गलती कम है। तो ये तो मध्य प्रदेश का सीनेरियो है, मगर पूरे जो भारत का सीनेरियो आप देखें तो हमारे यहाँ 33 एलिफेंट रिजर्व है।
1: अच्छा।
0: ये एलिफेंट रिजर्व मुख्यतया हमारे दक्षिण भारत में है, कुछ हमारे इसमें भी है, झारखंड में, बिहार में, यहाँ पर भी है, मगर मुख्यतया दक्षिण भारत में है। और ये 33 एलिफेंट रिजर्व 80,778 स्क्वायर किलोमीटर में बने हुए हैं।
1: अच्छा।
0: 14 राज्य जैसे मैंने इनके नाम लिए, असम भी शामिल है, नागालैंड भी शामिल है
1: जी,
0: ये ऐसे राज्य हैं। तो जो हाथी का जो रिजर्व है, हाथी का संरक्षण क्षेत्र है, सबसे छोटा वो है सिंगफान में यानी नागालैंड में। इसके अलावा लेमरू में छत्तीसगढ़ में अभी एक बना है, एक अगस्तमलाई तमिलनाडु में भी है।
1: अच्छा।
0: कर्नाटक में है, काजीरंगा में है, मयूरगंज में है, शिवालिक में बनाए गए हैं, महानदी है उड़ीसा वाली, वहां बनाए गए हैं। तो एलिफेंट संरक्षण पे अतिशयोक्ति नहीं है कि जितने संसाधन उपलब्ध है, जितना तरीका उपलब्ध है, जो वैज्ञानिक प्रविधि उपलब्ध है और जितना हैबिटेट है उसमें अच्छा काम किया जा रहा है कंजर्वेशन।
1: तो सर आपको तो जंगलों का इतना वृहद अनुभव है, तो आपको कोई यदि इनसे संबंधित कोई घटना हो जो रिजर्व से रिलेटेड यदि आपके पास कोई संस्मरण हो तो बताइए।
0: देखिए एक तो मेरा प्रशिक्षण का ही अनुभव है
1: जी,
0: जब मैं प्रशिक्षण ले रहा था तो देहरादून के पास फॉरेस्ट कॉलेज का, आप कहें कि वहाँ का प्रोडक्ट हूँ
1: जी,
0: तो एशिया का सबसे अच्छा फॉरेस्ट्री का संस्थान है, मैंने वहां से प्रशिक्षण प्राप्त किया। वही जगह सत्यनारायण, तो एक बार हम लोग गए थे वहां पे, तो वहां हाथियों के प्रत्यक्ष दर्शन हम लोगों को काफी देर तक हुए थे। मगर मैं जो दूसरी घटना मध्य प्रदेश से संबंधित आपको बता रहा हूँ वो घटना ऐसी है, देखिए किसी भी एनिमल का बिहेवियर हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते
1: जी।
0: तो वो प्रिडिक्शन तो हम नहीं कर सकते कि वो क्या बिहेव करेगा, मगर हाथी को ऐसा माना जाता है कि हाथी की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, याददाश्त बहुत अच्छी होती है। हाथी की स्मृति, कहते हैं फ्रंटल लोब उसका बहुत सक्रिय होता है, वो 20 तरह की चीजें पहचान सकता है, हमसे कई गुना अधिक सुन सकता है, और ऐसी ध्वनियां उत्पन्न करता है कम्युनिकेशन के लिए जो हम लोग नहीं सुन सकते।
1: अच्छा।
0: हाथी आपस में ऐसी ध्वनियां निकालते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि मानव के कान उन फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन सकते।
1: अच्छा।
0: मगर हाथी आपस में जो संवाद कर रहे हैं वो एक दूसरे से सुन सकते हैं। तो आपने घटना की बात बताई तो मैं आपको बताता हूँ, कान्हा टाइगर रिजर्व की एक घटना है
1: जी।
0: अभी आप मान सकते हैं कि ताजी घटना है, अभी के इसी दशक की घटना है। एक डॉक्टर साहब थे, वन्य प्राणियों का उपचार करने में काफी निपुण थे, वहां पे पदस्थ थे, तो वो हाथी का भी उपचार करते थे। हाथी को भी जो डिफरेंट कोई चीज हो जाती है मान लीजिए, तो उसको अलग प्रकार के इंजेक्शन देना, ऐसी चीजें खिलाना जिससे उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो इस सब को काम करते थे वो। तो कभी उनने उसको कोई छोटा मोटा घाव हुआ होगा तो बांध के रस्सी वस्सी से बांधवा के जंजीरों से बांध के उपचार भी किया होगा
1: जी।
0: बात आई गई होगी, 2 साल हो गए कभी उनने उपचार किया होगा। एक दिन वो उस हाथी को चिप लगाने के लिए, हाथी का एक अपन माइक्रोचिप लगा देते हैं जिससे उसके मूवमेंट का पता रहता है।
1: अच्छा जी।
0: तो चिप लगाने के लिए गए हुए थे, वो हाथी के पास पहुंचे, अचानक हाथी वो एग्रेसिव हो गया। महावत के रहते हुए भी
1: जी,
0: ऐसा 99% केस में हाथी महावत को फॉलो करते हैं जो महावत कहता है, मगर वो एकदम उग्र हो गया। उसने सूंड से उन डॉक्टर साहब को, जो वेटनरी डॉक्टर थे, वन्य प्राणी पशु चिकित्सक थे, वो उनने उसको उठाया और हवा में उछाल दिया। डॉक्टर साहब हवा में उछल के और एक संकरी सी नाली में फंस गए। अब आप देखिए, उतने से संतुष्ट नहीं हुआ वो हाथी, उस नाली के पास गया और उस नाली को पैर से रोंदना चाहा उसने, माने उनको उनको आघात पहुंचाना चाहा पैर से। वो तो डॉक्टर साहब का भाग्य अच्छा था कि जिस नाली में वो गिरे वो हाथी के पैर से कम चौड़ी थी
1: जी, वहां तक पैर
0: पहुंच
1: ना पाया।
0: ऊपर से वार करता रहा
1: जी,
0: उनको कोई आघात नहीं पहुंचा, नहीं तो उनकी जीवन लीला उसी दिन समाप्त हो जाती। जंगल में ऐसी कई घटनाएं घटती हैं जहां महावत पे भी आक्रमण कर देता है हाथी। तो न केवल हाथी, वो जो कहा गया है कि हम किसी को भी नहीं सताएं, क्यों हाथी की बातें नहीं करें, किसी को भी नहीं सताएं, जिस भी दिन उसका सक्षम दिन आएगा वो आपसे बदला लेगा, तो किसी को भी नहीं सताएं, प्रेम भाव से रहें।
1: तो एक उदाहरण ये हो गया कि हाथी याददाश्त बेहद तेज होती है और घ्राण शक्ति भी, सर मैंने सुना है कि ये दूर से पानी को भी सूंघ लेते हैं यदि उन्हें पानी और मतलब भोजन भी।
0: निश्चित रूप से
1: जी,
0: मैंने कहा ना सिक्स सेंस, जैसे हमारी छठी इंद्री होती है, हम पहचान जाते हैं कि कौन अच्छा व्यक्ति है, कौन खराब व्यक्ति है, या कौन व्यक्ति हमको धोखा देगा, कौन धोखा नहीं देगा, या हम ये पहचान जाते हैं कि इस व्यक्ति से प्रेम व्यवहार करना चाहिए, है ना। ये सब चीजें हमारी, जैसे हमारा सिक्स सेंस, या कोई घटना आने होती है तो कुछ लोगों को एहसास होने लगता है, सिक्स सेंस कहते हैं छठी इंद्री। हाथी में वो कहा जाता है कि ज्यादा
1: तेज है जी। सर एक बात और भी आती है कि हाथी जो है एक झुंड में रहने वाला प्राणी है
0: जी।
1: और ये मात्र सत्तात्मक झुंड होता है, यानी इसकी जो लीडर होती है वो एक मादा ही होती है, तो इसके बारे में कुछ बताइए।
0: देखिए, अब हाथी के साथ में अधिकांशतया उसकी मौसियां रहती हैं।
1: अच्छा,
0: है ना जी, ज्यादातर उसकी मौसियां रहती हैं। चाचा वगैरह तो फिर अपना अलग परिवार बनाने के लिए निकल जाते हैं, वो मौसियां रहती हैं और वहां बड़ी बेफिक्र रहती है कि मौसियां पालन करेंगे। देखिए, हाथी का बच्चा 2 दिन में चलना शुरू कर देता है
1: जी,
0: 1.5-2 घंटे में तो खड़ा हो जाता है वो।
1: अच्छा,
0: और फिर 2 दिन में चलना शुरू कर देता है और फिर माँ का दूध पीना शुरू कर देता है, बहुत जल्दी खाना पीना शुरू कर देता है। देखिए, भोजन बहुत ज्यादा हाथी को चाहिए प्रतिदिन। हाथी मान लीजिए 7 हाथियों का समूह है और मैंने आपको बताया 1.5 क्विंटल 150 किलो चाहिए, तो 1 टन खाना तो यही तैयार हो गया कहां से, तो वो थोड़ा दूर दूर तक आपस में बिखर छितर जाते हैं।
1: अच्छा,
0: तो उस दौरान दूसरी हथनियां होती हैं, उसकी संबंधी होती हैं, वो उसकी रक्षा करती हैं। और रक्षा करने का तरीका बड़ा सुंदर है, आप देखेंगे अपने दोनों पैरों के बीच में वो उसको लेके
1: चलती हैं, लेके
0: चलती हैं। जिन लोगों ने वीडियो देखा हो तो वो देखना बड़ा ही सुंदर लगता है। तो हाथी एक समूह में रहने वाला सामाजिक प्राणी
1: है,
0: ये एक हाथी की विशेषता
1: है।
0: आता है कि मादा क्यों करती है, आपने देखा होगा हमारा तो मात्र सत्तात्मक भारत देश,
1: बिल्कुल
0: है ना। कर्ण से पूछा कौन, तो बोला कुंती पुत्र है
1: जी।
0: तो माता हमेशा परिवार के मुखिया के रूप में पहले भी काम करती थी, आज भी काम करती है। दूसरा रहता है कि नर का काम प्रोटेक्शन भी होता है, संरक्षण भी होता है, बाकी खतरों को भांपना, बाकी चीजें देखना, रास्ता देखना, रास्ता बताना, बाकी कामों में मादा उसको लीड करती
1: जी। सर ये एक बड़ा सामाजिक प्राणी है, इतना विशालकाय प्राणी जो है, बहुत ही शानदार प्राणी, ये एक सामाजिक प्राणी भी है और इनकी कुछ न कुछ प्रथाएं भी हैं जो बरसों से ये लोग अपनी याददाश्त तेज होने के कारण हमेशा से फॉलो करते आए हैं। अपने पूर्वजों का उनको ज्ञान होता है, या उनके जो पूर्वजों की हड्डियां हैं उनके पास ये जाते हैं, या पुरानी बातों को याद रखते हैं, पुराने स्थानों को याद रखते हैं, उन स्थानों को याद रखते हैं जहां से वो गुजरे हैं। क्या ये सही बात है?
0: हाँ हाँ, ये सही बात है। मैंने आपसे कहा कि मेमोरी इसकी हाथी की मेमोरी अन्य मेमल्स की तुलना में, मनुष्य के बाद और दूसरे मेमल्स हैं उनकी तुलना में, इसकी मेमोरी, इसकी घ्राण शक्ति और घ्राण शक्ति के साथ इसकी ध्वनि को सुनने की शक्ति, ये तीनों शक्तियां तुलनात्मक रूप से और वन्य प्राणियों से अधिक। सबकी अपनी अपनी विशेषता होती है
1: जी।
0: मगर प्रकृति ने इसको कोई घातक अंग नहीं दिए हैं, जैसे टाइगर को नाखून दिए हैं, दांत दिए हैं, ऐसे इसको घातक अंग नहीं दिए हैं। तो इसको प्रकृति ने दूसरे उपादानों से सजाया है, दूसरे उपादानों से
1: जी
0: सवार है।
1: तो सर यदि प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो ये मतलब इसकी उम्र कितनी होती है, इसका जीवन काल क्या है?
0: देखिए वाइल्ड में हाथी लगभग लगभग ऐसा माना जाता है अभी तक के जो डेटा उपलब्ध है 70 वर्ष एक औसत आयु। अब 65 भी हो सकती है, 75 भी हो सकती है, एक माना जाता है कि वाइल्ड में 70 वर्ष जीता है। मगर यदि इसी को किसी चिड़ियाघर में रख दिया जाए तो थोड़ा सा 5 से लेकर 10 साल तक का अंतर आ जाता है, क्योंकि उसको उतना स्ट्रगल वहां पर नहीं करना पड़ता जितना उसको जंगल में करना पड़ता है। तो औसत आयु आप मान के चले कि हाथी की औसत आयु 70 साल होती है। वो पूर्ण वयस्क जब कहते हैं कि हाथी फुल ग्रोन हो गया एकदम और बढ़िया सुंदर लग रहा है, वो जीवन का अर्धांश 30-35 साल में बहुत ही सुंदर लगता है।
1: यानी जब उसकी युवावस्था होती है वो आधे वर्ष उसके निकल चुके होते हैं जीवन के। जी, और सर इनका प्रेगनेंसी पीरियड भी मैंने सुना है बहुत बड़ा होता है, ज्यादा होता है, लंबा होता है।
0: बहुत अच्छा है, मैं भी बताना भूल रहा था। मैमल्स में सबसे बड़ा इसका प्रेगनेंसी पीरियड 22 माह।
1: जी
0: देखिए इसलिए भी है ना कि वो 1.5 किलो का बच्चा रिटेन कर रही है
1: मादा।
0: तो 1.5 क्विंटल का बच्चा मैं बड़ा जब भी ऐसी याद आती है तो जीवन मन बड़ा श्रद्धा से और प्रकृति के चमत्कारों के प्रति बड़ा झुक जाता है कि देखिए 22 महीने की प्रेगनेंसी है, अच्छी बात है, प्रकृति का ये एक सिद्धांत है।
1: तो सर अब कार्यक्रम के जब हम ये अंत में पहुंच रहे हैं सर, हाथी के बारे में जो कुछ आप इस कार्यक्रम में जो छूट गया है आप जो कुछ बताना चाहते हैं।
0: आपने तो लगभग सभी चीजें हाथी के बारे में पूछ ली।
1: जी
0: मैं तो आज के जो बच्चे हैं जो हमारे टीनेजर्स हैं और जो हमारे युवा हो रहे बच्चे हैं
1: जी,
0: इन सब के लिए हाथी के बारे में एक प्रयाग शुक्ल हिंदी के कवि हैं, उनकी एक कविता सुनाऊंगा।
1: जी बिल्कुल सर।
0: यदि आप उस कविता को आत्मसात करें तो हाथी से प्यार करने लगेंगे।
1: जी
0: तो वो कविता सुनिए।
1: बिल्कुल सर।
0: वही मेरा मान ले कि हाथी के संरक्षण के लिए मेरी जो श्रद्धा है वो इस रूप में व्यक्त कर रहा हूँ। धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी, जब पानी में जाता हाथी भर भर सून नहाता हाथी, कितने केले खाता हाथी यह तो नहीं बताता हाथी, और पीठ पे करा सवारी हमको हमको खूब घुमाता हाथी, सबको खूब हंसाता हाथी, धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी।
1: बहुत बढ़िया सर, बहुत ही सुंदर कविता, बहुत ही प्यारी सी कविता, छोटे बच्चों को भी याद कराई जा सकती है ऐसी कविता, और हाथी के सारे गुणों को दिखाने वाली बताने वाली ये कविता। तो श्रोताओं, बुद्धिमान अद्भुत और शांत स्वभाव वाला ये जीव हाथी एक ऐसा जीव जो हमारी संस्कृति, हमारी पारिस्थितिक और भावनात्मक धरोहर का हिस्सा है। हजारों वर्षों से मानव के साथ सह अस्तित्व में रह रहा है हमारा हाथी। कभी मंदिरों के अहम हिस्से के रूप में, कभी राजाओं के रक्षक और शान को बढ़ाने वाले, तो कभी जंगलों के प्रहरी के रूप में इन्होंने हमारी सभ्यता का साथ हमेशा से निभाया है। ये पारिस्थितिकी तंत्र का अहम करदार हैं, ये इंजीनियर हैं जंगल के, पेड़ पौधों को फैलाना, उनकी संरचना बनाना और जल स्रोतों को सुरक्षित करने का काम भी करते हैं हाथी। लेकिन आज उनके प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने, उनके अवैध शिकार और मानव वन्य जीव संघर्ष ने इनकी संख्या को खतरनाक रूप से घटा दिया है। जंगल सिमट रहे हैं, नदियों और घास के मैदानों पर मानवीय कब्जा बढ़ता जा रहा है और हाथी अपने ही घर में बेघर होते जा रहे हैं, जिसका नतीजा भूख, भटकाव और संघर्ष के रूप में सामने आ रहा है। अब हमारे सामने दो ही रास्ते हैं श्रोताओं, या तो हम हाथियों की इस स्थिति को नजरअंदाज कर दें और कुछ दशकों बाद अपनी पीढ़ियों को सिर्फ इनकी तस्वीरें ही दिखा पाएं, या फिर अभी से इनके संरक्षण का ठोस कदम उठाएं। आइए आज के दिन संकल्प लें कि हाथी केवल किताबों और स्मारकों में नहीं बल्कि हमारे जंगलों में आजाद घूमते हुए हमें दिखें, और यही हमारे आने वाली पीढ़ियों की सबसे बड़ी विरासत होगी। सर आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतना कीमती समय निकाला और हाथी के बारे में हमें इतनी सारी जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाने का सौभाग्य दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: तो इस कार्यक्रम को अब हम यहीं समेटते हैं। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग रहा सतीश बाथम का, और मैं थी आपके साथ आपके अपने रेडियो मित्र पूर्वा खले। आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।
2: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति।
3: भारत के इतिहास में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनका जीवन केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों की कहानी भर नहीं होता, बल्कि वो एक विचार, एक आंदोलन और एक युग की कहानी बन जाता है। ऐसे लोग अपने समय से आगे जाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। आज हम स्मरण कर रहे हैं एक ऐसे ही व्यक्तित्व को जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी, श्रमिक नेता, चिंतक, लेखक, राजनयिक, उपराष्ट्रपति और अंततः भारत के राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्र की सेवा की। एक ऐसा व्यक्ति जिसने मजदूरों की आवाज को राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बना दिया। एक ऐसा नेता जिसने लोकतंत्र में जन भागीदारी की शक्ति को पहचाना और एक ऐसा नागरिक जिसने अपने पूरे जीवन में समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। आज हम श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रहे हैं भारत के चौथे राष्ट्रपति और भारत रत्न वराह गिरी वेंकट गिरी अर्थात वीवी गिरी को।
4: भारत का लोकतांत्रिक इतिहास अनेक महान नेताओं और राष्ट्र निर्माताओं से भरा हुआ है, लेकिन यदि हम उन व्यक्तित्वों की सूची बनाएं जिन्होंने अपने जीवन के अलग अलग चरणों में बिल्कुल अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं और हर भूमिका में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई, तो वीवी गिरी का नाम निश्चित रूप से उनमें प्रमुखता से लिया जाएगा। वे केवल राष्ट्रपति नहीं थे, वे केवल स्वतंत्रता सेनानी भी नहीं थे, वे केवल मजदूरों के नेता भी नहीं थे, बल्कि उनका जीवन इन सभी भूमिकाओं का एक अद्भुत संगम था। उनका जीवन हमें ये बताता है कि लोकतंत्र की असली शक्ति केवल सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों में नहीं, बल्कि उन लोगों में होती है जो समाज की जड़ों से जुड़े रहते हैं। शायद यही कारण है कि जब हम वीवी गिरी को याद करते हैं तो केवल भारत के एक पूर्व राष्ट्रपति को ही नहीं, बल्कि एक ऐसे जन नेता को याद करते हैं जिन्होंने जीवन भर साधारण लोगों की असाधारण लड़ाइयों को अपनी लड़ाई बनाया। लेकिन किसी भी महान यात्रा की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। वीवी गिरी की यात्रा भी एक छोटे से शहर से शुरू हुई थी।
3: 10 अगस्त 1894 उड़ीसा के वर्तमान गंजाम जिले के बराहमपुर नगर में एक बालक का जन्म हुआ। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, देश राजनीतिक रूप से गुलाम था और सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा था। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि ये बालक आगे चलकर भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचेगा। उस बालक का नाम था वराहगिरी वेंकट गिरी। उनके पिता वराहगिरी वेंकट जोगैया पुंतलु अपने समय के प्रतिष्ठित वकीलों में गिने जाते थे, लेकिन उनकी पहचान केवल एक सफल अधिवक्ता की नहीं थी, वो सार्वजनिक जीवन और सामाजिक गतिविधियों में भी रुचि रखते थे। समाज की समस्याओं पर चर्चा करना, लोगों की सहायता करना और राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी राय रखना उनके स्वभाव का हिस्सा था। घर का वातावरण बौद्धिक भी था और सामाजिक चेतना से भी भरा हुआ था। यही वातावरण आगे चलकर युवा गिरी के व्यक्तित्व की नींव भी बना। कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति का पहला विद्यालय उसका परिवार होता है। वीवी गिरी के जीवन में भी ये बात पूरी तरह सत्य सिद्ध हुई। उनकी माता सुब्रदम्मा अत्यंत धार्मिक, संवेदनशील और संस्कारवान महिला थीं। उन्होंने अपने पुत्र को केवल शिक्षा का महत्व नहीं सिखाया, बल्कि सेवा, विनम्रता और अनुशासन का मूल्य भी समझाया। बचपन से ही गिरी ने देखा कि सम्मान केवल पद या संपत्ति से नहीं मिलता, सम्मान मिलता है चरित्र से, सम्मान मिलता है दूसरों के लिए किए गए कार्यों से। इसी कारण बाद के वर्षों में जब वे बड़े नेता बने, मंत्री बने, राज्यपाल बने और राष्ट्रपति बने, तब भी उनके व्यक्तित्व में एक सहजता और सादगी दिखाई देती रही। उनके निकट रहने वाले लोग अक्सर कहते थे कि इतने ऊंचे पदों पर पहुंचने के बाद भी उनमें अहंकार का कोई स्थान नहीं था। ये गुण उन्हें उनके परिवार और प्रारंभिक संस्कारों से मिला था।
4: प्रारंभिक शिक्षा के दौरान ही उनकी प्रतिभा स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। वे पढ़ाई में रुचि रखते थे, लेकिन उनकी रुचि केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं थी। उन्हें इतिहास पढ़ना पसंद था, राजनीतिक घटनाओं को समझना पसंद था, समाज में हो रहे परिवर्तनों को देखना और उनके कारणों पर विचार करना पसंद था। वे उन युवाओं में से एक थे जो केवल नौकरी या करियर के बारे में नहीं सोचते थे। वे ये भी समझना चाहते थे कि समाज कैसे चलता है, राष्ट्र कैसे बनता है और आम लोगों के जीवन को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। शायद यही कारण था कि उनकी सोच सामान्य विद्यार्थियों से अलग दिखाई देने लगी थी। उनके भीतर एक जागरूक नागरिक आकार ले रहा था।
3: उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने विदेश जाने का निर्णय लिया। आज के समय में विदेश जाकर पढ़ाई करना एक सामान्य बात लग सकती है, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में ये एक बड़ी बात थी। यात्रा लंबी होती थी, संपर्क सीमित होते थे और विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करना केवल पढ़ाई का अवसर नहीं बल्कि एक नई दुनिया को देखने का अवसर भी होता था। युवा वीवी गिरी आयरलैंड पहुंचे। शायद उन्हें स्वयं भी उस समय ये एहसास नहीं रहा होगा कि ये यात्रा उनके पूरे जीवन की दिशा बदल देगी, क्योंकि आयरलैंड में उन्हें केवल डिग्री नहीं मिली, उन्हें एक दृष्टि मिली, उन्हें एक विचार मिला, उन्हें एक ऐसा अनुभव मिला जिसने आगे चलकर उनके पूरे सार्वजनिक जीवन को प्रभावित कर दिया।
4: जब वीवी गिरी आयरलैंड पहुंचे तब वहां का राजनीतिक वातावरण अत्यंत उग्र और सक्रिय था। आयरलैंड स्वयं ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा था। देश भर में राष्ट्रीय चेतना की लहरें थी, सार्वजनिक सभाएं हो रही थी, राजनीतिक बहसें चल रही थी, युवा सड़कों पर थे, स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की मांग लगातार मजबूत हो रही थी। युवा गिरी ने पहली बार इतने व्यापक जन आंदोलन को निकटता से देखा। उन्होंने देखा कि जब कोई राष्ट्र अपनी पहचान और अपने अधिकारों के लिए खड़ा होता है तो साधारण लोग भी इतिहास बदलने की क्षमता रखते हैं। यह अनुभव उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। भारत में रहते हुए उन्होंने स्वतंत्रता की आवश्यकता को समझा था, लेकिन आयरलैंड में उन्होंने स्वतंत्रता के संघर्ष को जीते हुए देखा है।
3: आयरलैंड में बिताए गए वर्षों ने उनके भीतर केवल राष्ट्रवाद की भावना ही नहीं जगाई बल्कि सामाजिक न्याय की समझ भी विकसित की। यहीं उन्होंने श्रमिक आंदोलनों को करीब से देखा। उन्होंने देखा कि मजदूर अपने अधिकारों के लिए किस प्रकार संगठित होते हैं। वो केवल वेतन की बात नहीं करते थे, वो सम्मान की बात करते थे, सुरक्षा की बात करते थे, समान अवसरों की बात करते थे। इन आंदोलनों ने युवा गिरी पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने महसूस किया कि किसी भी समाज की प्रगति केवल बड़े नेताओं या बड़े उद्योगों से नहीं होती, उसकी वास्तविक शक्ति उसके श्रमिकों में होती है। यही वो विचार था जो आगे चलकर उनके पूरे जीवन का आधार बना।
4: आयरलैंड के अनुभवों ने उनके भीतर स्वतंत्रता, लोकतंत्र और जन भागीदारी के प्रति गहरा विश्वास पैदा कर दिया। वे समझ चुके थे कि जनता की भागीदारी के बिना कोई भी परिवर्तन स्थायी नहीं हो सकता। यही कारण था कि बाद के वर्षों में जब वे भारत में श्रमिक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे तब उनका दृष्टिकोण केवल अधिकारों की मांग तक सीमित नहीं था। वे संगठन, संवाद और जनशक्ति पर भी उतना ही बल देते थे। दरअसल आयरलैंड में ही उनके भीतर वह नेता जन्म ले चुका था जिसे भारत आने वाले दशकों में जानने वाला था।
3: लेकिन आयरलैंड में उनका समय केवल अध्ययन और अवलोकन तक सीमित नहीं रहा। उनकी राष्ट्रवादी गतिविधियों और राजनीतिक रुचियों ने ब्रिटिश प्रशासन का ध्यान भी आकर्षित किया। वे उन युवाओं में शामिल थे जो स्वतंत्रता और स्वाभिमान के प्रश्नों पर खुलकर विचार रखते थे। ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश अधिकारियों की नजर उन पर पड़ना स्वाभाविक था। अंततः उन्हें आयरलैंड छोड़कर भारत लौटना पड़ा। लेकिन जब वे वापस लौटे तब वो केवल कानून की पढ़ाई पूरी करके लौटने वाले छात्र नहीं थे, वे एक ऐसे जागरूक भारतीय बन चुके थे जिसके भीतर राष्ट्र सेवा का संकल्प आकार ले चुका था।
4: भारत लौटने के बाद उन्होंने वकालत शुरू की। उनके सामने एक सफल पेशेवर जीवन का रास्ता खुला हुआ था। वे चाहते तो एक प्रतिष्ठित वकील बन सकते थे, सुख सुविधा का जीवन जी सकते थे, लेकिन इतिहास ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। क्योंकि उस समय भारत का वातावरण तेजी से बदल रहा था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ चुके थे। स्वतंत्रता आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले रहा था। देश के कोने कोने में आजादी की आवाज गूंजने लगी थी। ऐसे समय में वीवी गिरी स्वयं को उस संघर्ष से अलग नहीं रख सके।
3: महात्मा गांधी के विचारों ने उनके जीवन को नई दिशा दी। सत्य, अहिंसा, स्वदेशी, जन भागीदारी और सामाजिक न्याय, ये केवल राजनीतिक नारे नहीं थे, ये जीवन जीने की एक पद्धति थे। वीवी गिरी ने इन विचारों को गहराई से जाना और उनसे प्रभावित भी हुए। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी शुरू की, सभाओं में भाग लिया, लोगों को जागरूक किया, राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करने का प्रयास किया और धीरे धीरे वे स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय कार्यकर्ताओं में गिने जाने लगे।
4: स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना आसान नहीं था। उस समय इसका अर्थ था निगरानी, गिरफ्तारी, जेल, आर्थिक असुरक्षा और अनेक व्यक्तिगत कठिनाइयां। लेकिन वीवी गिरी उन लोगों में से नहीं थे जो कठिनाइयों से पीछे हट जाएं। उन्होंने जेल यात्राएं की, संघर्षों का सामना किया और हर चुनौती को राष्ट्र सेवा का हिस्सा मानकर स्वीकार कर लिया। उनका विश्वास था कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं है, यह सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की भी शुरुआत है। और शायद यही सोच आगे चलकर उन्हें स्वतंत्रता सेनानी से श्रमिक नेता बनाने वाली थी।
3: स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात को गहराई से समझा। उन्होंने महसूस किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं होगा। यदि देश के श्रमिक, किसान और आम नागरिक सम्मानजनक जीवन न जी सके तो स्वतंत्रता अधूरी रह जाएगी। बस यहीं से उनके जीवन का अगला अध्याय शुरू हुआ, एक ऐसा अध्याय जिसने उन्हें भारत के सबसे प्रभावशाली श्रमिक नेताओं में शामिल कर दिया, जिसने लाखों मजदूरों के जीवन को प्रभावित किया, जिसने अंततः उन्हें राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाने की भूमिका तैयार की।
4: स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के दौरान वीवी गिरी ने भारत को बहुत करीब से देखा। उन्होंने केवल राजनीतिक गुलामी को नहीं देखा बल्कि उस आर्थिक और सामाजिक वास्तविकता को भी देखा जो लाखों भारतीयों के जीवन को प्रभावित कर रही थी। देश का एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो दिन रात मेहनत करता था लेकिन उसके श्रम का उचित सम्मान नहीं था। कारखानों में काम करने वाले मजदूर, रेलवे कर्मचारी, बंदरगाहों पर काम करने वाले श्रमिक, खदानों में काम करने वाले मेहनतकश लोग, ये सभी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे थे लेकिन उनकी अपनी स्थिति अक्सर संघर्षपूर्ण रहती थी। वीवी गिरी ने महसूस किया कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं, स्वतंत्रता का अर्थ यह भी है कि समाज के हर वर्ग को सम्मान, सुरक्षा और अवसर मिले। यही सोच उन्हें श्रमिक आंदोलन की ओर लेकर चली गई और यहीं से उनके जीवन का वह अध्याय शुरू हुआ जिसने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट पहचान दिलाई।
3: दोस्तों, आज जब हम वीवी गिरी का नाम सुनते हैं तो अक्सर हमें भारत के चौथे राष्ट्रपति की याद आती है, लेकिन ये जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने से बहुत पहले वो भारत के सबसे प्रभावशाली श्रमिक नेताओं में गिने जाते थे। दरअसल मजदूरों और कर्मचारियों के बीच उनका जो विश्वास था वही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक और सामाजिक पूंजी थी। वो उन नेताओं में से नहीं थे जो केवल मंच से भाषण देते हों, वो सीधे लोगों के बीच जाते थे, उनकी बातें सुनते थे, उनकी समस्याओं को समझते थे और फिर उन समस्याओं को व्यवस्था के सामने पूरी मजबूती से रखते थे। शायद यही कारण भी था कि श्रमिक उन्हें अपना नेता ही नहीं बल्कि अपना प्रतिनिधि मानते थे।
4: 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों का भारत तेजी से बदल रहा था। रेलवे नेटवर्क का विस्तार हो रहा था, औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा था, नई फैक्ट्रियां स्थापित होने लगी थी, लेकिन इन विकास कार्यों के पीछे काम करने वाले लाखों श्रमिकों की स्थिति अभी भी संतोषजनक नहीं थी। कार्य के घंटे लंबे थे, सुरक्षा मानकों की कमी थी, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था लगभग नगण्य थी और सबसे बड़ी बात यह कि श्रमिकों की आवाज को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता था। ऐसे समय में वीवी गिरी ने यह समझा कि यदि इन लोगों को संगठित नहीं किया गया तो उनकी समस्याएं कभी भी राष्ट्रीय प्राथमिकता नहीं बन पाएंगी। यहीं से उन्होंने श्रमिक संगठनों के साथ सक्रिय रूप से काम करना शुरू कर दिया।
3: उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र रेलवे कर्मचारियों के बीच रहा। रेलवे उस समय केवल एक परिवहन व्यवस्था नहीं थी, वो भारत की आर्थिक धड़कन भी थी, देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाला सबसे बड़ा माध्यम थी और लाखों कर्मचारी इस व्यवस्था को चलाने में दिन रात जुटे रहते थे। लेकिन इन कर्मचारियों की अपनी समस्याएं भी कम नहीं थी। वीवी गिरी ने रेलवे कर्मचारियों के बीच जाकर उनके जीवन को समझा। उन्होंने देखा कि किस प्रकार कठिन परिस्थितियों में काम करते हुए भी ये कर्मचारी राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने उनकी समस्याओं को केवल सुना नहीं बल्कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। धीरे धीरे वो रेलवे कर्मचारियों के सबसे विश्वसनीय नेताओं में शामिल हो गए।
4: रेलवे यूनियन के साथ काम करते हुए वीवी गिरी ने एक महत्वपूर्ण बात महसूस की। उन्होंने देखा कि श्रमिकों की समस्याएं केवल आर्थिक नहीं हैं, वे सम्मान से भी जुड़ी हुई हैं, वे भागीदारी से भी जुड़ी हुई हैं, वे प्रश्न से भी जुड़ी हुई हैं कि किसी संस्था में निर्णय लेते समय उन लोगों की आवाज कितनी सुनी जाती है जो वास्तव में उस संस्था को चलाते हैं। यही कारण था कि उन्होंने श्रमिक आंदोलन को केवल वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे गरिमा, भागीदारी और सामाजिक न्याय के व्यापक प्रश्न से जोड़ दिया। यह उस समय के लिए एक अत्यंत प्रगतिशील सोच थी।
3: और फिर क्या, धीरे धीरे उनका नाम पूरे देश में एक प्रभावशाली ट्रेड यूनियन नेता के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन उनकी कार्यशैली उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाती थी। वो केवल संघर्ष की भाषा नहीं बोलते थे, वो संवाद की भाषा भी जानते थे। वो केवल विरोध की बात नहीं करते थे, वो समाधान की भी बात करते थे। उनका मानना था कि श्रमिकों और प्रबंधन के बीच स्थायी टकराव किसी के भी हित में नहीं है। यदि दोनों पक्ष एक दूसरे को समझें और संवाद बनाए रखें तो उद्योग भी आगे बढ़ सकते हैं और श्रमिकों का जीवन भी बेहतर हो सकता है।
4: यहीं से जन्म हुआ उस विचार का जिसे बाद में पूरे देश ने गिरी अप्रोच के नाम से जाना। आज भी औद्योगिक संबंधों और श्रम प्रबंधन का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी इस अवधारणा का उल्लेख करते हैं। गिरी अप्रोच का मूल आधार था संवाद, विश्वास और सहयोग। वीवी गिरी का मानना था कि उद्योग, श्रमिक और सरकार ये तीनों एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, ये एक ही व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं। यदि इनमें सहयोग होगा तो विकास होगा, यदि इनमें अविश्वास होगा तो संघर्ष बढ़ेगा। उनका दृष्टिकोण उस समय के लिए अत्यंत व्यवहारिक और दूरदर्शी माना गया।
3: वो अक्सर कहा करते थे कि हड़ताल किसी भी समस्या का पहला समाधान नहीं हो सकती, हड़ताल अंतिम विकल्प होना चाहिए। उससे पहले बातचीत होनी चाहिए, समझौते के प्रयास होने चाहिए, मध्यस्थता के प्रयास होने चाहिए और यदि उसके बाद भी न्याय ना मिले तभी संघर्ष का मार्ग अपना कर चलना चाहिए। ये दृष्टिकोण उन्हें एक संतुलित नेता के रूप में स्थापित करता था। श्रमिक उन पर विश्वास करते थे क्योंकि वो उनके अधिकारों की बात करते थे और उद्योग जगत भी उनका सम्मान करता था क्योंकि वो संवाद और स्थिरता के महत्व को समझते थे।
4: यही कारण है कि वीवी गिरी को केवल एक ट्रेड यूनियन नेता कहना उनके योगदान को सीमित कर देना होगा। विश्रम संबंधों के एक गंभीर चिंतक भी थे। उन्होंने औद्योगिक विकास और श्रमिक कल्याण के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने यह समझाने की कोशिश की कि दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। आज जब हम औद्योगिक शांति, सामूहिक सौदेबाजी और श्रमिक भागीदारी जैसे विषयों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं गिरी जी के विचारों की झलक दिखाई देती है।
3: बहुत कम लोग जानते हैं कि वीवी गिरी केवल आंदोलनकारी नेता ही नहीं थे बल्कि एक गंभीर लेखक और विचारक भी थे। उन्होंने अपने अनुभवों को पुस्तक के माध्यम से भी व्यक्त किया। उनकी पुस्तक केवल सिद्धांतों की चर्चा नहीं करती बल्कि वास्तविक जीवन के अनुभवों और चुनौतियों पर आधारित हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर प्रॉब्लम इन इंडियन इंडस्ट्री और जॉब्स फॉर अवर मिलियंस, ये पुस्तकों में उन्होंने भारत के आर्थिक विकास, रोजगार और श्रमिक कल्याण से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार रखा। इन पुस्तकों से यह स्पष्ट होता है कि वो केवल आंदोलन के नेता नहीं थे, वो नीति और सिद्धांत दोनों को समझने वाले विचारक भी थे।
4: 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। अब संघर्ष का स्वरूप बदल चुका था। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ाई समाप्त हो गई थी, लेकिन राष्ट्र निर्माण का कार्य भी शुरू हुआ था। देश को नई संस्थाएं बनानी थी, नई नीतियां बनानी थी और एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता थी जो स्वतंत्र भारत की चुनौतियों को समझता हो। वीवी गिरी उन नेताओं में थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी योगदान दिया था और सामाजिक आर्थिक प्रश्नों पर भी गंभीरता से काम किया था। इसलिए स्वतंत्र भारत में उनकी भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती चली गई।
3: दोस्तों, स्वतंत्र भारत की सरकार ने उन्हें एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जिम्मेदारी सौंपी। उन्हें सीलोन अर्थात वर्तमान श्रीलंका में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। ये केवल एक प्रशासनिक नियुक्ति नहीं थी, बल्कि ये भारत के विश्वास का प्रतीक थी। उस समय भारत और श्रीलंका के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दे थे। दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाना आवश्यक था। वीवी गिरी ने इस जिम्मेदारी को बड़ी कुशलता से निभाया। उनकी व्यवहार कुशलता, संतुलित दृष्टिकोण और संवाद की क्षमता यहाँ भी बहुत काम आई।
4: उच्चायुक्त के रूप में सफलता के बाद उन्हें केंद्र सरकार में श्रम मंत्री बनाया गया। यह जिम्मेदारी मानो उनके पूरे जीवन अनुभव का स्वाभाविक विस्तार थी। वर्षों तक श्रमिकों के बीच काम करने वाला व्यक्ति अब राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक नीतियों को सुधार सकता था। उन्होंने श्रमिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और औद्योगिक संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए। उनका ध्यान हमेशा इस बात पर रहता था कि विकास का लाभ केवल कुछ लोगों तक सीमित न रहे, बल्कि समाज के व्यापक वर्ग तक पहुंचे।
3: इसके बाद वीवी गिरी ने कई महत्वपूर्ण राज्यों में राज्यपाल के रूप में कार्य भी किया। उत्तर प्रदेश, केरल और मैसूर जैसे राज्यों में उनकी नियुक्ति इस बात का प्रमाण थी कि वो केवल एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक सक्षम प्रशासक भी थे। राज्यपाल के रूप में उन्होंने संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए काम किया। वे विवादों से दूर रहते थे। उनका प्रयास हमेशा यही रहता था कि लोकतांत्रिक संस्थाएं सुचारू रूप से काम करती रहें। उनकी निष्पक्षता और संतुलन की व्यापक सराहना की गई।
4: इन सभी भूमिकाओं के दौरान एक बात कभी नहीं बदली, चाहे वे श्रमिक नेता रहे हों, चाहे मंत्री रहे हों, चाहे राज्यपाल रहे हों, वे हमेशा स्वयं को जनता से जुड़ा हुआ महसूस करते रहे। वे कभी भी अपनी जड़ों को नहीं भूले। शायद यही कारण था कि सार्वजनिक जीवन में उनकी विश्वसनीयता लगातार बढ़ती चली गई।
3: और फिर आया वर्ष 1967। ये उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव था। वीवी गिरी भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ये केवल एक संवैधानिक पद नहीं था, ये उनके दशकों लंबे सार्वजनिक जीवन, उनके अनुभव, उनकी निष्ठा और उनके योगदान की राष्ट्रीय स्वीकृति थी। लेकिन इतिहास ने उनके लिए अभी एक और बड़ी भूमिका तय कर रखी थी, एक ऐसी भूमिका जो उन्हें भारतीय लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में स्थान दिलाने वाली थी।
4: 1967 में भारत के उपराष्ट्रपति बनने के साथ ही वीवी गिरी भारतीय सार्वजनिक जीवन के सर्वोच्च पदों में शामिल हो चुके थे। लेकिन उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक यात्रा भी शेष थी। ये वो यात्रा थी जो उन्हें राष्ट्रपति भवन तक लेकर जाने वाली थी, और ये यात्रा जितनी महत्वपूर्ण थी उतनी ही नाटकीय भी। भारतीय राजनीति के इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनकी चर्चा दशकों बाद भी की जाती है। 1969 का राष्ट्रपति चुनाव ऐसी ही एक घटना है। यह केवल राष्ट्रपति चुनाव की संवैधानिक प्रक्रिया नहीं थी, यह उस दौर की राजनीतिक परिस्थितियों, वैचारिक मतभेदों और लोकतांत्रिक मूल्यों की भी परीक्षा थी, और इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में थे वीवी गिरी।
3: 3 मई 1969 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का आकस्मिक निधन हो गया। परिस्थितियां बदली और वीवी गिरी राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए। राष्ट्रपति भवन में पहुंचने के बाद भी वीवी गिरी की पहचान नहीं बदली। वो पहले ही की तरह सरल रहे, पहले की तरह सहज और पहले की तरह आम लोगों के प्रति संवेदनशील बने रहे। उनके लिए राष्ट्रपति का पद सम्मान से अधिक जिम्मेदारी का पद था। वो मानते थे कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, ये राष्ट्र की सामूहिक चेतना का प्रतीक है। इसलिए राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने हमेशा संवैधानिक मर्यादाओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा को सर्वोच्च महत्व दिया।
4: उनके कार्यकाल के दौरान भारत अनेक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाओं का साक्षी बना। देश आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था, नई नीतियां बन रही थी, नए कार्यक्रम शुरू हो रहे थे और लोकतांत्रिक संस्थाएं निरंतर विकसित हो रही थी। ऐसे समय में राष्ट्रपति के रूप में उनकी भूमिका संतुलन, धैर्य और संवैधानिक प्रतिबद्धता की रही। उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि राष्ट्रपति पद दलगत राजनीति से ऊपर बना रहे।
3: लेकिन यदि कोई ये सोचता है कि राष्ट्रपति बनने के बाद वे श्रमिकों और आम लोगों के मुद्दे से हट गए होंगे या उन्हें भूल गए होंगे, तो ये उनकी प्रकृति को समझने में शायद भूल होगी। उनकी जड़ें हमेशा समाज के उसी वर्ग से जुड़ी रहीं जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था। वो अक्सर कहा करते थे कि किसी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके मेहनतकश लोगों में होती है। मशीनें, इमारतें और संस्थाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन्हें जीवंत बनाने वाला श्रम ही होता है। ये विचार उनके जीवन के अंतिम वर्षों तक उनके साथ बना रहा। 1974 में उनका राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त हुआ, लेकिन सार्वजनिक जीवन में उनका सम्मान और प्रभाव बना रहा। लोग उन्हें केवल पूर्व राष्ट्रपति के रूप में नहीं देखते थे, वो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते थे जिसने अपने जीवन के हर चरण में समाज के कमजोर और मेहनतकश वर्गों की आवाज को महत्व दिया। उनका सार्वजनिक जीवन किसी एक पद की उपलब्धि तक सीमित नहीं था, वो एक सतत यात्रा थी और वो थी जनसेवा की यात्रा।
4: उनकी असाधारण सेवाओं को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1975 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। यह सम्मान केवल इसलिए नहीं था कि वे भारत के राष्ट्रपति रह चुके थे, यह सम्मान उनके पूरे जीवन की साधना का सम्मान था। एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनका योगदान, एक श्रमिक नेता के रूप में उनका संघर्ष, एक विचारक के रूप में उनकी दृष्टि, एक प्रशासक के रूप में उनकी निष्ठा और एक राष्ट्र नायक के रूप में उनकी सेवाएं, इन सभी का समग्र सम्मान था भारत रत्न।
3: लेकिन शायद वीवी गिरी स्वयं इस सम्मान को भी अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं मानते, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान जनता का विश्वास था। उन लाखों श्रमिकों का विश्वास जिन्होंने उन्हें अपना नेता माना, उन नागरिकों का विश्वास जिन्होंने उन्हें एक ईमानदार जनसेवक के रूप में देखा, और उस राष्ट्र का विश्वास जिसने उन्हें अपने सर्वोच्च संवैधानिक पद की जिम्मेदारी सौंपी।
4: बहुत कम लोग जानते हैं कि वीवी गिरी उन चुनिंदा भारतीय राष्ट्रपतियों में से हैं जिनकी सबसे बड़ी पहचान राजनीतिक नहीं बल्कि श्रमिक आंदोलन से थी। विश्व इतिहास में भी ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं जहां ट्रेड यूनियन आंदोलन से निकला कोई नेता लोकतांत्रिक व्यवस्था के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचा हो। यही बात उनके जीवन को विशिष्ट बनाती है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि जनसेवा का मार्ग चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अंततः वही सबसे अधिक सम्मान दिलाता है।
3: आज जब हम 21वीं सदी में खड़े होकर उनके जीवन को देखते हैं, तो उनके अनेक विचार आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक प्रतीत होते हैं। श्रमिक अधिकारों की बात हो, सामाजिक सुरक्षा की बात हो, संवाद आधारित औद्योगिक संबंधों की बात हो या लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती की बात हो, हर क्षेत्र में उनके विचार आज भी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनकी सोच हमें ये याद दिलाती है कि विकास तभी सार्थक होता है जब उसमें मानव गरिमा और सामाजिक न्याय दोनों शामिल हों।
4: युवा पीढ़ी के लिए भी वीवी गिरी का जीवन एक प्रेरणा है। उन्होंने दिखाया कि साधारण परिस्थितियों से निकलकर भी असाधारण उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। उन्होंने दिखाया कि सिद्धांतों पर अड़िग रहते हुए भी सफलता हासिल की जा सकती है। उन्होंने दिखाया कि नेतृत्व का अर्थ केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व निभाना है। और उन्होंने यह भी दिखाया कि किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान उसके पद से नहीं बल्कि उसके मूल्यों से होती है।
3: 24 जून 1980 को वीवी गिरी इस संसार से विदा हो गए। उनके निधन के साथ भारतीय सार्वजनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हुआ। देश ने एक अनुभवी राजनेता को खोया, एक स्वतंत्रता सेनानी को खोया।

0: युवा छात्र को भी याद करना चाहिए जिसने आयरलैंड की धरती पर स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय का महत्व समझा। हमें उस स्वतंत्रता सेनानी को भी याद करना चाहिए जिसने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। हमें उस श्रमिक नेता को भी याद करना चाहिए जिसने मजदूरों की आवाज को सम्मान दिलाने का संकल्प लिया। और हमें उस राष्ट्र नायक को भी याद करना चाहिए जिसने राष्ट्रपति भवन तक पहुंचकर भी अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया।
1: वीवी गिरी आज भी जीवित हैं। हर उस श्रमिक के संघर्ष में जो अपने अधिकारों के लिए खड़ा है, हर उस युवा के सपनों में जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहता है, हर उस नागरिक की चेतना में जो लोकतंत्र और संविधान की शक्ति पर विश्वास करता है, और हर उस भारतीय के हृदय में जो ये मानता है कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। वीवी गिरी का जीवन संघर्ष की कहानी है, सेवा की कहानी है, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था की कहानी है, और इन सबसे बढ़कर ये उस विश्वास की कहानी है कि सामान्य नागरिक भी राष्ट्र के इतिहास को बदल सकते हैं।
0: तो भारत विभूति के हमारे इस खास कार्यक्रम में आज आपने जाना भारत के चौथे पूर्व राष्ट्रपति श्री वीवी गिरी के बारे में। भारत विभूति कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन पुष्पक श्रीवास्तव और वाचन मैं दीपेश
1: और मैं मनीषा।
0: इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार, नमस्कार।

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। ये वो आकाश है जहां शब्द केवल बोले नहीं जाते, वे साधे जाते हैं। जहां स्वर केवल गूंजते नहीं, वे चेतना को स्पर्श करते हैं।
0: तृतीय सर्ग में हमने देखा, एक पुरुष ने राज्य को ठुकरा कर वचन को अपना राजमुकुट बना लिया। कर्ण ने दिखा दिया कि मनुष्य का कद उसके जन्म से नहीं, उसके निर्णय से मापा जाता है। वहां कथा नहीं, चरित्र बोल रहा था। वहां संवाद नहीं, संकल्प गूंज रहा था। वृक्ष फल देकर रिक्त नहीं होता, वह और हरित होता है। सरिता जल देकर सूखती नहीं, वह पुनः मेघों में भरती है। यही आत्मदान का शाश्वत नियम है। जो देता है वही सचमुच पाता है। जो अंतिम मूल्य हंसकर चुका दे वही अमरता का अधिकारी होता है। श्रोताओं, चतुर्थ सर्ग की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि दिनकर जी को यूं ही राष्ट्रकवि नहीं कहा गया। उनकी वाणी सोई हुई चेतना को झकझोरती है, मनुष्य को उसके आत्मबल का बोध कराती है।
1: बिल्कुल, रश्मि रथी में मानवीय मूल्यों का ऐसा ही समन्वय है, जहां दर्शन भी है, सिद्धांत भी, इच्छा भी है, संयम भी, छल और द्वेष की छाया भी है, तो प्रेम, दान और तपस्या की उज्जवल आभा भी। ये काव्य केवल घटनाओं का अनुक्रम नहीं, मानव हृदय का महागान है। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं चतुर्थ सर्ग के भाग एक का काव्य पाठ। प्रेम यज्ञ अति कठिन, बंधुता की अद्भुत अभिमानी। प्रेम यज्ञ अति कठिन, कुंड में कौन वीर बलि देगा। तन मन धन सर्वस्व होम कर अतुलनीय यश लेगा। हरि के सम्मुख भी ना हार जिसकी निष्ठा ने मानी। धन्य धन्य राधेय, बंधुता की अद्भुत अभिमानी। पर जाने क्यों, नियम एक अद्भुत जग में चलता है। भोगी सुख भोगता, तपस्वी और अधिक जलता है। हरियाली है जहां, जलद भी उसी खंड के वासी। मरु की भूमि मगर रह जाती है प्यासी की प्यासी। और वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर अड़ता है, सचमुच उसके लिए उसे सब कुछ देना पड़ता है। नहीं सदा भीषिका दौड़ती द्वार पाप का पाकर, दुख भोगता कभी पुण्य को भी मनुष्य अपना कर। पर तब भी रेखा प्रकाश की जहां कहीं हस्ती है, वहां किसी प्रज्वलित वीर नर की आभा बसती है। जिसने छोड़ी नहीं लीक विपदाओं से घबराकर, दी जग को रोशनी टेक पर अपनी जान गंवाकर। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश आग में जो अभीत जलता है। आजीवन झेलते दाह का दंश वीर व्रतधारी, हो पाते तब कहीं अमरता के पद के अधिकारी। प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना। सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मोल चुकाना। अंतिम मूल्य ना दिया अगर, तो और मूल्य क्या देना। करने लगे मोह प्राणों का, तो फिर प्रण लेना क्या। सस्ती कीमत पर बिकती रहती जब तक कुर्बानी, तब तक सभी बने रह सकते हैं त्यागी बलिदानी। पर महंगी में मोल तपस्या का देना दुष्कर है। हंसकर दे ये मूल्य, ना मिलता वो मनुष्य घर घर है। जीवन का अभियान दान बल से अजस्त्र चलता है। उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है। और दान में रोकर या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकार वश उसे सत्व का त्याग मान लेते हैं। ये ना स्वत्व का त्याग, दान तो जीवन का झरना है, रखना उसको रोक मृत्यु के पहले ही मरना है। किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं।
0: ऋतु के बाद फलों का रुकना डालों का सड़ना है, मोह दिखाना देय वास्तु पर आत्मघात करना है। देते तरु इसलिए कि रेशों में मत कीट समाए रहें, डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आए। सरिता देती वारी कि पाकर उसे सुपूरित घन हो, बरसे मेघ भरे फिर सरिता उदित नया जीवन हो। आत्मदान के साथ जगत जीवन का रिजुनाता है, जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। दिखलाना कार्पण्य आप अपने धोखा खाना है, रखना दान अपूर्ण रिक्ति निज का ही रह जाना है। व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए ना जो रोते हैं, पूर्ण काम जीवन से एकाकार वही होते हैं। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर ना कभी मरता है। जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं उजियाला, वहां खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया, त्याग सीता को, जीवन की संगिनी प्राण की मणि को, सुपुनीता को दिया। अस्थि देकर दधीची ने, शिवी ने अंग कतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर, ईसा ने संसार हेतु शूली पर प्राण गवाकर, अंतिम मूल्य दिया गांधी ने तीन गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। हंसकर लिया मरण ओठों पर जीवन का व्रत पाला, अमर हुआ सुकरात जगत में पीकर विष का प्याला। मार कर भी मनसूर नियति की सह पाया ना ठिठोली, उत्तर में सौ बार चीख कर बोटी बोटी बोली। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है, एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना ही पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको, वे देकर भी मरते हैं।
1: श्रोताओं, अभी जो पंक्तियां हमने सुनी वे केवल कविता नहीं थी, वे एक अग्निकुंड थी। प्रेम यज्ञ अति कठिन से आरंभ होकर यह भाग हमें भीतर तक टटोलता है। कितनी सहजता से कवि पूछते हैं, प्रण लेना आसान है पर क्या हम उसका अंतिम मूल्य चुकाने को तैयार हैं? त्याग की बातें सब करते हैं पर जब सर्वस्व अर्पण की घड़ी आती है तभी सच्चा मनुष्य पहचाना जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। आज हम सुविधा के युग में हैं, जहां हर चीज हमें तुरंत चाहिए, पर तपस्या का धैर्य नहीं। इस काव्यांश में कवि कहते हैं, व्रत का अंतिम मोल चुकाना ही असली परीक्षा है। और हम अपने चारों ओर देखें तो पाएंगे, लोग नाम चाहते हैं, यश चाहते हैं, किंतु मूल्य चुकाने का साहस कम ही दिखता है।
1: और दान, आज दान भी प्रदर्शन बनता जा रहा है, पर यहां दान को जीवन का झरना कहा गया। जैसे वृक्ष फल देकर स्वयं को बचाता है, जैसे सरिता बहकर निर्मल रहती है, यदि हम रोक लें, सहेज लें, केवल अपने लिए जी लें, तो क्या हम सचमुच जीवित रह पाते हैं या भीतर ही भीतर सूखने लगते हैं?
0: यही तो इस भाग की प्रासंगिकता है। आज दुनिया में स्पर्धा है, स्वार्थ है, आगे निकल जाने की होड़ है, किंतु इतिहास उन्हीं का स्मरण करता है जिन्होंने अंतिम मोल हंसकर चुकाया, चाहे वह त्याग हो, सत्य हो या मानवता। ये काव्य हमें याद दिलाता है कि अमरता सुविधा से नहीं, साहस से मिलती है। यह केवल कर्ण की भूमिका नहीं, ये हमारे समय का दर्पण है। क्या हम अपने छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठ सकते हैं? चतुर्थ सर्ग का ये प्रथम भाग हमें भीतर की अग्नि से परिचित कराता है। आगे कथा और भी गहन होगी। और हम उस अग्नि में कर्ण के चरित्र को और तपता देखेंगे। आइए अब सुनते हैं चतुर्थ सर्ग के भाग दो का काव्य पाठ।
1: वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रणभारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था मुंह मांगा वो दान कर्ण से अनायास पाता था। पहर रही थी मुक्त चतुर्दिक यश की विमल पताका, कर्ण नाम पड़ गया दान की अतुलनीय महिमा का। श्रद्धा सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी, अपना भाग्य समझ भजते थे उसे भाग्य हत प्राणी। तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से, किया नियति ने वार कर्ण पर, छिपकर पुण्य विवर से, व्रत का निकष दान था। अब की चढ़ी निकष पर काया, कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य देह धराया। एक दिवास जब छोड़ रहे थे दिनमणि मध्य गगन को, कर्ण जानवी तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को। कट तक डूबा हुआ सलिल में किसी ध्यान में रत सा, अम्बुधि में आकटक निमज्जित कनक खचित पर्वत सा। हंसती थी रश्मिया रजत से भरकर वारी विमल को, हो उठती थी स्वयं स्वर्ण छू कवच और कुंडल को। किरण सुधा पी स्वयं मोद में भरकर दमक रहा था, कदली में चिकने पातों पर पारद चमक रहा था। विहग लता विरुद्ध वितान में तट पर चहक रहे थे, धूप दीप कर पूर फूल सब मिलकर महक रहे थे। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान कर्ण ने खोला, इतने में ऊपर तट पर खरपात कहीं कुछ डोला। कहा कर्ण ने
2: कौन उधर है बंधु, सामने आओ, मैं प्रस्तुत हो चुका, स्वस्थ हो, निज आदेश सुनाओ, अपनी पीड़ा कहो। कर्ण सबका विनीत अनुचर है, ये विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। मांगो मांगो दान, अन्न या वसन, धाम या धन दूं, अपना छोटा राज्य या कि क्षणिक शूद्र जीवन दूं। मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से, याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। पर का दुख हरण में ही अपना सुख माना, भयहीन मैंने जीवन में और स्वाद क्या जाना। आओ उरण बनूं तुमको भी न्यास तुम्हारा देकर, उपकृत करो मुझे अपनी सिंचित निधि मुझसे लेकर। अरे कौन है भिक्षु यहां पर और कौन दाता है, अपना ही अधिकार मनुज नाना विधि से पाता है। कर पसार कर जब भी तुम मुझसे कुछ ले लेते हो, तृप्त भाव से हेर मुझे क्या चीज नहीं देते हो। दीनों का संतोष भाग्यहीनों की गदगद वाणी, नयन कोर में भरा लबालब कृतज्ञता का पानी। हो जाना फिर हरा युगों से मुरझाए अधरों का, पाना आशीर्वचन प्रेम विश्वास अनेक नरों का। इससे बढ़कर और प्राप्ति क्या जिस पर गर्व करूं मैं, पर को जीवन मिले अगर तो हंसकर क्यों ना मरूं मैं। मोल तोल कुछ नहीं, मांग लो जो कुछ तुम्हें सुहाए, मुंह मांगा ही दान सभी को हम हैं देते आए। मुंह मांगा ही दान सभी को हम हैं देते आए।
0: श्रोताओं, दान देने से जो घटता है वह वस्तु होती है, पर जो बढ़ता है वह मनुष्य होता है। और आज के इस प्रसंग में हम ऐसे ही एक पुरुष के सामने खड़े हैं जिसके लिए दान प्रदर्शन नहीं स्वभाव है। हाँ, गंगा तट पर खड़ा वह सूर्य पुत्र जल में निमग्न पर तेज से दीप दिपाता हुआ, जैसे स्वर्णिम पर्वत स्वयं तपस्या में लीन हो। ये दृश्य केवल बाहरी नहीं, यह भीतर की निर्मलता का संकेत है।
1: श्रोताओं, दिनकर जी ने जिस कोमलता से इस प्रसंग को रचा है उसमें दान कोई घटना नहीं साधना बन जाता है। यह भाव बहुत स्पर्श करता है, दाता और भिक्षु का भेद मिटा देना। कितनी सरलता से वे कहते हैं कि लेने वाला भी कुछ देता है, संतोष, कृतज्ञता, आशीर्वाद। ये सोच आज के समय में कितनी दुर्लभ हो गई है, जहां देने में भी अहंकार छिपा रहता है।
0: दिनकर जी ने इस दृश्य का कितना अद्भुत, कितना दैदीप्य मानचित्र खींचा है। गंगा का पावन तट, मध्याह्न का प्रखर सूर्य और उस जल के मध्य अचल खड़ा कर्ण, मानो स्वयं तेज से मनुष्य का रूप ही धर लिया हो और तप की मुद्रा में स्थिर हो गया हो। गंगा की लहरें जैसे उसके चरणों का अभिषेक कर रही हो। सूर्य की किरणें उसके कवच कुंडलों पर स्वर्ण रेखाएं उकेरती हुई मानो आकाश से आशीष बरसा रही हो। जल में झील मिलाती आभा ऐसी प्रतीत होती है जैसे नियति ने इस क्षण को रत्न की तरह अपनी हथेली पर संभाल लिया हो।
1: वातावरण में एक गहन निस्तब्धता है, पर यह साधारण मौन नहीं। यह उस तूफान से पहले की शांति है जो चरित्र की पराकाष्ठा को परखने आता है। कर्ण स्थिर हैं, मन से भी, वचन से भी, और जैसे अपने तन को भी अर्पित करने की तैयारी में। और यहीं इस प्रसंग की असली सुंदरता प्रकट होती है। ये केवल एक दृश्य नहीं, ये मानवीय ऊंचाई का आलोक है, जहां मनुष्य अपने संकल्प से सूर्य के समकक्ष खड़ा दिखाई देता है। आगे नियति स्वयं उसके द्वार पर दस्तक देने को है, यही इस प्रसंग की मार्मिकता है। दान अभी तक व्रत था, पर अब वो जीवन बनने जा रहा है।
0: श्रोताओं, आज गंगा के तट पर हमने केवल कर्ण को नहीं देखा, हमने उस दुर्लभ मनुष्यत्व की झलक देखी है जो स्वयं तप कर भी दूसरों को प्रकाश देता है। जल में खड़ा वह सूर्य पुत्र मानो ये कह रहा हो कि दान हाथों से पहले हृदय में जन्म लेता है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने इस प्रसंग में कर्ण को किसी राजपुरुष की भांति नहीं बल्कि ऐसे महातपस्वी की तरह उकेरा है जिसकी आभा भीतर से फूटती है। सच ही तो है श्रोताओं, समय अक्सर उन्हीं की परीक्षा लेता है जिनके भीतर असाधारण तेज छिपा होता है। साधारण दीपकों की आंधी नहीं उतरती, तूफान हमेशा सूर्यों की ओर बढ़ते हैं।
1: दोस्तों, अब कथा उस दहलीज पर आ पहुंची है जहां मौन के भीतर नियति की आहट सुनाई देने लगी है। गंगा अब भी बह रही है, सूर्य अब भी आकाश में प्रज्वलित है, पर समय की चाल बदल चुकी है। कर्ण का तप, उसका व्रत और उसका भाग्य अब एक ऐसे मोड़ की ओर बढ़ रहे हैं जहां त्याग केवल गुण नहीं रहेगा, इतिहास बन जाएगा। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे चतुर्थ सर्ग के भाग 3 और 4 का काव्य पाठ, जहां इस शांत जलधारा के बीच नियति स्वयं एक याचक बनकर कर्ण के द्वार पर आएगी। अब हमें अनुमति दीजिए, जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, रेडियो प्रस्तुति एवं लेखन दीपक नेमा। इसे आप तक पहुंचाया मैंने यानी आपके रेडियो मित्र संदीप शर्मा ने,
0: मैंने यानी भगवती सक्सेना ने,
3: और मैंने यानी दीपक नेमा ने।
1: तो इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा यहीं विराम लेती है, फिर मिलेंगे एक नए अंक में। नमस्कार। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।
4: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति।

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

0: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। प्रस्तुत है आज का कार्यक्रम भारतीय भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई।
1: डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और अनुसंधान केंद्र से अलग नहीं किया जा सकता। पर्याय नाम है विक्रम साराभाई और इसरो के नाम, जिन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में एक विशेष स्थान दिलाया। न केवल अंतरिक्ष अनुसंधान बल्कि वस्त्र, भेषज, आणविक ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई अन्य क्षेत्रों में भी बराबर का योगदान दिया विक्रम साराभाई ने।
0: डॉक्टर साराभाई के व्यक्तित्व का सबसे ज्यादा खास पहलू ये था कि उनकी रुचि की कोई सीमा नहीं थी। वो अपने सपनों का विस्तार ऐसे तरीके से करते थे कि उनके सपने साकार होकर सजीव संस्था के रूप में सामने खड़े हो जाते थे। वो एक सृजनशील वैज्ञानिक, सफल और दूरदर्शी उद्योगपति, उच्च कोटि के प्रवर्तक, महान संस्था निर्माता

0: उनसे क्यों ना मिल रहा हो। और यही कारण था कि विक्रम जी से मिलने के बाद लोग अपने दिल में उनको आदर और विश्वास के सिंहासन में बिठा लेते थे और पूर्ण रूप से अपनी ईमानदारी की विशेष छाप देकर जाते थे। अपने नाम के अनुसार ही वो व्यवहारिक थे, विक्रम थे।
1: डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म अहमदाबाद में 12 अगस्त सन 1919 को एक समृद्ध जैन परिवार में हुआ। अहमदाबाद में उनका बचपन बीता। बचपन से ही घर में सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण व्यक्तियों का घर में आना जाना लगा रहता था, जिसका प्रभाव बाल विक्रम के व्यक्तित्व पर पड़ा। उनके पिताजी का नाम था अम्बालाल साराभाई और माँ श्रीमती सरलाबाई ने बड़े दुलार से विक्रम की परवरिश की। माँ सरला साराभाई मैडम मॉन्टेसरी की शिक्षिका थी, तो प्रारंभिक अध्ययन माँ से ही मिला। गुजरात कॉलेज से इंटरमीडिएट तक विज्ञान की पढ़ाई की उन्होंने। बाद में उच्च शिक्षा के लिए वो इंग्लैंड चले गए कैम्ब्रिज में पढ़ाई करने के लिए। साल था सन 1937।
0: जी हाँ, विक्रम साराभाई ने साल 1940 में प्राकृतिक विज्ञान में ट्राइपोज डिग्री हासिल कर ली। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था, तो वो स्वदेश लौट आए और भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर में नौकरी कर ली। यहीं पर उनकी मुलाकात महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन से हो गई और ब्रह्मांड किरणों पर अनुसंधान विक्रम जी ने चंद्रशेखर जी के निरीक्षण में ही किया। विक्रम जी का प्रथम अनुसंधान लेख टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्मिक रेंज नाम की भारतीय विज्ञान अकादमी की कार्य विवरणिका में प्रकाशित हुआ। साल 1940-45 का वो समय था, वो दौर था, जब कॉस्मिक रेंज पर साराभाई के अनुसंधान कार्य में बंगलौर और काश्मीर हिमालय में उच्च स्तरीय केंद्र के गेजर मूलर गणकों पर कॉस्मिक रेंज के समय रूपांतरणों का गहन अध्ययन किया जा रहा था।
1: द्वितीय विश्व युद्ध के समापन पर विक्रम जी कॉस्मिक रे भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में अपनी डॉक्टरेट पूरी करने के लिए कैम्ब्रिज की ओर लौट आए। साल 1947 में उष्णकटिबंधीय अक्षांश यानी ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में कॉस्मिक रे पर अपने शोध ग्रंथों के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। उसके बाद विक्रम जी ने भारत आकर कॉस्मिक रे पर भौतिकी विज्ञान पर अपना अनुसंधान कार्य जारी रखा।
0: भारत में उन्होंने अंतर्भूमंडलीय, अंतरिक्ष, सौर भूमध्य रेखीय संबंध और भू चुंबकत्व पर गहन अध्ययन किया। वाकई में उस समय अपने देश को विज्ञान के क्षेत्र में ऊंचा उठाने की ललक ने विक्रम साराभाई को एक उत्कृष्ट अनुसंधानकर्ता बना दिया था।
1: डॉक्टर साराभाई कठिन परिश्रमी असाधारण नेतृत्व करने वाले स्वप्न दृष्टा भी थे। फ्रांसीसी भौतिकी वैज्ञानिक पियरे क्यूरी, जिन्होंने अपनी पत्नी मैरी क्यूरी के साथ मिलकर पोलियम और रेडियम का आविष्कार किया था, वो कहते थे डॉक्टर साराभाई का उद्देश्य जीवन को स्वप्न बनाना है और उस स्वप्न को वास्तविक रूप देना है।
0: जी हाँ, न केवल डॉक्टर साराभाई ने सपने देखे बल्कि उन्हें सच करके दिखाए और साथ ही दूसरों को भी सपने देखना सिखाया। अमली जामा पहनाकर वास्तविकता में सफल होना सिखाया। भारत के कई अंतरिक्ष कार्यक्रमों की सफलता इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है ही।
1: ये तो सच बात है कि डॉक्टर साराभाई एक प्रवर्तक वैज्ञानिक, भविष्य दृष्टा, औद्योगिक प्रबंधक और देश के आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान के लिए संस्थाओं की परिकल्पना के निर्माता के रूप में अद्भुत संयोजक थे। उनमें अर्थशास्त्र और प्रबंध कौशल की अद्भुत सूझ और समझ थी। किसी भी समस्या को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उनका ज्यादा वक्त उनके अनुसंधात्मक गतिविधियों में बीतता था। डॉक्टर साराभाई के निरीक्षण में लगभग 19 लोगों ने अपनी डॉक्टरेट का कार्य पूरा किया।
0: डॉक्टर साराभाई ने स्वतंत्र रूप से अपने और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर राष्ट्रीय पत्रिकाओं में लगभग 86 अनुसंधान लेख लिखे, जो आज भी धरोहर के रूप में सुरक्षित हैं।
1: डॉक्टर साराभाई को एक महान संस्थान निर्माता का अग्रदूत भी कहा जा सकता है। कई क्षेत्रों में बड़ी संख्या में संस्थान स्थापित करने में अपना सहयोग दिया था उन्होंने। अहमदाबाद वस्त्र उद्योग की अनुसंधान एसोसिएशन यानी ATIR के गठन में सर्वप्रथम पहल थी उनकी। ये काम तो कैम्ब्रिज से कॉस्मिक रे भौतिकी में डॉक्टरेट की उपाधि लेकर वापस आने के तत्काल बाद ही किया था उन्होंने। वस्त्र उद्योगिकी में उनका औपचारिक प्रशिक्षण नहीं था, लेकिन ATIRA का गठन भारत में वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। उस समय वैसे भी कपड़े के मामले में गुणवत्ता नियंत्रण की कोई खास तकनीक नहीं थी। कई समूह और प्रक्रियाओं के परस्पर विचार विमर्श के बाद ये अवसर उपलब्ध करवाने में सफल हुए थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। आइए अब हम आपके साथ ऐसे ही कुछ संस्थानों के नाम साझा करते हैं।
0: जी, भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला PRL अहमदाबाद, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद, सामुदायिक विज्ञान केंद्र अहमदाबाद, दर्पण अकादमी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स अहमदाबाद में, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवंतपुरम, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद, फास्टर ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर FBTR कलपक्कम, वेरियल एनर्जी साइक्लोट्रोन प्रोजेक्ट कोलकाता, भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड यानी UCIL जादूगोड़ा बिहार, जैसे नाम प्रमुखता से शामिल हैं विक्रम साराभाई के नाम पर।
1: जी हाँ, वाकई में सुनकर विश्वास नहीं होता कि कोई इतना काम कैसे कर पाता होगा, लेकिन डॉक्टर विक्रम साराभाई ने असंभव को भी सत्य बना दिया था। ये भी उतना ही सत्य है। डॉक्टर होमी जे भाभा की जनवरी सन 1966 में मृत्यु हो गई। डॉक्टर साराभाई को परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभालने की जिम्मेदारी भी दे दी गई। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक विकास की विभिन्न गतिविधियों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में छिपी व्यापक क्षमताओं को पहचान लिया। संचार, मौसम विज्ञान, मौसम संबंधी भविष्यवाणियां और प्राकृतिक संसाधनों के लिए अन्वेषण के कार्य प्रारंभ कर दिए गए। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद ने अंतरिक्ष विज्ञान में और बाद में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अनुसंधान का नया रास्ता खोल दिया। देश में रॉकेट प्रौद्योगिकी को भी आगे बढ़ाया गया। भारत में उपग्रह टेलीविजन प्रसार के विकास में उनकी अग्रणी भूमिका के लिए तो विज्ञान उनका सदैव ऋणी ही रहेगा।
0: जी हाँ, आगे बढ़े विक्रम साराभाई के कारनामों को जानने के लिए तो भारत में भेषज उद्योग के भी प्रणेता रहे विक्रम साराभाई। वो उन गिने चुने लोगों में थे जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गुणवत्ता के उच्चतम मानक स्थापित किए जाने चाहिए और उन्हें हर हाल में बनाए रखा भी जाना चाहिए। वो साराभाई थे जिन्होंने भेषज उद्योग में इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा प्रसंस्करण और संचालन अनुसंधान तकनीकों को लागू किया, दवाइयों और उनके उपकरणों को देश में बनवाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि देश आत्मनिर्भर बन सके। देश में विज्ञान शिक्षा के प्रचार प्रसार और सुधार के लिए उन्होंने सामुदायिक विज्ञान केंद्रों की भी स्थापना की।
1: ज्ञान विज्ञान में रुचि रखने वाली डॉक्टर साराभाई सांस्कृतिक गतिविधियों से भी संबंध रखते थे। वो संगीत, फोटोग्राफी, पुरातत्व, ललित कलाओं और अन्य क्षेत्रों से भी लगातार जुड़े रहे। पत्नी मृणालिनी के साथ मिलकर मंच कलाओं की संस्था दर्पण का गठन किया था उन्होंने। बेटी मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की सुप्रसिद्ध नृत्यांगना बनी।
0: तिरुवंतपुरम केरल के कोवलम में 30 दिसंबर 1971 को डॉक्टर साराभाई का आकस्मिक देहांत हो गया। विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र के लिए ये अपूर्णीय क्षति थी। साराभाई का ऐसे जाना। इस महान वैज्ञानिक के सम्मान में तिरुवंतपुरम में स्थापित थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन TERLS और संबंध अंतरिक्ष संस्थाओं का नाम बदलकर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रखा गया। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के एक प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के रूप में भारत के लिए काम करता है। साल 1974 में सिडनी स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ ने निर्णय लिया कि सी ऑफ सेरेनिटी पर स्थित बेसल नामक मून क्रेटर अब साराभाई क्रेटर के नाम से जाना जाएगा। भारत में डॉक्टर साराभाई के सम्मान में भारतीय डाक विभाग द्वारा भी उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर 1972 में एक डाक टिकट जारी किया गया।
1: आइए अब डॉक्टर साराभाई के पुरस्कारों की चर्चा कर लें। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार सन 1962 में दिया गया, पद्म भूषण 1966 में और पद्म विभूषण सम्मान से उन्हें मरणोपरांत साल 1972 में सम्मानित किया गया।
0: दोस्तों, डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई वैज्ञानिक समुदाय में अपना एक विशेष स्थान रखते थे। अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यों से लेकर देश की प्रगति में उनका नाम सदैव पूरे आदर और सम्मान के साथ लिया जाएगा। उनके अधूरे सपनों को आने वाली पीढ़ी सदैव पूरा करने का प्रयास करेगी और बताए हुए उनके मार्गदर्शन का अनुसरण करेगी। रेडियो आजाद हिंद डॉक्टर विक्रम साराभाई को शत शत नमन करता है।
1: तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम जिसमें हमने भारत के महान भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में चर्चा की। अब इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। हमें दीजिए अनुमति और स्वीकार कीजिए हमारा
0: नमस्कार।
1: सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के।

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: वराहनगर के दिन खत्म हुए। नरेंद्र नाथ मन से परिव्राजक थे, मौका पाते ही घूमने निकल पड़ते थे। घूमने जाने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत नहीं थी। साधु सन्यासी देखकर अनजान लोग भी उनके टिकट और खाने की व्यवस्था कर देते थे, नहीं तो फूटी कोड़ी होने पर भी वे विश्व भ्रमण कैसे कर पाते।
1: यहाँ पर हम कुछ बातों का उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं। नरेंद्र 1888 ईस्वी के पहले पहल तीर्थ भ्रमण की इच्छा से वराहनगर मठ से बाहर निकले। इसके पहले 2 साल में भी वे आठपुर के अतिरिक्त वैद्यनाथ और शिमुलतला भी कई बार गए थे। उनके भारत भ्रमण संबंधी कई बातें हमें ज्ञात नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई रोजाना डायरी नहीं लिखी थी। बाद में यत्र तत्र प्रसंगवश उनका कोई मंतव्य सुनकर अथवा जिन व्यक्तियों से उनकी भेंट हुई थी उनसे कुछ घटनाएं सुनकर जहां तक संभव हो सका है उसे लिपिबद्ध किया गया है। एक बात और, अब से हम नरेंद्र नाथ ना कहकर आचार्य देव का उल्लेख स्वामी जी अथवा विवेकानंद नाम से करेंगे।
0: सन 1887 ईस्वी के जनवरी महीने में नरेंद्र नाथ ने संन्यास धारण कर स्वामी विवि दीशानंद नाम ग्रहण कर लिया था। फिर भी अनुष्ठानिक रूप से नाम बदल जाने पर भी नया नाम उस समय तक व्यापक रूप से वहत नहीं हुआ था, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। बल्कि हम जानते हैं कि परिव्राजक के रूप में भारत का परिभ्रमण करने के दिनों में वे अपना परिचय गुप्त रखने के लिए विभिन्न नामों का सहारा लेते थे। और यह भी जाना जाता है कि कुछ दिनों तक विवि दीशानंद नाम का व्यवहार करने के बाद उसको छोड़कर उन्होंने स्वामी विवेकानंद नाम ग्रहण किया। इसी समय विवेकानंद का नाम परित्याग नहीं करने पर भी वे सच्चिदानंद नाम का व्यवहार करते थे। सबसे अंत में अमेरिका जाने से पूर्व उन्होंने स्वामी विवेकानंद नाम को स्थायी रूप से ग्रहण कर लिया था और इसी नाम से वे विश्वविख्यात हुए। किंतु उनके बंधु बांधव और शिष्यगण उन्हें स्वामी जी कहकर संबोधित किया करते थे।
1: भ्रमण की लालसा भारत के सन्यासियों की मज्जा में है। कहावत है, रमता जोगी बहता पानी। साधु यदि बहती हुई नदी की भांति अविराम घूमते रहें, तो जैसे नदी में गंदगी नहीं जमती, वैसे ही साधु का जीवन भी निष्कलंक रहता है। और विभिन्न तीर्थों में कितने विविध भावों में विराजमान रहकर भगवान भक्तों की पूजा ग्रहण करते हैं एवं निर्विचार रूप से कृपा वितरण करते हैं। उसे देखकर किस व्यक्ति के हृदय में उत्साह नहीं जागता। विशेषकर ईश्वर प्राप्ति के लिए जिन्होंने गृह त्याग किया है, वे उन्हें यानी ईश्वर को सभी संभव स्थानों में ढूंढने निकलेंगे। ये तो अत्यंत स्वाभाविक है। नव प्रतिष्ठित वराहनगर मठ के साधुओं के जीवन में भी इस नियम का व्यतिक्रम नहीं हुआ। मठ की स्थापना के बाद से ही कोई न कोई अक्सर बाहर जाते। कभी कभी स्वामी रामकृष्ण नंद एवं और 2-1 व्यक्तियों को छोड़कर मठ शून्य प्राय हो जाता था। कोई थोड़े दिनों के लिए जाते थे, कोई लंबी तीर्थ यात्रा और तपस्या के लिए जाते थे।
0: तीर्थ यात्रा के दिनों में मठ मंदिर आश्रम में साधुओं और पंडितों के साथ चर्चा के क्रम में अनगिनत जन साधारण के दैनिक कार्यकलाप और बात व्यवहार के द्वारा उन्होंने भारत को देखा था और जाना था। उत्तरी भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश में भ्रमण करते हुए विवेकानंद अंत में काशी धाम पहुंचे। वहां वे द्वारकादास के आश्रम में रहते थे। वे सब कितने व्यस्तता के दिन थे, एक मिनट सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। दिन रात बाहर के लोगों का आना जाना लगा रहता था। पंडितगण आए हैं, घोर तर्क वितर्क चल रहा है, किंतु स्वामी जी एक क्षण भी उससे कतराते, असंतोष होते या उदासीन होते नहीं प्रकट होते थे। आध्यात्मिक विषय हो या सामान्य ज्ञान विषय, वे सर्वदा सभी विषयों की विवेचना के लिए तैयार रहते। बड़े बड़े पंडित और विद्वान व्यक्तियों का आगमन हुआ, वे लोग सन्यासियों के साथ धर्म तथा दर्शन आदि विषयों की चर्चा करते रहते थे। बड़े बड़े संस्कृत वचन और श्लोक आदि उद्धृत कर प्राचीन पंथियों की नींव सुदृढ़ करने की चेष्टा कर रहे थे। उसी समय स्वामी जी प्रबल तर्क से उन लोगों के मतों को छिन्न छिन्न कर देते। यह दिखाते कि संस्कृत विद्या या शास्त्रों का मूल इस देश के लोगों की शिक्षा दीक्षा और जीवन की उन्नति और अवनति के साथ घनिष्ठ रूप से संबंध है। देश की उपेक्षा कर देशवासियों से अलग शास्त्रों को देखने से शास्त्रों के यथार्थ मर्म को जानना कठिन है। शास्त्र कोई मनगढ़ंत काल्पनिक नियम मात्र नहीं है, बल्कि राष्ट्र का गठन और विकास ही उसका मुख्यतम उद्देश्य है।
1: फिर जब ईसाई पादरी आकर हिंदू धर्म की निस्सारता प्रतिपादित करने के विचार से तर्क करने लगते, तब उन लोगों को उपद्रव समाप्त करने के लिए उन्हें भी तर्क युद्ध में प्रवृत्त होना पड़ता। स्वामी जी की तीक्ष्ण बुद्धि के समक्ष वे सब कैसे आगे बढ़ पाते? उन लोगों के सारे व्यर्थ के तर्क चूर चूर हो छिन्न भिन्न हो जाते। अंत में जब वे सब तर्क वितर्क में ध्वस्त हो अपनी पराजय स्वीकार करने का उपक्रम करते, तब फिर स्वामी जी उन लोगों के पक्ष में खड़े हो जाते और अपनी स्वभाव सिद्ध सरल सुबोध भाषा में ईसा मसीह के हृदय के अद्भुत प्रेम की अपूर्व व्याख्या करते।
0: काशी में भिक्षा से प्राप्त अन्न से उदर पूर्ति, देव स्थानों का दर्शन, शास्त्रों की चर्चा, जप, ध्यान, साधु संग आदि ही उनका नित्य कर्म था। शाम को जिस समय वे भगीरथी के तट पर पत्थर की सीढ़ियों पर बैठ करके संध्या काल की उपासना के लिए तैयार होते थे, उस समय अनगिनत मंदिरों के संध्या आरती का घंटा और शंखनाद उन्हें भाव विभोर कर देता था।

0: एक दिन किसी भक्त ने उनका परिचय पंडित भूदेव मुखोपाध्याय से करा दिया। अपूर्व धीशक्ति संपन्न तरुण सन्यासी के साथ धर्म, समाज, नीति तथा भारत की उन्नति संबंधी चर्चा से भूदेव बाबू ऐसे मुग्ध हुए कि उन्होंने उन सज्जन से कहा, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इस तरुण युवक ने इतनी अल्प अवस्था में इतनी गंभीर अंतर्दृष्टि और विपुल अभिज्ञता किस प्रकार प्राप्त कर ली। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में ये एक महान व्यक्ति बनेंगे। वाराणसी के विख्यात साधु श्रीमंत त्रेलिंग स्वामी जी के दर्शन प्राप्त कर स्वामी जी कृतार्थ हुए। इनके त्याग और तपस्या के बारे में स्वामी जी ने कई बार श्री राम कृष्ण देव से सुना था। अब उनके दर्शन से भक्ति और विनम्र चित्त के साथ उनके चरणों की धूल लेकर वे धन्य हो गए।
1: विश्वनाथ, अन्नपूर्णा और दुर्गा देवी के लिए विग्रह का दर्शन कर उनके मन प्राण आनंद से परिपूर्ण हो गए थे और इस पवित्र धाम में भगवान बुद्ध एवं शंकराचार्य के कीर्ति कलापों के स्मरण से उनकी ऐतिहासिक चेतना अत्यंत प्रदीप्त हो गई थी। एक दिन दुर्गा मंदिर से लौटने के समय बंदरों के एक झुंड ने उनका पीछा किया। उन्हें डर हुआ कि बंदर उन्हें क्षति पहुंचा सकते हैं, अतः वे तेजी से भागने लगे, किंतु बंदर भी पीछे पीछे भागते रहे। उसी समय एक वृद्ध सन्यासी ने चिल्लाकर कहा, रुको, उन बंदरों के सामने खड़े रहो। यह सुनकर स्वामी जी निर्भीक भाव से उनके सम्मुख खड़े हो गए। उन्हें भयहीन देख करके बंदर भी क्षण भर के लिए रुक गए और तत्पश्चात भाग खड़े हुए। बाद में अमेरिका में अपना भाषण देते समय वे इस घटना का उल्लेख कर इसका तात्पर्य श्रोताओं को समझाते हुए उन्होंने कहा था,
2: प्रकृति के सम्मुखीन होकर डटे रहो, अविद्या के सम्मुखीन होकर डटे रहो, माया के सम्मुखीन होकर डटे रहो।
0: वे बुद्ध देव की कीर्ति स्थल सारनाथ भी देखने गए थे, किंतु उन दिनों उस स्थान का भग्न स्तूप और मठ आदि जंगल से भरे थे।
1: श्रीमद स्वामी भास्करानंद जी के गुणों को सुनकर के स्वामी जी एक दिन उनके आश्रम में भी गए। उस समय भास्करानंद जी शिष्यों तथा भक्तों से घिरे बैठे थे। स्वामी जी ने प्रणाम कर आसन ग्रहण किया। पहले ही विवेकानंद की मनोहर शारीरिक क्रांति से उनकी दृष्टि आकर्षित हो गई। फिर धीरे धीरे संन्यास जीवन के आदर्शों के संबंध में स्वामी जी को उपदेश देते हुए भास्करानंद जी बोल उठे,
2: कभी डरकर भागो मत।
3: संपूर्ण रूप से कामनी कांचन का त्याग कोई भी नहीं कर सकता।
2: क्या कह रहे हैं महाराज? ऐसे अनेक सन्यासी हैं जो संपूर्ण रूप से कामिनी कंचन के संबंधों से विमुक्त हैं, क्योंकि सन्यासी जीवन का यही तो प्रथम साधन है। और मैंने तो कम से कम ऐसे एक व्यक्ति को अवश्य देखा है जो कामिनी कंचन की चाह पर संपूर्ण रूप से विजय प्राप्त करने में समर्थ हुए थे।
3: कौन है ये महापुरुष?
2: श्री राम कृष्ण परमहंस देव।
3: तुम अभी बच्चे हो, इस उम्र में यह बात समझ नहीं पाओगे।
1: अपने गुरुदेव के पवित्रतम चरित्र की समालोचना होते हुए देख स्वामी जी निर्भीक दृढ़ता के साथ प्रतिपाद करने को उद्यत हो गए। स्वामी जी के तेज युक्त तथा युक्तिपूर्ण वचनों को सुनकर के उपस्थित मंडली तथा स्वयं भास्करानंद जी बड़े विस्मित हुए। जिनके चरणों में राजा महाराजा धनी पंडित ज्ञानी आदि सभी मस्तक झुकाकर कृतार्थ होते थे, जिनका अलौकिक पांडित्य गौरव के साथ ज्ञान लोक विकीर्ण करता था, उन्हीं भास्करानंद जी को प्रतिपक्षी बनकर तर्क में अग्रसर होना कम साहस की बात नहीं थी। भास्करानंद जी उदार हृदय सन्यासी थे। वे स्वामी जी की बातों से विशेष संतुष्ट हुए और उनके सामने ही अपने शिष्य मंडली तथा उपस्थित जनों से कहा,
3: इसके कंठ में सरस्वती विराजमान है, इसके हृदय में ज्ञानालोक जाग उठा है।
1: परंतु अपने गुरुदेव के संबंध में अनादर सूचक शब्द सुनकर दुखी होकर के विवेकानंद तुरंत वहां से चले आए।
0: कुछ दिन काशी धाम में रहकर स्वामी जी वराह नगर मठ लौट आए। वाराणसी धाम भारत का हृदय केंद्र है। यहाँ मद्रासी, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, महाराष्ट्रीय, उत्तर प्रदेशीय व्यक्तिगण आचार व्यवहार तथा भाषा की भिन्नता के बावजूद एक भाव के भावुक बनकर भगवान विश्वनाथ के मंदिर में सम्मिलित होते हैं। काशी धाम में स्वामी जी ने परमार्थिकता से भ्रष्ट बाह्य आचार परायण इन नर नारियों के बीच भी सनातन धर्म की युग युगांतर से वंचित महिमा की उपलब्धि की।
1: इस तीर्थ दर्शन काल में उन्होंने भारत की आत्मा का थोड़ा बहुत परिचय प्राप्त किया था और अनेक मतवादों का भी साधन किया था। उनकी दृष्टि पहले से अधिक व्यापक हो गई थी, अतः अब वे चाहते थे कि उनके गुरु भ्राता चिंतन के क्षेत्र में भी व्यापकता प्राप्त करें। एक क्षण में उनके मन में धर्म प्रचार का संकल्प जागता और वेदांत के तत्व को कार्य रूप में परिणित करने के विचार से उनका मन उद्वेलित हो जाता। गुरु भ्राताओं में भी वे धर्म की इन नवीन धारणाओं का संचार करने की दिशा में प्रयत्नशील रहते। उन प्रारंभिक दिनों में भी वे उन लोगों को सर्वहाराओं के घरों में धर्म प्रचार करने के लिए जाने को कहते।
0: किंतु साधुगण उस समय प्रचार विरोधी थे। उन लोगों के मतानुसार जीवन का मुख्य उद्देश्य गुरुदेव के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्राप्त करना था। स्वामी जी भी तो पहले इसी मत को पोषण करते थे। सबके प्रवक्ता के रूप में स्वामी जी भी कहा करते थे कि ईश्वर प्राप्ति ही मनुष्य उद्देश्य है। पर तीर्थ से लौटने के बाद वे तरुण साधुओं से कहते,
2: सभी प्रचार कार्यों में रत हैं, परंतु वे उसे अज्ञात रूप में करते हैं। मैं उसे इच्छा पूर्वक करूंगा। तुम लोग जो मेरे गुरु भाई हो, तुम्हारे मना करने पर भी मैं नहीं छोड़ूंगा। दीन हीनों तक जाकर प्रचार करूंगा। प्रचार यानी भाव का बहिप्रकाश। श्रीलंग स्वामी मौन रहते हैं तो क्या प्रचार नहीं करते? उनका मौन ही व्याख्यान है। पौधे भी तो प्रचार करते हैं, शिक्षा देते हैं।
1: इस बार स्वामी जी वराह नगर में कुछ दिनों तक ठहरे थे, क्योंकि उनमें सन्यासी सुलभ निर्जन स्थान में तपस्या करने की आकांक्षा सदा ही जागृत थी। अतएव शीघ्र ही वे पुनः उत्तर भारत के तीर्थ दर्शन के लिए निकल पड़े। वे पुनः काशी गए। वहां श्रीयुक्त प्रेमादास मित्र से उनका परिचय हुआ। मित्र महाशय धनवान और संस्कृत भाषा के सुपंडित थे। स्वामी अखंडानंद गंगाधर से उनका पहले से ही परिचय था। प्रेमादास बाबू से स्वामी जी का यह परिचय धीरे धीरे मित्रता में बदल गया तथा दोनों में अनेक पत्राचार हुए।
0: काशी में थोड़े दिन रुकने के बाद विवेकानंद सन 1888 ईस्वी के अगस्त में हाथ में दंड कमंडल लिए उत्तर भारत के कई स्थानों से होकर सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या पहुँचे। अयोध्या के प्रत्येक रजकण के साथ सूर्यवंशी पराक्रमशील राजाओं की गौरव स्मृति जड़ित है। कवि श्रेष्ठ वाल्मीकि के श्री रामचंद्र आदर्श राजा, आदर्श पुत्र, आदर्श पति और आदर्श भ्राता के रूप में इसी पुण्य भूमि में पूर्ण महिमा के साथ प्रस्फुटित हुए थे। तेजस्वी ब्राह्मण का पौरोहित्य तपस्वी विश्वामित्र, ब्रह्म ज्ञानी मिथिलाधिपति जनक, सुदूर अतीत की ऐसी सहस्रों उज्जवल कथाएं स्वामी जी को स्मरण हो आई।
1: राम सीता की लीला भूमि में पदार्पण करते ही उन्हें अपने बचपन की बहुत सारी बातें याद आ गईं। उनका वह रामायण के प्रति प्रेम, सीता राम की मूर्ति के सम्मुख तन्मय चित से ध्यान, वीर भक्त हनुमान के प्रति गंभीर श्रद्धा, ये सब स्मृतियां एक एक करके उनके मानस पटल पर उदित होकर के उन्हें भावानंद में विभोर करने लगी। अयोध्या में कुछ दिन बिताकर सन्यासियों के साथ श्री राम नाम कीर्तन में बिताकर स्वामी जी लखनऊ और आगरा होते हुए पैदल ही वृंदावन धाम की ओर अग्रसर हुए।
0: अयोध्या के बाद लखनऊ आकर वे अवध के नवाबों की कीर्ति के साक्षी स्वरूप बागों, महलों और मस्जिदों आदि को देखकर आनंदित हुए। लखनऊ से आगरा आने पर मुगल सम्राटों की अक्षय कीर्ति ताजमहल, आगरा का किला आदि की अपूर्व स्थापत्य कला ने उन्हें आत्मविभोर कर दिया। ताजमहल का विभिन्न दिशाओं से प्रकाश और छाया की विभिन्न परिधियों में निरीक्षण कर एवं उनके शिल्प कौशल का मूल्यांकन कर मानो उन्हें तृप्ति ही ना होती थी। अनेक बार वहां जाकर तथा अनेक रूपों से देखकर वे केवल यही सोचते थे कि भारतीय शिल्प ने एक दिन कैसा अद्भुत उत्कर्ष प्राप्त किया था। उन्होंने कहा,
2: इस आश्चर्यपूर्ण शोध की हर जगह ध्यान पूर्वक दिन भर देखनी होगी और इसकी सुंदरता का संपूर्ण आस्वादन करना हो तो कम से कम 6 महीने लगे।
1: आगरा के किले, कमरों, सभागार, मस्जिद इत्यादि को एक के बाद एक देखते हुए वे मुगलों के गौरव की स्मृति में डूब गए थे। आगरा से चलकर वे अगस्त महीने के आरंभ में वृंदावन पहुंचे। लंबे 30 मीलों का रास्ता उन्होंने हाथों में दंड का मंडल लेकर के तथा मात्र 2-1 पुस्तकों को साथ रख करके पैदल तय किया। जब वृंदावन के निकट पहुंच रहे थे तो उन्होंने देखा कि रास्ते के किनारे एक व्यक्ति निश्चिंत होकर के तंबाकू पी रहा है। स्वामी जी ने उस आदमी से हाथ जोड़कर चिलम मांगी। यह व्यक्ति भयभीत होकर के संकोच के साथ बोला,
4: नहीं महाराज, ये मेरी झूठी चिलम है और फिर मैं नीच जाति का हूं, आप इसे कैसे पी सकते हैं।
1: आजन्म के संस्कारों से वशीभूत होकर के स्वामी जी का हाथ अनजाने में ही एकदम पीछे हट गया। उन्होंने फिर अपना रास्ता पकड़ लिया। कुछ दूर जाने पर उन्हें होश आया और सोचा,
2: मैंने तो जाति कुल मान सभी को त्याग कर संन्यास ले लिया है ना, फिर जानकर मेरा सोता हुआ जाति अभिमान क्यों जाग उठा? उसकी छुई हुई चिलम मैं क्यों नहीं ले सका? अभ्यास जनित संस्कार का ये कैसा अद्भुत प्रभाव है।
1: स्वामी जी लौट पड़े और जल्द ही उसके निकट आ पहुंचे। फिर बड़े प्रेम से उससे चिलम भरवा करके उन्होंने आनंद के साथ धूम्रपान किया। इस घटना को वे जीवन में कभी ना भूल पाए। बहुत दिन बाद श्री गिरीश चंद्र घोष ने स्वामी जी के मुख से यह कहानी सुनकर कहा था, अरे तुम नशे में इतने लाचार हो गए थे कि अछूत की चिलम से भी उसे पूरा करना पड़ा। इसके उत्तर में स्वामी जी ने कहा,
2: नहीं जी, ऐसी बात नहीं। सचमुच ही मुझे आत्म परीक्षा करने की इच्छा हुई थी। संन्यास लेकर पूर्व संस्कार दूर हुए हैं या नहीं, जाति भेद के पार गया हूं या नहीं, परीक्षा कर देखना पड़ता है। प्रकृत संन्यास को बनाए रखना बड़ा कठिन है। कथनी और करनी में लेश मात्र भी अंतर नहीं चलेगा। क्या तुमने सोच रखा है कि जीवन में संन्यासी का आदर्श पालन करना बड़ा सहज है? जीवन में इतना कठिन पथ दूसरा कोई नहीं। सीधे पहाड़ के अंतिम छोर पर खड़े होना है, जरा पैर फिसलते ही काम तमाम। संन्यास व्रत लेने से हर क्षण आत्म परीक्षा कर देखना होगा कि जाति बंधनों से मुक्त हुआ हूं या नहीं। उस दिन मुझे यही शिक्षा मिली थी कि किसी की भी घृणा नहीं करनी होगी, सोचना होगा कि सभी भगवान की संतान हैं।
0: वृंदावन पहुंचकर वे बलराम बाबू की ठाकुरबाड़ी काला बाबू का कुंज में ठहरे। यहाँ आकर उन्होंने मानो राधा कृष्ण के अलौकिक लीला विलास का प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त किया और उसकी भावधारा में बह गए। स्वयं को संभालना कठिन हो गया। श्री कृष्ण के जीवन की घटनाएं उस समय उनके समक्ष जीवंत लगने लगी। वृंदावन में कई दिन बिताकर उस भगवत लीला का गहनतम परिचय प्राप्त करने के लिए वे निकट के अनन्य लीला क्षेत्रों के दर्शन को निकल पड़े। गोवर्धन गिरी की परिक्रमा करते समय उन्होंने ये संकल्प किया कि बिना मांगे जो भिक्षा मिलेगी उसी से वे अपनी भूख मिटाएंगे, इसके अतिरिक्त किसी से कुछ नहीं मांगेंगे। पहले दिन दोपहर को भूख की पीड़ा असहनीय हो गई। फिर उस समय वर्षा भी होने लगी, मानो उसके कष्ट की सीमा ना रही। भूख और रास्ते की थकान से बलहीन होकर वे किसी प्रकार चल रहे थे। उसी समय उन्होंने अचानक सुना कि कोई पीछे से पुकार रहा है।
4: महाराज, महाराज, अरे महाराज जरा रुकिए, मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ।
1: पर विवेकानंद रुके नहीं, चलते चले गए। वे यह देखना चाहते थे कि यह भोजन सचमुच भगवान ने भेजा है या नहीं। उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया, पर वह व्यक्ति भी छोड़ने वाला नहीं था। वह भी पीछे पीछे दौड़ा और अंत में उसने स्वामी जी को पकड़ ही लिया।
4: महाराज, महाराज, क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हैं महाराज? मैं सही में आपके लिए ही भोजन लाया हूँ, ग्रहण कीजिए ना महाराज, मुझे इस पुण्य कार्य से वंचित ना कीजिए।
2: लाओ भाई, तुमने भोजन करवाकर आज मेरी जान बचाई है। तुम्हें तो भगवान ने इस निर्जन में मेरे लिए ही भेजा है।
1: उस आदमी ने श्रद्धा पूर्वक उन्हें भोजन कराया और नमन कर चला गया। वह स्वामी जी को फिर कभी नहीं मिला।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे थे रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। आई श्रोताओं, आज की सभा समापन से पूर्व हम आपको देते हैं जानकारी, हमारे केंद्र से कल प्रातः प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। कल प्रातः 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम जीवन सौरभ। 7:10 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम अक्षय निधि, जिसमें आप सुनेंगे ऋग्वेद के प्रथम मंडल से सूक्त 187 का वाचन। भक्ति संगीत कार्यक्रम लेकर आएंगे सुबह 7:20 पर। प्रातः 8 बजे का समय होगा कार्यक्रम वतन का राग सुनने का। कल का ये कार्यक्रम केंद्रित रहेगा वीर दुर्गादास राठौर की जयंती पर। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम बाल सभा, कल का विषय होगा खेलों की परीक्षा। सुबह 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, विषय होगा एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोर। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल वामा से आप सुनेंगे पूर्वाखली की बातचीत। 9:30 पर आपको सुनवाएंगे विशेष कार्यक्रम नर्मदा एक सांस्कृतिक परिदृश्य के रूप में। सुबह 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम देश के संस्थान, कल का विषय होगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। सुबह 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम याद करो कुर्बानी, कल का शीर्षक होगा रमेश चंद्र दत्त की जयंती पर केंद्रित। दिन में 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम परिक्रमा और 11:30 पर युग प्रवर्तक विवेकानंद।

श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। रात्रि के 10 बजे हैं। अब हमारी आज की ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल प्रातः 7 बजे कल के कार्यक्रमों के साथ हम आपसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।